0: قلت
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव प्रकाश शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग दे दिए जाते हैं और लोग जो है बिना जांचे परखे उन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों तक या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावे की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। देखिए, फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का हाली वीडियो है और जहां पर एक महिला ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां जमा हो जाती हैं। क्या है दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि ये लखनऊ के अलीगंज में लगी आग के दौरान का वीडियो है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर लटका दिया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
2: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में 22 जून यानी सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में अचानक आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अब इसी घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला किसी इमारत की खिड़की से एक छोटे बच्चे को लटकाती नजर आ रही है। इसमें महिला जिस कमरे में है उसमें से लगातार काला धुआं निकल रहा है और महिला बेसुध नजर आ रही है। कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो अलीगंज की हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम न घुट जाए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा कि निशब आज की घटना जिसमें यह माँ की ममता की ताकत ऐसी होती है कि मौत सामने हो तब भी वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हर हद पार कर जाती है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो जो है अलीगंज का हालिया घटना का है, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद बेहाल होने के बावजूद उसे खिड़की से बाहर लटका दिया ताकि धुएं से उसका दम ना घुटे। सोशल मीडिया पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावा के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे की जांच की। सबसे पहले हमने वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान जो है बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। और देखिए, हमने इससे ध्यान से सुना, ये सुनने में अंग्रेजी लग रही थी। आप भी सुनिए इन आवाजों को और आपको समझ में आ जाएगा आगे आपको किस प्रकार से ये वीडियो नजर आता। देखिए, आग लगने के इस हादसे को लखनऊ से जोड़ा जा रहा है और इसमें सिर्फ विदेशी लहजा आपको सुनाई देगा। यह हमें कुछ अटपटा सा नजर आया और जाहिर सी बात है इसके बाद हमने लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके वीडियो और तस्वीरों की वायरल वीडियो के दृश्यों से मिलान किया तो ये बात सामने निकल कर आ गई कि वायरल वीडियो बिल्डिंग से ये बिल्कुल जुदा नजर आता है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों से इसे बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वीडियो को जिस लखनऊ के अलीगंज आग घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो इसके बारे में जानकारी जरूर निकलकर सामने आती, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हमको नजर नहीं आया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि आग से बचाने के लिए बच्ची को खिड़की के बाहर लटकाती महिला का यह वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी और हादसे के पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: वायरल हो रहे दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 8 अप्रैल 2010 की रिपोर्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला जिस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी वो 7 महीने की थी और उसका नाम जानीवाह था। ये वीडियो पड़ोस में ही रहने वाली माया टकर नाम की एक महिला ने बनाया था। एक खबर के मुताबिक ये आग न्यूयॉर्क सिटी के पेलहम पार्कवे हाउसेज में लगी थी और ये वीडियो इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल का है। घर में धुआं भर गया था, इसलिए 18 साल की वैनेसा स्कॉट ने अपने 7 महीने की कजिन जानीवाह को खिड़की से बाहर निकाल कर लटका रखा था ताकि वो सांस ले सके। बाद में आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने सीढ़ी की मदद से वैनेसा और उनके परिवार के बाकी लोगों की जान बचाई थी। इस घटना में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों सहित 10 लोग घायल हुए थे, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल से यह स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो लखनऊ तो क्या भारत का भी नहीं है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क का साल 2010 का वीडियो है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चींटियां जमा हो रही हैं। जी हाँ, देखते ही देखते ये बात हजारों लोगों तक पहुंच गई और कई वाहन मालिकों के मन में सवाल भी खड़े हो गए। लेकिन क्या सचमुच E20 पेट्रोल में ऐसा कुछ है जो चींटियों को आकर्षित करता है? वायरल हो रहे दावे की हमने पड़ताल की, रिपोर्ट देखिए।

0: भारत में प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात में खर्च होने वाले डॉलर को बचाने के लिए सरकार की ओर से भारी मात्रा में इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के साथ वाहनों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। अब वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिखता है कि एक शख्स E85 पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की टंकी का ढक्कन खोला, फिर उसका नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि टंकी के आसपास चींटियों का पूरा भंडार जमा हुआ था, मानो उन्होंने उस गाड़ी को अपना घर बना लिया हो। छोटी छोटी चींटियां टंकी के मुंह के पास इस कदर भिनभिना रही थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर टूट पड़ी हो। और सोचने वाली बात यह है कि चींटियों को मीठा बेहद पसंद होता है और इथेनॉल बनता ही गन्ने जैसी मीठी फसलों से, यानी फ्यूल टंकी चींटियों के लिए किसी गन्ने के खेत से कम नहीं था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास चीटियां जमा हो रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दावे का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की कसौटी पर उतारा। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कार का फ्यूल लिड खोलता है, जहां फ्यूल लेकर कैप को खोला जाता है, आसपास चींटियां इकट्ठा हो जाती हैं। और वीडियो में खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल लिड पर लगी E20 स्टिकर को दिखाया गया है। वीडियो को इस तरह शूट किया गया है कि देखने वाले लोगों को जरूर यह लगेगा कि चींटियां पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की वजह से ही आ रही हैं। इसे देखने के बाद हमें शक हुआ। इसके बाद हमने वीडियो में आ रही आवाजों को ध्यान से सुना। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये सिक्किम का हमको नजर आया।
2: गाड़ी हो ना, मेरा गाड़ी से।
1: और देखिए, सिक्किम में इस तरह की भाषाएं अक्सर बोली जाती

0: AI is changing the rules in tech, and staying relevant takes more than just keeping up. At WGU, our online technology master's programs give you the skills to keep pace with what's next. Learn more at wgu.edu.
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: बात करेंगे मानसून की। देखिए, जो दोबारा एक्टिव होने के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, एक दिन पहले ये मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां के 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मौसम तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
4: जून का चौथा हफ्ता चल रहा है और देश के 22 राज्यों में अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे चुका है। जिन राज्यों में मानसून पहुंचा है, वहां मानसून के बादल फुल रफ्तार से बरस रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। ये तस्वीर कोलकाता से आई है, जहां दिन में ही अंधेरा छा गया, जोरदार हवाएं चलने लगी और फिर बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। कमोवेश मानसून की ऐसी ही तेजी महाराष्ट्र में भी बनी हुई है, जहां कई जिलों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। एक दिन पहले अमरावती जिले में मानसून के बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर ही कुछ देर में पानी पानी हो गया। ये बारिश गर्मी से बेहाल लोगों और किसानों के लिए खासकर राहत बनकर आई।
5: विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है।
4: दरअसल इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने प्रवेश किया और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल हैं, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरसे। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं।
6: आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावना है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है, उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है, उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
7: करीब 9 दिनों के इंतजार के बाद मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 24 जून से दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से ही मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। 24 जून को मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, इंदौर और उज्जैन जिलों में भी मानसून की बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून भले ही देर से आया है, लेकिन मानसून जिस इंटेंसिटी के साथ बरस रहा है, उसने मध्य प्रदेश के लोगों को काफी राहत दी है।
4: इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि अभी यहां राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्री मानसून

0: हमसे सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम.
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है? और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स.
4: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद आज गर्भगृह के खुलेंगे कपाट. कामाख्या मंदिर में आज से दर्शन देंगी मां कामाख्या. 22 जून की रात्रि बंद हुए थे दर्शन. उज्जैन में महाकाल में भक्तों ने किया रिकॉर्ड दान. मंदिर समिति को 142 करोड़ रुपए की आमदनी. दान से मिले 80 करोड़ रुपए. राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़. एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दो दिन के उत्सव का आयोजन. सहारनपुर की 7 साल की नन्ही चैंपियन का कमाल. नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड. नेपाल के काठमांडू में लहराया तिरंगा. गांव लौटने पर जबरदस्त स्वागत. आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला. पहली बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया. वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू. वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों की बड़ी जीत. 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य. बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया. आज बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में दे रही हैं दस्तक. अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल समेत कई फिल्में हो रही हैं आज रिलीज. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छी बात धीरेन्द्र शास्त्री के साथ.
5: जिसका गुरु बलवान, चेला पहलवान. अब जिसका गुरु ही कमजोर हो तो चेला तो वैसे ही कमजोर. बोलो सीताराम, जोर से बोलो. लेकिन कई बार ऐसा होता है चेला मोटा होता है, गुरु कमजोर होता है. बोलो सीताराम. पर शरीर की मोटाई या पतलाई से नहीं, गुरु मोटा. गुरु पहलवान का मतलब, बलवान का मतलब, जिसका गुरु भजनानंदी होता, भगवान का भक्त होता. देखो बरसात होती है, बारिश होती है. अब भाई बारिश में कोई काम करना है तो बारिश तो बंद नहीं करवा सकते, लेकिन एक काम कर सकते, पूछो क्या, छाता लगा सकते. हाँ जी अना जी बोलो. बारिश हो रही, बारिश तो बंद नहीं करवा सकते पर छाता लगा सकते. उसी प्रकार संकटों की अगर वर्षा हो रही, मुश्किलों की वर्षा हो रही तो घबराने की बात नहीं है, गुरु की छत्र छाया तो पा सकते हैं. जैसे बारिश में छाता काम कर जाता है, वैसे ही संकटों में गुरुदेव की छत्र छाया काम हो जाती है, और जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है संकट उसका बाल बांका भी नहीं करते हैं। हमने गुरु की ही छत्र छाया क्यों कही, क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से होता है।

हनुमान चालीसा का प्रारंभ कहां से? बोलो, गुरु से। और विराम भी आप पढ़िएगा कभी तो हनुमान चालीसा, कभी आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, हनुमान चालीसा का विराम भी जय

चालीसा का प्रारंभ भी गुरुदेव से है और हनुमान चालीसा का विराम भी गुरु पर है। आगे जो तीन चौपाइयां हैं वो फल श्रुति है। हनुमान चालीसा यहीं विराम हो गया। जय।

हनुमान चालीसा का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु से क्यों करते? गुरु का मतलब क्या है, कारण क्या है, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम भगवान से मिलवाना नहीं है, गुरु का काम तो भगवान की पहचान करवाना है। भगवान तो सबको मिले ही है,

भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना मेरे माई बाप, जिसके जीवन में गुरु होता है ना, उसकी मूछ हमेशा बड़ी रहती है। मूछ का मतलब साख, मूछ का मतलब इज्जत, मूछ का मतलब प्रतिष्ठा। मूछ और पूंछ दोनों प्रतिष्ठा का सूचक है। जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है वो तुलसी भी तुलसीदास बन जाते हैं।

तुलसी का पौधा कौन पूछता था। लेकिन धन्य है, एक सज्जन हमसे बोले, बोले महाराज जी तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की लुगाई की महिमा है। लुगाई मतलब घरवाली। हमने कहा क्यों? बोले ना तुलसीदास जी की घरवाली ने डांट लगाई होती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा, अगर घरवाली की डांट से तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। अगर घरवाली की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घरवाली की डांट का बिल ना लो खा जाता, घर घर तुलसीदास ना होते। बोलो सीताराम, ये तो गुरु की कृपा है। अच्छा तो तुलसीदास जी के गुरु जी कौन है? देखो गुरु कौन, जो भगवान की पहचान करा दे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए। मिला रहे जो ना मिले, तासो कौन मिलाए। जो मिला है उसकी पहचान कौन कराए। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में मंदाकिनी के घाट पर बैठे हैं, आहा आंखों में आंसू भरकर रो रहे हैं।

आंसू भरे हुए तुलसीदास जी रो रहे। रोते रोते भगवान राम जी प्रकट भए। बाबा चंदन दे दो चंदन। ओ बाबा आंखों में आंसू भरे, हे रघुनाथ जी कब मिलोगे, आपके दर्शन कब होंगे। और राम जी प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो चंदन। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कहते, बच्चा हमें परेशान मत करो, हम वैसे ही परेशान, तुम और परेशान करो, और भी बहुत से पंडे हैं, दूसरों के पास जाकर चंदन ले लो, हमें परेशान मत करो। अच्छा भगवान ने कहा चलो चंदन नहीं दे रहे, रो क्यों रहे। तुलसीदास जी बोले हमारे भगवान हमें मिले नहीं। अच्छा तो राम जी बने रूप में, भगवान ने तुलसीदास जी से कहा क्या बात है, क्या आपके राम जी आपके भगवान इतने कठोर हैं। बोले नहीं नहीं नहीं बच्चा, हमारे भगवान कठोर नहीं है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। हमारे भगवान कठोर नहीं है, हमारे भगवान कृपालु है, वो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे। बोले मिले तो हैं पर पहचान नहीं हम पाए। एक बात बोले, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तुलसीदास जी बोले हमको भगवान नहीं मिल रहा। रोने लगे और जैसा देखा हनुमान जी ने सोचा कि अगर आज तुलसीदास जी भगवान को अगर नहीं पहचान पाए तो और ज्यादा रोएंगे, अभी तो रो रहे भगवान को मिलने के लिए, जब भगवान चले जाएंगे तो और पछताएंगे और रोएंगे। तो तुलसीदास जी को देख करके हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया, तोता का रूप धारण करके हनुमान जी कहते, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर। हनुमान जी तोते का रूप धारण करके मंदाकिनी के घाट चित्रकूट पर आए और बोले, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। ए तुलसीदास जी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सुफल करो।

हनुमान जी ने जैसे ही तोतावन कर कहा, सोई गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान गए, जय हो सरकार की, जय हो जय हो जय हो जय हो। और आज भगवान की पहचान गुरुदेव ने करा दी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को ख्याल आया कि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए

0: इसलिए हनुमान जी को गुरु रूप में तुलसीदास जी देख रहे हैं। एक बात और, क्षमा करना, या तो तुम लोग आज के बाद गुरु को मानना छोड़ दो या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हम आपको एक घटना बताएं अपनी ही। मध्य प्रदेश में जहां हमारा जिला है उस जिले का नाम छतरपुर है। छतरपुर जिले के पास में एक जिला है बीना, बीना अलग जिला है, सागर जिले में, सागर जिले में, छतरपुर जिले में एक जिला है सागर। सागर में एक कस्बा है छोटा सा बीना। आज से 1.5 साल पहले हमारी कथा हुई बीना में। आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। 1.5 साल हो गए होंगे। 1.5 साल पहले बीना के लोगों ने हमें बुलाया कि आप कथा करने आइए। गर्मी का महीना, यही मई जून का महीना होगा। भागवत की कथा करने के लिए हम 7 दिन के लिए वहां गए। दो तीन दिन कथा के गुजरे। एक दिन हमने घोषणा की कि एक काम करें, हनुमान जी के प्रसाद के रूप में नारियल बांटें सबको। लगभग लोग 40-50 हजार भक्त कथा सुनने आते थे, कभी कभी 1 लाख हो जाते थे। हमने तीसरे दिन घोषणा की कि 5वें दिन कथा के पहले दिन में 12 बजे नारियल बांटे जाएंगे हनुमान जी के प्रसाद के रूप में। और हमने अपने शिष्यों से कहा कथा हनुमान जी के प्रसाद के रूप में, और हमने अपने शिष्यों से कहा, कथा आयोजक से कहा, व्यवस्था करो। पुलिस प्रशासन आई, प्रशासन की मीटिंग हुई, कैसे बांटना है, भगदड़ ना हो जाए, आफत ना हो जाए। सब लोगों ने निर्णय लिया कि लगभग 1-1.5 लाख 1.5 लाख लोग आएंगे। हमने कहा कि नहीं, हो सकता है 3 आए। लेकिन एक चतुर अधिकारी थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज जी 3 लाख लोग बहुत होते हैं, 1.5 से ज्यादा नहीं आएंगे। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा। व्यवस्था पूरी हो गई। 5वां दिन आया, सुबह से हम पंडाल में गए, जगह जगह जाम। नारियल के लिए हमने घोषणा की, अर्जी लगाई, और हमको पुलिस वालों ने कहा कि भीड़ बहुत है, मंच पर लोग चढ़ रहे हैं, आप वापस कमरा में पहुंच जाओ। जैसे तैसे खेतों में से वो हमें जहां हमारा निवास था वहां ले गए। और लोगों का आकलन जो हमारा था 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख 4 लाख हो गए। जो घटना घटी वो ये थी, अब लोगों को नारियल लेने की वो होड़ मच गई। तो जो नारियल रखे थे मंच के सामने, अब लोग लाइन से नहीं आए, एक के ऊपर एक चढ़ के। और छोटा सा पंडाल जिसमें 50,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा लोग बनेंगे नहीं, टेंट के ऊपर से लेकर पंडाल पर, मंच पर, रेलिंग पर लगभग 1 लाख लोग हो गए। भयंकर गर्मी, चारों तरफ जाम। अब हमारे प्राण सकपकाए, हमारा बीपी हाई, हम माला लें और जपिए के हे बजरंग बली आवाज बचाओ, हमने नारियल तो बंटवार है लेकिन आफत ना हो जाए, कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए। और कैसी भगवान की कृपा कि भगदड़ मच गई। बिल्कुल सत्य बात, भगदड़ मची। भगदड़ में लोग चिपलने लगे, चिल्लाने लगे। हमारे जो सेवादार लगे थे वो दौड़े दौड़े हमारे पास आए, गुरुजी गुरुजी भगदड़ मच गई है, वहां नारियल लूटने लगे, सब चपने लगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी। अब सफोकेशन हो गया पंडाल में, तो लोग बिचारे गिरने लगे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान बच्चे, माताएं सब गिरने लगी। पुलिस प्रशासन घबरा गई, लोगों को उठा उठा करके मंच पे लाए, एसी के सामने बैठाए। अब एम्बुलेंस ना चले क्योंकि जाम इतना। बड़ी मुश्किल से खेतों से लगभग 20 लोग घायल हो गए। उसमें जो घटना घटी, एक माता जी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी, 6 महीने की। अब वो पंडाल में बीच में फंस गई, उसी बीच में भगदड़ मची, अब वो बच्ची हाथ से छूट गई, अब गिर गई। और ये धक्का मुक्की के कारण ये पंडाल की आंगी आ गई। अब ये रोए चिल्लाए बच्ची को ढूंढे, अब लाखों लोग आपस में भग रहे। एक एडिशनल एसपी मैडम अभी हमको मिली थी सागर में, वो वहां की प्रभारी थी। उन्होंने हाथ पकड़ा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? राम सखी, पूछा नाम क्या है? राम सखी नाम है। क्यों रो रही हो? हमारी बच्ची गिर गई। कहां? पंडाल में बीच। बड़ी मुश्किल से उनको ऊपर मंच तक लाए। बार बार वो माताजी बेहोश हो रही, पसीना निकल गया, चिल्ला रही, चिघा रही। अब पुलिस प्रशासन पूरा हैरान। हमें खबर मिली कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। लोगों ने कहा कि 6 माह की बच्ची, लाखों लोग हैं, चिपल गई होगी, लाखों लोग चल करके चढ़ करके निकल गए हो। हम उस वक्त हवन कर रहे थे, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज तक हमसे कोई अपराध बना होगा, उसी का परिणाम है। और आज अगर ये बच्ची मर गई तो कथा के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, बागेश्वर धाम के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। आपके हाथ में ही आज लाज है, और आज हम प्रण लेते हैं, या तो आज हमारी लाज बचा लेना, वरना आज के बाद हम कभी कथा पर नहीं बैठेंगे। पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा गुरुजी, और बहुत बड़ी घटना हो गई है, ऐसी ऐसी बात है, और लगता है कि जो 10-20 लोग बेहोश हुए हैं उनमें भी 1-2 लोग मर जाएंगे। अब हमारी टेंशन और बढ़ गई। हमारी तो, हमने दरवाजा बंद किया, बच्चों से कहा तुम मत आना। दरवाजा बंद करके हम तो अपने गुरुदेव का ध्यान करके बैठ गए कि गुरुदेव अब चाहो मारो तो चाहे बचाओ। लेकिन जो घटना जिन्होंने आंखों से देखी हम वो बता रहे हैं आपको। वो माताजी इतनी बेहोश हो गई मंच पर, अब पुलिस वालों ने कहा कि भीतर जाए कौन बच्ची को ढूंढने, भगदड़ इतनी मची है। बच्ची अब बाद में देखेंगे जब सब शांत होगा। माता जी को एम्बुलेंस पर बैठाने के लिए बाहर लाए, बार बार वो बेहोश हो गए, बार बार आंख खुले तो चिल्लावे।
1: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी है विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां, और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
7: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद आज गर्भगृह के खुलेंगे कपाट। कामाख्या मंदिर में आज से दर्शन देंगे माँ कामाख्या। 22 जून की रात्रि बंद हुए थे दर्शन। उज्जैन में महाकाल में भक्तों ने किया रिकॉर्ड दान। मंदिर समिति को 142 करोड़ रुपए की आमदनी, दान से मिले 80 करोड़ रुपए। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में उमड़े भक्तों की भीड़। एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दो दिन के उत्सव का आयोजन। सहारनपुर के 7 साल के नन्ही चैंपियन का कमाल। नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड। नेपाल के काठमांडू में लहराया तिरंगा। गांव लौटने पर हुआ जबरदस्त स्वागत। आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला। पहली बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों की बड़ी जीत, 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। आज बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में दे रही हैं दस्तक, अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल समेत कई फिल्में हो रही हैं रिलीज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 19 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से दी पटकनी। शेफाली वर्मा ने खेली 53 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी, जयमेमना ने बनाए 26 रन, गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ अजय रहा है भारत, टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत की लगातार चौथी जीत। इंडिया ए के ओपनर साई सुदर्शन ने गौरव श्रीलंका ए के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल टेस्ट में लगाया शतक, 175 गेंदों पर बनाए 132 रन। साई सुदर्शन के फर्स्ट क्लास करियर का ये नौवां शतक, इस बेहतरीन पारी में 19 चौके शामिल। आज से शुरू हो रही भारत और आयरलैंड की दो मैचों की टी20 सीरीज, आईपीएल 2026 के बाद मेन इन ब्लू की ये पहली टी20 सीरीज। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का बना सकते हैं रिकॉर्ड। टी20 सीरीज से एक दिन पहले मैच के समय में हुआ एक घंटे का बदलाव, 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के कारण बदला गया समय। 18 साल की उम्र में एथलीट अनुष्का यादव ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, हैमर थ्रो में 67.02 मीटर का जबरदस्त थ्रो कर रच दिया इतिहास। अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अनुष्का ने किया कारनामा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर बनने के साथ एशियन गेम्स के लिए भी किया क्वालिफायर। सहारनपुर की 7 साल के नन्हे चैंपियन का कमाल, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। गांव नागर लौटने पर अनुषी सिरोही का जोरदार स्वागत, क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है अनुषी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड सहारनपुर के गांव नगला, खुशी का माहौल। पिता अनुज कुमार की प्रेरणा से स्केटिंग की थी शुरुआत, खेल खेल में शुरू हुआ यह सफर, नेपाल में गोल्ड जीतकर लहराया प्रतिभा का परचम। गोल्ड जीतने के बाद अनुषी ने एशियाई खेलों की तैयारियों में वो जुटी, 2 साल बाद होने हैं एशियाई गेम्स। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आयोजन, 25 से अधिक देशों ने लिया इसमें हिस्सा, 300 से ज्यादा अत्याधुनिक तकनीकों का हो रहा है प्रदर्शन। पुलिस एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा में रही भारत की पहली स्वदेशी स्नाइपर राइफल टाइटो, शहरी इलाकों और क्लोज क्वार्टर ऑपरेशन के लिए तैयार की गई ये राइफल। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस पेट्रोलियम व्हीकल इंद्रजाल भी किया गया शोकेस, जिसके जरिए मार गिराने के अलावा अपने कंट्रोल में भी लिया जा सकता है दुश्मन का ड्रोन। डीआरडीओ सीआरपीएफ द्वारा विकसित रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस भी की गई पेश, जो कठिन इलाकों में तेजी से राहत पहुंचाने में होगी मददगार। रेस्क्यू विद इंटरसेप्टर नाम की एक खास गाड़ी हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर इंटरसेप्टर के साथ रेस्क्यू वाहन का भी करेगी काम, एक्सीडेंट में गाड़ी से घायलों को बाहर निकालने में मददगार। 27 जून से सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स की दूसरी यात्रा होगी, इससे पहले साल 2015 में किया था सेशेल्स का दौरा। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे भाग। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, 1500 की जगह देने होंगे 2500 रुपए। तत्काल सेवा की फीस 5000 रुपए, 1 जुलाई से नियम लागू। 28 जून से भारत फिर से शुरू करेगा बांग्लादेश के लिए टूरिस्ट वीजा। ढाका में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने किया इसका ऐलान। भारत में 48 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा अमेज़न। साल 2030 तक एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर होगा इसका फोकस। जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी इससे मजबूती। आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल। सिस्टम माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन है इसकी वजह। पीएफ विड्रॉल, ई पासबुक सर्विस और अन्य डिजिटल सर्विसेज रहेंगी बंद। शंघाई, दुबई और कनाडा तक भेजे जाएंगे सहरसा में तैयार मखाने। नए मखाना प्रोसेसिंग प्लांट का हुआ शुभारंभ। मखाना के प्रोसेसिंग प्लांट खुलने से किसानों में खुशी की लहर। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर। देश की रक्षा प्रणाली होगी इससे और भी मजबूत। वायुसेना में शामिल हुआ स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम नेत्रा। हवा में उड़ता हुआ एक रडार स्टेशन है नेत्रा, जो आसमान से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ हवा में ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान पर कर देगा ध्वस्त। पंजाब में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षक अभियान शुरू। घर घर जाकर बीएलओ भर रहे हैं फॉर्म। 24 जुलाई तक जारी रहेगी प्रक्रिया। आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी करेंगे बीएलओ। हर घर में कम से कम होगी 3 बार की विजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर स्वयं भी कर सकते ऑनलाइन फॉर्म। निर्धारित समय के अंदर काम पूरा होने की उम्मीद। जूनागढ़ के मेंदरडा सासड़ रोड पर निकला शेरों का कुनबा, एक साथ दिखाई दिए 9 शेर। सुबह के वक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण बेखौफ दिखे शेर, मोबाइल में कैद हुई इनकी तस्वीर। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। होटल रेस्टोरेंट्स के लिए पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर घर वापसी के लिए मध्य रेलवे चला रहा है 5 अतिरिक्त ट्रेनें। भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर रेलवे ने लिया है ये फैसला। प्रयागराज में खेलों को बढ़ावा देने की अनोखी पहल। बच्चियों में क्रिकेट के प्रति रुचि जगाने के लिए खोली गई खास क्रिकेट अकादमी। अकादमी में रोजाना प्रैक्टिस के लिए आती हैं 42 से अधिक लड़कियां। बल्लेबाज से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग की दी जाती है इन्हें ट्रेनिंग। कई टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं इस अकादमी से निकली महिला खिलाड़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल चुके हैं कई लड़कियां। कई लड़कियों ने राज्य और कुछ ने अंतरराष्ट्रीय सफर किया है पूरा। कोटा में सिटी पार्क बना शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र। अलग अलग थीम पर विकसित किए जाए गए जोन में बटा है करीब 2.5 लाख पेड़ पौधों से सजाए पार्क। पार्क में कृत्रिम केनाल में बोटिंग, आकर्षक ग्लास हाउस, विशाल एम्फीथिएटर और खुले ग्रीन एरिया लगा रहे हैं पार्क की खूबसूरती में 4 चांद। टूरिज्म को भी मिल रहा है इससे बूस्ट। प्री वेडिंग शूट, म्यूजिक वीडियो और विभिन्न शूटिंग गतिविधियां भी लगातार हो रही है इसमें आयोजित। 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विशाल बैंक्वेट हॉल भी किया जा रहा है इसमें विकसित। किताबों के बोझ से दूर प्रकृति की गोद में राहत पाने रोजाना आते हैं करीब 1200 युवा। छात्रों से लिया जाता है मात्र 50 रुपए शुल्क, जबकि आम नागरिकों के लिए 100 रुपए एंट्री फीस। कर्नाटक के होसपेट में तुंगभद्रा बांध पर लगाए गए 33 नए स्लिपवे गेट का उद्घाटन मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार हुए इसमें शामिल। अम्बुबाची मेले के बाद आज कामाख्या मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। सुबह निर्वृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए फिर से खुलेंगे। 22 जून को रात 9:08:42 पे प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की हुई थी शुरुआत। नियमित पूजा पाठ के बाद आज मां कामाख्या देंगी दर्शन आशीर्वाद। मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर पहुंचते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र प्राप्त करते हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। शक्ति उपासना से जुड़ा है अंबुबाची मेला। शक्ति परंपरा में प्रजनन, श्रमता सृजन और नारित्व का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है यह महोत्सव। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। तांत्रिक परंपरा के अनुयायियों और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अंबुबाची मेला देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिस इज रेडियो रीइमेजिन्ड विद ट्यून इन। यू गेट म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। हियर फ्रॉम स्टेशंस लाइक टुडेस हिट्स, Talk Sport.
10: I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
0: ये तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां, और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी विचारों का ना मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो, अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े, कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें। इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहां हैं, पत्नी जहां हैं, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें, पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहां रहते हैं वहां करेंगे, पत्नी जहां रहती है वहां करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की, और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा, तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे सामान्य स्थितियों में। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा, दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी।
तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है, जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा, और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं, पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया, शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे। पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा

साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे। और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल, 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया। तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं, और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहाँ पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो झुकाव भी ज़्यादा होता है, आकर्षण भी ज़्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज़्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है, प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज़्यादा होती है, और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं, तो आप विवाह के बाद चीज़ों के पीछे लॉजिक खोजते हैं, विवाह के बाद चीज़ों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की, और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और कई कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं, शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए, शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे, दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए, चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए।

ये घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें, तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: विधि विधान से पूजा पाठ के बाद आज गर्भगृह के खुलेंगे कपाट। कामाख्या मंदिर में आज से दर्शन देंगे मां कामाख्या। 22 जून की रात्रि बंद हुए थे दर्शन। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में उमड़े भक्तों की भीड़। एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दो दिन के उत्सव का आयोजन। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया आशीर्वाद। आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला, अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। आज बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में दे रही हैं दस्तक, अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल समेत कई फिल्में हो रही हैं रिलीज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उसका दाम्पत्य जीवन, उसका वैवाहिक जीवन, और अगर पति पत्नी के बीच में परेशानियां आने लगी तो। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातें अमूमन बड़ी हो जाती हैं। ऐसे में इसको ज्योतिष शास्त्र कैसे देखता है, और अगर आपके जीवन में भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो इससे कैसे निपटा जाए, पंडित जी से इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
5: देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी।
4: पंडित जी, बहुत से ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके बीच में छोटी छोटी चीजों पर बातें बढ़ जाती हैं और वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो मैं कहूंगी कि हर किसी की जिंदगी में यही हो रहा है।
5: जी देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी विचारों का ना मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो, अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े, कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें, इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी।
4: तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
5: मेष राशि, मन की समस्या, मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है, अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे, पारिवारिक विवादों से बचाव करिए, काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: पंडित जी, विवाह के बाद बहुत सी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, बहुत सी बार वो जानबूझकर होता है और बहुत सी बार ना चाहते हुए परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
5: देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नौकरी का कारण है, पत्नी कहीं पोस्टेड है, पति कहीं नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से दूर हो गए, या तनातनी बहुत जल्दी शुरू हो गई और दूर दूर हो गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि पत्नी अपने मायके में ही रहती हो और पति कहीं दूर रह करके नौकरी करते हों। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। पहले जानते हैं कारण क्या है। देखिए, विवाह के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ गई, अगर राहु की दशा आ गई, तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी एक दूसरे से सामान्यतः दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि शनि राहु सेपरेशन जैसा करवा देते हैं। यहां पर दूर रहना पड़ता है करियर की वजह से, नौकरी की वजह से। पति विदेश चले गए, पत्नी की गवर्नमेंट जॉब थी इंडिया में, अपने देश में वो नहीं जा पाई, गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ पाई, ये भी एक कारण बनता है। और ऐसा होता है कि बहुत बार कोशिश भी बहुत होती है कि पति पत्नी साथ में रह लें, एक साथ रहें, लेकिन पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। हर बार झगड़ा ही नहीं है, हर बार विवाद ही नहीं है, स्थिति परिस्थिति भी ऐसी बन सकती है। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहां हैं, पत्नी जहां हैं, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहां रहते हैं वहां करेंगे, पत्नी जहां रहती है वहां करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए, तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की, और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
4: बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
5: कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, काम टालना ठीक नहीं होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। काली दाल का अगर दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो चलिए, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं कि आप पहला सवाल किसका ले रहे हैं।
5: जी, आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है, और ज्योत्सना जी हमें मेल लिखती हैं कानपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1985। जन्म का समय सुबह के 11:35। जन्म स्थान है उन्नाव। मेल लिखती हैं कानपुर से। ज्योत्सना कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं। मैं चाहती हूं कि मेरा वैवाहिक जीवन चले, सेपरेशन की नौबत ना आए, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो जाए। ज्योत्सना आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा समय आपका बेहतर नहीं है और आपको लगभग अगस्त 2026 तक इंतजार करना होगा। अगस्त 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका वैवाहिक जीवन कुशल रहे, मंगल रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप अपने प्रश्न हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
5: जी आज का दूसरा प्रश्न रत्ना जी ने हमें लिखा है और रत्ना जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1975। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। रत्ना जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं मेरे साथ हमेशा लगी रहती हैं और इन समस्याओं की वजह से मेरी परेशानी बनी रहती है। मैं घर का काम भी नहीं कर पाती, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। रत्ना जी, ऐसा लगता है कि आपकी पारिवारिक जीवन की घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चंद्र का जो हाल है इसका मतलब ये है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन जैसा है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम में साइकोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा है, तो मनोचिकित्सक से संपर्क करना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा काम करें, एक पन्ना बनवा के पहने, 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह शाम दोनों समय आप नारायण कवच का पाठ करिए। अगर नारायण कवच पढ़ना कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। अगर ऐसा निरंतर करना शुरू करें तो आपको लाभ अवश्य होगा।
4: कहते हैं कि विवाह के बाद जीवन में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद पति या पत्नी में से किसी के भी स्वास्थ्य में समस्याएं आने लगती हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
5: देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा। तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे। सामान्य स्थितियों में दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हो, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा। दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है, जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं, तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा, और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा।
4: तो बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल तुला वृश्चिक धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं।
5: तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है, करियर बदल सकता है इस समय, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, और खास तौर पर लोगों का कहना होता है कि परिवार वालों का शादी में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं?
5: देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं, पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया, शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे, पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है, उसी के परिवार वालों का इंटरफेरेंस, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, और भगवान न करे चंद्रमा खराब है और मंगल भी गड़बड़ हो गया या मंगल की दशा आ गई उसमें उसी बीच में, तो शादी टूटनी ही है। परिवार वालों की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा, अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। केवल चंद्र खराब हो तो पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप तो होता रहता है लेकिन जिंदगी काट लेते हैं। अगर चंद्र भी खराब है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तब तो ये जानिए कि परिवार वालों के चक्कर में पति पत्नी का सेपरेशन जरूर होगा। क्या करना चाहिए? अब आप पत्नी हैं, आपके आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप उसको जरा सुधारिए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे। और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीजें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा।
4: बातचीत जारी रहेगी लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं।
5: मकर राशि, करियर की समस्या तनाव आपका कम होगा, समस्या हल होगी, आर्थिक समस्या भी हल होगी, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: तो पंडित जी से बातचीत यूं ही जारी रहेगी लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है अगला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं?
5: जी, अगला प्रश्न दिलीप जी ने हमें लिखा है और दिलीप जी हमें मुरादाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1970, जन्म का समय रात में 8:30, जन्म स्थान है मुरादाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है, तो मेरा व्यापार कब तक बेहतर होगा और आने वाला समय कैसा रहेगा? दिलीप जी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका व्यापार आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। अगस्त 2026 के बाद स्थितियां लगातार बेहतर होंगी, हालांकि कर्ज चुकाने में लगभग 1.5 वर्ष का समय आपको अभी लगेगा। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक, अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
4: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है और उसका समाधान आप जानना चाहते हैं तो इस पर अपने प्रश्न आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से पूछ लेते हैं, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं
5: जी? आज का अंतिम प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1999, जन्म का समय दोपहर के 1:10, जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। राहुल कह रहे हैं कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा और क्या मेरा सेटलमेंट विदेश में हो सकता है? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं अभी आपको विदेश जाने की 2026-27 में कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई इंडिया में करें तो अच्छा है, 2-3 साल के बाद ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैनेजमेंट करने के बाद आप विदेश में जाएं और लंबे समय तक वहां रह सकें, लेकिन अभी कुंडली के हिसाब से भी और जो आने वाली स्थितियां हैं दुनिया की उस हिसाब से भी आपको विदेश जाने की सलाह नहीं दूंगा। आप इंडिया में ही गुजरात के अलावा कहीं से भी MBA कर लीजिए, गुजरात में भी कर सकते हैं, लेकिन कुंडली कहती है कि दूर स्थान से MBA करेंगे तो आप जा सकते हैं। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
4: पंडित जी, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों की लव मैरिज होती है और उस वक्त तो सब अच्छा होता है, लेकिन विवाह के बाद कुछ सालों के बाद परेशानियां आने लगती हैं और डिवोर्स के भी मुझे लगता है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, खैर डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है?
5: देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया, तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं। और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो झुकाव भी ज्यादा होता है, आकर्षण भी ज्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है, प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज्यादा होती है और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं, तो आप विवाह के बाद चीजों के पीछे लॉजिक खोजते हैं, विवाह के बाद चीजों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की, और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और कई कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं, शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए, शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी।
4: आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
5: जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, इंप्रूव करेगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, विवाह के मामलों में इस साल में विलंब हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
4: अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
5: दर्शकों ने हमें पत्र लिखकर भी ये जिज्ञासा पूछी है, इसलिए हमने इसे लिया है। घर में पूर्वजों का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए? घर में पूर्वजों का चित्र दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे, साउथ वॉल पर लगाएंगे, ताकि जब आप उनकी पूजा करें तो आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो। वैसे भी पितरों की पूजा दक्षिण की तरफ चेहरा करके की जाती है, तो पूर्वजों की फोटो अगर आप दक्षिण की दीवार पर लगाएंगे तो उनका चेहरा उत्तर की तरफ होगा, और जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आप दक्षिण की तरफ चेहरा कर लेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
4: अब जान लेते हैं शुभ पहर क्या है।
5: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से करियर से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी।
4: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जब हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है।
5: जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे? दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए, चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए। घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए, और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें, तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा।
4: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
5: धन्यवाद।
4: तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान? जानिए मेरे साथ।
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
2: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कुछ ऐसे वीडियोस की कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ आपको भावुक कर जाएंगे, तो कुछ को देखकर आप हैरान भी रह जाएंगे और कहेंगे क्या ऐसा भी होता है।
12: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर

0: फिटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
1: भोलेनाथ की नगरी काशी को अब विकास की एक नई सौगात मिलने वाली है। देखिए, अगस्त महीने में रोपवे की शुरुआत होने जा रही है, जिससे लोग वाराणसी कैंट से सीधे गुदौलिया जा सकेंगे और वहां से आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि ये दूरी महज 16 मिनट में ही की जा सकेगी, वो भी बिना किसी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ के। उत्तर प्रदेश सरकार ने रोपवे सेवा के किराए को भी तय कर दिया है, जो कि काफी हद तक बजट फ्रेंडली है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को क्योटो बनाने का जो सपना देखा था, उस ख्वाब को साकार करने में बाबा भोलेनाथ की नगरी में बन रहा ये रोपवे एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। बनारस एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा शहर होगा, जहां घनी आबादी के बीच लोग जल्द ही रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। रोपवे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। कैंट से गुदौलिया कॉरिडोर के बीच गोंडोला कारों का ट्रायल आखिरी चरण में है। माना जा रहा है अगस्त से इसका संचालन शुरू हो जाएगा।
3: दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात वाराणसी को जल्द ही मिलने वाली है। यातायात के लिहाज से इसको काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है, क्योंकि 4.25 किलोमीटर की ये जो यात्रा है बहुत ही सुगम हो सकती है। कैंट रेलवे स्टेशन से उतर कर सीधे श्रद्धालु आस्थावान यात्री इस गदौलिया चौराहे तक आ सकते हैं और यहां से बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा के घाट तक जा सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला मार्च 2023 में रखी थी और माना जा रहा है कि अगस्त 2026 के बीच इसकी सौगात काशीवासियों को और यहां पहुंचने वाले यात्री, तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं को मिलने वाली है।
2: काशी की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक वाले शहर के विकास में गोंडोला राइड गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैंट रेलवे स्टेशन से गुदौलिया चौक तक की जिस दूरी को पूरा करने में अभी 45 मिनट का वक्त लगता है, रोपवे के जरिए उसे महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस आसमानी सफर से पर्यटकों को न सिर्फ काशी का विहंगम दृश्य दिखाई देगा, बल्कि काशी विश्वनाथ का दर्शन अब और भी आसान और सुलभ हो सकेगा।
4: ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हम देखते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर आएंगे तब
5: बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्टेशन से उतरो, 10 मिनट का समय लगेगा, सीधा गंगा घाट पहुँच जाओगे बाबा के यहाँ, और इससे बढ़िया क्या चाहिए।
6: रोपवे के साथ साथ हम लोग को तो बेनिफिट होगा ही, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बीमार लाचार हैं, जो महिला बच्चे हैं, उन लोग को रोपवे से आने में बहुत आसानी होगा और बहुत आसानी से दर्शन करेंगे। उनको किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होगा। हम लोग के साथ सभी के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
7: सफर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक रहता है, हम लोग आते हैं ना बहुत दिक्कत होती है। रोपवे से बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और ये सुविधा ज़्यादा हो जाएगी।
2: करीब 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 5 स्टेशन होंगे, कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गुदौलिया। रोपवे पर करीब 150 गोंडोला होंगी, जिनसे यात्री सफर कर सकेंगे। एक गोंडोला में एक बार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे। हर घंटे रोपवे से तकरीबन 3,000 यात्री सफर करेंगे। रोजाना करीब 1,00,000 यात्री सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बड़ी बात यह भी है कि रोपवे की टिकट भी बजट फ्रेंडली रखी गई है। कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक अधिकतम किराया 50 रुपए होगा, जबकि हर एक स्टेशन के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए चुकाना होगा, जबकि पूरे गोंडोला की बुकिंग 2,000 रुपए में की जा सकेगी।
8: इसमें आपका वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गुदौलिया तक 50-50 रुपीस, अगर कोई यात्री यहाँ उतरते हैं और वहाँ उतरते हैं तो 50 रुपया का है। और अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग हम, जैसे अगर आप विद्यापीठ में उतरेंगे 10 रुपया का है, तो ओवरऑल पूरा होल स्ट्रेस के लिए 50 रुपया है। अगर वहाँ पे स्मार्ट पास लेंगे, जैसे आप लोग मेट्रो में देखते हैं स्मार्ट मास्क पार्ट लेते हैं, तो हम लोग 20% वहाँ पे डिस्काउंट का प्रोविजन रखे हैं सरकार ने, और इसके लिए और प्रीमियम गंडोला का भी प्रोविजन है। कोई कलेक्टिवली किसी एक गंडोला को ये लेना चाहते हैं तो 2,000 रुपया का उसका किराया निर्धारण की गई।
2: तो बस चंद दिनों का इंतजार, जब बाबा भोलेनाथ की ये प्राचीन नगरी आधुनिक तकनीक और सनातनी संस्कृति के अद्भुत मेल की गवाह बनेगी और वाराणसी के बाशिंदे से लेकर सैलानी तक रोपवे से इस आसमानी

0: सफर का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है? और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: अंबुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से की निवृत्ति और अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार, एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया आशीर्वाद। आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला, अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू। आज बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों की दस्तक, अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल भी हुई रिलीज, फिल्म को एडवांस बुकिंग में भी मिला अच्छा रिस्पॉन्स।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: उम्मीदों भरे पहर की खुशी भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज के उन पांच खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
5: अब शुभ घड़ी आने वाली है, बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजने वाले हैं, 3 जुलाई वो तारीख है जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इस बार क्या रहेगा खास इस पर आगे हम करेंगे बात।
6: बिल्कुल गीतिका, केदारनाथ की यात्रा पर सभी जा रहे हैं और आलम यह है कि केदारनाथ की यात्रा काफी ट्रेंड में है, मगर क्या आपने बूढ़ा केदारनाथ का नाम सुना है? ये पावन धाम भी उत्तराखंड में ही स्थित है, आज हम आपको बूढ़ा केदारनाथ की यात्रा पर लेकर चलेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ।
5: तो बाद उज्जैन के राजा महाकाल की भी करेंगे, ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, हर साल यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, महाकाल लोक बनने के बाद तो दर्शन के लिए भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और साथ ही साथ बढ़ रहा है महाकाल का खजाना, इस बार यहाँ रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ा है, बाबा के भक्तों ने दिल खोल कर दान किया है, ये खबर जल्द होगी आपके सामने।
6: बिल्कुल, और शुभ समाचार में बात आज मॉनसून की भी करेंगे, देखिए अब तक मॉनसून देश के 22 राज्यों तक पहुंच चुका है, जहां तक दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की बात करें तो अगले 24 घंटे में मॉनसून दस्तक दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को गर्मी और गर्म हवाओं से राहत मिल जाएगी।
5: और आज से कॉमेडी का जंगल खुल चुका है, जी हां, अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है, उसमें अक्षय समेत 32 कलाकार हैं जो धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं, एक दिन पहले इस फिल्म के पेड प्रीव्यू भी हुए हैं, क्या है फिल्म में खास बात ये भी हम करेंगे आगे चर्चा, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
6: राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में 2 दिवसीय खाटू श्याम मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ गया, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे, साथ ही बाबा खाटू श्याम के जयकारे भी उन्होंने लगाए, वहीं आमों से बाबा का दरबार सजाया गया।
5: अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं यात्रा से पहले जम्मू में बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह चरम पर है। एक तरफ देशभर से साधु संत और श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे साधु संत यहां डेरा डाले हुए हैं और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर देर रात तक भजन कीर्तन पूजा पाठ और धार्मिक चर्चाओं का दौर जारी है। मंदिर परिसर लगातार हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है।
6: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन के लिए प्राचीन बूढ़ा केदारनाथ मंदिर हजारों यात्री और श्रद्धालु इसके लिए पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालु विधि विधान से बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, मान्यता है कि महाभारत के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में पांडव हिमालय पहुंचे थे और इसी दौरान भोलेनाथ ने यहाँ पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे।
5: चमोली के पवित्र वसुधारा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर इस पवित्र धारा के दर्शन करने हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। दिव्य जलधारा का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। ऊंची पहाड़ियों से गिरती पावन जल राशि से आरोग्य का वरदान मिलता है।
6: सहारनपुर की छात्र अनुषी सिरोही ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है। अनुषी जैसे ही गोल्ड जीतने के बाद अपने गांव नागल पहुंची तो बधाई देने वालों का तांता लग गया।
5: दिल्ली के भारत मंडपम में 11वें इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का शानदार आगाज हुआ। ये एशिया की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग तकनीक मंचों में से एक है। इस एक्सपो में अत्याधुनिक तकनीक के साथ हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस एक्सपो के मंच पर 25 से ज्यादा देश जुटे हैं। इस एक्सपो का मुख्य लक्ष्य भारतीय सुरक्षा एजेंसी को मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी और उन्नत समाधान प्रदान करना है।
6: आज से भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की T20 सीरीज शुरू होने जा रही है। IPL 2026 के बाद मेन एंड ब्लू की पहली T20 सीरीज है। इस सीरीज से पहले मैच के समय में एक घंटे का बदलाव किया गया है। 28 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के चलते समय में बदलाव किया गया है।
5: ब्राजील की तीन बहनें अपनी उम्र को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। तीनों बहनों की उम्र 100 साल से ऊपर है। इन तीनों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज जीवित बहनों के रूप में दर्ज किया गया है। पहले की उम्र 109 साल, दूसरी 104 साल और तीसरी बहन 103 साल की है।
6: OTT पर पॉपुलर रही सीरीज मिर्जापुर फिल्म के रूप में सिनेमाघरों में आ गई है। देखिए, फिल्म मिर्जापुर का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के किरदार यानी कि मोना भैया, गुड्डू भैया और कालीन भैया के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। पंकज त्रिपाठी के किरदार कालीन भैया के पोस्टर के साथ लिखा गया है, जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी कालीन भैया की होगी। ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है।
5: तो आज शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे बाबा महाकाल के महाखजाने की। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है बाबा महाकाल का दिव्य दरबार। इन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है और हर पर्व त्योहार इन्हीं के यहाँ से शुरू होता है। ये समय और काल से भी ऊपर है और तभी महाकाल कहलाते हैं। महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और इसी के साथ महाकाल मंदिर को मिले चढ़ावे में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को रिकॉर्ड 144 करोड़ रुपए का दान मिला है। पिछले 6 सालों में मंदिर को मिले दान का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है।

0: बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ने वाला भक्तों का ये सैलाब महज आस्था की गवाही नहीं दे रहा, एक नया इतिहास भी लिख रहा है। महाकाल के दरबार में आस्थावान सिर्फ नतमस्तक ही नहीं हो रहे, दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 4 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी भीड़ ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की आय को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को अब तक की सबसे बड़ी 144 करोड़ रुपए की आय हुई है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लड्डू प्रसाद से ही 65 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो बीते 6 सालों में सबसे अधिक है। इसके अलावा सोने चांदी के करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी बाबा के दरबार में चढ़ाए गए हैं।
1: जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइन दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिला है। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है।
0: 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर बनने से पहले महाकाल के दरबार में रोजाना 30 से 40 हजार श्रद्धालु आते थे। कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4 गुना बढ़कर 1.5 लाख से 2 लाख तक हो चुकी है। भक्तों की संख्या में इस बढ़ोतरी के साथ उज्जैन में पर्यटन कारोबार को तो पंख लगे ही हैं, महाकाल के खजाने में भी साल दर साल भारी बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में महाकालेश्वर मंदिर को दान के रूप में 38 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2023-24 में दान का ये आंकड़ा बढ़कर 59 करोड़ जा पहुंचा। 2024-25 में मंदिर को 117 करोड़ रुपए दान में मिले। 2025-26 में मंदिर समिति की कुल आय रिकॉर्ड 144 करोड़ आंकी गई है।
1: जो मंदिर में दान काउंटर्स हैं या भेंट पेटियां हैं वो कैमरा की निगरानी में है निरंतर, साथ ही वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। बात की जाए गणना की तो गणना कक्ष एक पारदर्शी कमरा है, जिसमें आते और जाते समय सुरक्षाकर्मी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले कर्मचारियों की पॉकेट सील रहती है, उनकी चेकिंग करके उपरांत ही उन्हें कक्ष में भेजा जाता है और पूरी गणना जो है वो कैमरा के निगरानी में की जाती है, जहाँ पर कर्मचारी के साथ अधिकारी भी मौजूद होते हैं।
0: महाकाल में भक्तों की आस्था शुरू से ही रही है, लेकिन ये भी सच है कि महाकाल के दरबार में नतमस्तक होने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी महाकाल लोक बनने के बाद ज्यादा हुई है। नतीजा आस्था के नए रिकॉर्ड के साथ साथ महाकाल के खजाने में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ यात्रा पर।

तो अमरनाथ यात्रा की तारीख बेहद करीब आ चुकी है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर पूरी तरीके से फोकस है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे यात्रा रूट पर योजना मॉक ड्रिल की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अमरनाथ यात्रा को लेकर ऐसा हाईटेक सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके।

0: 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। बाबा बर्फानी के दर्शन में अब करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है, लिहाजा शासन प्रशासन सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय लोग भी इस यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। जम्मू से कश्मीर तक जगह जगह मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा जा रहा है। उपराज्यपाल से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की बैठकों का दौर जारी है। एनसीसी कैडेट्स भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और पूरे यात्रा मार्ग को हाईटेक सिक्योरिटी से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये 5 तस्वीरें अमरनाथ यात्रा की तैयारी की पूरी कहानी बताने के लिए मुकम्मल है। तो सबसे पहले बात मॉक ड्रिल की, जो जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरे यात्रा मार्ग पर तकरीबन रोजाना आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में गांदरबाल पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने आतंकी हमलों से निपटने और उनकी धरपकड़ के लिए अभ्यास किया, साथ ही घायल जवान को निकालने और जवाबी कार्रवाई की भी प्रैक्टिस हुई। इससे पहले मंगलवार को एनएसजी कमांडो ने जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए मॉक ड्रिल की थी। एनएसजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जवानों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 25 जून को अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अमरनाथ यात्रा की अंतिम तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों से संतुष्ट दिखे। पहलगाम में ही मुख्य बेस कैंप नुनवान है, जहां से यात्री चंदनवाड़ी और शेषनाग होते हुए पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार सबके समन्वय के साथ सुगम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सकें, इसका इंतजाम किया गया है। आज यहाँ जो बैठक थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के भी ऑफिसर्स थे। मैं मुतमईन हूँ कि सारी व्यवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की हैं।
0: अमरनाथ यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुगम बनाने में शासन प्रशासन के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग की भी पूरी भागीदारी होती है। इसी संदर्भ में अनंतनाग में 2 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। गुरुवार को इसके समापन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया।
2: हमारी जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप मिला है और हमें मोटिवेशन मिली है कि हम ऐसे और भी प्रोग्राम जो है, इवेंट्स हैं, उनमें जाएंगे और करेंगे। और जो भी बाहर के यहाँ पे आते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो उनको हम कैसे यहाँ पे स्वागत करेंगे, उनकी सिक्योरिटी हम कैसे देखेंगे, तो ये सब हमें एक्सपीरियंस मिला है।
0: और अब बात अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जिसे भेद पाना मुमकिन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर तक हाईटेक सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। पूरे यात्रा रूट पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 670 कंपनियां, यानी 65,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति या आतंकी खतरे से निपटने के लिए संवेदनशील मोर्चों पर विशेष कमांडो और QRTs की तैनाती की गई है। ऑपरेशन हॉकआई के तहत यात्रा मार्ग के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 5 ड्रोन डिटैचमेंट तैनात किए गए हैं। मुख्य ट्रांजिट पॉइंट्स और बेस कैंपों पर 416 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। यात्रा मार्ग की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 28 वॉच टॉवर्स बनाए गए हैं और 22 विशेष रूप से प्रशिक्षित स्नाइपर टीमों को तैनात किया गया है। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त के दिन संपन्न होगी। कुल 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा के साथ साथ मुकम्मल सुविधा की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उत्तराखंड के बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। नई टिहरी से करीब 85 किलोमीटर दूर बालगंगा और धर्मगंगा नदियों के संगम पर बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

0: देवभूमि उत्तराखंड, जहां कणकण में देवताओं का वास है और हर मंदिर का है अपना पौराणिक इतिहास। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में ऐसा ही एक मंदिर है, बूढ़ा केदारनाथ, जिसे उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। नई टिहरी से करीब 85 किलोमीटर दूर बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस जगह का नाम बूढ़ा केदार पड़ गया। महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय आए थे।
1: गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो, जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए, बूढ़ा केदारनाथ में वो बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए।
0: बूढ़ा केदारनाथ धाम की खासियत ये है कि यहाँ के कपाट सालों भर खुले रहते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान भी हजारों यात्री और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
2: क्योंकि बूढ़ा केदार जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इनकी यात्रा 6 महीने के लिए चलती है। 6 महीने के लिए जो है पट बंद हो जाते हैं, लेकिन एक धाम ऐसा है बूढ़ा केदार जहाँ पे जो है 12 महीने यात्रा चलती है। यहाँ पे न तो शीत का न बरसात का कोई असर नहीं होता, यहाँ 12 महीने बूढ़ा केदार की यात्रा जो है चलती है और 12 महीने यहाँ पे यात्री आते हैं।
0: बूढ़ा केदार क्षेत्र के ज्यादातर लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करते। उनका मानना है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बूढ़ा केदार में भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
3: देहरादून से आए हैं और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते हैं।
0: इस इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक मान्यताओं और अनूठी धार्मिक परंपराओं से समृद्ध बूढ़ा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चारधाम यात्रा के करीब 2 महीने पूरे हो गए हैं और इस बीच श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। चारों धामों में अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
0: देवभूमि उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। करीब 2 महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे हैं। चारों धामों में अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 13,04,095, बद्रीनाथ धाम में 12,52,575, गंगोत्री में 6,41,083 और यमुनोत्री में 6,03,107 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी अब तक 1,27,339 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। हालांकि चारधाम यात्रा में अब मौसम की दखलंदाजी भी बढ़ने लगी है। लगातार बारिश और खराब मौसम ने तीर्थयात्रियों की रफ्तार धीमी कर दी है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह में कोई कमी नहीं है। चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है और यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल नैनसिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
5: और बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आयरलैंड के बेलफास्ट में वैभव का क्रेज देखिए।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
8: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
10: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं? कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
18: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
5: अम्बुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से की निवृत्ति अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
4: सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार, एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़।
5: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय, दान में मिले 80 करोड़ रुपए।
4: पुरी में तीनों विशाल और भव्य रथ लगभग बनकर तैयार, 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा।
5: आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला, अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आयरलैंड में भारत के वैभव का क्रेज साफ दिखाई दे रहा है। आज बेलफास्ट में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला खेलने जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है। देखिए सवाल यह है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी ब्लू जर्सी के रंग जमाते हुए नजर आएंगे। टीम मैनेजमेंट की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करना टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए किसी अनुभवी खिलाड़ी को बाहर बैठाना होगा या बल्लेबाजी क्रम को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। भारत के मौजूदा टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शामिल हैं। तीनों ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 लगाई थी।
1: यहाँ बहरहाल क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि आज T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया श्रेयस अय्यर की अगुवाई में आयरलैंड के खिलाफ धमाल मचाती नजर आएगी। इस मुकाबले के साथ ही श्रेयस अय्यर भारत के लिए कप्तानी पारी का आगाज करने जा रहे हैं। और मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। कोटक ने साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनका डेब्यू कराने के लिए किसी ऐसे खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं किया जाएगा जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीम का पहला लक्ष्य सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारना है। अगर वैभव को बेलफास्ट T20 में मौका मिलता है तो भारत की मेंस में विमेन दोनों टीम को मिलाकर सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे। यही वजह है कि उनकी संभावित एंट्री इस मुकाबले का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी। सितांशु कोटक का मानना है कि वैभव के पास असाधारण प्रतिभा है और उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इस पर आखिरी फैसला कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर करेंगे। कोटक के मुताबिक चीफ कोच गौतम गंभीर से भी वैभव की बातचीत हुई। गंभीर ने वैभव को खुलकर खेलने को कहा, साथ ही ये सलाह भी दी कि वैभव खुद को अलग महसूस ना करें। कोटक ने कहा, हमने उनसे सिर्फ इतना कहा है कि इस एक्सपीरियंस का आनंद लो, अगर कुछ पूछना है या किसी से बात करनी है तो खुलकर करो।
0: देखिए तस्वीरें कुछ पुरानी हैं, लेकिन आज इनका खास मोल है। किसी भी खिलाड़ी के लिए वो पल बेहद खास होता है जब उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो ब्लू जर्सी हासिल करे। देखिए वो पल जब वैभव सूर्यवंशी को BCCI की ओर से ब्लू जर्सी मिली। इस किशोर के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। देखिए वैभव ने तब कैसे अपने भाव जज्बात बयां किए।
2: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ। और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ। और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ड्रीम जैसा ही लग रहा था। और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं। और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते। सेम रिएक्शन मेरा भी था।
1: और सिर्फ आयरलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेबी बॉस का क्रेज है। दिलचस्प ये है कि इस वक्त को पूरा पाकिस्तान ही मानो वैभव का फैन बन गया है। वैभव 2025 में गूगल पर भारत के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्सियत भी बन गए हैं।

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो T20 महिला वर्ल्ड कप के महामंच से भी टीम इंडिया के लिए बीती शाम जीत वाली गुड न्यूज सामने आई है। देखिए, टीम इंडिया ने अहम मुकाबले में 19 गेंद बाकी रहते बांग्लादेश को मात दी। शिफाली वर्मा और राधा यादव के दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। शिफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं राधा यादव ने 3 विकेट चटकाकर विरोधी टीम की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। तो चलिए अब बात मानसून की कर लेते हैं, जो फिर से एक्टिव हो गया है और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ और वहां से 15 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को वो कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश में दस्तक देने के साथ ही मानसून देश के 22 राज्यों में पहुंच चुका है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों और दिल्ली NCR में भी इसके जल्द पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी तक 22 राज्यों को कवर कर चुका है। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, बादलों के बरसने का सिलसिला थमा नहीं है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पहले 3 दिन की देरी से केरलम पहुंचा और कुछ दिनों बाद ये सुस्त पड़ गया। 3 दिन पहले इसने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है और इसने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के बाकी बचे हिस्सों को कवर कर लिया है। यहां तक कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश में भी इसने एंट्री ली और पहले ही दिन प्रदेश के 15 जिलों को कवर कर लिया, जिनमें इंदौर और खरगोन भी शामिल है, जहां मानसून के बादल जोर शोर से बरस रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जिस रफ्तार से मानसून अभी आगे बढ़ रहा है, अगर यही तेजी बरकरार रही तो आने वाले 3 से 4 दिनों में यह न सिर्फ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों को कवर कर लेगा बल्कि पूर्वी यूपी में भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बिल्कुल मुफीद है।
3: 3 दिनों में संभावना ही है कि गुजरात का कुछ और हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ और हिस्सा, बचा हुआ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर कर सकता है, उसके बाद कुछ हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी टच कर सकता है, उसके 2 से 3 दिनों के बाद कुल मिला के 5 से 4 से 6 दिनों के दौरान उत्तराखंड तक भी मानसून पहुंचने की संभावनाएं दिखाई देती हैं।
2: जहां तक दिल्ली NCR की बात है तो मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के 27 जून के आसपास दिल्ली NCR पहुंचने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी और गर्म हवाओं से राहत मिलेगी। मानसून से पहले वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ऊपरी वायुमंडल में साइक्लोनिकल सर्कुलेशन के असर से उत्तरी राज्यों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो मानसून आने के संकेत हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में बादल छाए रहते हैं तो कहीं कहीं बारिश और आंधी तूफान भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके बाद के 2 से 3 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून अलग रंग दिखा सकता है, क्योंकि सुपर अल नीनो के बनने की प्रक्रिया तेज है। इसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे मानसून की गति, दिशा और निरंतरता प्रभावित हो सकती है। नतीजा यह होता है कि बारिश का पैटर्न असंतुलित हो जाता है। यही कारण है कि इस बार मध्य प्रदेश में बारिश सामान्य से 90 से 92% रहने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी MP के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में मानसून का लंबा ब्रेक देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई और अगस्त जैसे सबसे ज्यादा बारिश वाले महीनों में भी लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस बार नजर सिर्फ मानसून की एंट्री पर नहीं बल्कि इस बात पर रहेगी कि आने वाले हफ्तों में वह कितना सक्रिय बना रहता है। देश भर में या मानसून की बारिश हो रही है या फिर प्री मानसून एक्टिविटी सक्रिय है, जिससे बारिश तो हो रही है लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मानसून के कारण सिक्किम, कोंकण, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक में समुद्र के करीबी इलाकों में भारी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, झारखंड, ओडिशा में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में हीट वेव जैसी परिस्थितियां जारी रह सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में लोग मानसून का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और UP में प्री मानसून बारिश लगातार देखने को मिल रही है, जो गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत बनकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 साल की अनुषी ने स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। नन्ही उम्र में अनुषी को मिली इस कामयाबी से उसका परिवार बेहद खुश है।
4: चंचल आंखें, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और माथे पर जीत का तिलक, ये है स्केटिंग की नन्ही चैंपियन अनुषी सिरोही। 7 साल की हैं, पहली क्लास में पढ़ती हैं। यूपी के सहारनपुर के नगला गांव से हैं। हाल ही में स्केटिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत कर लौटी हैं। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया है। नन्ही उम्र में अनुषी को मिली इस कामयाबी से गांव नगला समेत पूरा इलाका खुश है, जश्न का माहौल है।
5: इसको गेम में पहले से रुचि है, तब ये नहीं था कि हाँ स्केटिंग ही करनी है, रनिंग भी अच्छी है, बट फिर आप लोग ना लोकेलिटी में देखते हो कि क्या गेम है जिसकी आपको अकेडमी मिल जाएगी या जहाँ से आप प्रैक्टिस करा सकते हो, तो स्केटिंग की यहाँ पर नकुड में नकुड स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्केटिंग सिखाती है, ताइक्वांडो सिखाती है, और वहाँ के कोच हैं हमारे रवि सर। हम लोगों ने भी समय दिया और हमसे ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय वो प्रैक्टिस कराते थे, स्पेशली इस गुड़िया को इस चैंपियनशिप के लिए, और खाली इसी चैंपियनशिप के लिए नहीं, इससे पहले भी नेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स हुए हैं जहां पर इसने पार्टिसिपेट किया है, वहां पर भी गोल्ड मेडल लेकर आई है।
4: आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अनुषी ने महज एक साल पहले ही स्केटिंग सीखना शुरू किया है और इतने कम समय में ही उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए पहले स्टेट और फिर नेशनल और अब इंटरनेशनल इवेंट में भी गोल्ड मेडल लेकर लौटी है।
6: मेरा नाम अनुषी शिरोई, मेरे कोच का नाम रवि सिंह, मैं अपनी हमारी अकेडमी का नाम है SIT। मुझे अच्छा लगता है बहुत स्केटिंग करना। मैं मेरठ जा रखी हूँ, 2 बार मेरठ जा रखी हूँ और 1 बार इंडो नेपाल जा रखी हूँ, तो वहाँ से तीनों मेरे पे सारे गोल्ड मेडल है।
4: खेल कौन सा चुने सोचा नहीं था, बस बेटी को एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना था, सो पिता ने सारी सहूलियतें देखकर स्केटिंग को चुन लिया और अनुषी ने भी पिता के सपने को सच करने के लिए पूरी जान लगा दी। 1 साल के भीतर अनुषी कई मेडल जीत चुकी हैं।
7: स्केटिंग का गेम ऐसा नहीं था कि कुछ पहले से फिक्स था कि स्केटिंग ही करानी है, कुछ भी कराना है, ये था कि कुछ स्पोर्ट्स लेवल कराना है, तो उसके डैडा का सजेशन था कि इसको स्केटिंग में जाया जाए।
8: अनुषी फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल पे खेलने के लिए गई थी, तो हमने पीछे से यही बोला था, उसको सपोर्ट किया था कि बेटा बस खेल के आना है। हमारा कोई ये नहीं था कि फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, पहले खेल के आओ आप, फिर हमें पता चला वो फर्स्ट आई है। बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के कि बढ़िया लगा एकदम। फिर सेकंड टाइम ये नेशनल खेलने के लिए गई, वहाँ पे भी हमने इसको यही बोला कि बस खेल के आना है, आराम से खेलो, ध्यान से खेलना है, तब भी ये फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल जीत के आई। और अब इंटरनेशनल खेलने के लिए गई थी नेपाल, वहाँ पे भी इसने गोल्ड मेडल जीता है और फर्स्ट आई है।
4: अनुषी जिस तरह से हर मुकाबले में अपने आप को दमदार साबित करते हुए आगे बढ़ रही हैं, उससे परिवार खुश है। कोच रवि शरण को भी अनुषी से बहुत उम्मीदें हैं। उनके मुताबिक अनुषी बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और भविष्य में एशियाई और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की पूरी क्षमता रखती है। परिवार और कोच को भरोसा है कि अनुषी आने वाले वक्त में अपने गाँव और देश का नाम वैश्विक मंच पर और ऊँचाइयों तक ले जाएंगी। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। देखिए विद्या बालन की फनी इंस्टा स्टोरी।
9: हेलो, कौन?
10: मैं काजल।
9: मैं पाउडर।
10: एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी है इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रही।
1: तो चलिए इसी के साथ अभी शुभ समाचार में वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का।
11: बाकी देशों दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
13: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including up and up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
4: You're listening to CNBC.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
6: Keep it on smooth jazz.
7: This is Roots Reggae.
8: Exclusively on TuneIn.
9: This is classic hip-hop.
10: Exclusively on TuneIn.
3: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
11: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: पति पत्नी के बीच में कब तालमेल की दिक्कतें होती हैं? पति पत्नी के बीच में कब घर वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है और कब ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी न चाहने के

0: के बावजूद एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। कौन सी हैं विवाह की छोटी लेकिन बड़े परिणाम देने वाली स्थितियां और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: अम्बुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से किया निर्वित्य अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार, एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय, दान में मिले 80 करोड़ रुपए। पुरी में तीनों विशाल और भव्य रथ लगभग बनकर तैयार, 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला, ईयर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है पति पत्नी के बीच का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी विचारों का ना मिल पाना। पहले ये समझते हैं कि पति पत्नी के विचार आखिर मिलते क्यों नहीं है, ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो तो ऐसी समस्या हो जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो 5 नंबर दिए जाते हैं ग्रह मैत्री को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए राशियों में मित्रता ना हो, अब एक की राशि का स्वामी है सूर्य, दूसरे की राशि का स्वामी है शनि, तो विचार बिल्कुल भी इनके आपस में नहीं मिलेंगे। ग्रह मैत्री नहीं है तो पति के विचार और पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे। अब एक बात तो यह है कि भाई ग्रहों में मित्रता नहीं है, शनि बृहस्पति जैसे हैं, मित्रता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रुता होती है। एक का स्वामी सूर्य है, एक का स्वामी शनि है, तो दोनों में शत्रुता है। और अगर दोनों की राशियों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है, एक दूसरे के तरफ शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं, बेवजह के झगड़े, कपड़ा पहनने से लेकर खाना बनाने तक एक दूसरे को टोका टाकी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न मिलना, इसकी प्रमुख वजह जो देखी गई है वो है ग्रह मैत्री ना होना। क्या करना चाहिए अगर जीवन में ऐसी स्थिति बनती है रेगुलर? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। एक काम और है कि पति पत्नी मिलकर हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करें, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल रेगुलर लगा करके रखें या सफेद फूलों का चित्र पोस्टर लगा करके रखें। इससे उन दोनों के तालमेल के बेहतर होने की संभावना बन जाएगी। मेष राशि, मन की समस्या, मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, लाभदायक यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे। करियर में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है स्थिति परिस्थिति की वजह से, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पति जहां हैं, पत्नी जहां हैं, नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। पति अपने स्थान पर, पत्नी अपने स्थान पर।
हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। पतिदेव जहाँ रहते हैं वहाँ करेंगे, पत्नी जहाँ रहती है वहाँ करेंगी। और अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में, पति पत्नी अपने अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाएंगे। ज्वाइंट फोटो पति पत्नी की नॉर्थ वॉल पर संयुक्त तरीके से लगाई जाए तो इससे एनर्जी लेवल बुध का मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है बुध की और पति पत्नी के साथ में रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शादी तक तो सब ठीक था और शादी के बाद से पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा या पति का होने लगा। तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद से लगातार बीमार रहते हैं, सेहत में दिक्कतें रहती हैं। होता कब है ऐसा? देखिए, पति पत्नी में अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा मांगलिक ना हो, तो जो मांगलिक है उसके ग्रह दूसरे पर असर डालेंगे और दूसरे को बीमार करेंगे सामान्य स्थितियों में। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एलिमेंटल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, लग्न भी राशि भी एक की अग्नि है एक की जल है, तो उसमें भी झंझट पैदा होने की संभावना बन जाती है। पत्नी का बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर नहीं, अगर पत्नी का बृहस्पति खराब है तो वो पत्नी को भी बीमार करेगा विवाह के बाद और पति को भी बीमार करेगा। दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी लगातार बीमार रहने लगे, स्वास्थ्य उनका गिरने लगे, तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार को पति और पत्नी साथ में बैठकर एक साथ करें तो बहुत अच्छा। अगर एक के पास मान लिया समय नहीं है तो एक ही, चाहे पति चाहे पत्नी, मंगल और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र लगाएं, मूर्ति लगाएं, नमस्कार करें। और जो पत्नी हैं, अगर उनका बृहस्पति बहुत ही खराब है जो दोनों के सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, तो पत्नी नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय निरंतर किए जाएं तो दोनों के ग्रहों के बीच में संतुलन पैदा होगा, बैलेंस होगा और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, काम टालना ठीक नहीं होगा, परिवार में शांति बनाए रखें। काली दाल का अगर दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है, करियर बदल सकता है इस समय, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान खरीदेंगे, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे हैं, पत्नी के परिवार वाले पत्नी को बार बार गाइड करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो,
और पति के परिवार वाले पत्नी के ऊपर दबाव डालते हैं, पति को ट्रेनिंग देते हैं। तो भैया शादी के बाद दोनों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, जब दोनों कहें कि आवश्यकता है तो जरूर उसमें सहायता करिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो बहुत बार पति पत्नी तो बहुत सही होते हैं, बहुत सही तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के इंटरफेरेंस की वजह से सेपरेशन जैसी नौबत आ जाती है, विवाह टूट जाते हैं। होता कब है ऐसा? आम तौर पर अगर आपका चंद्रमा खराब है, पत्नी का खराब है, तो पत्नी के घर वाले उसको ट्रेनिंग देंगे, पति का खराब है तो पति के घर वाले हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का इंटरफेरेंस, उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। और भगवान न करे चंद्रमा खराब है और मंगल भी गड़बड़ हो गया या मंगल की दशा आ गई उसमें, उसी बीच में, तो शादी टूटनी ही है, परिवार वालों की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा, अलगाव और मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। केवल चंद्र खराब हो तो पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप तो होता रहता है लेकिन जिंदगी काट लेते हैं। अगर चंद्र भी खराब है और मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तब तो ये जानिए कि परिवार वालों के चक्कर में पति पत्नी का सेपरेशन जरूर होगा। क्या करना चाहिए? अब आप पत्नी हैं, आपके आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है तो आप उसको जरा सुधारिए। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। अपने शयन कक्ष और किचन को साफ सुथरा रखिए। जो लोग अपने बेडरूम में किसी के भी एंट्री करा देते हैं या बेडरूम में गंदगी फैलाते हैं, साफ तरीके से नहीं रखते, उनके पारिवारिक जीवन का सत्यानाश जरूर होता है। बेडरूम और किचन बड़ी व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें सबको एंट्री मत दीजिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए, ऐसा रहे कि आपके घर में सनलाइट आती रहे। और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं, मौली में बांधकर या सूती धागे में बांधकर, और इसको 15-15 दिन पे बदलते रहें। देखिए, अगर आप पत्नी हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर आप पति हैं, आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज़्यादा है तो आप भी कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आप खुद से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिए। परिवार वालों का इंटरफेरेंस अच्छी खासी शादी को, अच्छे खासे वैवाहिक जीवन को आजकल 10-10 साल, 15-15 साल बाद डिवोर्स के लेवल पर ले जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके लिए आपको खुद अपने परिवार वालों को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें, काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्या तनाव आपका कम होगा, समस्या हल होगी, आर्थिक समस्या भी हल होगी, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी,
स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, प्रेम के लिए जो ग्रह जिम्मेदार हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, भावनाएं भी आ गई उसमें, मंगल से इमोशन एक्सिलरेट भी हो गया। तो प्रेम के जो ग्रह होते हैं वो थोड़ा सॉफ्टली वर्क करते हैं, और जो प्रेम के ग्रह होते हैं, जब आपका प्रेम होता है, लव अफेयर होता है, उस समय की दशाएं थोड़ी अलग होती हैं। प्रेम करवाने वाली दशा विवाह की दशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी कुंडलियों में प्रेम और प्रेम विवाह के स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां पर होता यह है कि प्रेम जब वो कर रहे होते हैं तो सप्तम भाव मजबूत होता है, सप्तम भाव की कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो झुकाव भी ज्यादा होता है, आकर्षण भी ज्यादा होता है, कमिटमेंट भी ज्यादा होता है। विवाह के बाद क्या होता है, प्रेम विवाह में पंचम भाव की भूमिका ज्यादा होती है, और प्रेम विवाह में पंचम भाव जैसे विवाह हुआ एक्टिव हो जाता है। पंचम भाव आपके सोचने समझने का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है। तो जो प्रेम में आप भावनाओं से काम कर रहे थे, सप्तम भाव से काम कर रहे थे, विवाह के बाद आप उसमें पंचम भाव को भी ले आते हैं, तो आप विवाह के बाद चीजों के पीछे लॉजिक खोजते हैं, विवाह के बाद चीजों को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, विवाह के बाद आप एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपका बेसिक बिहेवियर है पंचम भाव से कंट्रोल होता है और वो विवाह के बाद एक्टिव हो जाता है। विवाह के पहले सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव की भूमिका होती है, पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की, लव और अफेयर की, और सप्तम भाव से एडजस्टमेंट भी देखा जाता है तो एडजस्टमेंट भी हो जाता है। होता सिर्फ यही है कि प्रेम विवाह के मामलों में विवाह के बाद आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, पंचम भाव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से आपको विवाह के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और कई कई बार ऐसा होता है कि दशाएं बदल जाती हैं, शादी के तुरंत बाद खराब दशा आ गई ना, तो शादी के समय तक तो सब अच्छा होता है, उसके बाद बिगड़ जाता है। इसीलिए ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शादी के तुरंत बाद केतु की दशा ना आए, शादी के तुरंत बाद मंगल की दशा ना आए। बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अगर शादी के बाद कोई बुरी दशा शुरू हो रही है तो पति पत्नी दोनों को विवाह के बाद झेलना भी पड़ेगा, और अगर केतु है, मंगल है, इसका प्रभाव विवाह के बाद आ गया तो सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। देखिए, महिलाओं को एक सलाह देते हैं कि कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां ना तो पहने ना ही अपने घर में रखें, क्योंकि अगर आप खराब या टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियां रहें, घर का माहौल अच्छा बना रहे, तो क्या करेंगे, दोनों समय सुबह और शाम पूजा जरूर करिए, चाहे 5 मिनट करिए, लेकिन सुबह शाम दोनों समय करिए। घर में पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई रखिए, और घर में सुबह के समय भी गुग्गल या चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, और शाम के समय भी पूजा के बाद घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध की धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, ताकि उसकी खुशबू हमेशा आती रहे। अगर ये उपाय आप करें, नियमित रूप से भगवान का धन्यवाद दें, तो आपके घर में खुशियां और आनंद बना रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
2: खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान, अब जिसका गुरु ही कमजोर हो तो चेला तो वैसे ही कमजोर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन कई बार ऐसा होता है चेला मोटा होता है, गुरु कमजोर होता है। बोलो सीताराम। पर शरीर की मोटाई या पतलाई से नहीं, गुरु मोटा, गुरु पहलवान का मतलब, बलवान का मतलब जिसका गुरु भजनानंदी होता, भगवान का भक्त होता। देखो बरसात होती है, बारिश होती है। अब भाई बारिश में कोई काम करना है तो बारिश तो बंद नहीं करवा सकते, लेकिन एक काम कर सकते, पूछो क्या, छाता लगा सकते। हाँ जी या ना जी, बोलो। बारिश हो रही, बारिश तो बंद नहीं करवा सकते पर छाता लगा सकते। उसी प्रकार संकटों की अगर वर्षा हो रही, मुश्किलों की वर्षा हो रही, तो घबराने की बात नहीं है, गुरु की छत्र छाया तो पा सकते हैं। जैसे बारिश में छाता काम कर जाता है, वैसे ही संकटों में गुरुदेव की छत्र छाया काम हो जाती है, और जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है संकट उसका बाल बांका भी नहीं करते। हमने गुरु की ही छत्र छाया क्यों कही, क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरु से होता है।

हनुमान चालीसा का प्रारंभ कहां से? बोलो, गुरु से। और ब्राह्म भी आप पढ़िएगा कभी तो, हनुमान चालीसा कभी आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, हनुमान चालीसा का विराम भी

हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी गुरुदेव से है और हनुमान चालीसा का विराम भी गुरु पर है। आगे जो तीन चौपाइयां हैं वो फल श्रुति है। हनुमान चालीसा यहीं विराम हो गया। जय।

तो हनुमान चालीसा का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु से क्यों करते? गुरु का मतलब क्या है, कारण क्या है, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम भगवान से मिलवाना नहीं है, गुरु का काम तो भगवान की पहचान करवाना है। भगवान तो सबको मिले ही है,

गुण पर रीच जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे माई बाप, जिसके जीवन में गुरु होता है ना, उसकी मूछ हमेशा बड़ी रहती है। मूछ का मतलब साख, मूछ का मतलब इज्जत, मूछ का मतलब प्रतिष्ठा। मूछ और पूछ दोनों प्रतिष्ठा का सूचक है। जिसके ऊपर गुरु की छत्र छाया होती है वो तुलसी भी तुलसीदास बन जाते हैं।

तुलसी का पौधा कौन पूछता था। लेकिन धन्य है, एक सज्जन हमसे बोले, बोले महाराज जी तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है, तुलसीदास जी की लुगाई की महिमा है। लुगाई मतलब घरवाली। हमने कहा क्यों? बोले ना तुलसीदास जी की घरवाली ने डांट लगाई होती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा, अगर घरवाली की डांट से तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। अगर घरवाली की डांट से कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घरवाली की डांट का बिल ना लो खा जात, घर घर तुलसीदास ना होते। बोलो सीताराम, ये तो गुरु की कृपा है। अच्छा तो तुलसीदास जी के गुरु जी कौन है? देखो गुरु कौन, जो भगवान की पहचान करा दे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ये मनाए। मिला रहे जो ना मिले, तासो कौन मिलाए। जो मिला है उसकी पहचान कौन कराए। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में मंदाकिनी के घाट पर बैठे हैं, आहा आंखों में आंसू भरकर रो रहे हैं।

आंसू भरे हुए तुलसीदास जी रो रहे हैं। रोते रोते भगवान राम जी प्रकट भए, बाबा चंदन दे दो चंदन। ओ बाबा आंखों में आंसू भरे, हे रघुनाथ जी कब मिलोगे, आपके दर्शन कब होंगे। और राम जी प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो चंदन। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कहते, बच्चा हमें परेशान मत करो, हम वैसे ही परेशान, तुम और परेशान करो, और भी बहुत से पंडे हैं, दूसरों के पास जाकर चंदन ले लो, हमें परेशान मत करो। अच्छा भगवान ने कहा चलो चंदन नहीं दे रहे, रो क्यों रहे। तुलसीदास जी बोले हमारे भगवान हमें मिले नहीं। अच्छा तो राम जी बने रूप में, भगवान ने तुलसीदास जी से कहा क्या बात है, क्या आपके राम जी आपके भगवान इतने कठोर हैं। बोले नहीं नहीं नहीं बच्चा, हमारे भगवान कठोर नहीं है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। हमारे भगवान कठोर नहीं है, हमारे भगवान कृपालु है, वो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे। बोले मिले तो हैं पर पहचान नहीं हम पाए। एक बात बोले, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तुलसीदास जी बोले हमको भगवान नहीं मिल रहे, रोने लगे और जैसा देखा हनुमान जी ने सोचा कि अगर आज तुलसीदास जी भगवान को अगर नहीं पहचान पाए तो और ज्यादा रोएंगे, अभी तो रो रहे भगवान को मिलने के लिए, जब भगवान चले जाएंगे तो और पछताएंगे और रोएंगे। तो तुलसीदास जी को देख करके हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया, तोता का रूप धारण करके हनुमान जी कहते श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर। हनुमान जी तोते का रूप धारण करके मंदाकिनी के घाट चित्रकूट पर आए और बोले श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। हे तुलसीदास जी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सुफल करो।

हनुमान जी ने जैसे ही तोता बनकर कहा, सोई गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान गए, जय हो सरकार की, जय हो जय हो जय हो जय हो। और आज भगवान की पहचान गुरुदेव ने करा दी, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को ख्याल आया कि गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, इसलिए

इसलिए हनुमान जी को गुरु रूप में तुलसीदास जी देख रहे हैं। एक बात और क्षमा करना, या तो तुम लोग आज के बाद गुरु को मानना छोड़ दो या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हम आपको एक घटना बताएं अपनी ही। मध्य प्रदेश में जहां हमारा जिला है उस जिले का नाम छतरपुर है। छतरपुर जिले के पास में एक जिला है बीना अलग जिला है, सागर जिले में। छतरपुर जिले में एक जिला है सागर। सागर में एक कस्बा है छोटा सा बीना। आज से 1.5 साल पहले हमारी कथा हुई बीना में। आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। 1.5 साल हो गए होंगे। 1.5 साल पहले बीना के लोगों ने हमें बुलाया कि आप कथा करने आइए। गर्मी का महीना, यही मई जून का महीना होगा। भागवत की कथा करने के लिए हम 7 दिन के लिए वहां गए। दो तीन दिन कथा के गुजरे। एक दिन हमने घोषणा की कि एक काम करें, हनुमान जी के प्रसाद के रूप में नारियल बांटे सबको। लगभग लोग 40-50 हजार भक्त कथा सुनने आते थे, कभी कभी 1 लाख हो जाते थे। हमने तीसरे दिन घोषणा की कि 5वें दिन कथा के पहले दिन में 12 बजे नारियल बांटे जाएंगे हनुमान जी के प्रसाद के रूप में। और हमने अपने शिष्यों से कहा, कथा आयोजक से कहा, व्यवस्था करो। पुलिस प्रशासन आई, प्रशासन की मीटिंग हुई, कैसे बांटना है, भगदड़ ना हो जाए, आफत ना हो जाए। सब लोगों ने निर्णय लिया कि लगभग 1-1.5 लाख लोग आएंगे। हमने कहा कि नहीं हो सकता है, 3 आए। लेकिन एक चतुर अधिकारी थे, उन्होंने कहा, अरे महाराज जी 3 लाख लोग बहुत होते हैं, 1.5 से ज्यादा नहीं आएंगे। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा। व्यवस्था पूरी हो गई। 5वां दिन आया, सुबह से हम पंडाल में गए, जगह जगह जाम। नारियल के लिए हमने घोषणा की, अर्जी लगाई, और हमको पुलिस वालों ने कहा कि भीड़ बहुत है, मंच पर लोग चढ़ रहे हैं, आप वापस कमरा में पहुंच जाओ। जैसे तैसे खेतों में से वो हमें जहां हमारा निवास था वहां ले गए। और लोगों का आकलन जो हमारा था 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख 4 लाख हो गई। जो घटना घटी वो ये थी, अब लोगों को नारियल लेने की वो होड़ मच गई। तो जो नारियल रखे थे मंच के सामने, अब लोग लाइन से नए आए, एक के ऊपर एक चढ़ के। और छोटा सा पंडाल जिसमें 50,000 से ज्यादा 30,000 से ज्यादा लोग बनेंगे नहीं। टेंट के ऊपर से लेकर पंडाल पर, मंच पर, रेलिंग पर लगभग 1 लाख लोग हो गए। भयंकर गर्मी, चारों तरफ जाम। अब हमारे प्राण सकपकाए, हमारा बीपी हाई, हम माला लें और जपिए के हे बजरंग बली आवाज बचा, हमने नारियल तो बंटवा रहा है लेकिन आफत ना हो जाए, कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए। और कैसी भगवान की कृपा कि भगदड़ मच गई। बिल्कुल सत्य बात, भगदड़ मची। भगदड़ में लोग चिपलने लगे, चिल्लाने लगे। हमारे जो सेवादार लगे थे वो दौड़े दौड़े हमारे पास आए, गुरुजी गुरुजी भगदड़ मच गई है, वहां नारियल लूटने लगे, सब चपने लगे, ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी। अब सफोकेशन हो गया पंडाल में, तो लोग बिचारे गिरने लगे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान बच्चे, माताएं सब गिरने लगी। पुलिस प्रशासन घबरा गई, लोगों को उठा उठा करके मंच पे लाए, एसी के सामने बैठाए। अब एम्बुलेंस ना चले क्योंकि जाम इतना। बड़ी मुश्किल से खेतों से लगभग 20 लोग घायल हो गए। उसमें जो घटना घटी, एक माता जी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी, 6 महीने की। अब वो पंडाल में बीच में फंस गई, उसी बीच में भगदड़ मची, अब वो बच्ची हाथ से छूट गई, अब गिर गई। और ये धक्का मुक्की के कारण ये पंडाल की आंगी आ गई। अब ये रोए चिल्लाए,
बच्ची को ढूंढे, अब लाखों लोग आपस में भग रहे। एक एडिशनल एसपी मैडम अभी हमको मिली थी सागर में, वो वहां की प्रभारी थी। उन्होंने हाथ पकड़ा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? राम सखी, पूछा नाम क्या है? राम सखी नाम है। क्यों रो रही हो? हमारी बच्ची गिर गई। कहां? पंडाल में बीच में। बड़ी मुश्किल से उनको ऊपर मंच तक लाए, बार बार वो माता जी बेहोश हो रही, पसीना निकल गया, चिल्ला रही, चिघा रहे। मां पर सोचो क्या गुजरी है, गुजर रही होगी, आंखों में आंसू भर कर चिल्ला करके कहे हमारी बिटिया। और एम्बुलेंस के पास आती है, अब वो दो तीन हमारे बच्चे बताते हैं अपनी आंखों देखे, बोले महाराज जी तब तक उसी वक्त सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, सिर पर टोपी बांधे हुए, बकबके कपड़े पहने हुए एक 80 साल का बुढ़ा हाथ में बच्ची ला करके कहता है कि ये तुम्हारी बच्ची है। माता जी ने गले से लगा लिया। हमको बच्चों ने आकर बताया, गुरुजी भगवान की कृपा से मिल गई, और उन दादाजी का आज तक पता नहीं लगा। और भगवान की ऐसी कृपा कि उस कथा में जितने घायल थे 7-8 बजे तक सब स्वस्थ हो गए, सबकी छुट्टी हो गई, और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार हो गई।

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूं, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। तीन महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से

0: नहीं है, ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
3: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
4: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है, ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
0: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: /back to school to learn more. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Employers don't hire diplomas. They hire skills. At WGU School of Technology, you'll earn both with a degree backed by industry certifications that prove you're job ready. Learn more at wgu.edu.
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Sage University, transforming your passion into profession.
8: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: अंबुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट। पुरोहितों ने विधि विधान से किया निवृत्ति अनुष्ठान। बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार। एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल आय, दान में मिले 80 करोड़ रुपए। पुरी में तीनों विशाल और भव्य रथ लगभग बनकर तैयार। 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान। 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। विश्व नशा निरोधक दिवस आज। मरीना बीच पर जागरूकता मैराथन में तमिलनाडु के सीएम विजय ने हिस्सा लिया, लोगों को किया जागरूक। आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला। अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: अंबुबाची मेले के बाद कामाख्या मंदिर के खुले कपाट। सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद खुले कपाट। 22 जून को रात 9:08:42 पर पवृत्ति अनुष्ठान के साथ मेले की हुई थी शुरुआत। वहीं नियमित पूजा पाठ के बाद मां कामाख्या दर्शन आशीर्वाद के लिए। मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र किया गया प्राप्त, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। शक्ति की उपासना से जुड़ा है अंबुबाची मेला। शक्ति परंपरा में प्रजनन क्षमता सृजन और नारित्व का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है महोत्सव। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक। तांत्रिक परंपरा के अनुयायियों और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अंबुबाची मेला देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी आई। पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे।

भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, 475 कैमराज से होगी रथ यात्रा की निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा, 7,000 जवानों की तैनाती, 10,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना।

0: अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा बेस कैंप जाकर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में संत समाज का आगमन शुरू, बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंजा शहर का ऐतिहासिक राम मंदिर। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, देखने को मिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। सीकर में दो दिवसीय खाटू श्याम मेले का आज दूसरा दिन, सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया अलौकिक श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार, भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल आय। पिछले साल की तुलना में 27 करोड़ ज्यादा आया दान, अब तक सबसे ज्यादा लड्डू प्रसादी की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय। उज्जैन बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया जलाभिषेक, दूध दही घी शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल को किया गया भव्य श्रृंगार, बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवार के साथ की विधि विधान से पूजा। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी, तो वहीं भगवान की पूजा कर आशीर्वाद लिया। सहारनपुर की 7 साल की नन्ही चैंपियन का कमाल देखने को मिला नेपाल में स्पीड स्केटिंग में, जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। गांव नागल लौटने पर अनुषी सिरोही का जोरदार स्वागत किया गया, क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड सहारनपुर के गांव नगला खुशी का माहौल। पिता अनुज कुमार की प्रेरणा से ही स्केटिंग की शुरुआत की थी, खेल खेल में शुरू हुआ सफर, नेपाल में गोल्ड जीत कर लहराया प्रतिभा का परचम। गोल्ड जीतने के बाद अनुषी ने एशियाई खेलों की तैयारी में शुरुआत की, 2 साल बाद होने हैं एशियाई गेम्स। चेन्नई में स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, सीएम विजय ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन रैली का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तमिलनाडु में नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। त्रिची में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में दौड़े युवा। कोहिमा में नागालैंड पुलिस ने एक दौड़ एक आवाज नशा मुक्त नागालैंड थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरलम के मोहम्मद अफसल ने जीता स्वर्ण पदक। चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में उड़ीसा के अनिमेश कजर ने जीता गोल्ड, तो वहीं महिलाओं में मनप्रीत कौर ने किया कमाल। खैरागढ़ में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची बिजली, चमक उठा खैरागढ़ का गांव। गांव में बिजली के पहुंचने पर गांव के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली, कहा खेती करने में बहुत आसानी होगी। पश्चिम एशिया का संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक्ड सिलेंडर से हटी पाबंदी। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर घर वापसी के लिए मध्य रेलवे चला रहा 5 अतिरिक्त ट्रेनें। प्रयागराज में खेलों को बढ़ावा देने की अनोखी पहल, बच्चियों में क्रिकेट के प्रति रुचि जगाने के लिए खोली गई खास क्रिकेट एकेडमी। एकेडमी में रोजाना प्रैक्टिस के लिए आती हैं 42 से ज्यादा लड़कियां, तो वहीं बल्लेबाज से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग की दी जाती है ट्रेनिंग। कई टूर्नामेंट खेल चुकी हैं इस एकेडमी से निकली महिला खिलाड़ी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल चुकी हैं लड़कियां। दिल्ली के भारत मंडप में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आयोजन, 25 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। पुलिस एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा में रही भारत की पहली स्वदेशी स्नाइपर राइफल टाइटो, शहरी इलाकों और क्लोज क्वार्टर ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है ये राइफल। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस पेट्रोलिंग व्हीकल इंद्रजाल भी किया गया शोकेस, जिसके जरिए को मार गिराने के लिए अपने कंट्रोल में भी लिया जा सकता है दुश्मन का ड्रोन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं, औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है। पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। वेलकम बैक टू दैट्स अ पेपर थिंग। First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
4: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
3: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
5: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
6: तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: अम्बुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से किया निवृत्ति अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार, एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, द्वितीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल आय, दान में मिले 80 करोड़। पुरी में तीनों विशाल और भव्य रथ लगभग बनकर तैयार, 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। विश्व नशा निरोधक दिवस आज, मरीना बीच पर जागरूकता मैराथन में तमिलनाडु के सीएम विजय ने लिया हिस्सा, लोगों को जागरूक किया। आज बेलफास्ट में आयरलैंड टीम इंडिया का पहला मुकाबला, तो वहीं अय्यर की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी का जो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले बात करेंगे लंबी उम्र की चाह की। हर किसी का मन करता है कि वो अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए और इस खूबसूरत दुनिया की खुशियों को लंबे समय तक महसूस करे। लेकिन उम्र का बढ़ना एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं पाया है, और यही वजह है कि सदियों से इंसान लंबी उम्र के रहस्य को जानने की कोशिश करता रहा है। कभी अमृत की तलाश हुई, कभी चमत्कारी औषधियों की, और आज आधुनिक विज्ञान उम्र बढ़ाने के नए नए तरीकों पर शोध कर रहा है। सवाल वही है, क्या इंसान 125-150 साल तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है?

0: इस खूबसूरत दुनिया में किसी का मन आसानी से नहीं भरता। रंग बिरंगी सुबहें, अपनों का साथ, बच्चों की खिलखिलाहट, बारिश की बूंदे, पहाड़, नदियाँ, समंदर और अनगिनत यादें। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जिसे छोड़कर जाने का मन शायद ही किसी का करता हो। यही वजह है कि सदियों से इंसान एक सवाल का जवाब खोज रहा है। क्या उम्र को बढ़ाया जा सकता है? क्या बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि इंसान 125 या 150 साल तक स्वस्थ और एक्टिव जीवन जी सके? दुनिया भर के वैज्ञानिक आज इसी दिशा में शोध कर रहे हैं। कोई जीन थेरेपी पर काम कर रहा है, उम्र बढ़ाने वाली कोशिकाओं को समझने की कोशिश में जुटा है, तो कोई ऐसी दवाओं की खोज में है जो शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रख सके। लेकिन इन तमाम प्रयोगों और खोजों के बीच एक सच्चाई ऐसी है जिस पर सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। लंबी उम्र का सबसे भरोसेमंद रास्ता किसी लैब में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है, यानी सही खानपान, डेली एक्सरसाइज, पूरी नींद, तनाव से दूरी और अनुशासित जीवन शैली। एक बात तय है कि इंसान अपनी सेहत को फिट रखकर लंबी उम्र तक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। हाल ही में मुंबई में अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के दौरान एक्टर अक्षय कुमार ने सेहत की अहमियत बताई।
1: कई लोगों ने अपना बिजनेस गवाया और कैसे भी करके अपना बिजनेस वापस लेके आए, लेकिन ये बहुत कम जगह पे आपने देखा होगा कि किसी ने अपनी सेहत गवा दी और वो सेहत नहीं ला सकता। तो मैं कहूंगा पैसे से बड़ा सेहत है, और ये बात अन्ना भी मानेंगे, पैसे से बड़ा सेहत है, सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है।
0: बॉलीवुड के फिटनेस आइकन का मानना है कि अच्छी सेहत सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाने से नहीं आती, असली फिटनेस रोज की आदतों से बनती है। सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, शरीर को सक्रिय रखना और अनुशासित दिनचर्या अपनाना, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अक्षय कुमार सुबह 4:30 बजे उठते हैं, शाम को जल्दी भोजन कर लेते हैं और शरीर को आराम देने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं। यही कारण है कि 58 साल की उम्र में उनकी ऊर्जा, फुर्ती और कार्य क्षमता युवाओं को प्रेरित करती है। ये सिर्फ किसी एक स्टार की कहानी नहीं है, दुनिया के अलग अलग कोनों से, चाहे वो जापान का ओकिनावा हो या भारत के दूर दराज के गांव, अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो सबका हौसला बढ़ाती हैं। जब लोग किसी 105 साल के बुजुर्ग को बिना किसी सहारे के खेतों में काम करते या 100 साल की दादी माँ को हंसते गाते देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। इंसान सदियों से लंबी उम्र का सपना देखता आया है, लेकिन लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा राज किसी चमत्कार में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतों में छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड स्ट्रे।
2: और अब बात करते हैं ब्राजील में रह रही उन तीन बहनों की जो अपनी उम्र को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तीनों बहनों की उम्र 100 साल से ऊपर है। उनकी यही खासियत वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इतने बरस तक इंसान कैसे खुद को जीवित रखने में सक्षम रह पाता है। यही वजह है कि इसी महीने इन तीनों को गिनीज ने दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र दराज जीवित बहनों के रूप में चिन्हित किया है।
3: तस्वीरों में नजर आ रही ये तीन बहनें बेहद खास हैं। अपनी उम्र को लेकर ये खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली की उम्र 109 साल, दूसरी 104 साल और तीसरी बहन 103 साल की हैं। लेकिन इतनी बढ़ती उम्र में ठीक तरीके से चलना फिरना, खुद को संवारना, रोजमर्रा के काम करना और सबसे बड़ी बात अपने आसपास की हलचलों को बखूबी समझना, इस तिकड़ी की यही उपलब्धियां दुनिया को हैरान कर रही हैं। यही वजह है कि अब इनकी लंबी उम्र के राज को समझने की कोशिशें हो रही हैं। आज ब्राजील की इन तीनों बहनों की कुल उम्र 316 साल है और इन्हें इसी महीने गिनीज ने दुनिया के सबसे ज्यादा उम्रदराज जीवित बहनों के रूप में चिन्हित किया है। दरअसल इन तीनों बहनों के जरिए रिसर्च करने वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लंबी उम्र का आखिर राज क्या है। शायद बहनों की इस तिकड़ी की मदद से इसका जवाब जानने में रिसर्चर्स को मदद मिल पाए।
4: A partir do exame de DNA, a gente procura os genes protetores. Tá? E a gente sabe que são vários, não é um só. Então, quanto mais pessoas a gente tiver que passam dos 100 anos, e principalmente famílias com vários centenários, maior vai ser a precisão da pesquisa no sentido de identificar esse gene de longevidade.
3: दरअसल साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट मयाना जेट्स की अगुवाई में एक स्टडी हो रही है जिसके तहत डीएनए लॉन्गवे प्रोजेक्ट नाम का एक अध्ययन किया जा रहा है। इस स्टडी का मकसद उम्र बढ़ने के पीछे के बायोलॉजिकल कारणों का पता लगाना है। इन तीनों बहनों के मामले से मिली जानकारी वैज्ञानिकों को ये बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा उम्र में भी शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत क्यों बने रहते हैं। इस रिसर्च के तहत 90 से 100 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना उन लोगों से की जाएगी जिनमें कमजोरी, मानसिक क्षमता में गिरावट या पुरानी बीमारियां हैं, ताकि लंबी उम्र से जुड़ी खूबियों का पता लगाया जा सके। इन तीनों में से 104 साल की बुजुर्ग जोरेट बताती हैं कि उनकी इतनी उम्र तक जीवित रहने के पीछे उनकी माँ का बेहद अहम रोल रहा है, जो खुद भी 100 साल तक जीवित रहीं।
5: Principal, alimentação materna, que é importante demais. E a minha mãe, que era uma mulher que vivia para a família, ela amamentava até não poder mais, até entrar na outra alimentação. E a outra alimentação, ela fazia em casa, com tudo plantado em casa.
3: Aqui eu tiro as carninhas. वही 103 साल की जुलीना और 109 साल की लेविटा कहती हैं कि अच्छा वातावरण और सेहतमंद खाना उनकी सेहतमंद उम्र के एक बड़े फैक्टर रहे हैं। उस समय को उन्होंने अपने बचपन और जवानी में खूब जिया, जिसका फायदा उन्हें आज तक मिल भी रहा है।
6: E depois de caranguejo, pirão de caranguejo, muito bom. É isso que a gente tá aqui, porque tudo era bom, tudo fresco, não tinha geladeira, não.
7: Eu tive uma infância boa, e adolescente também. Até eu ser boa, não vou reclamar, né?
3: तीनों बहनों की ये तिकड़ी अपनी बेहतरीन उम्र के लिए सेहतमंद पर्यावरण, अच्छा और पौष्टिक खाने को ही क्रेडिट देती हैं और आज भी दुनिया के लिए ये जरूरी फैक्टर्स हैं। यही वजह है कि साओ पाउलो यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर्स इन तीनों बहनों के डीएनए को एनालाइज करने जा रहे हैं, जिससे इनके जेनेटिक्स का अंदाजा लगाया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि इनकी लंबी उम्र के पीछे उनके पूर्वजों की कितनी अहम भूमिका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
2: क्या उम्र पर फतेह पाना मुमकिन है? इस सवाल का जवाब न जाने कब से खोजा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंसान ने लंबी उम्र और यहां तक कि अमरता को पाने का भी फॉर्मूला खोज लिया है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बयानों से तो यही बात पुख्ता लग रही है। सुनिए।

0: चीन में विक्ट्री डे परेड के मौके पर तियानमेन चौक पर शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की इस गुफ्तगू की पूरी दुनिया में चर्चा है। असल में इसकी वजह ये नहीं है कि एक ही खेमे में ये तीनों नेता किसी सामरिक रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि इनमें से दो दिग्गज यानी जिनपिंग और पुतिन जिस मामले पर बातें कर रहे हैं वो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। इस वीडियो में इन नेताओं के बीच जो बातचीत हो रही है वो बेहद दिलचस्प है। इसमें शी जिनपिंग साफ साफ ये कहते सुने जा रहे हैं,
1: पहले लोग 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे, लेकिन आज 70 की उम्र में भी आप एक बच्चे जैसे ही हैं।
0: इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए।
2: बायोटेक्नोलॉजी का निरंतर विकास हो रहा है, इसके जरिए अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है। आप चाहे जितने उम्र के हो जाए, आप जवान ही रहेंगे, लोग अमर भी हो सकते हैं।
0: और फिर पुतिन से शी जिनपिंग क्या कहते हैं ये सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे।
2: कुछ लोगों का अनुमान है कि सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं।
0: दोनों नेताओं के बीच बातचीत भले ही हल्के फुल्के ढंग से हो रही है, लेकिन ये वास्तव में दुनिया में हो रही क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। बताया जा रहा है कि जिनपिंग और पुतिन के बीच ये बातचीत एक हॉट माइक पर रिकॉर्ड कर ली गई और फिर इस तरह से पूरी दुनिया के सामने आ गई। जहां एक और इस बातचीत से ये अर्थ निकाला जा रहा है कि चीन और रूस जैसे देश इंसान के ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अमृतत्व हासिल करने की टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 70 साल की उम्र पार कर चुके दुनिया के ये दोनों दिग्गज नेता अनंत काल तक अपने देशों में राज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक इस बात की ओर कोई इशारा नहीं किया है कि इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे। शी जिनपिंग ने तो राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए 2018 में कार्यकाल की समय सीमा का प्रावधान खत्म कर डाला, जबकि पुतिन ने भी अपने शासन को लंबा करने के लिए रूसी कानून में फेर बदल किया है। बहरहाल दोनों नेता फिलहाल जितने फिट और तंदुरुस्त दिखते हैं, उसको देखते हुए ये भी सवाल उठ रहा है कि ये आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण इनकी सेहत पर उम्र का कोई असर नहीं दिखता। कहीं इन्होंने सच में 150 साल या उससे ज्यादा लंबी जिंदगी जीने का कोई ऐसा चमत्कारी नुस्खा तो हासिल नहीं कर लिया, या किसी संजीवनी बूटी की खोज तो नहीं कर ली जिससे बाकी दुनिया अब तक अनजान है। वैसे जानकारों की माने तो दुनिया में इंसानों के 100 साल से ज्यादा जीने की संभावना बढ़ रही है। इंग्लैंड की एथेल कैटरहम ने इसी साल 2025 में अपना 116वां जन्मदिन मनाया। फ्रांस के जीन कालमेट ने 122 वर्ष 164 दिन जीने के बाद 1997 में प्राण त्यागे। शोधकर्ताओं ने एक स्टडी में अनुमान लगाया है कि सदी के अंत तक ऐसी स्थिति हो सकती है कि इंसान 122 साल से ज्यादा भी जीवित रहेगा। एक और स्टडी के मुताबिक इंसान के लिए 150 वर्ष की आयु तक भी जीवित रहना संभव है, बशर्ते सारे हालात अनुकूल हों। रिसर्च के अनुसार माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया में 110 साल की उम्र पार कर चुके यानी कई सुपर सेंटेनेरियन लोग भी मिलेंगे, भले ही उनकी तादाद बेहद कम हो सकती है। हालांकि उनमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाले कितने लोग होंगे ये कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि लंबी उम्र तक जीना एक बात है और बगैर किसी सहारे के निरोग और सेहतमंद जीवन जीना दूसरी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit Spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
5: गुड न्यूज टुडे
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज

0: और अब बात करते हैं कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे, तो कुछ को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
1: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
3: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars.

0: or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: अंबुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान के साथ किया निवृत्ति अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार, एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। पुरी में तीनों विशाल भव्य रथ लगभग बनकर तैयार, 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। चौरानवे साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मी माँ का ने की स्वदेश वापसी, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती है बचा हुआ वक्त, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया पूरी। आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला, आयर की कप्तानसी में उतरेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: अंबुबाची मेले के बाद कामाख्या मंदिर के खुले कपाट, सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद खुले ये कपाट। मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र किया प्राप्त, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां, 23-16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा भाव के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में संत समाज का आगमन शुरू, बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंजा शहर का ऐतिहासिक राम मंदिर। सीकर में 2 दिवसीय खाटू श्याम मेले का आज दूसरा दिन, सुबह से लगी श्रद्धालु की लंबी कतार। बाबा श्याम के गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया अलौकिक श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने किए दर्शन। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रूपये से अधिक की कुल आय। उज्जैन बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता, नानी भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्र अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरलम के मोहम्मद अफसल ने जीता स्वर्ण पदक। महिला में 200 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की हरिता भद्रा ने जीता गोल्ड। चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में ओडिशा के अनिमेश कुजर ने जीता गोल्ड। महिला में मनप्रीत कौर ने किया कमाल। खैरागढ़ में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची बिजली, चमक उठा खैरागढ़ का ये गांव। चेन्नई में स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत, सीएम विजन ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत। कमर्शियल पैक सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस। रेल यात्रियों के लिए भी एक गुड न्यूज है, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर घर वापसी के लिए मध्य रेलवे चला रहा है 5 अतिरिक्त ट्रेनें। भीड़ नियंत्रण के ध्यान में रखकर रेलवे ने लिया फैसला। सहारनपुर की 7 साल की ननी चैंपियन का कमाल, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। आज से शुरू हो रही है भारत और आयरलैंड की 2 मैच की T20 सीरीज। आईपीएल 2026 के बाद मैन इन ब्लू की पहली T20 सीरीज। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराया, 19 गेंद रहते हुए हासिल किया लक्ष्य, बांग्लादेश को 5 विकेट से दी पटकनी।
5: फिल्मी फ्राइडे पर सिने प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में रिलीज हो रही। देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म वेलकम टू द जंगल एडवांस बुकिंग में की जबरदस्त कमाई। फिल्म तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसका प्रीमियर। हिंदी के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी सिनेमाघरों में से दस्तक दी। फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल में है। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी रिलीज हुई। एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म की कहानी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
4: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। अमुबाची मेले के बाद आज खोलेंगे कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से की निवृत्त अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
5: सीकर में आस्था और भक्ति से सजा खाटू श्याम जी का दरबार, एकादशी मेले का आज दूसरा दिन, दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़।
4: वहीं उज्जैन में महाकाल में भक्तों ने किया रिकॉर्ड दान, मंदिर समिति को 142 करोड़ की आमदनी, दान से मिले 80 करोड़ रुपए।
5: आज बेलफास्ट में आयरलैंड से टीम इंडिया का पहला मुकाबला होगा, ईयर की कैप्टनसी में उतरेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी का आज हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू।
4: तो वहीं पुरी में तीनों विशाल और भव्य रथ लगभग बनकर तैयार हुए, 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा।
5: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज की एंटरटेनमेंट की एक गुड न्यूज के साथ। बॉलीवुड में इन दिनों रियल स्टोरीज को बड़े पर्दे पर बड़े फलक पर पेश करने का चलन बढ़ा है, ताकि दर्शकों को उन बड़ी घटनाओं के सिलसिले को करीब से महसूस करने का मौका मिले। इसको लेकर एक्शन से लेकर ड्रामा और स्पेशल इफेक्ट से लेकर किरदारों तक की शानदार तैयारी भी की जा रही है।
4: आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जो जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। इनमें से एक खास फिल्म है प्रहार, जो मुंबई में 26/11 के हमले पर आधारित है। इसका टीजर अब रिलीज किया गया है और फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो दूसरी ओर कश्मीर में पत्थरबाजी की समस्या पर बन रही फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट धमाकेदार तरीके से रिलीज किया गया, जबकि वेब सीरीज के रूप में चर्चित मिर्जापुर की कहानी अब फिल्म की शक्ल में आ रही है, उसका भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो देखिए बड़े पर्दे पर एक ऐसे किरदार की कहानी पेश करने की तैयारी है देश जिसका रियल लाइफ में मुरीद रहा है। बात मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले मशहूर वकील उज्जवल निकम की हो रही है।
5: इनके किरदार को अब अभिनेता राजकुमार राव एक फिल्म में पेश करने वाले हैं। फिल्म का टीजर तो रिलीज हो गया है और क्या खास है इसमें, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: बॉक्स ऑफिस पर क्राइम, अदालतों और वकीलों के इर्द गिर्द घूमती कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब एक ऐसा कोर्टरूम ड्रामा बड़े पर्दे पर आने जा रहा है जिसकी रियल स्टोरी में देश ही नहीं दुनिया भर की दिलचस्पी रही है। ये कहानी है मुंबई में 2008 में हुए 26/11 के हमले की, जिस पर कई फिल्में और वेब सीरीज तो पहले भी बन चुकी है, लेकिन अब इससे जुड़ी एक अलग ही कहानी रुपहले पर्दे पर आने वाली है। इस कहानी के केंद्र में है मशहूर वकील उज्जवल निकम, जिन्होंने हमले के गुनहगार अजमल कसाब के मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं उज्जवल निकम की कहानी अब फिल्म प्रहार में दिखने वाली है। फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज हो चुका है और खास बात यह है कि इसमें कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील का किरदार निभा रहे हैं मंझे हुए अभिनेता राजकुमार राव। 1.5 मिनट के इस टीजर में राजकुमार राव देश के मशहूर वकील और सांसद उज्जवल निकम के किरदार में पूरी तरह ढले नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राजकुमार राव बॉलीवुड के सबसे दमदार यंग एक्टर्स में से एक हैं। वैसे तो राजकुमार राव काफी वक्त से पॉपुलर एंटरटेनिंग फिल्मों में ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रहार के जरिए दर्शकों को उन्हें एक ऐसे सीरियस किरदार में देखने का मौका मिलेगा जिसमें एक्टिंग के उनके टैलेंट की शानदार धार भी दिखेगी।
1: कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे।
0: राजकुमार ने इसके जरिए एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो एक्टिंग के तगड़े हुनर के मालिक है। फिल्म के टीजर में वकील उज्जवल निकम के रूप में राजकुमार राव की वो स्पीच दर्शकों को प्रभावित करने के लिए काफी है, जिसमें वह कोर्ट में खड़े होकर इस बात का जवाब देते आ रहे हैं कि जब फोटोज और वीडियोस में कसाब की सारी हरकतें दिख रही हैं, फिर उसे कोर्ट ट्रायल की जरूरत क्यों है।
1: योर ऑनर, पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे, इतना पैसा इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर।
0: खास बात ये है कि राजकुमार राव ने उज्जवल निकम का जो किरदार निभाया है उसमें निकम के मुकाबले उनकी उम्र का तनिक भी पता नहीं चलता।
1: मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोस।
0: इतना ही नहीं, फिल्म के टीजर में और भी कई खास बातें हैं जो दर्शकों को इसे देखने के लिए आकर्षित कर सकती है।
1: आतंकवादी के ऊपर
0: चाहे टीजर का ट्रीटमेंट हो या फिर बैकग्राउंड स्कोर, जिसके बदौलत ये कहीं से नहीं लगता कि ये फिल्म रेगुलर कोर्टरूम ड्रामा की तरह स्लो होगी। प्रहार में वामिका गब्बी राजकुमार राव की पत्नी के रोल में है। वहीं इसके टीजर में जयदीप अहलावत की भी झलक भी वकील के रूप में दिखती है। राजकुमार राव के साथ जयदीप को प्रहार जैसे दमदार कोर्टरूम में देखना भी फैंस के लिए बहुत एक्साइटेड होगा, जबकि सिकंदर खैर भी इसमें अहम भूमिका में नजर आएंगे। प्रहार का निर्देशन वेब सीरीज पताल लोक के डायरेक्टर अविनाश अरुण ने किया है। इस फिल्म के लिए दर्शकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ये फिल्म 7 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब बात फिल्म चौहान की करते हैं, जिसके पर्दे पर आने में अभी तो थोड़ा सा वक्त है, लेकिन आपको ये बता दें कि इस फिल्म की कहानी भी उसी तरह से रियल इवेंट्स पर बेस्ड है जैसे प्रहार की। फर्क इतना है कि चौहान की स्टोरी कश्मीर के बैकग्राउंड पर है और इसके जरिए एक बार फिर से आर्मी की वर्दी में पर्दे पर अजय देवगन की वापसी भी होने वाली है। फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट हाल ही में रिलीज किया गया है।
3: गलती हमारी नहीं थी, ऑर्डर ऊपर से आए थे, ईंट का जवाब पत्थर से, पर सामने वाला सीधा पत्थर ही उठा ले तो जवाब क्या।
4: जुम्मे की इस तारीख पे वादा करो क्या आपसे हर जुम्मे और जुम्मे की।
5: एक्शन स्टार अजय देवगन का नया शाहकार, इस फिल्म में एक बार फिर दिखेगा अजय देवगन का फौजी अवतार। जो कश्मीर के बैकड्रॉप में भरेगा हुंकार।
3: जवाब आ रहा है।
5: इस नई फिल्म का नाम चौहान है, जिसके जरिए अजय देवगन लगभग 20 साल बाद बड़े पर्दे पर आर्मी ऑफिसर के रोल में वापसी कर रहे हैं। अजय देवगन ने इससे पहले 2005 में टैंगो चाली में आर्मी ऑफिसर की वर्दी पहनी थी। इसके बाद से उन्होंने सिंघम और दूसरी फिल्मों में पुलिस की वर्दी के साथ साथ भुज में एयरफोर्स की वर्दी भी पहनी थी, लेकिन बड़े पर्दे पर आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का मौका उन्हें लंबे समय के बाद अब मिला है। हाल ही में फिल्म चौहान का 2.5 मिनट लंबा धमाकेदार अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया जिसमें अजय देवगन की एक्टिंग और एक्शन के शानदार कॉम्बो की झलक देखने को मिल रही है।
3: पत्थर का जवाब नहीं।
5: नई फिल्म चौहान में अजय देवगन कश्मीर में पोस्टेड आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और पत्थरबाजों को जवाब देते नजर आएंगे।
3: चौहान आ रहा है।
5: फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो कश्मीर में पत्थरबाजी के सीन से शुरू होता है। अजय देवगन की आवाज में चल रहे नरेशन में बताया गया है कि 75 सालों से कश्मीर के बिगड़े हालात ने लगातार भारतीय सैनिकों की जान मुश्किल में डाल रखी है।
3: 75 साल, 15 लाख फौजी, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद भी पत्थर का जवाब नहीं।
5: ऐसे में सेना की वर्दी पहने अजय की एंट्री स्वैग के साथ होती है।
3: जवाब आ रहा है। पठानों से कहना, चौहान आ रहा है।
5: उनका पूरा चेहरा इस वीडियो में रिवील नहीं किया गया। आधे चेहरे पर डेविल वाला मास्क बंधा है, लेकिन स्टाइल से साफ है कि किरदार कौन है। फिल्म का निर्देशन नीरज यादव ने किया है और उरी और धुरंधर जैसी धमाकेदार फिल्में दे चुके जियो स्टूडियोज ने ही चौहान भी प्रोड्यूस की है। प्रोड्यूसर्स में आनंद एल राय के साथ ज्योति देशपांडे का नाम भी है, जिन्होंने दोनों धुरंधर फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। फिल्म चौहान अगले साल 1 अक्टूबर को रिलीज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की, जिनकी होम प्रोडक्शन फिल्म बेबी डू डाई डू इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और अपने ही प्रोडक्शन हाउस की इस फिल्म में हुमा एक देसी हिट वुमेन यानी कि किलर के रोल में नजर आ रही हैं।
2: उनके इस किरदार को आपको बता दें इंडियन सिनेमा की पहली हिट वुमन भी कहा जा रहा है। फिल्म तो 3 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले इसके ट्रेलर को काफी तारीफें मिल रही हैं। हुमा कुरैशी ने इस फिल्म और किरदार के बारे में हमारे सहयोगी से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको ये पूरी बातचीत।
7: आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी और आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत मेहमान मौजूद है जो अपने बहुत बढ़िया। आप कैसी है हुमा? बहुत बहुत स्वागत आप। हुमा, मैं सीधा आपकी फिल्म पे आती हूँ, बेबी डू डाई डू। इस किरदार को एक तो ब्रांडिंग जिस हिसाब से दी है ना, फर्स्ट क्या आप ही बता दीजिए हमारे। यस, हमने पहले भी ऐसे किरदार देखे हैं, बी दीपिका, बी रानी मुखर्जी, उन्होंने एक्शन फिल्म्स करी है, तो व्हाई दिस ब्रांडिंग? ये ब्रांडिंग क्यों है?
8: क्योंकि एक्शन फिल्म करना और देसी हिट वुमन होना दो अलग चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये जो मेरा कैरेक्टर है, मैं एक डेफ और म्यूट कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि एक हिट वुमन है। वो सुपारी लेके बॉम्बे में लोगों को मारती है, ये उसका काम है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई कैरेक्टर हिंदी सिनेमा के इतिहास में कभी लिखा गया होगा या बनाया गया होगा। उसकी गन उसकी लाल छाते में है, तो वो बहुत ही प्यार से बिना अपने ऊपर कोई भी सस्पिशन आए लोगों को मारती चली जाती है। एंड आई थिंक बहुत ही यूनिक कहानी है, बहुत ही ओरिजिनल कहानी है। आई डोंट थिंक ऐसी आपने कहानी शायद ही देखी होगी।
7: मैं जब इस फिल्म के बारे में पढ़ रही थी, मैंने ये भी सुना था कि आपने स्पेशली इस फिल्म के लिए साइन लैंग्वेज सीखी है, तो क्या कितना सच है इस बात में?
8: बिल्कुल सच है ये, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है, क्योंकि लाइक मैंने बताया वो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती, तो साइन लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट करती है। तो मैंने साइन लैंग्वेज क्लासेस ली, मैं स्पेशल स्कूल गई। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने पूरी साइन लैंग्वेज नहीं रखी, क्योंकि बेबी का जो किरदार है वो बोल सुन नहीं पाती, मगर उसके जिस दुनिया में वो रहती है वो सब बोल सुन पाते हैं, तो उनसे कैसे इंटरेक्ट करती है। और उससे बहुत सारे लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, सो आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू लैंड। एंड आई हैव रियली एंजॉयड प्लेइंग अ कैरेक्टर जिसमें इतनी इंटेंसिटी है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, और उसे अपनी आंखों से वो एक्सप्रेस करती है।
7: अगर हम आपके सफर की बात करें ओवरऑल, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मोनिका उमर डार्लिंग हो, बहुत ही सुंदर सफर रहा, अगर उसको एक शब्द में समेटना हो तो वो क्या होगा?
8: आई थिंक फॉर एक लड़की जो दिल्ली में पली बड़ी हो, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में, और उसको फिल्मों का शौक हो और उसको अभिनेत्री बनने का मौका मिले, तो बहुत ही आप बोलोगे शायद कोई सपना है, कोई कल्पना है, बट मुझे ये मौका मिला। और कभी कभी खुद को चूटी मारती हूँ कि क्या ये सपना है कि मैं वाकई अपना ड्रीम लिव कर रही हूँ।
7: आपने कई बार ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला है, बॉडी आइडियल टाइप के बारे में बोला, और खुलकर बोला है, कभी भी शर्माई नहीं। इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है आज की डेट में अभी भी सिर्फ लड़कियों की शक्ल पे ही हम जज करते हैं, आज भी ऐसा मतलब इट्स रेलेवेंट और नॉट.
8: बॉडी पॉजिटिविटी तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि आपसे लड़कियों को बता रहे हो कि सिर्फ एक तरह की सुंदरता सुंदरता होती है और बाकी सब किसी लायक नहीं होते. वो अपने आप में एक गलत थॉट प्रोसेस है. जहाँ तक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ औरतों की बात होती है कि महिलाओं को एक तरीके से देखा जाए, उनके यू नो उनको एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाए, उनकी कोई एजेंसी ना हो, वो एक बहुत ही अलग मुद्दा है. और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे किरदार करना पसंद करती हूँ जहाँ पे हो सकता है कि सामने वाला कैरेक्टर मुझे डिमीन कर रहा हो, बट मेरा एक एजेंसी, मेरा एक पर्सपेक्टिव, मेरा एक वर्ल्ड व्यू हमेशा रहेगा.
7: पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे करती हूँ कि सोशल मीडिया पे कभी ऐसी कोई अफवाह सुनी है जिससे आपको लगा रहे ये मेरे बारे में ये कैसे सच हो सकता है?
8: बहुत सारी बातें ऐसी, मैं ज्यादा पढ़ती वढ़ती नहीं, बस बहुत मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इसे पढ़ने का टाइम ही नहीं है. लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जो लोग वाकई मेरे बारे में चिंता करते हैं, जिनको मेरा फर्क पड़ता है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात का फर्क पड़ता है. पर इतने सारे लोगों का मैं सुनने लाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊंगी.
7: चलिए, हमारे जनता के लिए आखिरी मैसेज दे दीजिए और हम रैप अप करते हैं.
8: तो मेरी फिल्म आ रही है बेबी डू डाई डू 3 जुलाई को सिर्फ सिनेमा घरों में, प्लीज जाके देखिए.
6: और चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी की. आयरलैंड में भारत के वैभव का क्रेज साफ दिखाई दे रहा है. आज बेलफास्ट में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला खेलने जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है.
9: और देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी ब्लू जर्सी में रंग जमाते नजर आएंगे. टीम मैनेजमेंट की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में शामिल करना टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा. इसके लिए किसी अनुभवी खिलाड़ी को बाहर बैठना होगा और बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा बदलाव इनको करना होगा. भारत के मौजूदा टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन शामिल हैं. तीनों ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 भी लगाई थी. बहरहाल क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज तो यही है कि आज T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया श्रेयस अय्यर की अगुवाई में आयरलैंड के खिलाफ धमाल मचाती हुई नजर आएगी और इस मुकाबले के साथ श्रेयस अय्यर भारत के लिए कैप्टनसी पारी का आगाज भी करेंगे. और देखिए, ठीक इसी मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है. इसमें टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. कोटक ने साफ कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका जरूर मिलेगा,
6: लेकिन सिर्फ उनका डेब्यू कराने के लिए. किसी ऐसे खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं किया जाएगा जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने कहा कि टीम का पहला लक्ष्य सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारना है. अगर वैभव को बेलफास्ट T20 में मौका मिलता है तो वो भारत के मेंस और विमेंस दोनों टीमों को मिलाकर सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे.
9: और देखिए, वजह यही है कि उनकी संभावित एंट्री इस मुकाबले का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है. सितांशु कोटक का यह भी मानना है कि वैभव के पास असाधारण प्रतिभा है और उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इस पर आखिरी फैसला तो कैप्टन श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर करेंगे. कोटक के मुताबिक चीफ कोच गौतम गंभीर से वैभव की बातचीत हुई. गंभीर ने वैभव को खुलकर खेलने के लिए कहा, साथ ही ये सलाह दी कि वैभव खुद को अलग महसूस ना करें.
6: कोटक ने कहा कि हमने उनसे सिर्फ इतना कहा है कि इस एक्सपीरियंस का आनंद लो, अगर कुछ पूछना है या किसी से बात करनी है तो खुलकर करो. तो तस्वीरें कुछ पुरानी है लेकिन आज इनका खास मोल है. किसी भी खिलाड़ी के लिए वो पल बेहद ही खास होता है जब उसे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले. हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो ब्लू जर्सी हासिल करे.
9: देखिए, वो पल जब वैभव को बीसीसीआई की ओर से ब्लू जर्सी मिली, इस किशोर के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा था. देखिए वैभव ने तब कैसे अपने भाव जज्बात बयां किए.
10: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ और जो मेन स्टेप होता है वो आज कम्प्लीट हुआ. और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. ड्रीम जैसा ही लग रहा था और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं. और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते, सेम रिएक्शन मेरा भी था.
9: और देखिए, सिर्फ आयरलैंड ही नहीं पूरी दुनिया में बेबी बॉस का क्रेज है. इंटरेस्टिंग यह है कि इस वक्त को पूरा पाकिस्तान ही मानो वैभव का फैन बन गया है. वैभव 2025 में गूगल पर भारत के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्सियत भी बन गए हैं.

0: क्रिकेट में कहते हैं असली स्टार वो है जिसकी धमक सरहदों को भी पार कर जाए। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान के गूगल सर्च में ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान में वैभव को लेकर केवल चर्चा ही नहीं है बल्कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा भी खूब है। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी खुद एक क्रिकेट सनसनी बन चुके हैं। पिछले 3 महीनों के गूगल ट्रेंड डेटा में पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने वैभव को जमकर सर्च किया है। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी उम्र, रिकॉर्ड, आईपीएल कीमत और मैचों से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान में तेजी से खोजी जा रही है। गूगल ट्रेंड्स में ब्रेकआउट का मतलब होता है लोकप्रियता में अचानक जबरदस्त उछाल, और वैभव से जुड़े कई कीवर्ड्स इस कैटेगरी में शामिल हैं। साफ है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस भारतीय किशोर बल्लेबाज के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। नजर हो भी क्यों ना, क्रिकेट के पंडित वैभव की आक्रामकता से हैरान हैं। उनके सबसे तेज अर्धशतक की चर्चा हो रही है, उनके बेखौफ अंदाज पर अचरज जताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में जब कम उम्र में बड़ी उपलब्धियों की बात होती है तो मुश्ताक मोहम्मद का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। 1959 में उन्होंने महज 15 साल 124 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। अब लगभग उसी उम्र में वैभव सूर्यवंशी अपने कारनामों की वजह से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। यही नहीं, जब बात विस्फोटक बल्लेबाजी की आती है तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को सबसे पहले शाहिद अफरीदी याद आते हैं। वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी, बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलने का अंदाज कई लोगों को युवा अफरीदी की याद दिला रहा है। जाहिर है वैभव ने अभी करियर शुरू ही किया है, लेकिन उनके नाम की गूंज पहले ही स्टेडियम की सीमा रेखा पार कर चुकी है। भारत में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान में बढ़ती सर्चिंग बता रही है कि ये बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बना रहा बल्कि उतनी ही तेजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, T20 महिला वर्ल्ड कप के महामंच से भी टीम इंडिया के लिए बीती शाम जीत वाली एक गुड न्यूज आई। टीम इंडिया ने अहम मुकाबले में 19 गेंद बाकी रहते बांग्लादेश को मात दी। शेफाली वर्मा और राधा यादव के दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया।
2: और देखिए, शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं राधा यादव ने 3 विकेट चटकाकर विरोधी टीम की कमर को तोड़ दिया और टीम इंडिया की जीत यहां पर पक्की कर दी। तो देखिए, भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया है। टीम इंडिया ने शुरू से ही आक्रामक प्रेशर में खेलते हुए सामने वाली टीम को ये बता दिया था कि हम इस मैच के लिए और इस पारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राधा की फिरकी ने हालांकि विरोधी टीम को पस्त कर दिया और जिस तरह से ये टीम खेली है उसने ये बता दिया कि प्रैक्टिस राउंड में भी टीम इंडिया ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी।

0: और चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाकाल का खजाना।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
3: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
5: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
2: अंबुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से किया निवृत्ति अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। पुरी में तीनों विशाल और भव्य रथ लगभग बनकर तैयार, 29 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से शुरू होगा अनुष्ठान, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। देवरिया में सीएम योगी ने दी विकास की सौगात, 456 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। चौरानवे साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मी अम्मा ने की स्वदेश वापसी, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती हैं बचा हुआ वक्त, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया की पूरी। बाढ़ बारिश से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। जूनागढ़ में दिखा रोमांचक नजारा, सड़क पर एक साथ नजर आए 9 शेर, लोगों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: और चलिए लंच टाइम में अब बात कर लेते हैं बाबा महाकाल के महाखजाने की। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है बाबा महाकाल का दिव्य दरबार, इन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है और हर पर्व त्योहार इन्हीं के यहां से शुरू होता है। ये समय और काल से भी ऊपर है और तभी महाकाल कहलाते हैं। महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और खास तौर पर महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से भक्तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। और इसी के साथ महाकाल मंदिर को मिले चढ़ावे में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
3: बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ने वाला भक्तों का ये सैलाब महज आस्था की गवाही नहीं दे रहा, एक नया इतिहास भी लिख रहा है। महाकाल के दरबार में आस्थावान सिर्फ नतमस्तक ही नहीं हो रहे, दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 4 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी भीड़ ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की आय को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को अब तक की सबसे बड़ी 144 करोड़ रुपए की आय हुई है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लड्डू प्रसाद से ही 65 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो बीते 6 सालों में सबसे अधिक है। इसके अलावा सोने चांदी के करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी बाबा के दरबार में चढ़ाए गए हैं।
4: जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइन दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिला है। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है।
3: 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर बनने से पहले महाकाल के दरबार में रोजाना 30 से 40 हजार श्रद्धालु आते थे। कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4 गुना बढ़कर 1.5 लाख से 2 लाख तक हो चुकी है। भक्तों की संख्या में इस बढ़ोतरी के साथ उज्जैन में पर्यटन कारोबार को तो पंख लगे ही हैं, महाकाल के खजाने में भी साल दर साल भारी बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में महाकालेश्वर मंदिर को दान के रूप में 38 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2023-24 में दान का ये आंकड़ा बढ़कर 59 करोड़ जा पहुंचा। 2024-25 में मंदिर को 117 करोड़ रुपए दान में मिले। 2025-26 में मंदिर समिति की कुल आय रिकॉर्ड 144 करोड़ आंकी गई है।
4: जो मंदिर में दान काउंटर्स हैं या भेंट पेटियां हैं वो कैमरा की निगरानी में है निरंतर, साथ ही वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं। बात की जाए गणना की तो गणना कक्ष एक पारदर्शी कमरा है जिसमें आते और जाते समय सुरक्षा कर्मी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले कर्मचारियों की पॉकेट सील रहती है, उनकी चेकिंग करके उपरांत ही उन्हें कक्ष में भेजा जाता है और पूरी गणना जो है वो कैमरा के निगरानी में की जाती है जहाँ पर कर्मचारी के साथ अधिकारी भी मौजूद होते हैं।
3: महाकाल में भक्तों की आस्था शुरू से ही रही है, लेकिन ये भी सच है कि महाकाल के दरबार में नतमस्तक होने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी महाकाल लोक बनने के बाद ज्यादा हुई है। नतीजा आस्था के नए रिकॉर्ड के साथ साथ महाकाल के खजाने में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो वही अमरनाथ यात्रा की तारीख बेहद करीब आ चुकी है। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन वाली यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है
5: और यात्री की सुविधा और सुरक्षा पर पूरा फोकस किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे यात्रा मार्ग रूट पर रोजाना मॉक ड्रिल की जा रही है और कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा को लेकर एक ऐसा हाईटेक सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर न मार पाए।
6: तीन जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। बाबा बर्फानी के दर्शन में अब करीब एक हफ्ते का वक्त बचा है, लिहाजा शासन प्रशासन सुरक्षा बल से लेकर स्थानीय लोग भी इस यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। जम्मू से कश्मीर तक जगह जगह मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा जा रहा है। उपराज्यपाल से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की बैठकों का दौर जारी है। एनसीसी कैडेट्स भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और पूरे यात्रा मार्ग को हाईटेक सिक्योरिटी से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये 5 तस्वीरें अमरनाथ यात्रा की तैयारी की पूरी कहानी बताने के लिए मुकम्मल है। तो सबसे पहले बात मॉक ड्रिल की, जो जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरे यात्रा मार्ग पर तकरीबन रोजाना आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में गांदरबल पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने आतंकी हमलों से निपटने और उनकी धरपकड़ के लिए अभ्यास किया, साथ ही घायल जवान को निकालने और जवाबी कार्रवाई की भी प्रैक्टिस हुई। इससे पहले मंगलवार को एनएसजी कमांडो ने जम्मू स्थित बेस कैंप भगवती नगर यात्री निवास की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए मॉक ड्रिल की थी। एनएसजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। किसी भी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए इसके लिए जवानों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 25 जून को अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अमरनाथ यात्रा की अंतिम तैयारियों का जायजा लिया और तैयारियों से संतुष्ट दिखे। पहलगाम में ही मुख्य बेस कैंप नुनवान है, जहां से यात्री चंदनवाड़ी और शेषनाग होते हुए पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं।
7: जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार सबके समन्वय के साथ सुगम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सकें इसका इंतजाम किया गया है। आज यहाँ जो बैठक थी इसमें सभी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के भी ऑफिसर थे। मैं मुतमईन हूँ कि सारी व्यवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की हैं।
6: अमरनाथ यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुगम बनाने में शासन प्रशासन के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग की भी पूरी भागीदारी होती है। इसी संदर्भ में अनंतनाग में 2 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। गुरुवार को इसके समापन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया।
8: हमारी जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप मिला है और हमें मोटिवेशन मिली है कि हम ऐसे और भी प्रोग्राम जो है, इवेंट्स हैं, उनमें जाएंगे और करेंगे। और जो भी बाहर के यहाँ पे आते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो उनको हम कैसे यहाँ पे स्वागत करेंगे, उनकी सिक्योरिटी हम कैसे देखेंगे, तो ये सब हमें एक्सपीरियंस मिला है।
6: और अब बात अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया है जिसे भेद पाना मुमकिन नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर तक हाईटेक सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। पूरे यात्रा रूट पहलगाम और बालटाल मार्ग पर ट्रिपल लेयर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की करीब 670 कंपनियां यानी 65,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति या आतंकी खतरे से निपटने के लिए संवेदनशील मोर्चों पर विशेष कमांडो और QRTs की तैनाती की गई है। ऑपरेशन हॉकआई के तहत यात्रा मार्ग के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 5 ड्रोन डिटैचमेंट तैनात किए गए हैं। मुख्य ट्रांजिट पॉइंट्स और बेस कैंपों पर 416 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। यात्रा मार्ग की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 28 वॉच टॉवर्स बनाए गए हैं और 22 विशेष रूप से प्रशिक्षित स्नाइपर टीमों को तैनात किया गया है। 30 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त के दिन संपन्न होगी। कुल 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा के साथ साथ मुकम्मल सुविधा की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: उत्तराखंड के बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। नई टिहरी से करीब 85 किलोमीटर दूर बालगंगा और धर्मगंगा नदियों के संगम पर बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

0: देवभूमि उत्तराखंड, जहां कणकण में देवताओं का वास है और हर मंदिर का है अपना पौराणिक इतिहास। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में ऐसा ही एक मंदिर है, बूढ़ा केदारनाथ, जिसे उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। नई टिहरी से करीब 85 किलोमीटर दूर बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस जगह का नाम बूढ़ा केदार पड़ गया। महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय आए थे।
1: गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए, बूढ़ा केदारनाथ में वो बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य इस स्थान पर वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए।
0: बूढ़ा केदारनाथ धाम की खासियत ये है कि यहाँ के कपाट सालों भर खुले रहते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान भी हजारों यात्री और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
2: क्योंकि बूढ़ा केदार जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इनकी यात्रा 6 महीने के लिए चलती है। 6 महीने के लिए जो है पट बंद हो जाते हैं, लेकिन एक धाम ऐसा है बूढ़ा केदार जहाँ पे जो है 12 महीने यात्रा चलती है। यहाँ पे न तो शीत का न बरसात का कोई असर नहीं होता, यहाँ 12 महीने बूढ़ा केदार की यात्रा जो है चलती है और 12 महीने यहाँ पे यात्री आते हैं।
0: बूढ़ा केदार क्षेत्र के ज्यादातर लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करते। उनका मानना है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बूढ़ा केदार में भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
3: देहरादून से आए हैं और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते हैं।
0: इस इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक मान्यताओं और अनूठी धार्मिक परंपराओं से समृद्ध बूढ़ा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चार धाम यात्रा के करीब 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। चारों धामों में अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है।
0: देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। करीब 2 महीने बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। कठिन रास्तों और बदलते मौसम की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे हैं। चारों धामों में अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 13,04,095, बद्रीनाथ धाम में 12,52,575, गंगोत्री में 6,41,083 और यमुनोत्री में 6,03,107 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब में भी अब तक 1,27,339 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। हालांकि चारधाम यात्रा में अब मौसम की दखलंदाजी भी बढ़ने लगी है। लगातार बारिश और खराब मौसम ने तीर्थयात्रियों की रफ्तार धीमी कर दी है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह में कोई कमी नहीं है। चारधाम यात्रा केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और आत्मिक शांति का भी प्रतीक है और यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनते हैं और अपने जीवन के यादगार अनुभवों में इसे शामिल करते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको बता दें कि राजस्थान में सीकर के पास बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में विशाल मेला चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: Some wines are made for special occasions. Vara Winery and Distillery believes you shouldn't have to wait for one. Crafting award-winning American sparkling wine in the high desert of New Mexico, Vara offers a collection worth exploring. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Each bottle made to elevate the everyday. At Vara, we make seriously great wines for everyone and every occasion. We believe that drinking wine is enjoyable and that discussing wine should be fun, not intimidating. Discover Vara at VaraWines.com.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबर

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
3: चलिए लंच टाइम में अब आपको बता देते हैं, राजस्थान में सीकर के पास बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में विशाल मेला चल रहा है। इस बीच खाटू श्याम जी के मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ लगी हुई है, बड़ी सौगात में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं।
4: और देखिए, हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। लंबे समय से उठ रही मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नए रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दी है। स्टेशन बनने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में कम वक्त लगेगा और सफर भी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगा।
3: इसके बारे में और जानकारी दी हमारे संवाददाता रिदम जैन ने। देखिए,
5: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सभी भक्तों को मिलेगी, क्योंकि यहां से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहां 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहां से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
6: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है, और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी, उससे किसानों की जो जमीन बेस कीमती होती है, किसान के लिए जमीन सबसे बड़ी माँ के बराबर होती है, वो उसकी जमीन जाती है तो एक तरह से एक बेटा मर जाए या कोई उस टाइप का ये होता है कि अपने तो जमीन दुख वाली बात होती है, तो जमीन काश्तकार के लिए माँ के बराबर होती है, वो एकदम उसको जी से चाहता है, उसकी रोजी रोटी होती है, तो उसके किसानों की नुकसान भी नहीं होगा और ये बहुत ही सुविधाजनक रहेगा।
5: तो आपके हाथ में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
6: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं। अच्छा। तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम, उसको बड़ा बनवाकर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री, रिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसी इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा एक्चुअली।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
4: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

0: Everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: Achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
4: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
13: बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी, साल 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। अम्बुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से किया नैवेद्य अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी विकास की सौगात, 456 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मीम्मा ने की स्वदेश वापसी, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती है बचा हुआ वक्त, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया की पूरी। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पे कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। जूनागढ़ में दिखा रोमांचक नजारा, सड़क पर एक साथ नजर आए 9 शेर, लोगों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
13: अंबुबाची मेले के बाद कामाख्या मंदिर के खुले कपाट, सुबह नैवृत्य अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद खुले कपाट। 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवक्ति अनुष्ठान के साथ मेले की हुई थी शुरुआत। नियमित पूजा पाठ के बाद मां कामाख्या दर्शन आशीर्वाद। मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र किया प्राप्त, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। शक्ति उपासना से जुड़ा है अंबुबाची मेला। शक्ति परंपरा में प्रजनन क्षमता, सृजन और नारित्व का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है महोत्सव। कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से है। एक तांत्रिक परंपरा के अनुयायियों और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, अंबुबाची मेला देवी के राजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी। पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी। अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 475 कैमरों से होगी रथ यात्रा की निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा के लिए 7,000 जवानों की हुई तैनाती। 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आने की संभावना। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा। एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा, बेस कैंप जाकर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में संत समाज का आगमन शुरू। बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंजा शहर का ऐतिहासिक राम मंदिर। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल। यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 650 कंपनियां। सीकर में 2 दिवसीय खाटू श्याम मेले का आज दूसरा दिन। सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया अलौकिक श्रृंगार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार। भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय। पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ अधिक आया दान। अब तक सबसे ज्यादा लड्डू प्रसादी की बिक्री में 65 करोड़ रुपए की आय। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया जलाभिषेक। दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से किया गया पूजा।

0: उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा अर्चना। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। सहारनपुर के 7 साल के ननी चैंपियन का कमाल, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। गांव नागल लौटने पर अनुषी सिरोही का जोरदार स्वागत हुआ, क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है अनुषी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड, सहारनपुर के गांव नगला में खुशी का माहौल। पिता अनुज कुमार की प्रेरणा से स्केटिंग की थी शुरुआत, खेल खेल में शुरू हुआ उनका ये सफर, नेपाल में गोल्ड जीतकर लहराया प्रतिभा का परचम। गोल्ड जीतने के बाद एशियाई खेलों की तैयारी में जुटी अनुषी, 2 साल बाद होने हैं एशियाई गेम्स। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरलम के मोहम्मद अफसल ने जीता स्वर्ण पदक, महिला में 200 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र के हरिता भद्रा ने जीता गोल्ड। चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में ओडिशा के अनिमेश कुजर ने जीता गोल्ड, महिला में मनप्रीत कौर ने किया कमाल। खैरागढ़ में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची बिजली, चमक उठा खैरागढ़ का गांव। गांव में बिजली पहुंचने पर गांव के लोगों में खुशी की लहर, कहा खेती करने में बहुत आसानी होगी। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने की पूजा अर्चना, भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का लिया आनंद। वडोदरा में शाला प्रवेश उत्सव 2026 का आयोजन, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने बच्चों को किया सम्मानित। उद्धम सिंह नगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के साथ मिलकर की धान रोपाई, कृषि के बारे में छात्रों को किया जागरूक। केरलम के पलक्कड़ के युवक ने नशा के खिलाफ शुरू की अनोखी यात्रा, पलक्कड़ से कश्मीर तक उल्टी दिशा में लगा रहा है दौड़। चेन्नई में स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत, सीएम विजय ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन रैली का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। तमिलनाडु में नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया इसमें हिस्सा। त्रिची में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में दौड़े युवक। कोहिमा में नागालैंड पुलिस ने एक दौड़ एक आवाज नशा मुक्त नागालैंड थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ का किया आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया इसमें हिस्सा। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। चौरानवे साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मीमा ने की स्वदेश वापसी, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती हैं बचा हुआ वक्त, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया की पूरी। दिल्ली में केंद्र मंत्री अमित शाह ने एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक और विजन डॉक्यूमेंट किया लॉन्च। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 456 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। केरलम के थुवुर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी उसमें शामिल। पश्चिम एशिया संकट थमते ही सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर दी बड़ी राहत, कमर्शियल पैक सिलेंडर से हटी पाबंदी, होटल रेस्टोरेंट्स के लिए अब पहले की तरह उपलब्ध होगी गैस। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई सामने, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर घर वापसी के लिए मध्य रेलवे चला रहा 5 अतिरिक्त ट्रेनें, भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर रेलवे ने लिया है ये फैसला। प्रयागराज में खेलों को बढ़ावा देने की अनोखी पहल, बच्चियों में क्रिकेट के प्रति रुचि जगाने के लिए खोली गई खास क्रिकेट अकेडमी। अकेडमी में रोजाना प्रैक्टिस के लिए आती हैं 42 से अधिक लड़कियां, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग की दी जाती है इन्हें ट्रेनिंग। कई टूर्नामेंट खेल चुके हैं इस अकेडमी से निकली महिला खिलाड़ी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल चुके हैं कई लड़कियां, कई लड़कियों ने राज्य और कुछ ने राष्ट्रीय टीम तक का सफर किया है पूरा। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2026 का आयोजन, 25 से अधिक देशों ने लिया है इसमें हिस्सा, 300 से ज्यादा अत्याधुनिक तकनीकों का हो रहा है प्रदर्शन। पुलिस एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा में रही भारत की पहली स्वदेशी स्नाइपर राइफल टाइटो, शहरी इलाकों और क्लोज क्वार्टर ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है यह राइफल। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस पेट्रोलिंग व्हीकल इंद्रजाल भी किया गया शोकेस, जिसके जरिए दुश्मन को मार गिराने के अलावा अपने कंट्रोल में भी लिया जा सकेगा दुश्मन का ड्रोन। डीआरडीओ सीआरपीएफ द्वारा विकसित रक्षिता मोटरबाइक एम्बुलेंस की भी की गई नुमाइश, जो कठिन इलाकों में तेजी से राहत पहुंचाने में साबित होगा मददगार। रेस्क्यू विद इंटरसेप्टर नाम का ये खास गाड़ी हाईवे एक्सप्रेस वे पर इंटरसेप्टर के साथ रेस्क्यू वाहन का भी करेगा काम, एक्सीडेंट में गाड़ी से घायलों को बाहर निकालने में होगा मददगार। पंजाब में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, घर घर जाकर बीएलओ भर रहे फॉर्म। 24 जुलाई तक जारी रहेगी ये प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी करेगी बीएलओ, हर घर में कम से कम 3 बार होगी रिविजिट। मोबाइल फोन में वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर स्वयं भी भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, निर्धारित समय के अंदर काम पूरे होने की उम्मीद। जूनागढ़ के मेंदरडा सासड़ रोड पर निकला शेरों का कुनबा, एक साथ दिखाई दिए 9 शेर। सुबह के वक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण बेखौफ दिखे शेर, मोबाइल में कैद हुई तस्वीर। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे में दिल्ली से बिहार झारखंड तक बारिश के आसार। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। इस अभ्यास में बारिश और बाढ़ के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियों को परखा गया, जवानों ने तालमेल को भी परखा। चमोली में बारिश से भूस्खलन, पहाड़ से आया मलबा, बचाव कार्य जारी। कई मकानों में घुसा मलबा, कई वाहन मलबे में दबे, राहत और बचाव कार्य जारी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामे का डबल डोज। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to FinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: भी में पक रही होती है खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
11: गुड न्यूज टुडे
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
2: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more, tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray, now available for free on Pluto TV. Stream now. Hey, never.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आई सामने। खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी, साल 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। अंबुबाची मेले के बाद आज खोले गए कामाख्या मंदिर के कपाट, पुरोहितों ने विधि विधान से किया निवृत्ति अनुष्ठान, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी विकास की सौगात, 456 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। चौरानवे साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मीमा ने की स्वदेश वापसी, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती है बचा हुआ वक्त, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया की पूरी। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पे कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। जूनागढ़ में दिखा रोमांचक नजारा, सड़क पर एक साथ नजर आए 9 शेर, लोगों ने मोबाइल में कैद की तस्वीरें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और पेटिया का ये फ्रेश एपिसोड, जहां हम शेयर करेंगे आज आपके साथ कुछ स्किन केयर टिप्स, यस एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज के साथ साथ। अब देखिए मेकअप तो है हमारी ग्रूमिंग का अहम हिस्सा, लेकिन जितना जरूरी मेकअप लगाना है उतना ही जरूरी उसे रिमूव करना भी है, अदरवाइज आपकी स्किन कैसे ब्रीद आउट कर पाएगी, हो जाएंगे आपको ब्रेकआउट्स। देखा हमें है आपका कितना ख्याल, उसी तरह हमारा शो सास बहू और बेटिया रखता है आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
12: रोलर दे,
7: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, शिव के लिए फूट फूट कर रोएगी शालिनी, शालिनी पर लगेंगे इल्जाम। सास और बहू यानी चंद्रिका और वसुधा कराएंगी अपना फोटोशूट। ईशा की आईपीएस की ट्रेनिंग, सूरज को आएगी ईशा की याद। गुरु खेलेगा नया खेल, शुरू होगा नया तमाशा। शुरू होगी ईशान और नोयनिका के बीच तू तू मैं।

0: होगी निया, राधिका को होगी चिंता। नीलम गिरी कराएंगी अपना फोटो शूट और जगधात्री यानी कि सोनाक्षी का देखेंगे मेकओवर। जानेंगे कैसा है उनका सगाई वाला लुक सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: ईशा देखिए, अब ये मेकअप वाइप्स तो कर देते हैं हमारी स्किन से मेकअप का सफाया। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से भी हो जाए हर प्रॉब्लम का सफाया, आपके चेहरे पर बस हो एक प्यारी सी मुस्कुराहट और आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां। क्या सूरज हमारी ये बात सुन रहे हैं? क्योंकि सूरज भी है इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सूरज और ईशा के पास उनके शो पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
0: ईशा की IPS बनने की कोशिश, हुई ट्रेनिंग, सूरज को सताए ईशा की याद, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा ने ठान लिया है कि वो IPS ऑफिसर बनकर ही रहेगी, जिसके लिए वो पहुंच गई है ट्रेनिंग करने। भाई IPS के लिए खास ट्रेनिंग होती है और ईशा अपनी जी जान लगा रही है इस ट्रेनिंग को पूरा करने में। हालांकि उसके आगे कई मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन ईशा तैयार है हर मुश्किल को पार करने के लिए। ऐसे में यहां पर गर्ल्स वर्सेस बॉयज का टास्क हो रहा है, जहां ये बड़ा सा टायर रोल करते करते आगे तक पहुंचाना है। ऐसे में ईशा के पैर में चोट भी लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और पूरी कोशिश करती है ये टास्क कम्प्लीट करने की। लेकिन अफसोस, ईशा इसमें हार जाती है।

एक एक कर बाकी के लोग भी ये सारे टास्क करते हैं और सबके बाद ईशा के साथ एक और लड़की है और यही दोनों हारती है। ऐसे में कोच सर देते हैं इन्हें पनिशमेंट। भाई ईशा को काफी दुख हो रहा है, ये टास्क हार गई है। खैर ये तो बस शुरुआत है, लेकिन आगे आगे ईशा अपनी हिम्मत से ये ट्रेनिंग कंप्लीट जरूर करेगी।

0: भाई ईशा इन दिनों काफी बिजी है ट्रेनिंग में, ऐसे में वो सूरज से मिल भी नहीं पा रही। तभी तो देखिए कैसे सूरज ख्यालों में ही उससे बातें कर रहे हैं और अपने दिल की बातें ईशा से कह रहे हैं।
1: आपने ना सबको बिगाड़ दिया ईशा जी, खास करके मिश्रा जी, एक काम ढंग से नहीं होती। और आपको पता है आज मैं खुद उनके साथ ऑफिस में बैठ के सारी फाइल्स लगवाई। गुस्सा कैसे नहीं आएगा ईशा जी, गुस्सा आ रहा है मुझे कि बहुत याद आ। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ना कि ईशा जी और मैंने ये डील की थी कि जब भी हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो 9 से 10 बात किया करेंगे। तो बस जो दिल में आ रहा है मेरे, मैं आपको बोले जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चाहता हूँ सिर्फ संडे को ही बात हो सकेगी। ट्रेनिंग के अपने कुछ रूल्स कायदे कानून होते हैं। अब जाइए, आप भी जल्दी से छुप जाइए, तभी तो कल आप जल्दी से आएंगे और मैं अपनी ईशा जी से बात कर पाऊंगा।
0: ईशा जहाँ ट्रेनिंग में बिजी है तो वहीं दूसरी तरफ सूरज भी हो गया है परेशान, क्योंकि ऑफिस में उसे पता चला है कि कुछ स्कैम हुआ है जिसमें मंत्री जी भी शामिल है और अब सूरज को ये केस सुलझाना है।
1: मिश्रा जी, पता लगाइए इतना बड़ा स्कैम आखिर हुआ कैसे।
0: तो भाई इस केस को सॉल्व करते हुए सूरज को क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी ये तो वक्त ही बताएगा, जो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट,
2: रूहानी जरा संभल कर। अगर आप कर रहे हैं किसी क्लेंजिंग वाइप का इस्तेमाल अपनी आंखों के मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो प्लीज़ बी जेंटल और याद रखिए प्रोडक्ट गलती से आपकी आंखों में ना जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो आपकी आंखों में आएंगे आंसू और हमें आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपके सुंदर से चेहरे पर बनी रहे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। क्यों गुरु, मैं ठीक कह रही हूँ ना? लेकिन हो सकता है ये नया ट्विस्ट लेकर आए इनकी आंखों में फिर से आंसू। ओ माई गॉड, ऐसा क्या हो रहा है कहानी में? आज लेकर चलते हैं आप सबको इस चुनूनी के सेट पर।
0: जमाई बना गुरु, रूहानी और गुरु में तशन हुआ शुरू। रूहानी के मायके में होगी सौतन की मेहमान नवाजी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु के इश्क का जुनून हद पार हो गया है, तभी तो आज सरकारी अफसर को लेकर वो पहुंच गया है अपने ही ससुराल यानी कि रूहानी के मायके करने रूहानी के ऊपर केस। ऐसे में रूहानी लीगल अफसर को देखकर हैरान है। इतना ही नहीं, जैसे ही लीगल अफसर ये बताती है कि गुरु ने रिश्ते की पुनर्स्थापना का केस दायर किया है, बस फिर क्या, ये सुनते ही न सिर्फ रूहानी बल्कि रूहानी के भाई को भी आ जाता है गुस्सा, क्योंकि गुरु तो इस इरादे से आया है कि वो रूहानी के साथ तब तक रहेगा जब तक रूहानी और उसका तलाक नहीं हो जाता।
3: क्यों आ जाते बार-बार, पीछा छोड़ क्यों नहीं देते इसका?
4: अरे साले साहब, रिश्ता जुड़ा है ना,
3: ऐसे कैसे पीछा छोड़ दो? ये ना पति पत्नी के बीच का मामला है, हम बात कर रहे हैं।
4: 100 बात की 1 बात, जब तक ये अंग्रेजी मैडम हमारे साथ है ना, तब तक आप में से कोई भी हमें हमारी पत्नी से दूर नहीं कर सकता। रही बात जबरदस्ती की, वो तो ना हमारे खून में और ना ही हमारे उसूल में।
5: अगर कंपाउंडर अपने ससुराल में नहीं जाना चाहते तो ठीक है,
4: हम अपने ससुराल में घर जमाई बनने के लिए तैयार हैं।
5: जब तक तलाक नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे।
6: हाँ बीच में तो सब ठीक हो गया था हम दोनों के बीच, बट अब गुरु वापस अपनी उस भौकाल वाली औरा में आ गया है, तो अब वापस वैसे ही होना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि रूहानी के सपोर्ट, रूहानी का सपोर्ट भी करना ज़रूरी है। तो अब गुरु ये सोच के आया कि मैं यहीं रुकूंगा जब तक रूहानी नहीं चलती मेरे साथ, तो आगे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि और भी लोग आएंगे, देखते हैं आगे क्या, आपको देख के पता चलेगा।
7: हाँ मतलब उनका जो डिवोर्स चल रहा है वो सब लीगल प्रोसीजर है ना, तो वो लीगल प्रोसीजर के तहत वो रूहानी को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, इसलिए।
0: भाई गुरु की ये जिद देखकर तो रूहानी की बहन बहुत खुश है, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि रूहानी और गुरु का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, लेकिन अब गुरु इस घर में दामाद बनकर रह रहे हैं, तो ऐसे में दामाद की खातिरदारी तो करनी ही होगी। जरा देखिए कैसे रूहानी की माँ गुरु के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ परोस रही है, और गुरु चटकारे लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोटी पर रोटी खाए जा रहे हैं, और तो और तारीफ के गुण भी गा रहे हैं। इसी बात पर रूहानी को आ रहा है गुस्सा भी।
8: सोचने के लिए मेरे घर वाले, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
5: तुम से तुम्हारे घर वाले सवा से बेटा काम आप ही की पसंद थी ना भैया जी। हम ना होते ना अमरीका ले जाकर छोड़ देता तुम्हें वहां।
7: गुरु हमारे घर आया है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हमें देगा ही, उसका काम ही है, वो बाहुबली है इसलिए। तो एक्चुअली रूहानी और गुरु के लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो गुरु ऊपर से दिखा रहा है कि मुझे कुछ पड़ी नहीं है रूहानी की, लेकिन असल में पड़ी है, तो वो रूहानी से दूर नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो कुछ ना कुछ करके उसके पास रहने की कोशिश कर रहा है, और यही सब वो कर रहा है।
0: रूहानी और गुरु के बीच टशनेबाजी चल ही रही थी कि तभी बब्बन और सिकंदर भी पहुंच गए सूटकेस लेकर। ऐसे में सूटकेस देखकर गुरु हैरान है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये किसका सामान है, कि तभी वहां पर आ जाती है तेजू, जो इस घर में रहकर करवाना चाहती है अपनी मेहमान नवाजी।
5: ये अजीब सा रंग का बैग किसका है?
8: मेरा।

0: समझे कि तुम कानून का सहारा लेकर रूहानी के घर उसके घर आए
1: तो मैं भी तुम्हारे होने वाली पत्नी के अधिकारियों को चले
0: अपने होने वाले पति के साथ जहां वो
2: हाँ तो रहो किसने रोका तुम
1: हो क्या रहा हमारे घर में
3: अरे कुछ नहीं हो रहा सासू हम तो अपने ही ये एक मेहमान है
4: और सासू वो कहा नाम थोड़े थम गए बता दीजिए कौन कहाँ सोएगा तो
3: जाए
5: तो क्योंकि जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है बिकॉज हमें चाहिए था कि गुरु और रूहानी का डिवोर्स हो जाए एंड जो भी खुलासा हुआ था अभी बीच में उसकी वजह से रूहानी अपने घर चली जाती है एंड देन उसके बाद ऐसा होता है कि गुरु को भी एक काइंड ऑफ जेलिसी उस चीज से प्रॉब्लम होती है कि रूहानी उनके साइड देख भी नहीं रही है सो वो भी उनके पीछे पीछे उनके घर चले जाते हैं एंड फिर तेजस्वी को भी मन करता है कि वो अपने होने वाले पति के साथ उसके पीछे पीछे जहां गुरु जाएगा वहां तेजस्वी भी चली जाएगी
6: भाई गुरु क्या कम था कि तेजू भी पहुंच गई रूहानी को टशन दिखाने के लिए खैर अब रूहानी ने भी फैसला कर लिया है और उसका ये फैसला देखकर रूहानी का भाई भी हैरान है क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर उसने अपनी बहन की शादी का इश्तेहार न्यूज़पेपर में जो देख लिया है और ये इश्तेहार किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूहानी ने छपवाया है यानी गुरु और तेजू की शादी के साथ साथ अब रूहानी भी अपनी शादी रचाएगी वो भी अपने लिए खुद दूल्हा ढूंढ कर तो देखना होगा कि नए दूल्हे की तलाश में और कितने ट्विस्ट आएंगे मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट
7: मन्नत आज तो हम क्लेंजिंग वाइप्स और मेकअप रिमूवर्स के आसपास ही कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें क्या आपके पास भी है हमारे लिए कोई इंटरेस्टिंग मेकअप रिमूवल टिप मन्नत तो हमसे कह रही हैं कि वो बेबी ऑयल का ही करती हैं इस्तेमाल बेबी ऑयल को एक अच्छी क्वांटिटी में अपने हाथों पर ले लेती हैं फिर उसे अच्छे से अपने हथेली पर रब करती हैं और अपनी स्किन की अच्छे से मसाज करती हैं वो तो कह रही हैं कि इससे वाटरप्रूफ मेकअप भी अच्छे से रिमूव हो जाता है स्पेशली वाटरप्रूफ मस्कारा और बस उसके बाद अपनी फेस को अच्छे से धो लेती हैं टोनिंग करती हैं मॉइस्चराइज करती हैं और हो जाती हैं एब्सोल्युटली फ्रेश एंड रेडी वैसे मन्नत ये तो है एक बहुत ही अमेजिंग टिप क्योंकि ये जो वाटरप्रूफ मेकअप है ना स्पेशली मस्कारा इसको रिमूव करना एक बहुत बड़ा टास्क है एंड ऑयल कर देता है एक आम मिनटों में और हमारी स्किन पर भी जेंटल रहता है तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या इनकी कहानी में है सब कुछ जेंटल या फिर से आया है यहाँ पर कोई हॉट एंड हैपनिंग ट्विस्ट
6: पूरी हुई दुआ की मन्नत मन्नत के सामने आया विक्रांत कलर्स के सीरियल मन्नत में जल्द ही विक्रांत और मन्नत आमने सामने आने वाले हैं क्योंकि विक्रांत मुंबई में जो आ गया है और उन्हें एक दूसरे के सामने लाएगी दुआ देख लीजिए ये प्रोमो
8: मुझे पता था विक्रांत जिंदा है
6: भाई ये तो आने वाला ट्विस्ट है फिलहाल तो अभिमन्यु अपने पूरे नए परिवार के साथ पहुंच गया है मुंबई वो भी मेजबानी के बाहर करने एक इवेंट को अटेंड इस बात से अनजान कि ये मेजबानी उसकी खुद की है
9: हम लोग पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरी जो दी है सम्रागी दी उनकी एक बिजनेस मीटिंग थी और कोइंसिडेंटली हम वहीं पर आए हैं जो कभी विक्रांत का होटल हुआ करता था तो हमें ये बात नहीं पता है इसलिए हम वहाँ बस एक एग्जीबिशन टाइप है कुछ बिजनेस मीटिंग है डील है वही करने आए
6: यहाँ अभिमन्यु नई जगह पर आकर ढलने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ सम्रागी अपने खेल खेल रही है इसी बीच युवराज और बंटी भागते हुए आते हैं और अचानक युवराज जा टकराता है सम्रागी से ऐसे में सम्रागी की नज़र युवराज पर पड़ जाती है और वो तो बस यही सोचती है कि कैसे मौका पाकर वो इसका किडनैप करे क्योंकि वो तो बच्चों की तस्करी का काम करती है यानी सम्रागी की नज़र युवराज पर तो होगी ही लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती युवराज का बुलावा आ जाता है जिसके चलते युवराज और बंटी आनंद फानन में वहाँ से भाग जाते हैं और उनकी नज़र अभिमन्यु यानी कि विक्रांत पर पड़ ही नहीं पाती
9: विक्रांत को कनेक्शन महसूस होगा और दुआ देख लेगी. मन्नत को 99% बिलीव हो जाएगा कि ये ही विक्रांत, वो देख नहीं पाएगी, हिट एंड मिस होगा, पर उसे भरोसा हो जाएगी कि ये ही है अभिमन्यु, मेरा विक्रांत है, तो उसको फॉलो करेगी आगे. हाँ, लेकिन मान्यता को भी पता नहीं है ना कि मन्नत उसकी पास्ट वाइफ है या ऐसा कुछ है. तो मान्यता तो अभी खुश है कि मुंबई घूमने आए हैं, उसकी अपनी एक लिस्ट है, वो कहाँ से शॉपिंग करेगी, क्या कुछ खाएगी, तो उसी में बिजी है. और विक्रांत उसे काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा है, जैसे कि जब वो हम अमृतसर में थे तो वो उसे काफ़ी कट रहा था. लेकिन अभी उसे ऐसा कुछ उम्मीद है कि शायद अभी कुछ अच्छे मोमेंट्स आने वाले हैं मुंबई में, तो वो तो खुश है अपने में.
6: खैर, विक्रांत ने तो बंटी और युवराज दोनों को देख लिया है, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं है. वहीं दूसरी ओर अंकित भी सम्रागी के पास आकर अपने प्लान को कामयाब करने की पूरी फिराक में है. अब देखना होगा क्या इन्हीं बच्चों के जरिए मन्नत और विक्रांत आमने सामने आएंगे. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
7: हमारी राध्या तो आज हमसे कह रही हैं कि काश एक ऐसा क्लेंजिंग वाइप होता जो लोगों के दिमाग में षड्यंत्र चल रहे हैं ना, जो वो नए नए जाल बिछाने वाले हैं ना, उनका कर देता सफाया. वैसे काश. लेकिन देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या फिर नए नए जाल बिछाते हैं, अल्टीमेटली उनके कर्म उनके सामने आ ही जाते हैं और उन्हें उनकी सजा मिल ही जाती है. तो लेट कर्मा टेक देयर ओन टाइम. फिलहाल लेकर चलते हैं हम आपको राध्या के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज. वेल, आई एम श्योर इनकी कहानी में फिर से आ रहा होगा कोई ना कोई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जो लेकर आ रहा होगा हमारे लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट. लेकर चलते हैं आप सबको मन्नत ही सुंदर के सेट पर.
6: प्रथम राध्या का एक चुटकी सिंदूर. जुड़ा प्रथम और राध्या का किस्मत कनेक्शन.

करवालों का फूटा गुस्सा। दंगल टीवी के सीरियल मनती सुंदर में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर प्रथम के साथ सभी घरवाले इस मंदिर में पहुंचे हैं। असल में घरवाले तो प्रथम की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैसे प्रथम राध्या का हाथ थामे हुए है, क्योंकि राध्या कोशिश कर रही है कि प्रथम को सब कुछ याद आ जाए।

0: लगता है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए कैसे। प्रथम राध्या की बातों में खो गया। राध्या उसे मंदिर ले आई है और यहाँ पर प्रथम ने राध्या की मांग में सिंदूर भर दिया। ऐसे हो गई इन दोनों की शादी। लेकिन तभी वहाँ घर वाले पहुँच जाते हैं और प्रथम के पापा उस पर भड़क रहे हैं। प्रथम को सब याद आ गया है लेकिन घर वालों को नहीं। तो भाई प्रथम और राध्या अब क्या करेंगे ये देखना होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: जिस तरह ये मेकअप वाइप्स करते हैं हमारी स्किन से मेकअप का सफाया, उसी तरह ये कहानी करती है हमारी बोरियत का सफाया। कितने लंबे टाइम से ये कहानी हमें एंटरटेन करती आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगली जनरेशन भी देखेंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है का कोई ना कोई सीजन, है ना? तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको अरमान और अभीरा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। गेट सेट गो।

0: प्लीज वो तार हाउस चले आओ।
1: विद्या माधव और दादी सा की माफी।
0: इसलिए गुजारिश कर रहे हैं, हम पे तरस खा के सही घर वापिस आ जाओ।
2: हाउ मे आई हेल्प यू सर?
3: मुझे कमरा चाहिए।
4: मान तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ।
1: अफीरा को लगा जोरदार झटका।
0: आई थिंक मुझे उस कोने की लोकेशन का आइडिया है। मुझे पता है पापा का है।
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान अभीरा और मुक्ति मायरा चारों का अंदाज बदला बदला सा है। चारों ही डिस्को अंदाज में नजर आ रहे हैं और तो और चारों के अंदर मस्ती का खुमार छाया है। जरा देखिए कैसे मायरा, मुक्ति और अभीरा तीनों टेबल के ऊपर कूद ही रही थी कि उन्हें देखकर अरमान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और देखिए कैसे अपने परिवार से वो भी मस्ती के

0: इसका
1: मेरा चश्मा भी टूट गया।
0: मुझे तो
2: वैसे मजा तो बहुत आया।
0: मजा आया तो मुझे मजे की फीस चाहिए।
3: भाई अरमान अभीरा तो इन खुशियों के पल को यादों में संजोना चाहते हैं, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वक्त प्यार से ही बिता रहे हैं। और उनकी इस प्यार की दुनिया में उनकी दोनों बेटियां भी शामिल हैं। खैर अरमान अभीरा एक भी मौका नहीं छोड़ रहे सभी लम्हों को संजोने के। ऐसे में देखिए जब अभीरा अरमान को दवाई खाने के लिए कहती है तो अरमान अभीरा को गुमराह करते हैं और दवाई खाने के बजाय छिपा देते हैं, यानी वो अपनी मेडिकेशन का ख्याल नहीं रख रहे। लेकिन अभीरा उसे पूरी उम्मीद है कि उसका अरमान ठीक हो जाएगा। ऐसे में अभीरा तो अरमान पर अपना प्यार जता ही रही है, अरमान भी अपनी अभीरा के प्यार में

0: कहने को तो मैं तेरा और अरमान का बाप हूँ, मगर
1: बिल्कुल सही कहा अभिना ने, क्योंकि उसका अगला दिन वाकई खास हो गया है। अरमान, विद्या और माधव दोनों हाथ जोड़कर पहुंच गए हैं अभिरा के घर में उससे माफ़ी मांगने। ऐसे में अभिरा ने अपने सास ससुर दोनों को ही अपने गले लगा लिया। इसी बीच वहां पर टॉफियां लेकर पहुंच जाती हैं दादी साहब भी, जो अभिरा से और अरमान से दोनों से ही माफ़ी मांगना चाहती हैं।
0: तब पता चला। सॉरी बेटा, जब तुम लोगों को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी, हम लोग थे ही नहीं।
2: सॉरी अभिरा। अच्छा, प्लीज ये हाथ जोड़ना और सॉरी बोलना बंद करते हैं। समझ और संस्कार दोनों में तुम हमसे बहुत आगे निकल पड़ी हो, उम्र में हमसे छोटी हो, वरना हर लिहाज में तुम हमसे बहुत बड़ी हो चुकी हो। और बड़े तो छोटों को माफ कर ही देते हैं।

0: पोतियों को भी घर से बाहर निकाल दिया।
1: माँ, माँ, प्लीज बस कीजिए, हमें जाना है।
2: कहाँ? तू पोता रहा हो जाएगी? अभीरा, तूने इतनी आसानी से सबको माफ कर दिया?
1: नहीं माँ, पोदार हाउस नहीं।
3: तो फिर?
1: अच्छा आप लोग प्लीज, आप लोग प्लीज बैठिए, आइए बैठिए। जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सुनना आसान नहीं होगा।
4: क्या बात है लड़की?
5: इससे पहले कि अभीरा घर वालों को अरमान का सच बताती, मायरा और मुक्ति रोते हुए वहाँ पर आ जाती हैं और बताती हैं कि अरमान घर छोड़कर चले गए हैं। बस फिर क्या, अभीरा को गुस्सा आ गया है, वो भी अरमान पर। देखना होगा कि कैसे अभीरा अपने अरमान को ढूंढेगी और उसका इलाज कराएगी।
1: हर प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है ना, अभीरा को अकेला छोड़ दो।
6: वेलकम सर, हाउ मे आई हेल्प यू सर?
3: मुझे कमरा चाहिए।
1: मान, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ,
0: मुझे उस कोने की लोकेशन का आइडिया है।
5: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: मुझे पता है पापा का है।
7: बस आज तो डिसाइड कर लिया है मैंने, आज तो मैं इन मेकअप वाइप्स के साथ ही करवाऊंगी फोटोशूट। बताइए क्यों? ताकि आप सब जब मेरी वो पिक्चर्स देखें ना, तो आपको याद रहे कि मेकअप को रिमूव करना ही है, मेकअप रिमूव के बिना कभी सोना नहीं है, ताकि आपकी स्किन बचे ब्रेकआउट के ट्विस्ट से। फिलहाल लेकर चलते हैं हम आपको इस इंटरेस्टिंग फोटोशूट पर, जहां आपका फेवरेट सितारा भी है। फोटोशूट रेडी, गेट सेट गो।
8: एक कोने में तो बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी अक।
9: मिलिए नीलम गिरी 2.0 से, पहचाना इन्हें बिग बॉस 19 में नीलम का भोलापन हमने देखा। यूं तो ये भोजपुरी फिल्मों से हिंदी शोज की दुनिया में आई हैं, लेकिन है ग्लैमर की रानी। और आज सास बहू और बेटियां में देख लीजिए नीलम गिरी का एक बेहद ग्लैमरस अंदाज, फिर चाहे वो साड़ी में हो, वाइट ड्रेस में हो, या फिर हो इस हरियाली वाली बोल्ड ड्रेस में। नीलम अपने हर फॉर्मूला अंदाज को पेश कर रही है इस खास फोटोशूट में। मुंबई में मोडा संग नीलम ने कराया ये खास फोटोशूट, जहां पर कविता कर रही है उनका खास मेकअप, सनी कर रहे हैं उनके हेयर, और उन्होंने पहने हैं देश के अलग अलग डिजाइनर्स के कपड़े।

नीलम का ये फैशन फीचर जहाँ पर वो अपने अंदाज के अलग अलग लुक्स को पेश कर रही है, फिर चाहे वो इंडियन हो या फिर इंडो वेस्टर्न हो। नीलम की ख्वाहिश है कि भोजपुरी फिल्में और बिग बॉस के बाद अब वो किस टीवी सीरियल में काम करे और टीवी सीरियल में वो अलग अलग अंदाज में दिखना चाहती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं नीलम के ये ग्लैमरस रूप। हो रहा है उनका एक खास ड्रामेटिक मेकअप जहाँ पे उनकी आंखों को खास ढंग से सजाया जा रहा है, पर ये लुक काफी बोल्ड और अतरंगा है। और हम पहुंचे पर्दे के पीछे और देखा कि कैसे मेकअप, हेयर के और कॉस्ट्यूम्स के संग नीलम के इस लुक की तैयारी चल रही है।

0: सो कविता इज डूइंग ड्रामेटिक मेकअप. वो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है मेरे साथ. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अवतार का लुक ना दे दे.
1: हम हॉलीवुड लुक देंगे.
0: सो सी इज मेकिंग मी हॉलीवुड लाइक एंजेलिना जोली, राइट?
1: या यूफोरिया लुक. वी क्रिएटिंग यूफोरिया लुक.
0: मैं तो चाहती हूँ कि मैं सीरियल्स करूँ और लेट्स सी अभी क्या होता है. लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी कि मैं सीरियल जरूर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनालिटी सीरियल लाइक है. हसमुख है, जॉली है, बबली है, और मतलब नौटंकी है, तो सारी चीज़ें तो है मेरे पास. तो ऑब्वियसली और आई थिंक सो सारे रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा. मैं कभी कभी जेम्स बॉन्ड भी बन सकती हूँ, और मैं कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, रजनीकांत भी बन सकती हूँ. तो मेरे में सारे टैलेंट है, मैं सब कुछ बन सकती हूँ. मैं पागल भी बन सकती हूँ, मैं अच्छी भी बन सकती हूँ, मैं मेंटल भी बन सकती हूँ, भोली भी बन सकती हूँ, प्यारे भी बन सकती हूँ, रोमांटिक बन सकती हूँ. मतलब आपको क्या चाहिए, आप बस मुझे बोलिएगा कि मुझे ये चाहिए. भोजपुरी मतलब ऑन द टॉप, बिकॉज भोजपुरी के ऐसे ऑडियंस है, एकदम मास ऑडियंस है, जो हमारे गाने को, हमारी फिल्मों को इतना प्यार देते हैं, भर भर के उतना सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मतलब और लगन से काम करते हैं. तो ये तो कभी नहीं छूटने वाला है, भोजपुरी तो नेवर. बहुत प्यार है. सनी इज डूइंग माई हेयर टूडे. सनी सिंह एंड सी इज कविता, सी इज डूइंग माई मेकअप. एंड हमारे प्यारे प्रोड्यूसर जी जो है मोहित कपूर, एंड इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और एक प्यारा सा जो भी आज फोटो शूट हो रहा है इनके वजह से हो रहा है. तो थैंक यू मोहित फॉर
2: कुछ और भी हम करेंगे
0: आते, तो ऐसे बहुत सारे अटपटान चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे और मोहित के साथ. और हाँ, हमारे कैमरामैन सो ही इज डूइंग माई फोटो शूट टूडे. एंड ये बहुत प्यारे फोटोग्राफर है, और बहुत मतलब जो पर्सनालिटी है ना उसको वो कैप्चर कर लेते हैं. और उनकी बगल में भी हमारे फोटोग्राफर्स है, ही इज डूइंग एवरीथिंग. और ये भोजपुरी गाना चलाते हैं, वो देखिए आप, जो टोपी वाले हैं, ये उनको टोपी वाले हैं, और भोजपुरी गाना चलाते हैं. इस बिहार से, एंड आई एम फ्रॉम यूपी, बट जैसा लुक और फील है उसमें हम लोग अभी हिंदी गाना ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं. एंड ही इज माय मैनेजर, ही इज सनी शाह, ही इज माय मैनेजर, एंड शी इज डूइंग, आई थिंक सो शी इज डूइंग द कॉस्ट्यूम.
3: नीलम का लुक है बिल्कुल चांदनी वाला लुक. जी हाँ, बिल्कुल इस वाइट ड्रेस में मोतियों की माला के साथ नीलम ने इस खास लुक के लिए खास मेकअप और हेयर स्टाइल तो की है, साथ साथ उनके ये कॉस्ट्यूम भी अलग है. और उसके बाद नीलम ने खिंचाई है तस्वीरें.

लुक नंबर टू, नीलम का अगला लुक है ये ऑफ शोल्डर ड्रेस लुक, जहां पर सनी ने उनके बालों को अलग ढंग से स्टाइल किया, कविता ने मेकअप थोड़ा बदला और कपिल परमार ने खींचे उनकी कुछ खास अंदाज़।

बिग बॉस 19 के बाद नीलम जल्द ही एक टीवी शो में दिखेंगे। फिलहाल वो इवेंट्स में बिजी हैं और अपनी इस वर्सेटिलिटी के साथ जल्दी ही कुछ नया लेकर आएंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: कितने सारे टाइप के मेकअप रिमूवर्स, कितने सारे मेकअप क्लेंजर्स, कितने सारे वैरायटी ऑफ मेकअप रिमूवल वाइप्स। ओह माय गॉड, बिल्कुल इसी तरह है हमारे शो सास बहू और बेटिया में भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जहां लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगली कहानी, जिसमें कहानी का लेखक लेकर आया है एक नया ट्विस्ट, जो लेकर आ रहा है कहानी में अनलिमिटेड ड्रामा। कैसे? ऐसे।
1: ईशान और नयनिका की लड़ाई। जिद पर अड़ी नयनिका। ईशान की नयनिका को रोकने की कोशिश। प्लस के सीरियल सैराब में नयनिका मुंबई आ गई है और मुंबई में वो ईशान के घर में रह रही है। असल में नयनिका को बड़ी बीमारी हुई है जिसका इलाज करवाने के लिए वो मुंबई आई है। ऐसे में नयनिका ईशान के घर में ही रुकी है, लेकिन यहाँ पर गोलमाल तब हो जाता है जब ईशान की गर्लफ्रेंड ईना उसे खरी खोटी सुनाती है और ऐसे में नयनिका फैसला लेती है घर छोड़कर जाने का। वैसे सही समय पर ईशान यहाँ पहुँच जाता है, जो देखिए नयनिका को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नयनिका अपनी जिद पर अड़ी हुई है।
2: ईना दीदी का फोन आया था, उसने दीदी को बहुत कुछ सुना दिया। अभी इतने अच्छे घर की लड़की है, उसकी बातों को क्यों सुनाइए?
1: कभी नयनिका का रास्ता रोकता ईशान, तो कभी नयनिका का हाथ पकड़ उसे वापस घर के अंदर ले जाता ईशान। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में बहस तो हो रही है, साथ ही साथ इनका लव कनेक्शन भी जुड़ रहा है। भाई भले ही नयनिका ईशान से कितना भी दूर जाना चाहे, लेकिन ईशान उसे रोक ही लेगा और लगता है हुआ भी कुछ ऐसा ही।
2: उसे तुमसे जो भी कहा है तुम्हारी वजह से उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी लाइफ में अनवांटेड है, उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू उस इंसान की, तुम्हारा वैल्यू।

0: नहीं पता चल रही हूँ, कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं सिर्फ दो दिनों के लिए यहाँ पर है।
1: तुम्हारा अपमान से उससे कई गुना ज्यादा मुझे, एंड आई एम सॉरी, मेरे किसी जानने वाले इंसान की वजह से तुम्हें ऐसे फेस करना पड़ा। आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। जब सरकार ने फिर तो नहीं कभी किया है, छोड़ो ऐसा, हमें जाना होगा।
0: तुम वापस जा रहे हो?
2: खैर, ईशान ने नयनिका को रोक भी लिया और साथ ही देखिए कैसे वो वादा भी कर रहा है कि वो नयनिका की पूरी केयर करेगा।
3: ऐसे बैठा दिया मुझे कार में, कम से कम बताओ तो सही कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो।
4: पहले तो मुझे ये बताओ कि इतनी बड़ी बात आखिर कैसे हुआ है सर?
3: क्या
4: तुम इतनी बुरी बीमारी के साथ यहाँ अकेले आई हो? हमारे घर वालों को पता है?
3: नहीं।
4: तुम भले ही मुझे इन्वॉल्व ना करना चाहो, लेकिन भगवान हमारे साथ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई प्रॉमिस तुम्हारी खुशियों में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हारी मुश्किलों में मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। प्रॉमिस करो मुझे।
2: वहीं दूसरी तरफ नयनिका पहुंच गई है एक इवेंट में जहां उन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनकी विल पावर के लिए।
0: मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वॉइस डिसऑर्डर्स के पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर गहरा प्रभाव पड़ता है, आज हम उसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे।
2: भाई नयनिका के लिए ये मुश्किल घड़ी है और इस घड़ी में उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है ईशान। अब देखना होगा कि इस मुश्किल सफर में कैसे इन दोनों की जोड़ी बनती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: लक्ष्मी देखिए, आज तो लेकर आनी हूँ मैं आपके लिए सॉफ्ट कॉटन वाइप्स जो आपकी स्किन पर ना एकदम जेंटल रहेंगे। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी कहानी में भी हो सब कुछ जेंटल, लेकिन क्या करें, कहानी का लेखक लेकर आता है इसमें ऐसे ट्विस्ट कि हम सब भी सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको लक्ष्मी निवास के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कहानी में आज। क्या यहां से आ रही है कोई गुड न्यूज़ या फिर से कहानी में आया है कोई नया ड्रामा?
2: राधिका की टेंशन,
6: मिया को किसी ने किडनैप कर लिया।
2: मिया हुई किडनैप, शादी के शगुन में लगा अपशगुन।

0: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में जल्द ही वीर और राधिका शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और वीर तो दूल्हे राजा बन तैयार हैं राधिका से प्यार रचाने के लिए और राधिका भी तैयार हो रही है, लेकिन राधिका के चेहरे पर टेंशन है। असल में उसे निया की चिंता सता रही है। निया कहीं गायब हो चुकी है और कहीं मिल नहीं रही है। ऐसे में राधिका को हो रहा है शक कि कहीं निया के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, इसीलिए तो देखिए कैसे वो परेशान है। ऐसे में रेवती राधिका को समझाने की कोशिश कर रही है।
1: अभी तक मुझे निया नहीं मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आ गए और मुझसे मिलने ना आए। आप एक काम कीजिए ना, प्लीज जरा भैया को फोन करके उसे यहाँ बुलवा लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान हो रही। अरे बच्ची है, बाकी के बच्चों के साथ खेल रही है। अच्छा तुम्हारी पसंदी के लिए मैं काम करती हूँ, किसी को बोल के निया को बुलवा लेती हूँ अभी के अभी। हाँ अब तुम अपना काम मत करो। देखो मुहूर्त शुरू होने वाला है, अभी ये पूजा खत्म करके फिर फेरों में भी जाना है।
2: मैं सब कर लूंगी, पहले मुझे एक बार निया।
1: हाँ राधिका, मैंने बोला ना मैं बुलवाती हूँ ना। हाँ मैं एक काम करती हूँ, विवेक जी को ही बोलती हूँ, बाकी के बच्चों को भी ले आएंगे, सब साथ में ही तो खेल रहे हैं।
2: तो टेंशन मत लो, शांत रखो अपना, शादी है तुम्हारी।
0: दूसरी तरफ देखिए कैसे वीर भी परेशान हो रहा है। हालांकि वो दूल्हा बन तैयार है शादी रचाने को, लेकिन उसे पता चल चुका है कि निया किडनैप हो चुकी है। ऐसे में वो देखिए कैसे राज को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि वो किडनैपर्स का पीछा करते रहे।
3: देखिए मेन रोड पे मत देखिएगा, जितनी भी गली कूचे सब पे छान मारी। वो किनारा बाजार के बगल वाली गली, वहाँ पे अक्सर लोग रास्ता भूलते हैं। अब वहाँ जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक तरह की बहुत सारी सड़कें। पल पल की खबर दीजिए हमको, हम जल्दी बताइए। कट गया था पर हमको ऐसा लगा कि हमें निया की आवाज आई थी। बताइए हम कहाँ चल रहे हैं, हमको बताइए तो कुछ। अरे कौन है बताइए आप, अब हमका लोकेशन भेजिए, हम अभी आते हैं, छोड़ेंगे नहीं ससुरे को। बताइए कहाँ है, बताइए हमको लोकेशन भेजिए अभी।
4: पता नहीं, निया को किसी ने किडनैप कर लिया।

0: सुनिए राजी, आस पास जितनी भी गलियां हैं अच्छे से खंगारिए, कोई भी मोती, कोई भी सुराग, कोई भी कड़ी मत छोड़िएगा। हम बता रहे हैं आपको, निया हमका अपनी तरफ का रास्ता दिखा रही है, आप बस उसका फॉलो करते रहिए और हमका अपडेट करते रहिए।
1: टेलीविजन में शादी बिना ड्रामा के कभी होती नहीं, और वही ड्रामा चल रहा है। सो बेसिकली अभी निया किडनैप हो गई है, उसी की प्रक्रिया चल रही है। माही ने किडनैप करवाया है, क्योंकि जहाँ तक 1 बजे तक का मुहूर्त है, 1 बजे के बाद शादी होगी नहीं। और हमारी जो दादी है नर्मदा जी और माही, ये दोनों की प्लानिंग है कैसे भी करके अड़चन डाली जाए जिससे ये शादी होना। तो ये इनका शायद से मास्टर प्लान है कि निया को किडनैप करो, ढूंढते ढूंढते मुहूर्त भी निकल जाएगा और शादी नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली परेशान होगा, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, ही ऑल्सो लव्स नियर्स, ही लव्स निया अलॉट। तो निया के साथ उसका एक इमोशनल बॉन्ड है, निया को अपनी बेटी की तरह ही देखता है। यहाँ पे निया किडनैप हो गई, उधर राधिका जी बिल्कुल ट्रॉमा में, उन्हें शादी करनी नहीं, जब तक निया मंडप में नहीं आएगी तब तक वो शादी नहीं करेंगी। तो वीर तो बिल्कुल टेंशन में घूम रहा है कि करें तो करें क्या, मतलब यहाँ से तो बच्ची भी गई और साथ में बच्ची की माँ भी जा रही है।
2: राज और भूमिका भी बाइक पर होकर सवार निया के किडनैपर्स का पीछा कर रहे हैं, और निया भी क्लूज देती जा रही है

0: बेसिकली क्या है कि यहाँ पे निया अभी तक आई नहीं और वीर खुद जाना चाहता है, पर क्योंकि मीडिया बाहर है और आज ये एक नसीहत देते हैं कि अगर आप जाएंगे तो जो किडनैपर्स हैं उनको ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया यहाँ सब कुछ कवर कर रही है कि दूल्हा निकल गया है, मतलब मंडप से उठ गया है दूल्हा और वो ढूंढने निकला है, तो वो निया के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप यहीं रहिए, आपकी जगह मैं और भूमिका जाएंगे। तो राज और भूमिका गए निया को ढूंढने और यहाँ से वीर उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि आप करें क्या, करें क्या ना करें, किस गली में जाएं। और वहाँ पे निया ने कुछ क्लूज छोड़े हैं, अपनी क्लिप्स गिरा दिए हैं और जैसे ही वीर वो क्लिप्स को देखता है वीडियो कॉल में पहचान जाता है कि निया की है, राधिका जी ने उसको दिलाई थी। तो वीर इज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग कि आप जाओ उन क्लूज को फॉलो करो और वो क्लूज आपको निया तक पहुँचा दें।
1: वैसे ये सारा किया धरा माही का है जो नहीं चाहती कि वीर और राधिका की शादी हो, इसलिए उसने निया को किडनैप करवाया है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या वीर, राज और भूमिका मिलकर निया को बचा पाएंगे या फिर शादी पर ब्रेक लग जाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: इन मेकअप रिमूवर वाइप से तो मेकअप का हर ट्रेस हो जाता है आपके फेस से दूर। हाँ रॉकिंग ना, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर का तो डेफिनेटली हो जाएगा ये आपकी स्किन के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसे ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज। तो चलिए दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया की ये अलग अलग खबरें।
3: वेलकम टू दरगा कैपिटल केप टाउन।
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। आ गया है खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन का प्रोमो, जहां आप सबके चहेते सितारे खतरों से खेलेंगे।
3: यहाँ जान की बाजी तो हमेशा लगती है, लेकिन इस बार बोली लगेगी दर्द की। यह डर का नया दौर, Go for the kill.
1: इसी के साथ रूहानिका ने शेयर किए हैं खतरों के खिलाड़ी से ये BTS moments।

0: easy 45%.
1: Next, there is a number in the name.
2: जल्द आने वाला है नया रियलिटी शो जिसका नाम है द अलायंस। देख लीजिए इसकी पहली झलक। क्या कुछ होने वाला है इस रियलिटी शो में खास?
3: ऐसा रियलिटी गेम शो,
4: 16 प्लेयर और हर हफ्ते बदलता गेम।
3: ट्रस्ट भी है,
5: दो भाई दोनों तबाही,
3: स्ट्रैटेजी भी है, और कलेश भी।
6: बेटा नहीं बोलना।
3: वॉच अलायंस। अब भी वही बोरिंग रियलिटी शोज देख रहे हो? अब देखो एक ऐसा रियलिटी गेम शो।
4: रेडी टू ड्रॉप?
7: तूफानों का सामना करने वाले हवा से नहीं डरते।
3: यहाँ सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं।
4: हेलो, 16 प्लेयर, नए ट्विस्ट, नए अलाइज और हर हफ्ते बदलता गेम।
8: इट्स द वर्स्ट प्लेस।
4: यहाँ दोस्त, भाई बहन और पार्टनर्स साथ आते हैं और फिर एक दूसरे की वाट लगाते हैं।
5: सबके सामने पिट जाएगा।
3: यहाँ ट्रस्ट भी है,
5: दो भाई दोनों तबाही,
3: स्ट्रैटेजी भी है, और कलेश भी।
6: बेटा नहीं बोलना।
4: जो साथ आए हैं उन्हें ही एक दूसरे के खिलाफ खेलना पड़ेगा।
9: अब मुझे लेके आ गए जबरदस्ती यहाँ पर।
4: अलाइज कम, लाइज ज्यादा।
7: ये अलायंस के मजा हम तरीका से ले।
3: I'm here to play the game. Watch Alliance.
2: सैराब के सेट से रोहित चंडेल ने शेयर किए हैं ये BTS नजारे, जहां शूटिंग के साथ साथ फन मोमेंट्स हो रहे हैं। इश्क जुनूनी के गुरु और रूहानी पहुंच गए हैं पोस्ट पैकअप लंच पर, और यहाँ बातें कम और खाना ज्यादा हो रहा है। देख लीजिए ये वीडियो।

0: जब मिले श्रद्धा आर्या और रूही तो हुआ ढेर सारा फन और मस्ती जो साफ देखने को जाहिर है इस वीडियो में।
1: इट टेक्स जीरो मनी टू बी नाइस टू पीपल, सो बी नाइस। कमीने बनने के कितने पैसे लगते हैं?
2: ये क्या है?
1: मैं जीपे कर सकती हूँ तुम्हें।
3: टेक्नोलॉजी
1: जीरो बताओ है ना?
4: जाने दो।
0: बेस्ट डांसर का ये नया प्रोमो देख लीजिए जहाँ डांस के साथ साथ मस्ती अनलिमिटेड है।
5: 2000 सोने का बंगला है, 2000 में कोई बंगला देता?
6: उनके लिए 2500 बोला था मैंने।
7: 500 में देती तो दे, नहीं तो मैं दूसरे के पास जाती।
8: अरे उर्मिला मैडम रुकिए।
7: और फिर हाँ बोल।
8: रुकिए, वैसे मैं बोल रही थी आप वो जुदाई फिल्म में अनिल कपूर जी के लिए इतना 2 करोड़ दे सकते हो हमारे जैसे लोग। हमारे जैसे लोगों के लिए 1000-2000 नहीं दे सकती, मतलब थोड़ा वो है।
0: इसी के साथ ये BTS नजारे जहाँ पर मनाया जा रहा है करिश्मा कपूर का बर्थडे। अजय देवगन जल्द नजर आने वाले हैं उनकी एक्शन पावर पैक फिल्म चौहान में। सामने आई है इसकी पहली झलक, आप भी डाल लीजिए चौहान के इस टीजर पर एक नजर।
9: पठानों से कहना

0: साउथ स्टार नानी की जल्द ही नई फिल्म द पैराडाइज रिलीज होने वाली है। ऐसे में नानी पहुंच गए हैं तिरुमाला मंदिर लेने भगवान जी का आशीर्वाद।
1: जगदात्री और शिवाय, आप दोनों का साथ ना बिल्कुल इन मेकअप वाइप्स और क्लेंजर्स की तरह है, क्योंकि दोनों हैं एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे। हम तो चाहते हैं इसी तरह सलामत रहे आपकी ये जोड़ी और ना आए आपकी जिंदगी में कोई ऐसा ट्विस्ट जो लेकर आए आपकी आंखों में आंसू। हम तो बस हमेशा देखना चाहते हैं आप दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और ढेर सारा प्यार। तो चलिए लेकर चलते हैं हम सबको जगदात्री के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।

0: साड़ी में जगदात्री का नया लुक। भाई शिवाय और जगदात्री एक बार फिर से एक नए मिशन पर, और ये मिशन है सगाई का। लेकिन क्या ये ख्वाब है या कोई हकीकत? भाई ये जानने के लिए हम पहुंचे जगदात्री के सेट पर, जहां में जगदात्री सेलिब्रेशन वाले अंदाज में मिली। साड़ी, झुमके और ये ढेर सारा मेकअप और हेयर। भाई क्या शिवाय और जगदात्री की सगाई होने जा रही है? होने तो जा रही है, लेकिन ये मिशन का हिस्सा है या कोई ड्रीम सीक्वेंस? भाई यानी शादी में ट्विस्ट है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अपने शादी वाले ट्विस्ट के लिए जगदात्री यानी सोनाक्षी बत्रा आज खास रेडी हो रही हैं। तो आज हम करेंगे गेट रेडी विद सोनाक्षी बत्रा फॉर एंगेजमेंट। देखेंगे कि अपने इस एंगेजमेंट वाले ड्रीम सीक्वेंस के लिए सोनाक्षी कैसे रेडी होती है, कैसा होता है उनका आई का मेकअप, कैसा होता है उनका हेयर स्टाइल, कैसी है उनकी कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी, और कैसा आ रहा है उनका ओवरऑल लुक। भाई मिशन के लिए हमेशा वो यूनिफॉर्म में रहती है और दुल्हन के अंदाज में भी उनके ट्विस्ट आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक सिंपल सी दुल्हनिया का लुक ले रही है जगदात्री यानी सोनाक्षी। तो आज सोनाक्षी के साथ हम जानेंगे उनका ये खास लुक, जो क्या ख्वाब है हकीकत या कोई मिशन। पूछते हैं सीधा सोनाक्षी बत्रा से सीरियल जगदात्री के सेट पर।
1: सेलिब्रेशन, वेडिंग, एंगेजमेंट, आई थिंक फॉर एन एक्टर तो हमारी शादी, हमारी एंगेजमेंट बहुत बार हो चुकी होती है।
2: इस सीरियल में कितनी बार हो गई है?
1: इस सीरियल में जितनी बार भी हुई है वो मैंने खुद की है, ठीक है, वो उसमें शिवाय का कोई हाथ नहीं था। बट इस बार क्योंकि माया ताई इन्वॉल्व हैं, घर वाले इन्वॉल्व हैं, तो इस बार एक्चुअल में शादी होगी और शिवाय और मेरी ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली वी आर इन्वॉल्व इन ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो फील आ रहा है कि एक्चुअली में शादी होने वाली है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। तैयार तो हम वैसे ही हो रहे हैं, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, गाना बजाना भी होगा। देखो मुझे तो बस अपना ही पता है, दूसरों का मैंने देखा नहीं है। तो मेरा कुछ क्रीम कलर का साड़ी है एंड वेरी नाइस, एक क्रीम वन टोन साड़ी और डायमंड, थोड़ा इयररिंग्स हैं थोड़े बड़े एंड वैसा सा लुक है। और शिवाय ने फिलहाल अभी के लिए तो एक टक्सीडो टाइप पहना हुआ है, थ्री पीस सूट, ब्लैक एंड व्हाइट ऑफ कोर्स, तो वैसा है।
0: सुबह सुबह सोनाक्षी आती है व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में, लेकिन अब वो चेंज करने वाली है अपने इस इंडियन लुक के लिए। तो रेडी सोनाक्षी रेडी है और उनकी टीम भी रेडी है। शुरुआत हुई मेकअप के साथ, साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी हो रहा है। भाई झटपट उन्होंने सिंपल सा बेस लगाया और शुरुआत की आई मेकअप के साथ, क्योंकि सीरियल में ज्यादातर क्लोजअप शूट किए जाते हैं, इसलिए आई मेकअप बहुत जरूरी है। और देखिए सोनाक्षी का आई मेकअप शुरू हो गया।

0: बेस हो गया है और दादा भी काम कर रहे हैं, राहुल दादा काम कर रहे हैं आंखों पे, आई शैडो कर रहे हैं, आईब्रोज हो चुकी हैं और आई शैडो हम कर रहे हैं क्योंकि लुक बहुत साड़ी बहुत ही सिंपल है और वन टोन है, इसीलिए जितना भी कलाकारी हो सकती है वो सिर्फ आंखों में ही हो सकती है. तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन द आइस. मुझे लगता है कि फेवरेट पार्ट, मतलब जो चीज़ तुम्हें सुंदर बनाती है ना, वो आंखों का काम ही होता है मोस्टली. तो अगर आंखों का बहुत अच्छे से किया जाए तो सब अच्छा लगता है, देन वो सबसे ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए मुझे लगता है, एंड देन वी आर गुड टू गो. बहुत कम मेकअप करना पसंद करती हूँ. आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा कंसीलर होना चाहिए. आजकल सनस्क्रीन भी ऐसी आने लगी है जो थोड़ी टिंटेड होती हैं, तो आई यूजुअली अप्लाई दैट कि सनस्क्रीन का भी काम करते हो और थोड़ा सा टिंट का भी काम करते हो, फाउंडेशन का थोड़ा सा कंसील करते एंड हल्का सा एक लिप बाम, थोड़ा सा कलर्ड लिप बाम, और उसी को अगर लिपस्टिक है तो उसी को थोड़ा सा आईज पे लगा दिया, थोड़ा चीक्स पे लगा दिया, एंड दैट्स इट.
1: जगदात्री की सगाई के ड्रीम सीक्वेंस के लिए सोनाक्षी ने अलग हेयर स्टाइल भी लिया है. उनके बातों को लॉन्ग करके कर्ल किया जा रहा है और साथ साथ उनके चेहरे को एक अलग रंगत दी जाती है, क्योंकि जब वो मिशन पे होती है तो उनका मेकअप टू टोन डाउन होता है, लेकिन आज उन्हें चमकाया जा रहा है. और अपनी टीम के साथ साथ खुद भी सोनाक्षी अपना मेकअप कर रही है.

0: मैंने बचपन में ही सीख ली थी. मेरी एक कजन की शादी थी एंड आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज दिस वन गर्ल इन दैट वेडिंग जो कि इतनी सुंदर लग रही थी. एंड आई जस्ट फील लाइक एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यू आर नेवर ओवर ड्रेस्ड फॉर एन ओकेजन. तो आप बहुत अच्छे से तैयार होके जाइए. एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं थोड़ा सा कैमरे में देख के भी बात कर लूँ राहुल दादा. तो आई थिंक यू आर नेवर ओवर ड्रेस्ड फॉर एन ओकेजन. आप अच्छे से तैयार होइए जहाँ पर भी जा रहे हैं एंड बस आपको खूबसूरत दिखना चाहिए और खूबसूरत अंदर से भी लगना चाहिए. तो यूजुअली मेरा स्टाइल भी थोड़ा मिनिमलिस्टिक ही है, तो अगर मैं ओवर ड्रेस्ड हो रही हूँ तो मिनिमलिज्म से हल्का ज़्यादा ही हो रही हूँ, तो विच इज़ गुड फॉर मी. बट अदरवाइज आई थिंक यू शुड जस्ट फील गुड. ओवर पार नहीं करना चाहिए. जिनका ओकेशन है उन्हें उनकी थंडर स्टील नहीं करनी चाहिए. वो हीरो हीरोइन है दिन के उस डे के. बट अदरवाइज यू शुड जस्ट ड्रेस वेल आई थिंक.
1: सोनाक्षी आज सेट पर झटपट रेडी हो रही है कि उनके पास वक्त नहीं, छोटा सा ड्रीम सीक्वेंस है, लेकिन उसके लिए तैयारी पूरी चल रही है. चाहे आईज का मेकअप हो, लिप्स का हो, चेहरा हो या फिर उनका हेयर स्टाइल, फटाफट वो रेडी हो रही हैं और अपने इस खास लुक को ले रही हैं.

0: फाइनली सोनाक्षी का हेयर मेकअप तो हो गया, लेकिन अब बारी है कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी के। देखते हैं कि इस बार कैसी है उनकी कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी।
1: तो फाइनली आई एम डन, हेयर एंड मेकअप ऑलमोस्ट डन है, मतलब ऑलमोस्ट क्या 99% डन है। और अब मैं आपको चेंज से पहले अपना कॉस्ट्यूम दिखा देती हूँ और ज्वेलरी दिखा देती हूँ उसके साथ की। तो ये है साड़ी, ये पहनूंगी मैं, नाइस। और इसके साथ, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक डायमंड सिल्वर काम है, इसीलिए डायमंड सिल्वर की ज्वेलरी है। And that's it. अब मैं मिलती हूँ आपसे चेंज के बाद।
0: पानी और सोनाक्षी ने चेंज कर लिया और बन गई जगदात्री, और इस पिस्ता ग्रीन साड़ी में उनका ये ड्रीम सीक्वेंस अब शूट होगा।

0: That's it. And I'm all ready. Hair हो गया है, makeup हो गया है, अच्छा flare लग रहा है, bounce लग रहा है बालों में, makeup बहुत सुंदर हुआ है, jewelry बहुत अच्छी है और आपने मेरा costume अटाया तो देख ही लिया है. और अब हम चलते हैं set पे. एक बार मैं ट्वर्ल दे देती हूँ आपको. मैं बहुत खुश हूँ. जगधात्री पता नहीं खुश है कि नहीं है विद हाउ थिंग्स आर मूविंग, क्योंकि एक मिशन भी है जिसके तहत ये शादी हो रही है. एंड लेट्स सी कि ये शादी अच्छे तरीके से हो पाती है या नहीं हो पाती है, और मिशन सक्सेसफुल रह पाता है या नहीं. पर अभी मेरा एज सोनाक्षी एज एन एक्टर मेरा मिशन सक्सेसफुल है. मैं तैयार हूँ, तो चलते हैं सेट पे.
1: फाइनल टचेस के बाद अब वो रेडी हैं और पहुंची सेट पर, जहां पर टक्सीडो में शिवाय भी उनका इंतजार कर रहे हैं. दोनों ने सीन को शूट किया और कुछ इस अंदाज में ये ड्रीम सीक्वेंस जगदात्री के सेट पर शूट किया गया, जिसके कुछ खास पल हम आपके लिए लेकर आए. देखना होगा कि क्या इस सगाई वाले छोटे से ट्विस्ट के बाद क्या सच में उनकी सगाई होगी या ये कोई मिशन है. आप जुड़े रहिए सास बहू बेटिया के साथ कुछ ऐसी ही बिहाइंड द सीन्स खबरों के लिए और पलों के लिए. मुंबई से रिपोर्ट मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

0: वसुधा, अब कई लोगों की स्किन तो नेचुरली बहुत ऑयली होती है, तो उन्हें ऑयल बेस्ड क्लेंजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसी तरह जिनकी ड्राई स्किन होती है उन्हें ऑब्वियसली ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स ही यूज़ करने चाहिए, अदरवाइज उनकी स्किन और ड्राई हो जाएगी या फिर ऑयली वालों की स्किन और ऑयली हो जाएगी। यस, तभी तो ज़रूरी है कि हम अपने स्किन क्लेंजर्स को चुनें सोच समझ कर। वैसे यहाँ पर सोच समझ कर ही लिया है वसुधा ने भी अपनी लाइफ का ही अगला फैसला, लेकिन क्या ये लेकर आएगा इनके चेहरे पर मुस्कुराहट या फिर कहानी में लेकर आएगा एक नया ड्रामा? लेकर चलते हैं आपको वसुधा के पास।
1: चंद्रिका के सामने आई नई मॉडल, शूट के दौरान डरी सहमी सी वसुधा, दादी ने बढ़ाया वसुधा का हौसला। जी टीवी की सीरियल वसुधा में आज वसुधा के ब्रांड के एड शूट का दूसरा दिन है और ऐसे में देखिए कैसे चंद्रिका रजवाड़ी अंदाज में साज श्रृंगार कर एकदम तैयार है एड शूट करने के लिए, लेकिन उसे करना पड़ रहा है इंतजार नई मॉडल का। सिर्फ चंद्रिका ही नहीं बल्कि सभी घर वाले नई मॉडल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में समय निकलता जा रहा है और चंद्रिका उसके चेहरे का गुस्सा बढ़ रहा है।
2: देव, तुम्हारी मासा पूरी तरह से रेडी होकर आई है, लेकिन तुम्हारी सब बाकी सब कहाँ है?
3: देव, हमें 11 बजे बुलाया गया था, हम 10 मिनट पहले आ गए। वो दूसरी मॉडल कहाँ है? आई नहीं, मतलब 11 बजे शूट शुरू होना है, हम 10 मिनट पहले आ गए हैं। इतने हैवी गेटअप में क्या हमें बैठे रहना पड़ेगा? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज होती है देव। दिव्या, इस शूट की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। जिसने नई मॉडल को सही कॉल टाइम नहीं दिया और चंद्रिका सिंह चौहान को इंतजार करवाया।
4: नहीं नहीं मासा, आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब तक वो नई वाली मॉडल आती है ना, हम लोग आपकी सीन शूट कर लेंगे।
3: कैसे? माजी साह ने तो हमसे कहा था कि उस नए मॉडल से हमें बहुत कुछ सीखना है और हम सीखने के लिए भी राजी हो गए, तो अब हमारा अकेले शूट क्यों? अगर शूट हो तो दोनों का साथ में होगा, वरना नहीं होगा।
1: भाई यहाँ सभी चंद्रिका का गुस्सा शांत करने की कोशिश में लगे हैं, तो वहाँ सारिका पहुँच जाती है जले पर नमक छिड़कने के लिए पूरी तरह मॉडल बनकर। ऐसे में चंद्रिका उसे भी सुना देती है और सारिका उसकी बोलती बंद हो जाती है। खैर, चंद्रिका का गुस्सा बढ़ रहा है और देखिए कैसे गुस्से में आकर वो वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि समय ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है कि तभी सामने आ जाती है वसुधा मॉडल के अवतार में, जिसे देखकर चंद्रिका हैरान।
5: एक्चुअली दादी के तो कुछ अलग ही प्लान्स थे, ये किसी को भी नहीं पता था, और सडनली उन्होंने बताया कि मुझे देवी हुकुम के ऑपोजिट ये शूट करना है, तो वी ऑल वर वेरी शॉक्ड। और जब यहाँ आए तो एक्सपेक्टेड ही था कि देवी हुकुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, और उन्होंने किया भी, लेकिन वसुधा की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है उनके आगे कुछ परफॉर्म करने की, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही है कि उनको जो उनकी रोल मॉडल है उनके ऑपोजिट ये काम करना पड़ रहा है। तो शी इज़ वेरी नर्वस, शी इज़ वेरी टेंस्ड कि अब क्या होगा। उसे एक शॉट नहीं दिया जा रहा है, वहाँ दादी सा वसुधा को पुश कर रही हैं, तो मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ दादी सा देवी हुकुम को नीचा दिखाने के लिए काइंड ऑफ वसुधा का यूज़ कर रही हैं। और दिव्या भी बोलती है कि आप बहुत प्रेशर मत क्रिएट करिए देवी हुकुम, मतलब आप दोनों की राइवलरी में बेचारी वसु पिस रही है, तो ऐसा सीन बन गया है। लेकिन एनी हाउ वसुधा ओवरकम कर लेगी और फाइनली ये शूट अच्छा हो जाएगा।
1: भाई चंद्रिका तो बखूबी समझ गई है कि उनकी सासू माँ क्या चाहती हैं, लेकिन वसुधा बेचारी वो तो पिसती चली जा रही है। एक तरफ दादी का फरमान है तो दूसरी तरफ सामने है देवी हुकुम, जिन्हें वो गुरु भी मानती हैं। ऐसे में घबराती हुई वसुधा एड शूट के लिए तैयार हो जाती है और चंद्रिका वसुधा दोनों ही एड शूट करने लगते हैं, लेकिन वसुधा उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि देवी हुकुम उसके सामने जो खड़ी है। भाई वसुधा की घबराहट को कोई समझे न समझे, लेकिन देव बखूबी समझ रहा है और तो और दादी भी। ऐसे में देखिए कैसे ही जब दोबारा शूट शुरू हुआ तो वसुधा की घबराहट बढ़ने लगी और उसकी घबराहट को भांप लिया दादी ने। इसलिए देखिए कैसे वो पहुंच गई हैं वसुधा को समझाने।
6: और चुपचाप अपना काम कर, इस रजवाड़ी अचार से तेरी पहचान बनने वाली है। कितनी मुश्किल झेली तूने इसके लिए, और जहां तक डर की बात है किस बात से डर झूठी से नहीं, ये तो तेरे बाएं हाथ को खेल है। चिंता मत कर और चल अपना काम कर, चल। अरे ओ डायरेक्टर साहब, आपको भी निमंत्रण पत्र देना पड़ेगा के? अरे हमारी दोनों मॉडल रेडी है, चलो शूटिंग शुरू करो।
5: बिल्कुल देव सहारा बनता है। और देव, जब मैं देवी हुकुम को देखकर शूट नहीं कर पाती हूँ तो देव वसुधा को बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे देखो, और वो जाके चंद्रिका जी के पीछे खड़ा हो जाता है और वसुधा चंद्रिका जी की जगह देव को देखती है और बहुत अच्छे से अपने शॉट्स देती है। तो इट्स लाइक कि देव हमेशा होता है वसु के लिए। इस बार भी कहीं ना कहीं देव ने साथ दिया वसुधा का, इसीलिए ये शूट अच्छे से पूरा हो पाया है।
1: खड़ा है, ऐसे में वसुधा को तो कामयाबी मिलेगी ही। देखना होगा क्या वसुधा चंद्रिका के दिल में घर कर पाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: देखिए बहुत जरूरी है कि मेकअप रिमूव करते वक्त आप अपनी स्किन के साथ रहें जेंटल, और नेक की स्किन के साथ तो सुपर जेंटल, क्योंकि ये स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट। और अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तो है इन गुड स्किन। और इसी तरह इन्वेस्टेड है हमारी इस अगली कहानी के किरदार। वेल, इस अगले ड्रामा में अब ऐसा क्या हो रहा है इस कहानी में, तो चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स।
1: रोती बिलकती और तड़पती शालिनी,
7: एक हीर तू होके जुदा, रोलन दे।
1: शालिनी पर लगे घिनौने इल्जाम,
7: रोलन दे मिर्ज़ा।
1: शालिनी के बच्चे पापा के लिए हुए परेशान।

स्टार प्लस के सीरियल मिस्टर मिसेस परशुराम में आज शालिनी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, और हो भी क्यों ना। एक तो उसे अपने पति के बारे में कुछ अता पता नहीं है, और लोग कह रहे हैं कि शिव प्रसाद मर चुका है। इस बात की तो उसको तड़प थी ही, और अब तो उसके ऊपर गंदे इल्जाम भी लगने लगे हैं। इसी के चलते आज शालिनी सिसक सिसक कर रो रही है।

0: See, since the very first day, I have been questioned कि तुमने अपने हस्बैंड को क्यों मारा. तो मैं बार बार सबको यही एक्सप्लेन करी कि मैं जिस इंसान से इतना प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि मैं उसको मार दूंगी. एंड पहले तो उस चीज़ को लेके इसने इतनी सफाइयाँ दी जो लोगों ने नहीं मानी. उसके बाद कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया गया. तो अब ये उसको भी प्रूव करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं तो इस इंसान को नहीं जानती. उसने इतना चाटा मारा है विकी को, जो भी विकी शर्मा है, उसको इतने चाटे दिए हैं कि भाई तू घर से निकल, तू है कौन. और चौल वाले लोग भी उस पर ऐसे चढ़े पड़े. तो हर तरफ से अगर देखा जाए तो शालिनी को सबने घेर लिया है. एंड दे आर टारगेटिंग हर, दे आर ब्लेमिंग हर, विक्टिमाइजिंग हर फॉर नथिंग, फॉर जो कि उसने कुछ किया ही नहीं है. बट शी हैज़ टू फाइट बैक. ऑल्सो अगर कोई उसके शायद बच्चे नहीं होते तो शालिनी तो अपनी जान दे चुकी होती है, बिकॉज उसके पति के बिना वो तो अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती है. बट बच्चे हैं इसीलिए वो जी रही है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि वो लड़ पाए एटलीस्ट तब तक जब तक शिव नहीं आ जाते हैं.
1: भाई चौल वाले ही नहीं बल्कि आज तो शालिनी के घर करण और कबीर भी पहुंच गए हैं उसके ऊपर लालछन लगाने. हालांकि शालिनी उनको करारा जवाब देती है, लेकिन तभी उसके घर में आ जाते हैं उसके पापा काका और काकी. और देखिए कैसे काकी आते ही शालिनी को इस तरह सुहागन देखकर उसके ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाने लगती है, जिसको सुनकर शालिनी बेहद दुखी हो रही है.
2: दुनिया को हंसने का मौका क्यों दे रही है? और इतनी बेशर्म हो चुकी है तू, अभी भी मांग में सिंदूर भर के खड़ी है और गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा है. तेरा पति मर चुका है, तूने अपने पति को मारा है, खुद अपने पति को हाथों से मार के अभी तू नाटक कर रही है. पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मनाली जाकर तू उस विकी शर्मा के साथ होटल में.
3: नहीं नहीं, बख्श दीजिए मुझे काकी, मत कीजिए ये सब. चीता जी मर जाऊंगी. आप सभी क्या कहते हैं, मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? मैं अपराधी नहीं. मैं उस विकी शर्मा को ना कभी जानती थी ना आज जानती हूँ. ये बहुत बड़ी साजिश है, ये एक चाल है.
1: भाई शालिनी की बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है. और तो और शालिनी के पापा भी, उनको भी यही यकीन हो चला है कि शालिनी ने ही शिव प्रसाद को मारा है. इतना ही नहीं, वो तो शालिनी को वापस घर चलने तक को कहते हैं और तो और उसकी और विकी की शादी कराने की बात तक कह देते हैं. बस फिर क्या, ये सुनकर शालिनी से रहा नहीं गया और उसने न सिर्फ अपने पापा बल्कि काका को भी करारा जवाब दिया है.
4: और रही बात इन बच्चों की, वो मैं किसी भी अनाथ आश्रम में डालूं.
3: उसकी कोई जरूरत नहीं है काका. मैं अपने बच्चों को खुद पाल पोस कर बड़ा करूंगी. उसके लिए किसी की दया की जरूरत नहीं मुझे. अब आप लोग जा सकते हैं.
0: सबसे पहली बात, मायके वाले तो हमेशा मुझ पे चिल्लाते ही रहते हैं, दैट्स नॉट समथिंग न्यू. बट जो सबसे वर्स्ट पार्ट है कि शालिनी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है. द वुमन, द काइंड ऑफ वुमन शी इज़, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है. अपने पति के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया. इतना बेइंतहा मोहब्बत था उसको, मोहब्बत है इनफैक्ट अपने हस्बैंड से. एंड आज उसी प्यार पे उसके सवाल उठाए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसके हस्बैंड, द हस्बैंड इज नॉट अराउंड.
1: खैर कबीर और करण तो यहाँ पर आए थे ताकि शालिनी अपना केस वापस ले ले, लेकिन शालिनी ने ऐसा करने से मना कर दिया है, इसीलिए सभी चले भी गए हैं. लेकिन अब शालिनी के बेटे ने भी अपनी माँ पर सवाल खड़े कर दिए. उसे भी यही लगने लगा है कि क्या वाकई उसकी माँ ने उसके पापा को मार दिया है.
0: जब आप दुनिया से आप लड़ लोगे, अपने परिवार से नहीं लड़ सकते हो. तो बच्चा भी अब यही बोल रहा है, बेटा कि आपने ही पापा को मार दिया है, सब यही बोल रहा है, आपने ही पापा को मार डाला है. तो हम लाइक, ये ऐसा सच नहीं है, इतना तो अपनी माँ पे यकीन करता. तो वही ड्रामा चल रहा है. फैमिली इज काइंड ऑफ कन्विंसिंग मी कि जो ये विकी शर्मा है नाम का जो बंदा है, उससे तुम शादी कर लो और मुंबई छोड़ के निकल जाओ, हमसे रिश्ता तोड़ लो, बिकॉज हमारे हिसाब से तुमने हमारी नाक कटवा दी है. एंड दे आर बिलीविंग द फैक्ट दैट आई हैव किल्ड माई हस्बैंड.
1: बस शालिनी तो अपने बच्चे को समझा रही है, इसी बीच शालिनी की नजर पड़ जाती है उस बैग पर जो कि उनके घर आए हुए प्लम्बर बॉय का था, और वो प्लम्बर बॉय कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद था जो भेष बदल कर आया था अपने बच्चों से मिलने के लिए। ऐसे में जैसे ही शालिनी ने वो बैग उठाया तो उस बैग से बच्चों के लिए ढेर सारी तस्वीरें और चॉकलेट्स गिर गई, जिसे देखकर ना सिर्फ शालिनी हैरान है बल्कि बच्चों को भी ऐसा लगने लगा है कि शायद उनके पापा ने ही ये सब भिजवाया है। शालिनी को तो बस यही उम्मीद है कि शिव प्रसाद जिंदा है और वो जल्द ही वापस आएगा अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए। और तो और चिंटू वो भी सारी तस्वीरें देखकर इस बात पर यकीन करने लगा है कि उसके पापा वाकई जिंदा है, यानी जल्द ही शिव प्रसाद की एंट्री तो होगी, लेकिन देखना होगा कि जो उसके मन में गलतफहमी डाली गई है शालिनी के खिलाफ क्या वो दूर हो पाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: अब देखिए, मैं तो बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि बहुत ही जरूरी है मेकअप को रिमूव करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी और हो जाएगा आपकी स्किन के लिए शॉकिंग। और बहुत जरूरी है उसके साथ साथ कि आप जेंटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को कोई भी केमिकल हार्म ना कर सके। ऐसा ही है हमारा अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: विदिशा आर्यमन सेठ ने थ्रो की अपनी बर्थडे पार्टी और उनके इस बर्थडे बैश में उन्हें ढेर सारी बधाइयां देने के लिए पहुंचे प्रिंस नरूला, बरखा बिष्ट, ऋत्विक धनजानी, अंजलि आनंद, आकांक्षा पुरी, आरती सिंह और कई और सितारे। देख लीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन के ये नज़ारे।

वेलकम टू द जंगल के बीटीएस नजारे देख लीजिए, जहां एक सॉन्ग शूट में सुनील शेट्टी प्रैंक करते नजर आए

बीती शाम हुआ आईफा कॉनेक्स एडिशन 2 का ग्रीन कार्पेट, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे जिन्होंने इस ग्रीन कार्पेट पर बिखेरा अपना जलवा।

0: तो कैसा लगा आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारा ये एपिसोड? कैसी लगी आपको ये स्किन केयर टिप्स? आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियाँ, जहाँ एक बार फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर स्किन, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
2: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to Elf beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
5: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन अमिस्ताद। इंडियन एयरफोर्स के दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल भीष्म क्यू भी भेजे गए। बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी। 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी विकास की सौगात। 456 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा। किशोर सागर में उतरे जवान। फ्लड रेस्क्यू मॉकड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद। नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी। पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी। अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 475 कैमरे से होगी रथ की यात्रा की निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा में 7,000 जवानों की हुई तैनाती। 10,00,000 से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना। अंबुबाची मेले के बाद कामाख्या मंदिर के खुले कपाट। सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा होने के बाद खुले कपाट। मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र अंगोदक और अंग वस्त्र किया प्राप्त, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। सुंदरपुर में रेलवे स्टेशन बनने से खाटू श्याम की दूरी 11 किलोमीटर होगी कम। देशभर के लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी इससे बड़ी राहत। साल 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है रेलवे स्टेशन का निर्माण। 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। सीकर में 2 दिवसीय खाटू श्याम मेले का दूसरा दिन। सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया अलौकिक श्रृंगार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार। भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय। पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ अधिक आयदान। अब तक सबसे ज्यादा लड्डू प्रसादी की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का हरिओम जल से किया गया जलाभिषेक। दूध दही घी शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से किया गया पूजा। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी, भगवान की पूजा कर आशीर्वाद लिया। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, एक बहुआयामी दृष्टिकोण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा, बेस कैंप आकर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में संत समाज का आगमन शुरू, बाबा अरफानी के जयकारों से गूंजा शहर का ऐतिहासिक राम मंदिर। अमरनाथ यात्रा से पहले सांबा में सुरक्षा कर्मियों का जंगल में मॉक ड्रिल, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात किए गए सुरक्षा बलों की 665 कंपनीज। सहारनपुर की 7 साल की नन्ही चैंपियन का कमाल, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। गांव नागल लौटने पर अनुषी सिरोही का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है अनुषी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड, सहारनपुर के गांव नगला खुशी का माहौल छाया हुआ है। पिता अनुज कुमार की प्रेरणा से स्केटिंग की शुरुआत की थी, खेल खेल में शुरू हुआ सफर, नेपाल में गोल्ड जीत कर लहराया प्रतिभा का परचम। गोल्ड जीतने के बाद अनुषी ने एशियाई खेलों की तैयारियों में भी जुट गई हैं, 2 साल बाद होनी है एशियाई गेम्स। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में केरलम के मोहम्मद अफसल ने जीता स्वर्ण पदक, महिला ने 200 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की हरिता भद्रा ने गोल्ड जीता। चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में ओडिशा के अनिमेश कुजर ने जीता गोल्ड, महिला ने मनप्रीत कौर ने कमाल किया। खेरागढ़ में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची बिजली, चमक उठा खेरागढ़ का गांव। गांव में बिजली पहुंचने पर गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, कहा खेती करने में बहुत आसानी होगी। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने पूजा पाठ किया, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का आनंद लिया। वडोदरा में शाला प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने बच्चों को किया सम्मानित।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
2: को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाओ, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भसम, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Score what you need for summer, perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream. inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है? किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है? अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन अमिसाद। इंडियन एयरफोर्स के दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल भीष्म क्यू भी भेजे गए। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल। हरियाणा के जिंद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी, 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। बारिश, बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा। किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद, नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज हम बात करेंगे इस धरती के न्यायाधीश की। इंसानों की अदालतों में न्यायाधीश होते हैं, वो सबूतों के आधार पर न्याय करते हैं, लेकिन ईश्वर की अदालत में एक ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो कर्मों को देखकर न्याय करते हैं, और वो न्यायाधीश है शनिदेव। आज हम आपको शनिदेव के प्रकोप के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कब कब शनि अपनी वक्र दृष्टि कर लेते हैं और कैसे शनि के अनचाहे प्रभाव से बचा जा सकता है।

0: वो है न्यायप्रिय न्यायाधीश भगवान। धर्म का साथ छोड़ने वाले होते हैं परेशान, क्योंकि वो है ब्रह्मांड की ताकतवर शक्ति। धरती पर शनि देव हैं न्याय की मूर्ति। माना भी जाता है कि आप जैसा कर्म करते हैं शनि देव वैसा ही फल आपको देते हैं। अगर आपने कर्म बुरे किए हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म उत्तम है तो शनिदेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, आपके ऊपर कभी संकट की छाया नहीं पड़ने देंगे।
1: शनि के बारे में इतना कहा गया कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च, जो ग्रह राज्य प्रदान करते हैं वही ग्रह राज्य छीन लेते हैं। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे कि अर्श से फर्श पर चले गए और फर्श से अर्श पर आ गए। तो इस शनि का महत्व है कि जीवन में शनि अगर प्रसन्न है तो आपको उच्च पद दिलाता है, और शनि अप्रसन्न है तो आपको कंगाल भी बना देता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिसकी कुंडली में शनि बलवान होते हैं उसके जीवन में शनि की चाल अनुकूल परिणाम लाने वाली होती है। हम शनिदेव की महिमा का बखान जितना करें उतना ही कम होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जीवन में शनिदेव की क्या भूमिका है। शनिदेव ग्रहों में न्यायकर्ता माने जाते हैं। आपके कर्म और उसके फल के पीछे शनि ही है। व्यक्ति की आजीविका, रोग और संघर्ष शनि के द्वारा ही निर्धारित होता है। शनि को प्रसन्न करके जीवन के कष्टों को कम कर सकते हैं, करियर और धन के मामले में सफलता पा सकते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं शनि कब देते हैं सजा और कैसे शनि की कृपा से हम पा सकते हैं मजा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शनि देव की अदालत में हर फैसला एकदम सटीक होता है, ना तो कुछ कम ना तो कुछ ज्यादा। शनिदेव उसी को पीड़ा देते हैं जिसके कर्म बुरे हो। तो आइए जानते हैं शनि की पीड़ा किस रूप में हमारे सामने आती है।
1: जैसे शनि जिस राशि के स्वामी हैं, मकर राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि के स्वामी हैं, जिनके स्वामी उनको अच्छा देखते हैं, लेकिन अगर शनि सूर्य की युति कुंडली में है तो शनि का अच्छा फल नहीं मिलता। शनि की दृष्टि ऊपर करने के लिए शनि को प्रसन्न करना पड़ता है, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो जो मानव जीवन की चीजें हैं, भौतिकवादी वस्तुएं हैं, और उच्च पद है, लाभ है, नौकरी है, शासन में अच्छा पद है, मिनिस्टर बनना है, ये सब काम शनि अवश्य करते हैं।
0: शनि ग्रहों के न्यायाधीश और दंडाधिकारी हैं। व्यक्ति को उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव बिना कारण के पीड़ा नहीं देते। व्यक्ति के गलत कार्यों के फलस्वरूप उसे पीड़ा भोगनी पड़ती है। शनि देव ये पीड़ा देने के माध्यम मात्र बनते हैं। माना जाता है कि कर्म ही मानव की गति का आधार है। ये संसार भी कर्म प्रधान है। ज्योतिष के जानकार आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को ग्रहों की छाया से जोड़ते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है वो सब आपके कर्मों की माया है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। शनिदेव एक माध्यम मात्र हैं जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब शनिदेव पीड़ा देते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जब जब शनि की साढ़े साथी आएगी, शनि की ढैया आएगी और शनि की महादशा आएगी, तब आदमी को अच्छा, साढ़े साथी में भी नियम है कि प्रथम जो साढ़े साथी आती है बहुत कष्टकारक नहीं होती है, जो मध्य साढ़े साथी आती है वह मानव को ज्यादा पीड़ा देती है, और उत्तम वाली जो होती है कहता है कि आदमी को धीरे धीरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पंगु बना देती है। अगर कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर न हो आदमी बर्बाद हो जाता है,
0: स्नायु तंत्र और लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। हर कार्यों में विलंब और रुकावट आती है। रोजगार और नौकरी के मामले में कठिनाई आती है। जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अगर ये पीड़ा शनि की दशा में मिलती है तो काफी लंबी चलती है। अगर ये ढैया या साढ़े साथी से मिलती है तो कुछ समय के लिए ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन जानकार दावा करते हैं कि कुछ ऐसे महाप्रयोग हों जिनसे शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है।
1: शनि कृपा पाने का सबसे सरल और सबसे जो सुगम उपाय है वो है शनिवार के दिन प्रातः काल गुड़ का रस घोर करके और उसमें काली तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में ले जा करके छोड़ना, जिससे वहाँ पे रहने वाले जो छोटे चींटे हैं वो चींटे जितना वो मीठा रस पियेंगे उतनी शनि की पीड़ा कम होगी।
0: शनि देव को प्रसन्न करने की तीन विधियाँ हैं, आचरण से, रत्न से और मंत्र से। आचरण में आहार शुद्धि, व्यवहार विचार और दान आते हैं। रत्नों में जलीय या वायु तत्व के रत्न धारण करना श्रेष्ठ होगा। मंत्र जाप का तरीका सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिससे शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध आचरण के साथ मंत्रों का जाप किया जाए तो अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन शनिदेव की पूजा में कुछ नियम और सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के समक्ष ना करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहां वो शिला के रूप में हो। प्रतीक रूप में शमी के या पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव के समक्ष दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तेल उड़ेल कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। शनि की पूजा में आचरण और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। ज्योतिषी मानते हैं कि विधि विधान से की गई शनिदेव की पूजा कष्टों से मुक्ति दिला सकती है, इससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि किस विधान से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं।
1: शनि की पूजा की विधि सर्वोत्तम है। नीले रंग का पुष्प है, घी का दीपक है, तिल है, तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाना, नीले रंग के पुष्प से पूजा करना और काले रंग की मिठाई, जो काले रंग की मिठाई कृष्ण वर्ण की, भगवान को अर्पित करना। घी बहुत पसंद है कि शनि कहे जो घी मैं पावाऊं काल जीत के घर लौटावाऊं, तो शनि की पीड़ा में शक्कर और देसी घी का भगवान शनि को भोग लगाने से भी लाभ होता है। और तिल तिल के तेल का दीपक जलाएं, ये बहुत लाभकारी हो सकता है।
0: आगे हम आपको बताएंगे शनि के चमत्कारी मंत्रों की महिमा और कैसे इन मंत्रों के जाप से आप अपनी सभी बाधाओं का अंत कर सकते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना स्वीकार।
2: धरती पर शनिदेव को कर्म फल दाता कहा जाता है। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि शनिदेव कभी भी गलत फैसला नहीं सुनाते। आपके कर्म चाहे इस जन्म में किए गए हों या फिर पिछले जन्म में, कर्मों का फल देकर ही रहते हैं, लेकिन मंत्रों के माध्यम से उन्हें ना सिर्फ प्रसन्न करना मुमकिन है बल्कि शनिदेव से पाप नाश का वरदान भी पाया जा सकता है।

शनि के मंत्र है कल्याणकारी, संकटों से बचाते हैं दंडाधिकारी, सत्कर्म से शनि होते हैं प्रसन्न, अधर्म से हो जाते हैं खिन्न।

0: शनि देव की महिमा अपरंपार है। माना जाता है कि वो शनि देव ही हैं जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। यूं तो शनि देव कर्म के मर्म को समझकर ही फल देते हैं, जैसे आपके कर्म वैसा ही शनि देव की। लेकिन शनि देव को प्रसन्न करने और उनके विशेष कृपा पाने के लिए शनि देव के कुछ कारगर मंत्र भी हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके दुखों का अंत हो जाता है। दुर्घटनाओं या प्राण संकट के योग बने हो तब मंत्र जाप करें। कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा हो तब मंत्र जाप करें। अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा हो तब मंत्र जाप करें। शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तब मंत्र जाप करें।
1: नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीला गाढ़ा नीला रंग है शनि भगवान का, तो जो नीला पुष्प अपराजिता का होता है वह भगवान शनि को चढ़ाना चाहिए। सायंकाल के समय तिल के तेल का दीपक जलाने से भी शनि की पीड़ा में लाभ होता है। छायादान कांसे की कटोरी में आप देसी घी लेकर के और उसमें अपना चेहरा देख करके अगर पीपल के नीचे वृक्ष के रखते हैं या किसी का दान करते हैं तो शनि की माता जी हैं छाया, उनका दान करने शनि प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं।
2: जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी।
0: शनि के कल्याणकारी मंत्रों को बताने से पहले जानना जरूरी है मंत्र जाप की सही विधि। चलिए आपको बताते हैं शनि से जुड़े मंत्रों के जाप के नियम क्या होते हैं। शनि देव के मंत्रों का जाप कोई भी कर सकता है। शनि देव के मंत्रों का जाप पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके करना उत्तम होगा। जाप का सही समय संध्या काल का होगा या मध्य रात्रि का। रुद्राक्ष या रक्त चंदन की माला शनि देव के मंत्र जाप के लिए उत्तम होती है। घर में बिल्कुल भी उनका चित्र ना लगाए। बेहतर होगा मानसिक रूप से याद करके ही मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पूर्व अपने गुरु भगवान शिव या श्री कृष्ण का ध्यान करें। कोई भी गृहस्थ व्यक्ति काले वस्त्र धारण करके मंत्र जाप ना करे। बेहतर होगा कि सफेद वस्त्र या आसमानी वस्त्र धारण करे।
3: शनैश्चराय नमः। ओम शन शनैश्चराय।
0: शनि देव के मंत्र आपको शनि कृपा पाने में कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं शनि के वो कल्याणकारी मंत्र।
1: अगर सुगम मंत्र कहा जाए तो ओम सम शनैश्चराय नमः यह मंत्र है, या ओम प्राम प्रीम प्रौम सम शनय नमः। वैदिक मंत्र करना है तो ओम सन्नो देवी रविश्चय आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु नः इस मंत्र का जप। और अगर लौकिक मंत्र करना है तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम इन मंत्रों का जप करें और शनि के प्रसन्नता के लिए हनुमान जी का सुंदर कांड हनुमान चालीसा और आपका हनुमान जो है संकट मोचन हनुमान अष्टक इनका पाठ करके भी आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं।
0: ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों में हर मंत्र का अपना एक अलग महत्व है और जरूरत को ध्यान में रखकर ही इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कब कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः सामान्य रूप से इस मंत्र का जाप रोज शाम को करना चाहिए। इससे शनि कभी भी नाराज नहीं होते, उनकी बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः शनि की दशाओं में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शनि की दशाएं लाभकारी हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि देव के ये बेहद कल्याणकारी मंत्र आपको शनि कृपा दिला सकते हैं। आने वाली विपदा में ये मंत्र सहायक साबित हो सकते हैं। तो आप भी इन मंत्रों का जाप करके देखिए, हो सकता है कि आपके संकटों का नाश इन मंत्रों की कृपा से हो जाए।
4: शनिदेव को प्रसन्न करने के मंत्रों का जाप कैसे करना है, कौन से महाउपाय से शनि अनुकूल फल देंगे, ये सारी बातें हमने आपको बताई। लेकिन अब हम आपको शनिदेव के प्रिय एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनको बेहद पसंद है और उसका प्रयोग आपको शनि के प्रकोप से बचा लेता है।

0: सूरज के। जब आप आचरण में रखेंगे शुद्धि, तब शनिदेव लाते हैं समृद्धि।
1: शनिदेव भक्त निहित का।
0: जब आप हनुमान जी का करते हैं ध्यान, तब शनि बढ़ाते हैं आपका मान।
1: सूरज के पुत्र प्रभु छाया महता।
0: हम सभी जानते हैं कि परोपकार और जरूरतमंद को दिए गए दान से शनि की कृपा आसानी से पाई जा सकती है। हमने आपको अभी शनि के महामंत्रों के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया, लेकिन शनि देव को शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान करने से भी प्रसन्न किया जा सकता है। माना जाता है कि इस दिन आप सरसों का तेल, जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल या लोहे के वस्तुएं दान करके शनि देव की कुदृष्टि से बच सकते हैं।
2: शनि की कृपा पाने के लिए उपायों में जैसा मैंने बताया कि सुंदरकांड का पाठ, छाया दान करना, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर शनि भगवान को चढ़ाना, सायंकाल के समय घी का दीपक जलाना, ये सब जो भी नीले रंग की माला से भगवान शनि की पूजा करना, यह सब शनि की कृपा पाने के लिए महा उपाय हैं।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि शनि देव को मंत्रों के अलावा एक लोहे के छल्ले से भी प्रसन्न किया जा सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि लोहे का छल्ला धारण करने के बाद शनि की पीड़ा कम हो जाती है और धीरे धीरे शनि देव प्रसन्न होने लगते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि लोहे के छल्ले से कैसे बरसेगी शनि की कृपा। शनिदेव का आधिपत्य लौह धातु पर है। लोहे का छल्ला शनिदेव की शक्तियों को नियंत्रित करने का काम करता है। ये छल्ला घोड़े की नाल या नाव की कील का बना हुआ होता है। जब भी इसकी अंगूठी बनवाएं, इसे आग में न तपाएं। अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन लाएं। इसको शनिवार को सुबह सरसों के तेल में डुबो कर रख दें। शाम को इसे जल से धोकर शुद्ध कर लें। ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें। इसके बाद इसे मध्यम अंगुली में धारण कर लें। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये महा उपाय आपकी सभी परेशानियों का अंत कर सकते हैं। तो आप भी शनिदेव को प्रसन्न करने का जतन कीजिए, क्योंकि जहाँ शनि प्रसन्न होते हैं वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है।
3: इसी के साथ प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है? किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है? अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।
8: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
9: What you got for me, Jack?
8: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 7 साल की अनुषी ने स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। नन्ही उम्र में अनुषी को मिले इस कामयाबी से उनका परिवार बेहद खुश है।
10: चंचल आंखें, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और माथे पर जीत का तिलक, ये है स्केटिंग की नन्ही चैंपियन अनुषी सिरोही। 7 साल की है, पहली क्लास में पढ़ती है, यूपी के सहारनपुर के नगला गांव से है। हाल ही में स्केटिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी है। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया है। नन्ही उम्र में अनुषी को मिली इस कामयाबी से गांव नगला समेत पूरा इलाका खुश है, जश्न का माहौल है।
11: इसको गेम में पहले से रुचि है, तब ये नहीं था कि हाँ स्केटिंग ही करनी है, रनिंग भी अच्छी है, बट फिर आप लोग ना लोकेलिटी में देखते हो कि क्या गेम है जिसकी आपको अकेडमी मिल जाएगी जहाँ से आप प्रैक्टिस करा सकते हो। तो स्केटिंग की यहाँ पर नकुड में नकुड स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्केटिंग सिखाती है, ताइक्वांडो सिखाती है, और वहाँ के कोच हैं हमारे रवि सर। हम लोगों ने भी समय दिया और हमसे ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय वो प्रैक्टिस कराते थे स्पेशली इस गुड़िया को इस चैंपियनशिप के लिए, और खाली इसी चैंपियनशिप के लिए नहीं, इससे पहले भी नेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल लेकर आई है।
10: आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अनुषी ने महज 1 साल पहले ही स्केटिंग सीखना शुरू किया है और इतने कम समय में ही उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए पहले स्टेट और फिर नेशनल और अब इंटरनेशनल इवेंट में भी गोल्ड मेडल लेकर लौटी हैं।
12: मेरा नाम अनुषी सिरोही, मेरे कोच का नाम रवि सिंह, मैं अपनी हमारी एकेडमी का नाम है SIT। मुझे अच्छा लगता है बहुत स्केटिंग करना, मैं मेरठ जा रखी हूँ, 2 बार मेरठ जा रखी हूँ और 1 बार इंडो नेपाल जा रखी हूँ, तो वहाँ से तीनों मेरे पे सारे गोल्ड मेडल है।
10: खेल कौन सा चुने सोचा नहीं था, बस बेटी को एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाना था, सो पिता ने सारी सहूलियतें देखकर स्केटिंग को चुन लिया और अनुषी ने भी पिता के सपने को सच करने के लिए पूरी जान लगा दी। 1 साल के भीतर अनुषी कई मेडल जीत चुकी हैं।
13: स्केटिंग का गेम ऐसा नहीं था कि कुछ पहले से फिक्स था कि स्केटिंग ही करानी है, कुछ भी कराना है, ये था कि कुछ स्पोर्ट्स लेवल कराना है, तो उसके डैडा का सजेशन था कि इसको स्केटिंग में जाया जाए।
14: अनुषी फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल पे खेलने के लिए गई थी, तो हमने पीछे से यही बोला था, उसको सपोर्ट किया था कि बेटा बस खेल के आना है, हमारा कोई ये नहीं था कि फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, पहले खेल के आओ आप, फिर हमें पता चला वो फर्स्ट आई है, बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के कि बढ़िया लगा एकदम। फिर सेकेंड टाइम ये नेशनल खेलने के लिए गई, वहाँ पे भी हमने इसको यही बोला कि बस खेल के आना है, आराम से खेलो, ध्यान से खेलना है, तब भी ये फर्स्ट आई, गोल्ड मेडल जीत के आई। और अब इंटरनेशनल खेलने के लिए गई थी नेपाल, वहाँ पे भी इसने गोल्ड मेडल जीता है और फर्स्ट आई है।
10: अनुषी जिस तरह से हर मुकाबले में अपने आप को दमदार साबित करते हुए आगे बढ़ रही हैं, उससे परिवार खुश है। कोच रवि शरण को भी अनुषी से बहुत उम्मीदें हैं। उनके मुताबिक अनुषी बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और भविष्य में एशियाई और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की पूरी क्षमता रखती है। परिवार और कोच को भरोसा है कि अनुषी आने वाले वक्त में अपने गांव और देश का नाम वैश्विक मंच पर और ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बीते 24 जून को वेनेजुएला में सदी का सबसे विनाशकारी भूकंप आया। यहां 7.1 और 7.5 की तीव्रता वाले 2 पावरफुल भूकंप आए। कई इमारतें गिर गई और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ, लेकिन यहां भूकंप के दौरान गूगल ने कई यूजर्स को झटके महसूस होने से ठीक पहले अलर्ट भेज दिया था। तो भूकंप के बाद अब गूगल का ये एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट

0: बाद अब गूगल का ये एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फिर चर्चा में है, अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है।
1: क्या आपका स्मार्टफोन भूकंप आने से पहले आपको चेतावनी दे सकता है? सुनने में भले किसी साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन अब ये हकीकत है। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्हें झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले ही गूगल का अलर्ट मिल गया था। तो क्या ये दावे सही है? और अगर सही है तो क्या गूगल को भूकंप से पहले झटकों की जानकारी मिल सकती है? वेनेजुएला में भूकंप के बाद तमाम लोगों के दावे कितने सही है इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन गैजेट के जानकार मानते हैं कि आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या इंटरनेट चलाने का साधन भर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा भूकंप सेंसर भी है। दरअसल हर आधुनिक स्मार्टफोन में एक्सेलेरोमीटर नाम का एक सेंसर लगा होता है। यही सेंसर फोन की स्क्रीन को घुमाने का काम करता है, लेकिन इसके साथ ही ये कंपन को भी महसूस कर सकता है। जब किसी इलाके में जमीन के भीतर हलचल शुरू होती है तो वहाँ मौजूद एंड्रॉइड फोन उस शुरुआती कंपन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद फोन गूगल के एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है। अगर एक ही इलाके से बड़ी संख्या में फोन ऐसे सिग्नल भेजते हैं तो गूगल के सर्वर समझ जाते हैं कि भूकंप आने की संभावना है। इसके बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को तुरंत चेतावनी भेज दी जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भूकंप की शुरुआती तरंगे और नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे अलग अलग होती है। भूकंप के दौरान सबसे पहले प्राइमरी वेव आती है जो बेहद कमजोर होती है लेकिन बहुत तेज गति से चलती है। इसके बाद एस वेव आती है जो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्मार्टफोन पी वेव को महसूस कर लेता है और कुछ ही सेकंड में गूगल तक सूचना पहुंच जाती है। इस दौरान गूगल के पास लोगों को चेतावनी भेजने का समय मिल जाता है। गूगल का दावा है कि दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा एंड्रॉइड फोन एक नेटवर्क का हिस्सा है, यानी करोड़ों स्मार्टफोन मिलकर एक विशाल भूकंप चेतावनी प्रणाली की तरह काम कर रहे हैं। अलर्ट भी 2 तरह के होते हैं, हल्के झटकों के लिए बी अवेयर अलर्ट और तेज झटकों के लिए टेक एक्शन अलर्ट कहा जाता है। इन अलर्ट के साथ सुरक्षा संबंधी जरूरी जानकारी भी दी जाती है। भूकंप को शुरुआती झटकों को भाप कर अलर्ट भेजने की सुविधा भारत में भी 2023 से मौजूद है। एंड्रॉइड 5 या उससे ऊपर के ज्यादातर मोबाइल इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते उनका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to Elf Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
5: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
4: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
6: You're listening to MSNBC.
4: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमस्ताद, एयरफोर्स के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री, मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल में घायलों के लिए भीष्म क्यू। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी, 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। बारिश, बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद, नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा सॉफ्टवेयर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। सिनेमा को क्या कर्ण और जो श्री राम है, अब इन किरदारों का सहारा है, यानी कि जो पौराणिक किरदार हैं उनका सहारा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पौराणिक कथाएं दरअसल अब केवल धार्मिक ग्रंथों के पन्नों तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये करोड़ों रुपए के बजट और वर्ल्ड क्लास विजुअल इफेक्ट्स के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नया इतिहास रच रही है। तभी तो कभी सामाजिक और रोमांटिक फिल्मों के लिए पहचाना जाने वाला बॉलीवुड अब राम, कर्ण, वेदव्यास, शुक्राचार्य, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि और भगवान नरसिंह जैसे पात्रों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये संकेत है कि भारतीय सिनेमा का अगला बड़ा अध्याय पौराणिक गाथाओं के इर्द गिर्द लिखा जा रहा है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। कांतारा, हनुमान, कल्कि और महावतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों ने खुद को साबित करके ये दिखाया। अब बड़े बड़े सितारे और फिल्म निर्माता भी मानने लगे हैं कि भारतीय संस्कृति, आस्था और आधुनिक तकनीक का संतुलन मेल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकता है। बॉलीवुड की इस बढ़ती दिलचस्पी के पीछे केवल कमाई कारण नहीं है, असल में एक बड़ा कारण यह है कि आज का दर्शक वर्ग सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी कहानियों को आधुनिक अंदाज में देखना चाहता है। ये वो डिमांड है जिसने आज के सिनेमाई दुनिया के समीकरण को बदल दिया है। डिजिटल दौर में पली बढ़ी युवा पीढ़ी पौराणिक पात्रों को केवल धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं देखती, वो इन्हें नेतृत्व, साहस, कर्तव्य, त्याग, रणनीति और नैतिक निर्णय जैसे जीवन मूल्यों के रूप में भी समझना चाहती है। और यही वजह है कि निर्माता इन पात्रों को एक नई सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर मेगा बजट प्लान बनाया जा रहा है। आज के दौर का बड़े से बड़ा सुपरस्टार ले लीजिए, आध्यात्म की दुनिया से जुड़े इन आदर्श पात्रों को बड़े पर्दे पर उतारना चाहता है और खुद भी कामयाबी की आदर्श मिसाल बनना चाहता है। रणबीर कपूर और महेश बाबू जैसे सुपरस्टार्स माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब इस लिस्ट में सलमान खान भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड में सलमान के अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब खबर है कि सलमान खान महाभारत के महानायक दानवीर कर्ण की भूमिका निभा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान ओम प्रकाश मेहरा के प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। इसी के बाद से सलमान के अगले प्रोजेक्ट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बॉलीवुड की हलचल पर नजर रखने वालों का मानना है कि पीरियड ड्रामा फिल्म के लिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा और सलमान खान साथ आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों को सलमान खान कर्ण के रोल में नजर आ सकते हैं। हालांकि हम साफ कर दें कि अभी यह मामला सिर्फ चर्चा के दौर में है, इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है और ना ही किसी भी पक्ष से इसकी कोई पुष्टि आई है। बताया गया है कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा पहले साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ ये फिल्म करना चाहते थे, लेकिन लंबे समय से यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सलमान खान को यह स्क्रिप्ट पसंद आई और इसी के बाद से फिल्म को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि असल में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बॉलीवुड में पीरियोडिक फिल्मों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा में अब हर बड़ा निर्माता, निर्देशक और कलाकार पौराणिक फिल्मों में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब राजामौली की फिल्म वाराणसी को ही ले लीजिए। आपको बता दें कि राजामौली की फिल्म वाराणसी रामायण से प्रेरित है। इसमें दक्षिण के सुपरस्टार महेश बाबू रुद्र की भूमिका निभाते हुए आपको दिख जाएंगे। इस बीच नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें रणवीर कपूर श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे। अक्षय खन्ना के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के किरदार निभाने की भी चर्चा है, जबकि आमिर खान कई मौकों पर महाभारत के पात्रों में अपनी दिलचस्पी जता चुके हैं। तो अब बात हो रही है कि क्या सिनेमा को वाकई अब राम, कर्ण, इस तरह के किरदारों की जरूरत हो गई है, आवश्यकता है क्या? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। अरुण बख्शी हमारे साथ अभिनेता जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण। साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें कि शोएब चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर है। शोएब, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राम किशोर प्राचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फिल्म क्रिटिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता सना फरजीन मुंबई से। तो सबसे पहले हम सना के पास चलते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, बड़ी ही बारीकी से और करीब से वो नजर रखती हैं। तो सना, सबसे पहले आपके पास आते हुए भाई, सलमान खान को लेकर अब जो खबरें सामने आ रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कर्ण के रोल में, कर्ण के किरदार में सलमान खान को देखना, अपने आप में ये खबर जिस तरह से हमें कई सवालों को लेकर के खड़ा करता है, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में इस खबर को लेकर किस तरह की हलचल है, सबसे पहले तो ये बताइए।
1: जी ऑफ कोर्स, अभी ये फिलहाल बहुत ही एक स्टार्टिंग के स्टेज पे है। अभी जो भी खबर आ रही है वो एक स्पेकुलेशन जिसे हम कहते हैं वो है। तो डेफिनेटली अब तक की एक्साइटमेंट जो बॉलीवुड में है वो पहुंची नहीं है, बट सलमान को इस किरदार में देखना फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि किस तरीके का उन्होंने किरदार पहले नहीं किया है। और तो हमने कुछ फिल्मों में, जैसे उन्होंने बहुत पहले जब अपनी करियर की शुरुआत की तब उन्होंने सूर्यवंशम किया था, तो उस तरीके का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर और स्पेशली कर्ण जितना पावरफुल और एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है, उसमें सलमान को देखना फैंस के लिए बहुत एक्साइटेड है। और अगर राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ वो ये साथ काम करते, वो एक बहुत जाने जाने डायरेक्टर है, उनकी सारी फिल्में बहुत तगड़ी फिल्में रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्साइटमेंट सलमान और राकेश ओम प्रकाश मेहरा का, वो बहुत ज्यादा बॉलीवुड को या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो ज्यादा एक्साइट करता है। एंड सलमान डेफिनेटली अभी चाहते हैं कि वो नए नए किरदार करे, अपने फैंस को जो एक एक्सपेक्टेशन उनकी फैंस की है उनसे वो उन्हें पूरा करे। और वो कहीं
0: जो खबरें अभी सना आ रही थी अभी कुछ दिनों पहले, उसमें ये भी बताया जा रहा था कि साउथ के कुछ डायरेक्टर्स से संपर्क में है सलमान खान, वो चाहते हैं कि कुछ बड़ी फिल्म वो बनाए उनके साथ, इस तरह की भी कुछ खबरें थी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी नयनतारा के साथ वो एक ऑलरेडी फिल्म शूट कर चुके हैं, एटली के साथ एक रूमर्स थी कि वो उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि साउथ के जो डायरेक्टर्स है वो एक बड़ी जो बड़े पर्दे की जो एक्सपीरियंस हम जिसे कहते हैं वो शायद वो दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी मातृभूमि जैसे रिलीज होने वाली थी बट कुछ इश्यूज की वजह से ऑफकोर्स वो डिले हो चुकी है। तो सलमान नहीं चाहते कि अब वो अपने करियर में उस मुकाम में है कि वो इस तरीके की बिग बजटेड बड़ी पर्दे वाली एक्सपीरियंस वाली फिल्में करे और मेगा ब्लॉकबस्टर जिसे हम कहते हैं वो करे। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने जितने
0: कहीं ना कहीं सलमान को जरूरत भी है सना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है सलमान जिस स्टैचर के रहे हैं, सुपर हीरो एंड बिग स्टार, फिल्म स्टार, तो वो उसको बरकरार रखने के लिए उनको वाकई एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म की जरूरत भी है।
1: जी बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि आप एक स्टार दम आप देख चुके हो और अभी जैसे वो राज जैन डीके के साथ में एक सुपर हीरो वाली फिल्म में भी डिस्कशन चल रही है, तो शायद अब वो इस करियर के मुकाम में जहां वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं कि अब मैं अपने फैंस को वो दूंगा जो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूं, रोमांस कर चुका हूं, एक्शन कर चुका, अब मैं कुछ डिफरेंट करूं। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक एक्टर अपने आप को रीइन्वेंट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये एक एंड ऑफ द स्टेज हो जाता है करियर की, अब आप 10 साल और काम करोगे तो आप चाहते हो कि आप अपनी बढ़िया से बढ़िया फिल्में करो, अपना बेस्ट दो। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सारे डायरेक्टर्स के साथ सलमान ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट अगर वो करना चाहेंगे तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो है साउथ के फिल्म मेकर्स। और जिस तरीके,
0: लेकिन आपको नहीं लगता है सना इसके लिए अगर कर्ण जैसी भूमिका करते हैं सलमान, तो उनको सलमान खान वाले से निकलना पड़ेगा?
1: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शायद सलमान चाहते भी है कि वो सलमान खान अपने भाई वाले अवतार से निकले, अपना स्टाइल जो वो देते हैं वो वहां से हटकर कुछ डिफरेंट करे। एंड कर्ण इतना पावरफुल कैरेक्टर है और हमने बहुत बार उनका पोर्ट्रेयल देखा है कर्ण का टीवी पे, सिनेमा पे, पर इस तरीके से अगर बड़े पर्दे पे आ रहे और सलमान खान उसे लीड कर रहे, तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी कहानी है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे। और जैसे आजकल हम ग्लोबली अपनी फिल्म ले जाना चाहते हैं, रामायण, वाराणसी, ये सारी माइथोलॉजिकल फिल्म ऑलरेडी आ रही है, तो सलमान का अगर नाम जुड़ता है तो आप कर्ण की कहानी पूरे वर्ल्ड पे, विश्व में ले जा सकते हैं। और आई थिंक सलमान से बेटर कोई फेस ही नहीं हो सकता इस किरदार के लिए, क्योंकि एक तो है कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप कर्ण जैसा रोल कर रहे हो, तो वो एक क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली और ज्यादा आ जाती है। एंड आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड होंगे अगर ये काम कर जाता है, एंड वी होप काम कर जाता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सलमान को हम कुछ डिफरेंट करते हुए देखें, क्योंकि बाकी सारे इतने सालों से वो 30 साल का करियर रहा है उनका, उसमें हमने उनको बहुत कुछ करते हुए देखा है, बट एक माइथोलॉजी एक आई थिंक एक जॉनर है जो अब शायद वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम भी बहुत एक्साइटेड है उसके लिए।
0: बिल्कुल सना, आगे भी आपसे हम बात करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे बने हुए हैं। अरुण बख्शी के पास चलते हुए, अरुण आपसे ये पूछना चाहूंगी, चूंकि आप अभिनेता हैं, आप एक्टर हैं, कितना मुश्किल ये होता है इस तरह के जो माइथोलॉजिकल पात्र हैं उन्हें निभा पाना? क्योंकि देखिए बाकी जो कहानियां किस्से जो चलते रहते हैं, जो हमने फिल्मों में देखा है या फिर फॉर दैट मैटर टेलीविजन पे हम देखते हैं, तो वो हमारे इर्द गिर्द की आसपास की चीजें होती हैं, लेकिन माइथोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप बहुत छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप कैरेक्टर के साथ बहुत इम्प्रोवाइजेशन उसमें आप कर नहीं सकते हैं।
2: साहब 90s में ये दौर शुरू हो गया था जब रामायण बनी थी और महाभारत बनी थी। आई एम ऑडिबल? हेलो
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ।
2: 90s में हमने सीरियल किया था बी आर चोपड़ा जी का महाभारत, उसमें हमने रोल किया था सेनापति पांडवों का, धृष्टद्युम्न का रोल किया था। ये लुंगी और दूसरे वस्त्र पहनने के बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपकी समझ बदलती है, आपके हाथ में स्क्रिप्ट आती है, उसके अंदर आप डूब, आपको डूबना पड़ेगा। कोई भी कलाकार हो, डूबना पड़ेगा उनके शुद्ध हिंदी में और उसके जो भाव हैं उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये बड़ी खुश खबरी है, बड़ी अच्छी खबर है कि जो जो हीरोज हैं वो उन्होंने ये काम करना शुरू किया है, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो दूसरे कलाकार हो, रणबीर कपूर हो, कोई भी हो, ये इट्स ए गुड न्यूज। हवा में कहीं ना कहीं डिविनिटी है, डिविनिटी का फायदा उठाना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, वो तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है।
0: लेकिन आपसे जो जुड़ा सवाल है अरुण जी, चूंकि आपने खुद आपने बताया, आपने जिया है उस पात्र को, उस किरदार को, 90s में आपने खुद जिया है, तो मुझे ये बताइए एज एन एक्टर, जब उस किरदार में कोई आता है जिसको हमने देखा नहीं है, जिसको हमने सिर्फ सुना है या फिर पढ़ा है, उसको जीना कितना मुश्किल होता है? और आप जब उस किरदार को, पर्टिकुलर किरदार को जी रहे थे, तो क्या फर्क था रोज की जिंदगी में, और जब आप सेट पर जाते थे तो फिर किस तरह का माहौल रहता था, आप महसूस कैसा करते थे, जरा जानना चाहेंगे।
2: देखिए आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी है और मेरा दिल भी करता है इसका बड़ा प्यारा जवाब देने के लिए। मैं आजकल एक जगह पर रावण का रोल कर रहा हूं और रावण का रोल करने के लिए उसकी जो तैयारी है, गहन तैयारी है, कि रावण कौन था, क्या था, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से वो बात करता था, वो जब सीता जी का दूसरा रूप था, दूसरा जन्म था, उसमें एक वेदवती नाम की स्त्री थी, उनके साथ में वो जो रावण है कैसे बात करता है, छिछोरपन के साथ बात करता है, वो मैंने जब स्क्रिप्ट देखी मैं हैरान रह गया, मैं वाकई हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, उसके बीच में डूबना पड़ा कि इसके क्या क्या है। और दूसरी बात है रावण का जो वो तांडव स्त्रोत है, उसके ऊपर गहन में शिव तांडव स्त्रोत, उसके ऊपर मैं गहन वो कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ, जैसे जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित गले वलम्ब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम दमट दमट दमट दमन, मतलब ये आपको डूबना पड़ेगा इसके अंदर, जब तक आप डूबेंगे नहीं, आप ये आग का दरिया है और आपको डूब के तैर डूब के जाना है।
0: ये अभिनेता के अंदर से ये बातें निकल रही है, बिल्कुल मैं महसूस कर सकती हूँ कि इस वक्त आप जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं या फिर आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं पर्दे पर या जहां कहीं भी थिएटर में, तो जाहिर सी बात है उसमें अभी आप उसी जोन उसी मोड में है, और ऐसा ही एक अभिनेता उसी जोन में रहता है। आऊंगी मैं आपके पास और बात करूंगी अरुण जी, बहुत कुछ आपसे जानने को है, लेकिन यहाँ पर शोएब आपके पास आते हुए, चूंकि आप फिल्म प्रोड्यूसर है, मैं ये जानना चाहूंगी कि अचानक से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, और ये कैसा ट्रेंड है आपको समझना भी, मैं समझना भी आपसे चाहूंगी कि अचानक से ये जो माइथोलॉजिकल मूवीज है उसकी तरफ फिल्म मेकर्स आगे बढ़ रहे हैं, पैसा लगाने को भी तैयार हैं। उसके पीछे ऑफ कोर्स हमने देखा है कि नरसिम्हा महावतार नरसिम्हा जैसी जो मूवी है ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, लेकिन और क्या वजह है इसके पीछे?
3: गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए श्वेता, ये जो फिल्म मेकिंग का जो पूरा सिलसिला है ये सिर्फ एक क्रिएटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक बिजनेस भी बहुत है, जिससे हम हमारी अपनी फैमिलीज रन करती हैं, वी रन आर बिजनेसेस एंड प्रोडक्शन कंपनीज। ये सिलसिला तो बहुत जमाने से चल रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं जो ऑडियंस की रीच बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। ये फिल्मों का इसीलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी सेट पैटर्न है, और इसमें जहां 150 करोड़ की पॉपुलेशन में तकरीबन 100 करोड़ बहुत स्ट्रांग फेथ वाली ऑडियंस है, जो कि सिर्फ 17-18 करोड़ हमारी फिल्म गोअर्स हैं, उसमें से जब इस तरह की हम कोई रिलीजियस या हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं तो जो रिलीजियस मान्यता रखने वाले लोग, हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है, उससे हमारे बिजनेस बढ़ते हैं।
0: यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने आपने ये कहा कि जो बात मैंने अरुण जी से पूछी थी उनके साथ बिल्कुल अलग मामला है, आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ सारा मामला आप लोगों का खासकर यानी फिल्म मेकर्स का खासकर जो है वो पैसे से जुड़ा मामला है। भाई पैसा वहीं लगेगा जहां से पैसा आएगा, आप दो लगाएंगे पैसा तो आपको चार की उम्मीद होगी ही होगी। मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे कि क्या सिल्वर स्क्रीन पर आज फिल्म मेकर्स इतना पैसा लगाने को, क्योंकि हजारों करोड़ की मूवीज बन रही है हम ये देख रहे हैं, तो ये कैसा ट्रेंड है और कितना विश्वास है आपको अचानक से कि इतना पैसा अगर आप माइथोलॉजिकल मूवीज में लगाएंगे तो उसका दुगुना या तिगुना आपको आएगा?
3: नहीं, ये जरूरी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो दो से तीन दो गुना हो जाए या पांच गुना हो जाए। अभी हमने एग्जांपल देखा, अगर आप सच्ची नीयत से सही नीयत से फिल्म बनाते हैं और उसमें कोई आपका एजेंडा नहीं है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फिल्में चलेंगी एंड यू विल मेक मल्टीपल टाइम्स द मनी दैट यू इन्वेस्टेड। अभी हमने एग्जांपल देखा, आदि पुरुष नाम की फिल्म थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि उसमें नीयत सही नहीं थी। भगवान राम को भी उन्होंने, मैं कुछ अजीब सा क्वेश्चन मार्क उस पूरी फिल्म के डायलॉग्स पे था
0: जी, जी।
3: और वो फिल्म के खिलाफ क्या क्या हुआ वो हम सबने देखा। तो अगर आपकी नीयत सही है तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा या आपकी फिल्में फ्लरिश करेंगी। जहां तक ये कर्ण वाली फिल्म की बात है तो मैं सना से अग्री करता हूँ कि हु बेटर देन सलमान खान टू प्ले दिस कैरेक्टर, जो इंडियन माइथोलॉजिकल हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट वॉरियर्स, वो अगर सलमान खान प्ले करते हैं एट द एज दैट ही इज इन, इट्स मोर देन वेलकम और बहुत ह्यूजली सक्सेसफुल ये फिल्म रहेगी। देखिए दो एस्पेक्ट है इसके, एक बनते हैं बनाते हैं लोग रिलीजियस फिल्में और एक बना रहे हैं एजेंडा ड्रिवन फिल्में। जहां तक रिलीजियस फिल्में हैं माइथोलॉजिकल, उसमें फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरा पिछले 8-10 सालों से जो मैं फिल्मों का रुझान देख रहा हूँ उसके ऊपर बेस्ड है मेरी जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी।
3: अगर माइथोलॉजिकल फिल्में हैं तो उसमें ऐसा कोई एजेंडा ड्रिवन हो ही नहीं सकता, बिकॉज वहां आपके पास
0: आप
3: कोई
0: छेड़छाड़ नहीं कर सकते फैक्ट्स के साथ,
3: आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते फैक्ट के साथ, प्लस आप उसमें जो रिसर्च करेंगे वो प्योर ऑथेंटिक रिसर्च होगी बेस्ड ऑन जो आपकी ऑथेंटिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं। वेयर एज जो आप ये वाली फिल्में बना हिस्टोरिकल जिसे आप कहते हैं, जिसको आप सांस्कृतिक फिल्में कहने लगे हैं आजकल, जो पिछले 500-700 सालों से एंटी मुगल या किसी एक धर्म का विलन आप दिखाते हैं, वो उसी सोच से उजागर होता है जहां आप एक कम्युनिटी को विलन बनाकर पेश करना चाहते हैं। जब ये होता है तो वहां मुझे आपकी नियत पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और ये बढ़ भी इसलिए रहा है चलन क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के लोग, देश की सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसी वाहियात मनहूस फिल्मों को प्रमोट
0: मुझे
3: भी
0: लगता
3: करते
0: है कि हम अपनी चर्चा से भटक रहे हैं। हम
3: नहीं, नहीं भटक नहीं रहे, नहीं नहीं, ये दो चीजें अलग अलग है। मैंने कहा जब आप माइथोलॉजिकल फिल्में बनाते हैं तो उसमें आपको डिविएट करने का कोई वो नहीं मिलता,
0: नहीं तो हिस्ट्री से भी आप हिस्ट्री के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती ना, हिस्ट्री के साथ भी जो छेड़छाड़ होनी थी, देखिए किताबों में जो छेड़छाड़ हुई थी उसको बदलने की जरूर कोशिश की जा रही है कि भाई जो सच्चाई थी वो सामने आए और बच्चे सही चीज पढ़े।
3: जो रिसर्च हो रही है वो उसी से उसी के उन किताबों पर बेस्ड ही होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उन किताबों पर जो चीजें अगर गलत कहीं कही गई है या लिखी गई है उसी को करेक्ट करने की बात है। लेकिन यहाँ खास करके अभी एजेंडा ड्रिवन इसकी बात नहीं हो रही है जो आप कह रहे हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन पंकज यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि अचानक से आपको क्या लगता है, बिकॉज़ आप एक सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट रह चुके हैं, आप ऑब्वियसली बहुत नजदीकी से चीजों को समझते हैं और जानते हैं, क्या अचानक से तो ऐसा होता नहीं है कि एकाएक फिल्म मेकर्स जो है इस तरह की फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं? ऑब्वियसली जब वो देखते हैं मार्केट में लोग पसंद कर रहे हैं इस तरीके की फिल्मों को देखना, तो क्या एकाएक ये ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग वाकई माइथोलॉजिकल या फिर पीरियोडिक फिल्में जो हैं वो देखना अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, न सिर्फ फिक्शनल या फिर जो आजकल, पहले हम 90s में सिर्फ रोमांटिक फिल्में देखते थे उसके अलावा?
4: अगर आप देखेंगे तो भारतीय सिनेमा की जो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र है,
0: बिल्कुल,
4: तो माइथोलॉजिकल फिल्में हमारे देश में शुरू से बनती आ रही हैं और उनका बहुत बड़ा एक बाजार रहा है। बहुत सारे बाबू भाई मिस्त्री जैसे लोगों ने 100-100 फिल्में बना रखी है, विजय भट्ट, नाना भाई भट्ट लोगों ने माइथोलॉजिकल फिल्मों का पूरा एक सीरीज बना रखी है। तो माइथोलॉजी की फिल्में बनना बीच में 60s या 70s जैसे जैसे आया और उसके बाद एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ और पीरियोडिक फिल्में धीरे धीरे साइड होती चली गई। लेकिन अभी 2009 में एक फिल्म आई थी मगधीरा राजा मौली की, जहां से हम इसका रिवाइवल मान सकते हैं कि कैसे उन्होंने पीरियड फिल्म की और मॉडर्न आज के टाइम की कहानी को मिक्स करके फिर से इस ट्रेंड को रिवाइव किया। फिर उसके बाद बाहुबली बनाई, अभी वो वाराणसी बना रहे हैं। तो हमारे दर्शक शुरू से रहे हैं जो धार्मिक फिल्में पौराणिक फिल्में देखते रहे हैं। जिस साल शोले रिलीज हुई थी उसी साल जय संतोषी मां रिलीज हुई और उसने बहुत अच्छा कारोबार किया।
0: बिल्कुल,
4: महात्मा गांधी ने जो एक फिल्म देखी अपने जीवन में वो रामराज।
0: जो आपने ये बात कही जय संतोषी मां, मुझे अचानक से वो बचपन की याद आ गई। मुझे ये ध्यान है कि हालांकि मैं तो नहीं गई थी देखने के लिए ये मूवी, मैं काफी छोटी थी, लेकिन लोगों ने बताया कि फ्राइडे फ्राइडे लोग जाते थे और वो प्रसाद वसाद लेके हॉल में जाते थे देखने के लिए।
4: आरती होती थी वहां पे, चप्पल उतार के जाते थे और उसके साथ ही संतोषी माता का एक पूरा एक बाकायदे ट्रेंड शुरू हुआ, फोटो बिकने लगी, बाकायदे घरों में लोग व्रत रहने लगे। और महात्मा गांधी ने जो इकलौती फिल्म देखी अपने जीवन में रामराज, वो भी मतलब धार्मिक फिल्म थी, प्रेम अदीब और शोभना समर जो काजोल की नानी है, शोभना समर तो उसमें सीता बनी थी और ये अपना प्रेम अदीब आपके उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, भरत मिलाप में दोनों राम और सीता बने थे, इतना लोकप्रिय थे दोनों किरदार कि उनके कैलेंडर छपे थे, कई सालों तक उनके कैलेंडर बिकते रहे जिसमें राम के रूप में प्रेम अदीब थे और सीता के रूप में शोभना समर। अभी जो फिल्म बात कर रहे हैं सलमान खान की कर्ण को लेकर के, ये एक दूसरा विषय है जिसको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये शायद चुनाव के आसपास रिलीज हो। कर्ण सूत पुत्र के रूप में मशहूर हुए, वो सूर्य के पुत्र सूत पुत्र के रूप में मशहूर हुए सिनेमा के एक बड़ा तबका हिंदी सिनेमा में। दक्षिण भारत में ये है कि दलित विमर्श होता है सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में दलित विमर्श में सिनेमा फिल्में बहुत कम बनी है। पार जैसी फिल्में थी, नसीरुद्दीन शाह वगैरह ने की, ओम पुरी ने वैसी फिल्में की, उसके बाद से दलित विमर्श की फिल्में नहीं बनी है। क्या कर्ण दलित विमर्श को रिवाइव करने की कोशिश है, इसकी तरफ भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। कर्ण का जो करिकुलर है जिसको कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मिरथी लिखी है जिसमें की शुरुआत ही वो वहीं से करते हैं, जय हो जग में दिले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। अगली लाइन है किसी व्रंथ पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। तो गुणों का आदि और शक्ति का मूल खोजने की कोशिश पढ़े लिखे लोग तो नहीं करते हैं लेकिन राजनीति करती है।
0: बिल्कुल।
4: तो क्या कर्ण का किरदार जो फिल्म नहीं बन पा रही है, कई फिल्में बन रही है, एक राकेश ओम प्रकाश मेहता बना रहे हैं जिसके लिए सलमान खान की चर्चा हो रही, पहले शायद इसमें सूर्या को हीरो बनना था, सूर्या की एक फिल्म कोरोना टाइम में रिलीज हुई थी जय भीम जिसमें वो वकील बने थे, वो भी दलित वंशी कहानी थी, उसी के बाद उनका नाम इस फिल्म के लिए आया था। और एक दूसरी फिल्म कुमारी श्वास लिख रहे थे वाटू भगनानी के लिए, वो भी कर्ण ही है, उसमें भी फिल्म बनना थी। और एक मराठी का बेहद लोकप्रिय उपन्यास है जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में पता होगा, मृत्युंजय। मृत्युंजय का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, उसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बन चुका है जिसमें राज जोशी आई थिंक थे बनेंदर, उसमें काम किया था
0: जी।
4: और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी टीवी सीरियल बन चुका है। कर्ण की कहानी अपने आप में इतने लेयर्स वाली कहानी है कि एक व्यक्ति जो पांडवों में सबसे बड़ा है, युधिष्ठिर से वो 9-10 साल ज्यादा बड़े थे, युद्ध जब हुआ है तो ये सारे पांडव कौरव जो हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं उनकी आयु करीब 90 साल के आसपास थी जब महाभारत का युद्ध हो रहा है। कर्ण की जब मृत्यु हुई है वो 100 साल से ऊपर थे।
0: बिल्कुल।
4: लेकिन अभी एक फिल्म आई है कृष्णावतारम, अगर आप ध्यान से देखें कृष्णावतारम की शुरुआत होती है, मुझे कहना नहीं चाहिए हमारे आराध्य कृष्ण, और ये हिंदू धर्म की परंपरा नहीं है कि आप आराध्य देव का निर्वाण देखें या उनके बारे में बात करें। तो कृष्णावतारम अगर नहीं कारोबार कर पा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो कहानी शुरू होती है कृष्ण के पैर में तीर लगने से और समाप्त होती है कृष्ण के निधन पर। तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में जैसे रामचरितमानस में सिर्फ 7 कांड है, 8वां कांड हटा दिया गया लोकेश कांड क्योंकि उसमें राम का निर्वाण है। वाल्मीकि रामायण इसीलिए घरों में नहीं लिखी जाती है, नहीं पढ़ी जाती क्योंकि उसमें लोकेश कांड में राम का निर्वाण दिखाया गया है। हम अपने आराध्य देवों का
0: बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं ये जो भावनात्मक एक एक लगाव एक जुड़ाव है वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और यही सारी बारीकियां हैं जो फिल्म मेकर्स जो हैं उनको समझने की यहाँ पर जरूरत होती है। रामकिशोर जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, फिल्म समीक्षक भी हैं, ये बताइए कि पहले भी फिल्में आती रही हैं, अभी जैसा कि पंकज जी ने भी बताया ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की फिल्में बनी हैं, पहले भी आती रही हैं, हमने तो मेगा सीरियल्स देखे हैं, भाई रामायण हमने अपने समय में देखा है, महाभारत हमने देखा है, ये सीरियल्स आज भी मतलब कोरोना काल में आपने देखा होगा कि दोबारा जब ये टेलीविजन पर आया तो ठीक उसी तरह से जिस समय हम अपने बचपन में बैठ करके देखा करते थे पूरा घर, उस समय भी हाथ जोड़कर बैठ करके कोरोना काल में हर घर में लोगों ने रामायण फिर से देखा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज के समय में अब जो ये मूवीज इतनी बिजनेस कर रही हैं और करोड़ों में बनाए भी जा रही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इसके पीछे भावनात्मक जुड़ाव है या फिर कहानी कहने का जो तरीका बदला है, जो VFX की एंट्री हुई है, जिस लार्जर देन लाइफ जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है?
5: इसके तहत दो तरह की बातें हैं। सबसे पहले तो मैं, पंकज भाई ने जो बात कही है, एक भावनात्मक जो हमारा लगाव है, हमारे जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है सब कुछ, वो बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात कि एक जो अभी शोएब साहब जो बात कर रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने बात करते हुए जब आपने उनको टोका कि आप विषय से भटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो रिलीजियस मामले हैं उसमें अभी जो फिलहाल जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या कुछ लोग जो है वो एक वाहियात किस्म का प्रोपेगंडा जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शोएब भाई, शो में इस तरह की बात जो है वो ठीक नहीं है करना। पंकज भाई, आपसे बड़े दिनों के बाद आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ। दो चीजें हैं कि देखिए, धार्मिक फिल्में और ऐतिहासिक फिल्में दोनों का जो पंच है वो अलग अलग है। जो धर्म है वो हमारा इमोशन, फील, हमारी भावना है, और जो इतिहास है वो हमारी जानकारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी धार्मिक चरित्र होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया नहीं जा सकता है, उनकी जानकारियां कम होती हैं, और एक सेट पैटर्न में जितना हम जानते हैं उससे आगे आप उसको छेड़ नहीं सकते। इतिहास में थोड़ा सा बदलाव करके आप चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखेंगे जैसे केतन मेहता अभी जय सोमनाथ बना रहे हैं, बहुत सारी फिल्में भी, पंकज ने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है, तो कुल मिला के जो ट्रेंड अप चालू हुआ है उस ट्रेंड में जो बाहुबली का जो अवतार सामने आया उससे ऐतिहासिक फिल्मों का एक जो चलन शुरू हुआ है उसमें पैसा, बिजनेस, और जो एक बिजनेस को विस्तार के रूप में देखने की जो हमारी तसल्ली होती है वो शायद इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है। लेकिन इसमें जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर जो फिल्में बनाने की कोशिश कर रही है उसमें दो चीजें हैं। मैं अभी तक ये सोचकर बड़ा हैरान हूं कि सलमान खान जो है वो करण की भूमिका करने जा रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कुछ समय पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर और जिशान खान को लेकर जो उन्होंने कुछ हिंदू जो माइथोलॉजी है हमारे उसके कुछ कैरेक्टर के थे उन पर विवाद हो गया था, तो अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि साहब सलमान खान करण की भूमिका क्यों कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कोई विवाद इस पर नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जितने भी कैरेक्टर ये होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं, और उनको स्क्रीन के ऊपर सहेजना और उनको बनाना, उनको क्रिएट करना और फिर उसको एक नया विस्तार देना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सलमान खान जिस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं उनके लिए एक फायदा बहुत बड़ा है कि जो आपने भी श्वेता भी बात की कि फिल्मों में इस वक्त कंटेंट से ज्यादा जो है जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। ओरिजिनल जो कैरेक्टर है हमारा वो हमारा सिर्फ इतना ही सामने दिखाई देता है जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, इसके अलावा जो आपके आसपास का जो सिनेरियो है वो टेक्नोलॉजी से, VFX से और जो 3D एनिमेशन और तमाम तरह के ग्राफिक्स जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें वो चला जाता है। तो एक तरह से ये आसान भी होता है कि एक्टर के लिए बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ होता नहीं है, वो डायरेक्टर और टेक्निकल जो क्रू टीम होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां और चुनौती हो जाती हैं कि वो एक साधारण से एक्टर को भी इतना भव्य और लार्जर देन लाइफ कैसे दिखाएं। तो आसान रास्ता जो है वो एक सामने भी दिखाई दे रहा है एक्टर्स के लिए कि हम अगर ये करते हैं तो हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक नए रूप में सामने आ सकते हैं। तो कई तरह की चीजें जो है वो इससे जुड़ी हुई है, लेकिन कुल मिला के जो एक ट्रेंड होता है जैसे पंकज ने कहा कि फिल्में हमारे यहाँ दशकों से बनती रही हैं, धार्मिक फिल्मों का चलन हमारे यहाँ आज से नहीं है, बहुत पहले से शोले को मात देने वाली जय संतोषी माता बनी, और इस वक्त भी आप देखिए जब बाहुबली आई उसके तुरंत बाद जो है रामायण पर आधारित एक फिल्म आई, लेकिन प्रभास की जो फिल्म थी उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा एक चीज और है कि अब माइथोलॉजिकल फिल्मों में जो विषय है जहां तक आपकी जानकारी है उससे कुछ नया ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि पंकज आपको मालूम होगा रामायण एक बनी थी टीवी पर जो अभी आई थी उसमें जो कैकई का जो कैरेक्टर था, अभी तक कैकई के बारे में सिर्फ ये था कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, ये तथ्य सामने कभी नहीं आता था कि भाई उसने रामचंद्र को वनवास 14 दिन का क्यों दिया। तो उसने उस सीरियल में आप देखिए कि वो कहानी बताई है कि उसकी वजह क्या थी, असल में वो बदला ले रही थी और वो किसी और से प्रेम करती थी, उसका प्रेम छीना गया, उसके पिता की मृत्यु हुई, तो उसने वो बदला जो है मंत्रा के साथ मिलकर वहां लिया, और ये बात उसने
0: शायद ये बात है रामकिशोर जी, शायद ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज का नया जनरेशन है, वो जानना चाह रहा है। हाँ, वो जानना चाह रहा है, वो समझना चाह रहा है, और इसीलिए शायद वो पसंद भी कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग जा रहा है इसे देखने के लिए, हर उम्र के लोग जा रहे हैं इसे देखने के लिए। चलिए, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, और खास करके अब अगर सलमान खान आते हैं कर्ण की भूमिका में, तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा या लोगों को कितना वो पसंद आ पाएगा, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।
6: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now. Today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और हम आज चर्चा कर रहे हैं क्या बॉलीवुड को यानी कि सिनेमा को अब श्रीराम और कर्ण जैसे किरदार का सहारा है, क्योंकि बात जो सामने आ रही है उसमें यह है कि सलमान खान कर्ण की भूमिका निभाते हुए हमें आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आते हुए एज ए कैरेक्टर, अगर हम एक अभिनेता के तौर पर ही आपसे जानना चाहें तो सलमान खान का जो स्टारडम रहा है, जो वो भाई के तौर पर या फिर सुपर हीरो के तौर पर हमें नजर आते रहे हैं इतने समय में, आपको क्या लगता है कि पहला सवाल, क्या कर्ण के तौर पर एक अभिनेता के तौर पर अगर वो कर्ण बनते हैं तो उस कैरेक्टर के साथ वो जस्टिफाई कर पाएंगे? दूसरा सवाल ये कि अगर ऐसा करते हैं तो उनका जो अभी तक का स्टारडम रहा है उसमें किसी तरह से कोई कमी या फिर आप दूसरे तरीके से लोग उन्हें परसीव करने लगेंगे, ऐसा कुछ होगा या हो सकता है?
1: देखिए, सलमान के साथ मैंने 6-7 फिल्में की और उनके साथ बहुत समय हमने गुजारा है। He is a very hardworking boy, हमने उसको ये भी देखा है, अकेला अपने आप के साथ भी लड़ते हुए भी हमने देखा है तो कैसे वो अपने आप को लड़ता है, कॉन्ट्रेडिक्ट करता है कि नहीं यार, अगर इसमें अपने आप से अगर बात करता है कि इसमें ये लाइन डाल लूं, ये शब्द डाल लूं, फिर सोचता है, समझता है। हमने उसका वो जो क्रिएटिव पार्ट है वो देखा है और हमको अच्छा भी लगता है। और ये अगर ये रोल करते हैं करण पुत्र का, तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक उसका हार्डवर्क, एक उसके लिए एक नई चीज, एक नई बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका तलफ्फुज़ बहुत अच्छा है। आप जब बिग बॉस देखते हैं तो उसकी हिंदी, उसकी उर्दू, उसकी इंग्लिश, वो कोशिश करता है कि हिंदी में बात करे। यहाँ पे हिंदी क्लिष्ट होगी, डेफिनेटली क्लिष्ट होगी, क्लिष्ट ज्यादा नहीं होगी तो कुछ शब्द तो डेफिनेटली होंगे। एंड आई नो हिम वेरी वेल, वो इसके ऊपर बहुत काम करेगा एंड आई एम श्योर ही विल पुल थ्रू अ परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात का है कि ये जो जितने भी रोल हैं, ये जो जाने माने कलाकार हीरोज कर रहे हैं, लेकिन जब ये जब चीज शुरू होती है तो ऐसा कलाकार होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ही ना हो। आप वहां पे करण को देखने जा रहे हैं, आप अपनी आस्था को लेकर जा रहे हैं, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, शुरुआत तो हो गई है, पंकज जी ने जिक्र किया था फिल्म कृष्णा वतारम का, मैंने वो देखी है फिल्म, इट इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, वंडरफुल फिल्म। उसकी स्टोरी लाइन जो है, किस तरह से वो तीन रानियां जो उसकी हैं, रुक्मणी है, सत्यभामा है और उसके अलावा राधा जी हैं, हालांकि राधा जी को ने थोड़ा सा इधर किया है, सत्यभामा को आगे किया है, वो नया एंगल है। It was a wonderful film. I loved that film. उसमें गाने बहुत खूबसूरत थे, उसमें उसका लुक बहुत, उसके डायलॉग बहुत अच्छे थे, उसका जो उसका क्रिसेंडो था, उसका जो था वो, it was very good, very nice. I loved that film. मतलब शुरुआत हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि और कलाकार आए। और ये जो मैं लेकिन, बोल
0: लेकिन,
1: रहा हूं।
0: लेकिन आप जो कह रहे हैं ना अरुण जी, आप ही की बात से ये पूछते हुए, क्योंकि भाई हमने भी देखा है आपको प्ले करते हुए कैरेक्टर्स देखे हैं उस तरह के, और हमने ये भी देखा है कि वो एक दौर था जब अरुण गोविल जी ने एज अ राम वो हमारे सामने आए तो बहुत मुश्किल हो गया लंबे समय तक हम किसी और को राम के किरदार में पसंद ही नहीं कर पाए, उन्होंने इस तरह से निभाया उस किरदार को। तो आपसे मैं ये समझना चाहती हूं कि इस तरह का कोई भी धार्मिक, जो धार्मिक फिल्में बनती है, माइथोलॉजिकल फिल्में बनती हैं, इसमें जो एक्टर होता है उस एक्टर को भी क्या आध्यात्मिक इंक्लिनेशन उसका होना थोड़ा जरूरी होता है, या फिर वो नेचर वाइज भी उस तरह का थोड़ा हो तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाता है, ऐसा जरूरी है क्या?
1: बिल्कुल लाजमी है जी। अगर आप गीता, श्रीमद् भागवत या महाभारत नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? सिर्फ डायलॉग नहीं बोल सकते हैं कि आप सोचें कि जो लिखे हुए डायलॉग है वो भी उनको बहुत तमीज के साथ बोलने पड़ेंगे। उसके पॉजेस, उनके पॉजेस बड़े चिल्लाते हैं कि यहाँ पे पॉज मत लो भाई, संस्कृत है, आपको डूबना तो पड़ेगा मैम, डेफिनेटली डूबना पड़ेगा। एंड आई टेल यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट जेंटलमैन मिस्टर बॉबी मलिक, जिसने मुझे रावण का रोल दिया है। मेरी आजकल जो थिंकिंग है वो बहुत मजेदार थिंकिंग है, मैं डुबा देता हूँ, कभी ये श्लोक पढ़ू, कभी ये पढ़ू, उसका उच्चारण ठीक होना चाहिए। और मुझे गाना है, बिकॉज आई एम ए सिंगर ऑल्सो, तो मुझे ये जो स्रोत है, मैंने कोई 336 गाने गाए फिल्मों में,
0: क्या बात है,
1: दे आर चार्ट बस्टर्स, प्लीज आप उसको देखिएगा। आई हैव सॉन्ग फॉर ऑल द हीरोज, ऑल द हीरोज,
0: क्या बात,
1: क्या संजय दत्त, क्या दूसरा, क्या तीसरा, चौथा, इवन अजय देवगन। मैं म्यूजिक में हूं तो मेरा कहने का मतलब है वो जो श्लोक है उनका उच्चारण, जो जो छोटी छोटी चीज है, डिटेल वर्क है, उसको मैं कैच कर रहा हूँ। और मैंने बनाया कि 15 दिन में मुझे वो रिकॉर्ड करना है, लेकिन 15 दिन लग, पिछले 15 दिन से अभी 15 दिन
0: आपको लगना पड़ेगा, आपको डूबना पड़ेगा। एक अभिनेता ये बातें कह रहा है और मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि भाई आप जो आप जिस कैरेक्टर में हैं और जिसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं या जाने वाले हैं, तो उसका इन एंड आउट आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने आप को, आपको अपने आप को भूलना होता है और पूरी तरह से उस कैरेक्टर में आ जाना होता है। ऐसा आ जाना होता है कि सामने वाला भी पहचान ना पाए कि आप कोई और हैं, लोग यही समझे कि आप वही कैरेक्टर हैं। शोएब जी आऊंगी आऊंगी अरुण जी, शोएब जी आपसे यहाँ पर पूछते हुए आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह से अब ये ट्रेंड बढ़ पड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड अब बॉलीवुड का क्या ये अब ग्लोबल होने वाला है? जिस बड़े ट्राजेक्टरी पे आप लोग काम कर रहे हैं, इतने हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, इतने कमाल के VFX और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है।
2: हाँ सही बात है, फिल्में बनाना आजकल आसान तो हो गया है VFX और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर आप मुगले आजम का एग्जांपल देखें तो उसमें कितने साल लगे और जो उनमें बहुत सारे सेट्स और बहुत सारी चीजें, क्राउड ऐसा हो जो आसानी से अवेलेबल उस दौर में नहीं था, वो आज सिर्फ एक क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है। आप स्टूडियो में बैठकर सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वो तो है। लेकिन मैं साथ साथ अरुण जी की बात से अग्री करता हूँ, इन्होंने जो कहा कि किसी एक्टर की इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करे, मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ, क्योंकि उससे फिर ऑडियंस को जुड़ाव ज्यादा हो जाता है, रिलेट करने लगता है ऑडियंस। अब सलमान खान ही रहेंगे जो कोई भी कैरेक्टर करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड एन एक्टर ही इज या कितने बड़े स्टार है, वो एक अलग बात है। लेकिन एज कर्ण मुझे उस पर डाउट है कि वो उस फिल्म की सक्सेस रेट क्या होगा, सलमान खान को सलमान खान ही समझ कर देखा जाएगा उस फिल्म में, ये एक मुद्दा है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी पारचा साहब ने मुझे गलत कोट कर दिया कि मैं कुछ रिलीजियस फिल्मों पर उंगली उठा रहा हूं। देखिए दो तरह की फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, रिलीजियस फिल्में जो माइथोलॉजिकल जो आप कह रहे हैं और एक हिस्टोरिकल फिल्में, उन दोनों का अलग अलग डिस्कशन है, समझे। मैं रिलीजियस फिल्मों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो हिस्टोरिकल फिल्में जो एजेंडा ड्रिवन है उसके ऊपर मेरा सवाल हमेशा था और हमेशा रहेगा। और साथ इस पर इन्होंने
0: उसके लिए हम अलग से चर्चा शुरू करेंगे,
2: मुझे 30 सेकंड और दीजिए, 30 सेकंड और दीजिए, लेकिन इन्होंने साथ साथ मेरी बात को वैलिडेट भी कर दिया। जब मैं कहता हूं कि एक धर्म से रिलेटेड लोगों को विलेन बनाकर पेश किया जा रहा है, उसको वैलिडेट भी कर दिया इन्होंने, जब ये कहा कि सलमान खान के खिलाफ अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई।
3: आपने एक शब्द इस्तेमाल किया प्रोपेगेंडा, मेरी वो शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
2: नहीं प्रोपेगेंडा है, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड, प्राइम मिनिस्टर इज सपोर्टिंग द प्रोपेगेंडा मूवी।
0: नहीं शोएब जी, शोएब जी नहीं नहीं, फिर फिर मैं आपको ये बोलूंगी कि आप भटक रहे हैं फिर इस बात से। और जो राम जी ने कही बात, राम जी ने कही बात, मुझे लगता है कि शब्दों का फेर जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि सलमान खान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अभिनेता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम ये नहीं
2: अभी पारचा जी ने क्या, पारचा साहब ने क्या कहा, रामकिशोर जी ने कहा क्या वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रामायण प्ले करना था, उनको बुढ़ाना, मैं अपने गांव में जिला मेरठ का बुढ़ाना गांव है, वहां मुजफ्फरनगर, यही आपने कहा
3: नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है, मैंने
2: आपने यही
3: नहीं,
2: लेकिन आज का जिक्र,
0: लेकिन शोएब जी
2: समाज में
0: ऐसी भावना है, समाज में नहीं हुआ ये तो अच्छी बात है ना, उन्होंने तो यही बात कही,
2: लेकिन समाज में ऐसी भावना है, ये तो है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने।
0: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है,
3: अच्छी बात है। मैंने आपने पूरी बात नहीं सुनी शोएब भाई, मैंने ये कहा कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और कुछ लोग जो है धर्म और धार्मिक फिल्मों को लेकर प्रोपेगंडा कर रहे हैं, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि शो में हम बैठे
2: हैं।
0: इस बात इस चर्चा की शुरुआत ही इस बात से हुई है, और जब मैंने अरुण जी से पहला सवाल पूछा था तो एज अ एक्टर उनसे मैंने यही इसी बात से शुरुआत की थी कि धार्मिक फिल्में माइथोलॉजिकल फिल्में होती ही ऐसी हैं जिसमें आप कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते, आप किसी कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप किसी तथ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा ऐड नहीं हो सकता,
2: कोई सवाल भी नहीं है। नहीं, हम हिस्टोरिकल फिल्मों की बात कर रहे
0: हैं, हम आज बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं सलमान खान की, हम क्यों जा रहे हैं हिस्टोरिकल फिल्मों पर।
2: जब आप डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल फिल्म और माइथोलॉजिकल तो सारी बातें की जाएंगी
0: जी। राजेश जी बताइए,
3: आपने हाँ आपने एक बहुत अच्छी बात की अभी कि सलमान खान जो है लोग उसको सलमान खान ही देखने के लिए जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि एक्टर जो होता है ना, आपको प्राण साहब का उदाहरण याद होगा पंकज भाई, आप अच्छे से जानते हैं, टॉप के विलेन थे वो, लेकिन जब उपकार आई तो मनोज कुमार ने उनका जबरदस्त ट्रांजिशन किया और उन्होंने वो प्रूव किया। पर ऐसा ही कुछ अरुण गोविल के साथ हुआ, तो ये जो इमेज का मामला है ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर एक्टर अच्छा है तो वो अपने कैरेक्टर में आता है, वो फिर वो नाम से नहीं जाना जाता, कैरेक्टर से जाना जाता है। लेकिन लेकिन दो खतरे हैं इसमें, देखिए एक उसको उस कैरेक्टर से बाहर आना पड़ता है, लेकिन मैंने एक बार बीबीसी के लिए जब मैं था तो मैंने अरुण गोविल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझसे कहा खतरा है, मैं वो बता रहा हूं आपको कि उन्होंने राम का कैरेक्टर किया और वो सबसे बड़ा लीजेंडरी कैरेक्टर था, तो जहां भी वो काम मांगने जाते थे उनको ये कह दिया जाता था कि भाई आपने तो सबसे बड़ा कैरेक्टर अब निभा लिया, अब आपके लिए हमारे
0: मैं यही सवाल जो आपने आपने बिल्कुल सही बात की राम किशोर जी, और यही सवाल इसलिए मैंने अरुण जी से पूछा था कि कितना मुश्किल होता है उस कैरेक्टर के, एक बार अगर आप माइथोलॉजिकल कोई कैरेक्टर निभा लेते हैं फिर पब्लिक आपको दूसरे किरदार में देखना नहीं पसंद करती है।
3: पीरियड फिल्म चलेगी श्वेता, पीरियड फिल्म में हिस्टोरिकल कैरेक्टर चलेगा कि आपने पृथ्वीराज का जो है चौहान किया है या कुछ और किया है, तो अगली फिल्म में आप सोशल मीडिया जाके बदल सकते हैं।
0: समय की कमी है अरुण जी, एक लास्ट कमेंट अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे जल्दी से अरुण जी क्या कह रहे थे आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक डायरेक्टर और उसके जो नवरत्न हैं वो अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं देते हैं स्क्रिप्ट को। हमने देखा बी आर चोपड़ा जी के साथ में उनके नवरत्न थे जी, जितनी टैलेंट थी इंडिया की बेस्ट टैलेंट जो अच्छा सोच सकती थी विद डॉक्टर राही मासूम रजा जैसे,
0: बिल्कुल हमने वो दौर भी देखा है, बिल्कुल अरुण जी हमने वो दौर भी देखा है बी आर चोपड़ा जी का, और अब हम अभी का दौर भी देख रहे हैं जब एक से एक फिल्में बन रही हैं और विद वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो भी लोग तमाम लोग पसंद कर रहे हैं। फिलहाल समय की कमी है लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमें रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है? किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है? अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: उत्तराखंड के बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। नई टिहरी से करीब 85 किलोमीटर दूर बालगंगा और धर्मगंगा नदियों के संगम पर बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।

0: देवभूमि उत्तराखंड, जहां कणकण में देवताओं का वास है और हर मंदिर का है अपना पौराणिक इतिहास। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में ऐसा ही एक मंदिर है, बूढ़ा केदारनाथ, जिसे उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। नई टिहरी से करीब 85 किलोमीटर दूर बाल गंगा और धर्म गंगा नदियों के संगम पर बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस जगह का नाम बूढ़ा केदार पड़ गया। महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय आए थे।
1: गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो, जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए, बूढ़ा केदारनाथ में वो बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए।
0: बूढ़ा केदारनाथ धाम की खासियत ये है कि यहाँ के कपाट सालों भर खुले रहते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान भी हजारों यात्री और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
2: क्योंकि बूढ़ा केदार जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इनकी यात्रा 6 महीने के लिए चलती है। 6 महीने के लिए जो है पट बंद हो जाते हैं, लेकिन एक धाम ऐसा है बूढ़ा केदार जहाँ पे जो है 12 महीने यात्रा चलती है। यहाँ पे न तो शीत का न बरसात का कोई असर नहीं होता, यहाँ 12 महीने बूढ़ा केदार की यात्रा जो है चलती है और 12 महीने यहाँ पे यात्री आते हैं।
0: बूढ़ा केदार क्षेत्र के ज्यादातर लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करते। उनका मानना है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बूढ़ा केदार में भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
3: देहरादून से आए हैं और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते हैं।
0: इस इलाके में प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक मान्यताओं और अनूठी धार्मिक परंपराओं से समृद्ध बूढ़ा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक करेंगे, तो कुछ ऐसे हैं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
5: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये आईपीएस डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा

0: उत्सव देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up Strawberry Scented Sunscreen, Favorite Day Ice Cream in flavors like Cotton Candy and Orange Cream, Inflatable Fun for the Pool, Elf Beauty's Best, and Levi's Denim Shorts. Summer's Best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry-scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, e.l.f. Beauty's best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
2: Schwarber
3: to right field, and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे
11: नमस्कार मैं हूँ श्वेता झा स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में आपको हम बता दें कि आज सबसे पहले बात होगी मैच की और साथ ही साथ लेकिन मैच से पहले शगुफ्ता यहाँ पर ये क्या कुछ है
12: हमने आपके लिए कचौरी और सब्जी का इंतजाम किया है
11: कचौरी और सब्जी
12: हाँ मुझे लगा कि आज बारिश आएगी मौसम मेहरबान होगा लेकिन उसके साथ हमने क्रिकेट के मौसम को ऐड कर दिया है
11: क्रिकेट के मौसम को

0: क्या भाई, ये लड़कियां बहुत कुछ बताने वाली है। क्रेज की वजह है वैभव सूर्यवंशी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत आज से आयरलैंड के खिलाफ नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, तो क्यों ये मैच कप्तान के साथ टीम इंडिया के फैंस के लिए बन गया है खास, बताएंगे आपको।
1: नमस्कार, महेश गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात वेनेजुएला की भी होगी, जहां भूकंप के बाद रेस्क्यू का महामिशन चल रहा है। दुनिया भर से मदद वेनेजुएला पहुंच रही है, तो वहीं भारत ने भी आपदा से घिरे वेनेजुएला की और मदद का हाथ बढ़ाया। इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बुलेटिन में बात बाहुबली फिल्म की भी करेंगे, क्योंकि इसके तीसरे पार्ट को लेकर जो हिंट मिला है उससे बाहुबली फैंस खुशी से उछल रहे हैं। तो क्या वाकई बॉलीवुड अब बाहुबली 3 बनाने की तैयारी में है मेकर्स, ये भी जानने की करेंगे कोशिश। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी की बड़ी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
0: भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। एयरफोर्स के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल में घायलों के लिए भीष्म क्यू।
1: भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल। हरियाणा की जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
0: बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी, 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन।
1: बारिश, बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा। किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉकड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी।
0: पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद, नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा सॉफ्टवेयर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
1: चले शुरुआत करते हैं उसी न्यूज के साथ, जिस न्यूज को आई एम श्योर कि सोशल मीडिया पर हर जगह पर आप सुबह से देख रहे हैं। इस लड़के के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नाम है इनका वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने अपने बल्ले से क्या कमाल किया है ये तो हम सब ने देखा है, लेकिन अब एक और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे टीम इंडिया के साथ जुड़कर। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया आज एक नए सफर की शुरुआत करने जा रही है। इंडिया आयरलैंड के बीच में 2 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला होगा, आज बेलफास्ट में होगा, सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में ये खेला जाएगा। और मुकाबले का टॉस भारतीय समय अनुसार शाम को 5:30 बजे होगा, जबकि पहली गेंद शाम को 6 बजे फेंकी जाएगी। इस मैच पर सभी की नजरें होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें होंगी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर।
0: आपको बता दें वहीं T20 टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर के हाथों में है। नए कप्तान के तौर पर श्रेयस की कोशिश होगी कि टीम इंडिया जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करे। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत ने सभी 8 मैच जीते हैं, जबकि आयरलैंड अभी तक जीत का खाता भी नहीं खोल पाया है।
2: और इसी के साथ दिलचस्प बात यह भी है कि बेलफास्ट में भारत और आयरलैंड पहली बार T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं। हालांकि 2007 में इसी मैदान पर खेले गए वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 9 विकेट से हराया था। जी हां, अब देखना यह होगा कि क्या भारत अपना अजय रिकॉर्ड बरकरार रखता है या आयरलैंड इतिहास रचने में कामयाब होता है।
0: तो महज 15 साल की उम्र, लेकिन दीवानगी किसी सुपरस्टार से कम नहीं। जी हां, भारत आयरलैंड T20 सीरीज शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी खिलाड़ी की हो रही है तो वो है वैभव सूर्यवंशी। आयरलैंड में हालात ऐसे हैं कि नेट से लेकर स्टेडियम तक हर कोई इस युवा सनसनी की एक झलक पाने को बेताब है। फैंस ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए उमड़ रहे हैं, और क्रिकेट प्रेमियों के बीच बस एक ही सवाल है कि आज वैभव का बल्ला फिर बोलेगा।
1: बिल्कुल बोलेगा, धनाधन बोलेगा, आप देखते जाइए क्या होने वाला है। लेकिन देखिए वैभव सिर्फ अपनी बल्लेबाजी की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी जर्सी नंबर 3 की वजह से सुर्खियों में है। इस नंबर के पीछे एक भावुक सी कहानी छिपी है। ये सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि उनके सपनों, उनके संघर्ष और उस प्रेरणा का प्रतीक है जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में इंडियन टीम का हिस्सा बनाया। अब सबकी निगाहें इसी युवा पर टिकी हैं। क्या आयरलैंड की धरती पर वैभव सूर्यवंशी अपने करियर का एक और चैप्टर और यादगार चैप्टर लिखेंगे या फिर नहीं?
0: लेकिन साथ ही साथ ये भी लोगों को हम बता दें शगुफ्ता कि वैभव आज भले ही नहीं खेल रहे हैं लेकिन आगे जो है वो धमाल और कमाल जरूर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: सूर्यवंशी का वैभव सात समंदर पार क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। आयरलैंड में हर फैन उनके छक्के चौकों की बरसात देखना चाहता है। हाल ये है कि जिस आयरलैंड में बड़े बड़े मैच तक में क्रिकेट स्टैंड खाली रहते हैं, वहां इस बार आयोजकों को वैभव सूर्यवंशी के क्रेज के चलते अस्थायी स्टैंड बनाने पड़ गए हैं। वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू से पहले ही छा जाने की एक नहीं हजार वजह है। पहली वजह है उनकी उम्र, दूसरी वजह है उनकी बॉल पर टूट पड़ने का स्टाइल और तीसरी वजह है वैभव पर उनके चाहने वालों का अटूट भरोसा। वैभव इतनी कम उम्र में केवल मिसाल नहीं बल्कि बेमिसाल बन चुके हैं। उनकी ब्लू जर्सी पहनना खबर है, उनकी जर्सी पर छपा 3 नंबर भी चर्चा में है। कहते हैं क्रिकेट में कुछ नंबर सिर्फ अंक नहीं होते, पहचान बन जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी के लिए भी 3 नंबर ऐसा ही है, लेकिन इस नंबर तक पहुंचने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। करियर के शुरुआती दिनों में वैभव 12 नंबर की जर्सी पहनते थे, तब उनकी मां ने एक सलाह दी, कहा 1 और 2 जोड़ो तो बनता है 3। जब किस्मत का जोड़ 3 है तो जर्सी भी सीधे 3 नंबर की ही क्यों ना हो। बस माँ की बात मानी, 12 की जगह पीठ पर चमकने लगा नंबर 3, जिसे वैभव ने शान से दिखाया भी। वैभव की जर्सी का नंबर भले ही 3 है, लेकिन फिलहाल तो वैभव सूर्यवंशी अभी 3 के फेर में ही फंसे हैं, क्योंकि टीम इंडिया में उनकी राह में भी 3 बड़े नाम मौजूद हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन। तीनों अनुभवी हैं और तीनों पहले से टीम इंडिया के लिए खेलते आ रहे हैं। अगर इन तीनों को लांग कर वैभव खेलने का मौका हासिल कर लेते हैं तो ये खुद में एक चमत्कार होगा, लेकिन वैभव को सिर्फ एक मौके का इंतजार है। बेशक वैभव के लिए हर अनुभव नया है, उन्हें टीम के बाकी खिलाड़ियों से अलग ड्रेसिंग रूम दिया गया है। इसी दौरान हेड कोच गंभीर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो शायद किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी पूंजी हो। संदेश साफ है, खुद को टीम से अलग मत समझो, सहज रहो, माहौल महसूस करो, हर अनुभव को सीख में बदलो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपको बता दें, आज मैच में अगर बारिश ने बाधा नहीं डाली तो श्रेयस अय्यर भी एक बड़ा इम्तिहान देंगे। बतौर कप्तान उनकी अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है, कैसे चलिए आपको बताते हैं। श्रेयस अय्यर के सामने पहली बार इस टीम की कमान संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। कप्तान के तौर पर अब श्रेयस अय्यर फैसला लेंगे। उनकी रणनीति, फैसले और दबाव में प्रदर्शन पर सभी की नजर रहने वाली है। तो वहीं आईपीएल में अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से प्रभावित करने वाले श्रेयस के सामने अब अलग माहौल और अलग टीम के साथ सफलता दोहराने की चुनौती है और उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका नेतृत्व क्षमता हर मंच पर कारगर है। नई टीम में अलग अलग खिलाड़ियों को एकजुट कर बेहतरीन संयोजन बनाना आसान नहीं रहने वाला है और कप्तान के रूप में श्रेयस को ड्रेसिंग रूम का माहौल और मैदान पर तालमेल दोनों को मजबूत करने की चुनौती रहने वाली है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि टीम की कमान ऐसे समय में मिली है जबकि सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी से अलग पहचान बनाई है। ऐसे में श्रेयस पर उस प्रदर्शन को बनाए रखने और टीम की उम्मीदों पर खरा उतरने का अतिरिक्त दबाव रहेगा। चोट और टीम से बाहर रहने के बाद श्रेयस के पास खुद को फिर से साबित करने का बड़ा मौका है। कप्तानी के साथ साथ उन्हें बल्ले से भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को सही भूमिका और सही बल्लेबाजी क्रम देना कप्तान के लिए अहम फैसला होगा। श्रेयस की रणनीति तय करेगी कि टीम इस युवा प्रतिभा का कितना बेहतर इस्तेमाल कर पाती है। अगर टीम के प्रमुख खिलाड़ी खराब फॉर्म से नहीं उबर पाए तो श्रेयस की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ऐसे में कप्तान के तौर पर उन्हें खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही सही टीम संयोजन भी तैयार करना होगा।
3: चलिए देखिए, भूकंप की त्रासदी के बाद वेनेजुएला को दुनिया भर से मदद मिल रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय राहत अभियान यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में तेजी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई देशों ने अपनी अपनी रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल स्टाफ, राहत सामग्री और एडवांस्ड उपकरणों के जरिए राहत बचाव शुरू किया है। ये सब कुछ बस इसलिए है कि इससे मलबे में दबे लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके।
1: तो वहीं आपको बता दें, भारत ने भी ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए वेनेजुएला की मदद करने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार भी वेनेजुएला के हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। कहा यह जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की विशेष टीम को मेडिकल सपोर्ट और एक्सपर्ट्स के साथ तुरंत रवाना किया जाएगा।

0: वेनेजुएला में इस वक्त चारों तरफ सिर्फ मलबा है। अपनों को तलाशती निगाहें हैं और हर पल किसी चमत्कार की उम्मीद में चल रहा राहत अभियान है। राजधानी और उसके आसपास के उत्तरी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। राहत एजेंसियों को लग रहा है कि मलबे के नीचे अब भी बड़ी संख्या में लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिन तक तत्काल मदद पहुंचना जरूरी है। इस भयानक भूकंप के बाद संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय राहत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अमेरिका, मेक्सिको, कोलंबिया, एल साल्वाडोर, इक्वाडोर, पनामा, फ्रांस, स्पेन, इटली और ब्राजील समेत कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ, राहत सामग्री और अत्याधुनिक उपकरण भेजे हैं। कई देशों ने खोजी कुत्तों और भारी मशीनों की भी तैनाती की है, ताकि मलबे में दबे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। प्रभावित क्षेत्रों में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, थर्मल कैमरा, लाइव डिटेक्शन डिवाइस, ड्रोन, स्नीफर डॉग्स और भारी क्रेन्स की मदद से लगातार तलाश अभियान चला रही हैं। घायलों का इलाज अस्थायी फील्ड अस्पतालों में हो रहा है, जबकि प्रभावित लोगों तक भोजन, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां लगातार पहुंचाई जा रही हैं। भारत ने भी वेनेजुएला की मदद के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की विशेष टीम को अत्याधुनिक सर्च एंड रेस्क्यू उपकरण, मेडिकल सपोर्ट और एक्सपर्ट के साथ तुरंत रवाना किया जाएगा। वेनेजुएला के कार्यवाहक नेतृत्व ने भी भारत की संवेदना और सहायता के प्रस्ताव के लिए आभार जताया है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी आपदा से जूझ रहे देश की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया हो। साल 2025 में म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री और बचाव दल को भेजा था। 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने वहां सैकड़ों लोगों की जान बचाने में भूमिका निभाई थी। वहीं 2018 में इंडोनेशिया के मदद के लिए चलाए गए ऑपरेशन समुद्र मैत्री और 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर राहत बचाव और चिकित्सा सहायता पहुंचाकर मिसाल पेश की थी। वेनेजुएला आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है। मलबे के नीचे अब भी कई जिंदगियों की तलाश जारी है। ऐसे कठिन समय में भारत समेत दुनिया के कई देशों का एकजुट होकर मदद के लिए आगे आना साबित कर रहा है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपको बता दें, इस मानवीय सहायता मिशन का नाम ऑपरेशन अमिस्ताद रखा गया है। स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद का अर्थ दोस्ती होता है, जो भारत और वेनेजुएला के मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। उत्तरी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। भारतीय सेना की विशेष मेडिकल टीम प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए रवाना हुई है। भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की विशेषज्ञ मेडिकल टीम इंडियन एयरफोर्स स्टेशन से 2 वायुसेना विमानों के जरिए वेनेजुएला के लिए रवाना हुई और ये टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और इलाज का जिम्मा संभालने जा रही है। इस विशेष मेडिकल दल में कुल 41 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 9 अनुभवी डॉक्टर और मेडिकल अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें, टीम आपातकालीन इलाज, ट्रॉमा केयर और जीवन रक्षक सर्जरी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगी।
2: बिल्कुल, देखिए, टीम अपने साथ करीब 6 टन चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और राहत सामग्री लेकर गई है। ये सहायता विदेश मंत्रालय की ओर से भूकंप प्रभावित लोगों के लिए भेजी गई है। भारतीय वायुसेना के एक विमान में अत्याधुनिक क्यूब भी भेजा गया है। ये भारत के आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत विकसित विशेष आपदा राहत मेडिकल सिस्टम है। इस क्यूब में एक स्वदेशी मॉड्यूलर और तेजी से तैनात किया जा रहा सकने वाला मेडिकल सिस्टम है। इसे खास तौर पर आपदा और मानवीय राहत अभियानों के लिए तैयार किया गया है।
3: बिल्कुल, आपको बता दें, इस सिस्टम को बहुत कम समय में पूरी तरह कार्यरत फील्ड हॉस्पिटल में बदला जा सकता है। इसमें 200 मरीजों तक के इलाज, ट्रॉमा केयर, आईसीयू, सर्जरी और ऑक्सीजन सपोर्ट जैसी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
4: वेनेजुएला में भूकंप जो आया है, उसके लिए भारत सरकार ने राहत सामग्री और डॉक्टरों की एक टीम भेजी है। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत इस पूरे इलाके में भारत का ये बचाव दल वहां पर जाकर के बड़े स्तर पर लोगों की सुरक्षा करेगा। 41 सदस्यीय जो दल है, इसमें सेना के जुड़े हुए डॉक्टर हैं, साथ ही तमाम पैरामेडिकल से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। 6 टन सामग्री, जिसमें दवाइयां, इसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, उसको भी यहां पर भेजा गया है। इसके साथ ही एक चलता फिरता हॉस्पिटल भी वहां पर भेजा गया है एक विशेष विमान के जरिए, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 200 से ज्यादा लोगों का इलाज इस हॉस्पिटल में किया जा सकता है। भारत इससे पहले म्यांमार, तुर्की और दूसरे देशों में जो भूकंप आए थे उसमें भारत की तरफ से जो राहत सामग्री भेजी जाती है, इसके साथ साथ जो पैरामेडिकल भेजे जाते हैं, उसी तर्ज पर जो वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप आया है जिसमें बहुत सारे लोगों के हताहत होने की खबर है, वहां पर भारत की तरफ से इस तरीके का बड़ा कदम उठाया गया है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में इनको भी भेजा जाएगा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक ये बड़ा कदम उठाया गया है। जितेंद्र,
3: बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं एक बेहद शानदार तस्वीर जो कि आई है लग्जमबर्ग से। दरअसल यहां पर यूरोपीय संघ की बैठक में मेज पर एक 3 महीने का मासूम भी मौजूद था।
1: तो वहीं आपको बता दें ये मासूम बच्चा स्वीडन की पर्यावरण मंत्री का बेटा है जिसका नाम है एडम, जिसे उसकी माँ रोमिना लेकर गई थी यूरोपियन काउंसिल की बैठक में पहुंची हुई थी। आखिर ऐसा पर्यावरण मंत्री को क्यों करना पड़ा, इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प है।
5: महज 3 महीने के अपने नन्हे बच्चे को बेबी कैरियर में लटकाए हुए बिल्डिंग में प्रवेश कर रही ये कोई आम महिला नहीं है, ये तो स्वीडन की पर्यावरण मंत्री रोमिना पुरमुखतारी हैं। खास बात ये है कि रोमिना ने पेरेंटल लीव लेकर बच्चे के पालन पोषण में वक्त गुजारने की बजाय अपने काम को अहमियत दी, लेकिन साथ ही साथ बच्चे का ख्याल रखने के लिए वो शिशु को साथ लेकर लग्जमबर्ग में हो रही यूरोपियन यूनियन काउंसिल की उस बैठक में पहुंची जहां मौजूद रहना इनके लिए बेहद जरूरी था।
6: Very pleased to be back in the council and looking forward to today's discussions on many different topics. Happy also to be an example of not having to choose between being a present minister and a present mother. And I think that there are many things that makes Europe a wonderful place to live. One of them being just this, that we can have the possibility of attending meetings and attending to my child.
5: ये पहला मौका है जब यूरोपियन यूनियन काउंसिल की बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों के साथ एक नन्हे मासूम ने भी भाग लिया। हालांकि उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि बैठक में क्या हुआ, लेकिन रोमिना ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल बैठक में भाग लिया बल्कि बच्चे का भी पूरा ख्याल रखती वो दिखाई दी। रोमिना पुरमुखतारी स्वीडन सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। वहां के सरकारी कानूनों के अनुसार वो बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी लेने की हकदार हैं, लेकिन बच्चे की देखभाल और अपने सरकारी कामकाज के बीच संतुलन बिठाने की अनूठी मिसाल पेश कर वो सुर्खियों में शुमार हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात करते हैं इंडियन सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है बाहुबली, जो एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। ना कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और ना कोई टीजर आया है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर आपको बता दें हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है। आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे क्या कोई बड़ा राज छिपा है या फिर यह सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है, इसका जवाब सभी जानते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दग्गुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: काफी समय से एक फिल्म पर काम हो रहा था और फिर आई उसके प्रमोशन की बारी, तो वो भी खूब जोरों शोरों से हुआ। और अब अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसे डायरेक्ट किया गया है अहमद खान के द्वारा।
2: तो इस मल्टी स्टारर नई फिल्म ने पहले दिन क्या कमाल करके दिखाया है? क्या ये हमें अपनी मेगा स्टार कास्ट के साथ मिलकर एंटरटेन करने में कामयाब होगी या फिर नहीं? हमारी सहयोगी सना फरजीन ने बातचीत की और वो आपको बता रही हैं।
3: सोचिए कोई आपको 2000 करोड़ दे और कहे एक फिल्म बनाओ, आप क्या बनाएंगे? इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर या फिर जानबूझकर इंडिया की सबसे बड़ी फ्लॉप? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन वेलकम टू द जंगल की शुरुआत इसी सोच से होती है। एक बिजनेसमैन इनकम टैक्स बचाने के लिए एक ऐसी मेगा बजट फिल्म बनाना चाहता है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फेल हो जाए और उसके बाद लॉजिक धीरे धीरे थिएटर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी जगह जो आता है वो है कॉमेडी। और काफी वक्त बाद किसी बॉलीवुड कॉमेडी में पूरा थिएटर एक साथ हंसता नजर आया। सिर्फ हल्की सी मुस्कान नहीं, बल्कि दिल खोल कर हंसी। फिल्म के अंदर भी एक फिल्म बन रही है। डायरेक्टर्स है देव और दास, जो अब्बास मस्तान की याद दिलाते हैं। हीरो है राजीव, एक ऐसा सुपरस्टार जिसका स्टारडम अब बीत चुका है और जो अब भोजपुरी आइटम सॉन्ग्स में नजर आते हैं। फिर कहानी में एक एक्स लवर की एंट्री होती है। एक्शन, हेलीकॉप्टर्स, बड़े बड़े ईगोज और देखते ही देखते पूरी टीम असली टेररिस्ट के बीच फंस जाती है और यहीं से फिल्म और दिलचस्प हो जाती है। इस फिल्म में 30 से भी ज्यादा एक्टर्स है। एक वक्त के बाद आप भूल जाते हैं कि अब और कौन आने वाला है, क्योंकि हर कुछ देर में एक और जाना पहचाना चेहरा स्क्रीन पर दिख जाता है। वैसे इतने सारे एक्टर्स को एक ही फिल्म में साथ लाना और उनकी डेट्स मैनेज करना भी अचीवमेंट से कम नहीं है। अक्षय कुमार की बात करें तो कुछ वक्त बाद वो फिर से अपने फेवरेट जॉनर में नजर आते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और फिजिकल कॉमेडी याद दिला देती है कि इस जॉनर में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। परेश रावल और राजपाल यादव फेक फिल्म्स के डायरेक्टर देव और दास बने हैं, जबकि श्रेयस तलपड़े एक ऐसे सिनेमाटोग्राफर हैं जो देख नहीं सकते। हाँ, ओरिजिनल वेलकम के उदय शेट्टी और मजनू भाई की कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन सुनील शेट्टी का येड़ा अन्ना और अरशद वारसी का रोमियो भी इस मैडनेस को पूरी तरह संभाल लेते हैं। रवीना इमोशनल एंगल लेकर आती हैं, दिशा पटनी जैकलिन ग्लैमर का तड़का लगाती हैं और जैकी श्रॉफ का ओवर द टॉप विलन जटारा भी याद रह जाता है। कुल मिलाकर हर एक्टर को स्क्रीन पर अपना मोमेंट जरूर मिलता है। म्यूजिक भी ओरिजिनल वेलकम जैसा असर नहीं छोड़ता, लेकिन मेकर्स उसका भी मजाक उड़ा देते हैं और कहते हैं कि गाना फिल्म में फिट नहीं हुआ सो इंटरवल में देख लो। ये सेल्फ अवेयर ह्यूमर ही फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठेंगे तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर बस दिमाग को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर हंसना चाहते हैं तो वेलकम टू द जंगल एक एंटरटेनिंग राइड साबित हो सकती है।
4: और अब बात बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की, जिनकी होम प्रोडक्शन फिल्म बेबी डू डाई डू इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर हाल ही में आया है। अपने ही प्रोडक्शन हाउस की इस फिल्म में हुमा एक देसी हिट वुमन यानी कि किलर के रोल में है। उनके इस किरदार को इंडियन सिनेमा की पहली हिट वुमन भी कहा जा रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए फिल्म तो वैसे 3 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले इसके ट्रेलर को लेकर काफी तारीफें मिल रही हैं। हुमा कुरैशी से इस फिल्म और किरदार के बारे में हमारी सहयोगी ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको।
5: आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी और आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत मेहमान मौजूद है जो अपने बहुत बढ़िया। आप कैसी है हुमा? बहुत बहुत स्वागत आप। हुमा, मैं सीधा आपकी फिल्म पे आती हूँ, बेबी डू डाई डू। इस किरदार को एक तो ब्रांडिंग जिस हिसाब से दी है ना, फर्स्ट क्या आप ही बता दीजिए हमारे को। यस, हमने पहले भी ऐसे किरदार देखे हैं, बी दीपिका, बी रानी मुखर्जी, उन्होंने एक्शन फिल्म्स करी है, तो व्हाई दिस ब्रांडिंग? ये ब्रांडिंग क्यों है?
6: क्योंकि एक्शन फिल्म करना और देसी हिट वुमन होना दो अलग चीज़ें होती हैं। आई थिंक जो मेरा कैरेक्टर है, मैं एक डेफ और म्यूट कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि एक हिट वुमन है। वो सुपारी लेके बॉम्बे में लोगों को मारती है, ये उसका काम है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई कैरेक्टर हिंदी सिनेमा के इतिहास में कभी लिखा गया होगा या बनाया गया होगा। उसकी गन उसकी लाल छाते में है, तो वो बहुत ही प्यार से बिना अपने ऊपर कोई भी सस्पिशन आए लोगों को मारती चली जाती है। एंड आई थिंक बहुत ही यूनिक कहानी है, बहुत ही ओरिजिनल कहानी है। आई डोंट थिंक ऐसी आपने कहानी शायद ही देखी होगी।
5: मैं जब इस फिल्म के बारे में पढ़ रही थी, मैंने ये भी सुना था कि आपने स्पेशली इस फिल्म के लिए साइन लैंग्वेज सीखी है, तो क्या कितना सच है इस बात में?
6: बिल्कुल सच है ये, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है, क्योंकि लाइक मैंने बताया वो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती, तो साइन लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट करती है। तो मैंने साइन लैंग्वेज क्लासेस ली, मैं स्पेशल स्कूल गई। बट आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने पूरी साइन लैंग्वेज नहीं रखी, क्योंकि बेबी का जो किरदार है वो बोल सुन नहीं पाती, मगर उसके जिस दुनिया में वो रहती है वो सब बोल सुन पाते हैं, तो उनसे कैसे इंटरेक्ट करती है। और उससे बहुत सारे लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती है, सो आई थिंक दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू लैंड। एंड आई हैव रियली एंजॉयड प्लेइंग अ कैरेक्टर जिसमें इतनी इंटेंसिटी है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, और सिर्फ अपनी आंखों से वो एक्सप्रेस करती है।
5: अगर हम आपके सफर की बात करें ओवरऑल, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, मोनिका उमर डार्लिंग हो, बहुत ही सुंदर सफर रहा, अगर उसको एक शब्द में समेटना हो तो वो क्या होगा?
6: आई थिंक फॉर एक लड़की जो दिल्ली में पली बड़ी हो, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में, और उसको फिल्मों का शौक हो और उसको अभिनेत्री बनने का मौका मिले, तो बहुत ही आप बोलोगे शायद कोई सपना है, कोई कल्पना है, बट मुझे ये मौका मिला। और कभी कभी खुद को चूटी मारती हूँ कि क्या ये सपना है कि मैं वाकई अपना ड्रीम लिव कर रही हूँ।
5: आपने कई बार ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बोला है, बॉडी आइडल टाइप के बारे में बोला, और खुलकर बोला है, कभी भी शर्माई नहीं। इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है आज की डेट में अभी भी सिर्फ लड़कियों की शक्ल पे ही हम जज करते हैं, आज भी ऐसा, मतलब इट्स रेलेवेंट और नॉट?
6: बॉडी पॉजिटिविटी तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि आपसे लड़कियों को बता रहे हो कि सिर्फ एक तरह की सुंदरता होती है और बाकी सब किसी लायक नहीं होते, वो अपने आप में एक गलत थॉट प्रोसेस है। जहाँ तक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ औरतों की बात होती है कि महिलाओं को एक तरीके से देखा जाए, उनके उनको एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाए, उनकी कोई एजेंसी ना हो, वो एक बहुत ही अलग मुद्दा है। और मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे किरदार करना पसंद करती हूँ जहाँ पे हो सकता है कि सामने वाला कैरेक्टर मुझे डिमीन कर रहा हो, बट मेरा एक एजेंसी, मेरा एक पर्सपेक्टिव, मेरा एक वर्ल्ड व्यू हमेशा रहेगा।
5: पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे करती हूँ कि सोशल मीडिया पे कभी ऐसी कोई अफवाह सुनी है जिससे आपको लगा रहे ये मेरे बारे में ये कैसे सच हो सकता है?
6: बहुत सारी बातें ऐसी, मैं ज़्यादा पढ़ती वढ़ती नहीं, बस मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इसे पढ़ने का टाइम ही नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जो लोग वाकई मेरे बारे में चिंता करते हैं, जिनको मेरा फ़र्क पड़ता है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है? पर इतने सारे लोगों का मैं सुनने लाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊंगी।
5: चलिए, हमारे जनता के लिए काफी मैसेज दे दीजिए और हम रैप अप करते हैं।
6: तो मेरी फिल्म आ रही है बेबी डू डाई डू, 3 जुलाई को सिर्फ सिनेमा घरों में, प्लीज जाके देखिए।
2: और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे खाटू श्याम में बनने जा रहे रेलवे स्टेशन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: जस्ट व्हाट यू नीड फॉर समर इज वेटिंग एट टारगेट। Score must-haves from favorite day ice cream to Elf Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, एयरफोर्स दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री, मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल में घायलों के लिए भीष्म क्यूब। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। बाबा खाटू श्याम के लाखों श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज, खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मंजूरी, 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद, नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर।
2: अब ट्रेन से आप सीधे खाटू श्याम जा सकते हैं। इन दिनों जहां राजस्थान में सीकर के पास बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में विशाल मेला चल रहा है, वहीं इसी बीच खाटू श्याम जी के मंदिर जाने वाले भक्तों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है।
1: तो वहीं आपको बता दें, लंबे समय से उठ रही मांग को आखिरकार अब मंजूरी मिल चुकी है। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नए रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। स्टेशन बनने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में कम समय लगेगा और सफर भी पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक रहने वाला है। इस खबर को लेकर जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रिदम जैन।
11: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सभी भक्तों को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
12: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा जो UDH मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी, उससे किसानों की जो जमीन बेस कीमती होती है, किसान के लिए जमीन सबसे बड़ी माँ के बराबर होती है, वो उसकी जमीन जाती है तो एक तरह से एक बेटा मर जाए या कोई उस टाइप का ये होता है कि अपने तो जमीन दुख वाली बात होती है, तो जमीन काश्तकार के लिए माँ के बराबर होती है, वो एकदम उसको जी से चाहता है, उसकी रोजी रोटी होती है, तो उसके किसानों की नुकसान भी नहीं होगा और ये बहुत ही सुविधाजनक रहेगा।
1: तो
11: आपके हाथ में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
12: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम, उसको बड़ा बनवाकर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री डिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसी इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा।
4: और अब बात करेंगे बाबा महाकाल के महाखजाने की। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है बाबा महाकाल का दिव्य दरबार। इन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है और हर पर्व त्यौहार इन्हीं के यहाँ से शुरू होता है। ये समय और काल से भी ऊपर है और तभी तो महाकाल कहलाते हैं। महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
2: और देखिए, इसी के साथ महाकाल मंदिर को मिले चढ़ावे में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को रिकॉर्ड 144 करोड़ रुपए का दान मिला। पिछले 6 सालों में मंदिर को मिले दान का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है।

0: बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ने वाला भक्तों का ये सैलाब महज आस्था की गवाही नहीं दे रहा, एक नया इतिहास भी लिख रहा है। महाकाल के दरबार में आस्थावान सिर्फ नतमस्तक ही नहीं हो रहे, दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 4 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसी भीड़ ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की आय को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को अब तक की सबसे बड़ी 144 करोड़ रुपए की आय हुई है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लड्डू प्रसाद से ही 65 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो बीते 6 सालों में सबसे अधिक है। इसके अलावा सोने चांदी के करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी बाबा के दरबार में चढ़ाए गए हैं।
1: जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइन दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिला है। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है।
0: 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर बनने से पहले महाकाल के दरबार में रोजाना 30 से 40 हजार श्रद्धालु आते थे। कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4 गुना बढ़कर 1.5 लाख से 2 लाख तक हो चुकी है। भक्तों की संख्या में इस बढ़ोतरी के साथ उज्जैन में पर्यटन कारोबार को तो पंख लगे ही हैं, महाकाल के खजाने में भी साल दर साल भारी बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में महाकालेश्वर मंदिर को दान के रूप में 38 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2023-24 में दान का ये आंकड़ा बढ़कर 59 करोड़ जा पहुंचा। 2024-25 में मंदिर को 117 करोड़ रुपए दान में मिले। 2025-26 में मंदिर समिति की कुल आय रिकॉर्ड 144 करोड़ आंकी गई है।
1: जो मंदिर में दान काउंटर्स हैं या भेंट पेटियां हैं वो कैमरा की निगरानी में है निरंतर, साथ ही वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं। बात की जाए गणना की तो गणना कक्ष एक पारदर्शी कमरा है, जिसमें आते और जाते समय सुरक्षा कर्मी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले कर्मचारियों की पॉकेट सील रहती है, उनकी चेकिंग करके उपरांत ही उन्हें कक्ष में भेजा जाता है और पूरी गणना जो है वो कैमरा के निगरानी में की जाती है, जहाँ पर कर्मचारी के साथ अधिकारी भी मौजूद होते हैं।
0: महाकाल में भक्तों की आस्था शुरू से ही रही है, लेकिन ये भी सच है कि महाकाल के दरबार में नतमस्तक होने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी महाकाल लोक बनने के बाद ज्यादा हुई है। नतीजा आस्था के नए रिकॉर्ड के साथ साथ महाकाल के खजाने में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात करेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की रौनक की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार चारधाम दर्शन में एक और दर्शन का नाम जुड़ा है, वसुंधरा फॉल का, जो कि बद्रीनाथ धाम से करीब 9 किलोमीटर दूर है।
3: बिल्कुल, आपको बता दें बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु अब वसुधारा के दर्शन को भी अपनी तीर्थ यात्रा का हिस्सा मान रहे हैं। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद वसुधारा फॉल का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है।
0: देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद बद्रीनाथ आस्था का वो धाम जहां से शुरू होता है आस्था का एक और सफर, वसुधारा फॉल। बद्रीनाथ से महज 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुधारा, जहां इन दिनों सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। पहाड़ की ऊंची चोटियां, घाटी का अद्भुत सौंदर्य और करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरती दिव्य जलधारा का अलौकिक दृश्य एक पल में मंत्रमुग्ध कर लेता है। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु अब वसुधारा के दर्शन को भी अपनी तीर्थ यात्रा का हिस्सा मान रहे हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक इस स्थान पर 8 तत्व देवताओं यानी अष्ट वसु ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वसुओं द्वारा तपस्या किए जाने के कारण और यहाँ से बहने वाली जल की निरंतर धारा की वजह से इसका नाम वसुधारा पड़ा। भारत के प्रथम गांव माणा से ये करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा घाटी में मौजूद है। वसुधारा तक पहुंचने के लिए माणा गांव से ही ट्रैकिंग करनी पड़ती है। करीब 5 से 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते को पैदल पार करना पड़ता है, तब इस प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार होता है।
4: समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वसुधारा फॉल महज एक प्राकृतिक झरना नहीं है, कहते हैं कि इसके साथ महाभारत काल का एक बड़ा रहस्य भी जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडव इसी मार्ग से स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। बद्रीनाथ, माणा, वसुधारा और आगे सतुपंथ तक जाने वाला मार्ग पांडवों के अंतिम सफर का साक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं से पांडवों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, इसलिए इस मार्ग को आज भी स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। अगर आप इस चार धाम की यात्रा पर हैं या जाने वाले हैं तो आस्था के धाम से आस्था के इस अलौकिक सफर का साक्षी बन सकते हैं। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो जीएनटी लगातार आप सभी से अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील कर रहा है ताकि दूसरे लोग भी अपने इस खूबसूरत और अद्भुत शहर देश की जगहों को एक्सप्लोर कर पाएं और उनके जान पाएं। हमारे दर्शक भी काफी उत्साह के साथ कई खूबसूरत वीडियोस भी हमें भेज रहे हैं। तो चलिए आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपको आज एक व्लॉगर की नजर से दिखाते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के मनोरम नजारे। दिखाते हैं आपको कि आखिर क्यों उत्तराखंड की ये जगहें आध्यात्मिक अनुभूति लेने के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
5: आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तराखंड की दूर दराज जगह पिथौरागढ़ में, जहां व्यास वैली अपनी दोनों अलग अलग माउंटेन्स पीक को लेकर हमेशा से देश दुनिया का ध्यान खींचती आई है। यहां की शांत वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और आध्यात्मिक माहौल हर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आदि कैलाश को भगवान शिव का घर माना गया है, जबकि ओम पर्वत पर नेचुरली बना ओम का निशान आस्था और प्रकृति का अद्भुत संयोग है। सोचिए जिस पावन धरती पर हर कदम श्रद्धा से भर जाए, जहां कोई शोर नहीं बल्कि हर दिल में हर हर महादेव की गूंज है, उस खूबसूरत जगह पर भोलेनाथ की दिव्यता, उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता है। आदि कैलाश का अध्यात्म केवल एक ऊंचे पहाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस चोटी को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तप, वैराग्य, प्रकृति और शिव चेतना का प्रतीक माना गया है, जिसे आप गुंजी के बेस कैंप जॉलीलोंग से देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से पार्वती सरोवर और गौरीकुंड दर्शन कर सकते हैं। वहीं सनातन परंपरा में ओम पर्वत भी सृष्टि की आदि ध्वनि, संपूर्ण चेतना का स्वरूप है। ये पावन पर्वत दिखाता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के हर कण में मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अगले दिन नाभीगढ़ जाना होगा, क्योंकि यहीं से दुनिया का एक लौता ओम आकार का प्राकृतिक पर्वत साफ साफ नजर आएगा। तो अगर आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं और उस दिव्य ऊर्जा को बेहद नजदीक से महसूस करना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा पर जरूर आएं। बस आपको करना यह है कि दिल्ली या देहरादून से उत्तराखंड के काठगोदाम या हल्द्वानी पहुंचें, वहां से सड़क मार्ग से धारचूला पहुंचकर यात्रा परमिट और मेडिकल जांच पूरी करें। फिर गुंजी या नाभी गांव, जो यात्रा का बेस कैंप है, वहां आपको होम स्टे या टेंट की सुविधा मिल जाएगी। यहीं से आप आदि कैलाश या ओम पर्वत के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि मेरी नजर में तो इन दोनों पवित्र जगहों के दर्शन करना केवल एक पर्यटन नहीं, बल्कि आत्मीय शांति और दिव्यता महसूस कराने का ऐसा रास्ता है, जो यकीनन आपके जीवन को भी एक नई दिशा और ऊर्जा से भर देगा।
3: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके पास कोई खूबसूरत आसपास कोई जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा, बनाइए ब्लॉग और हमें व्हाट्सएप करिए 7303409922 पर, हम उसे जीएनटी पर दिखाएंगे। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन में कैसे 800 साल पुराने बीज से खिला कमल का फूल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: यूपी के सहारनपुर में 7 साल की अनुषी ने स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग का 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है।
2: बिल्कुल, देखिए, महज 1 साल पहले स्केटिंग सीखना शुरू करने वाली अनुषी का विदेशी धरती पर तिरंगा लहराने का जश्न उनके घर में खूब मनाया जा रहा है। इस बच्चे की आज खूब चर्चा है। नन्ही सी उम्र में अनुषी को मिली इस कामयाबी से उनका परिवार जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खुश है।
3: चंचल आंखें, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और माथे पर जीत का तिलक, ये है स्केटिंग की नन्ही चैंपियन अनुषी सिरोही। 7 साल की है, पहली क्लास में पढ़ती है यूपी के सहारनपुर के नगला।

0: चंचल आंखें, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और माथे पर जीत का तिलक, ये है स्केटिंग की नन्ही चैंपियन अनुश्री सिरोही। 7 साल की है, पहली क्लास में पढ़ती है, यूपी के सहारनपुर के नगला गांव से है।
1: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे लोटस कल्चर फेस्टिवल में करीब 800 साल पुराने कमल के बीज से उगाए गए दुर्लभ कमल को पहली बार लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। साइंटिस्ट परीक्षण में पुष्टि हुई है कि ये बीज लगभग 800 साल पुराना है। रिसर्च टीम ने 2 साल से ज्यादा समय तक इसकी देखभाल की, जिसके बाद ये फूल खिला। सदियों तक निष्क्रिय रहने के बाद फिर से खिलने की वजह से इसे जीवित सांस्कृतिक धरोहर माना जा रहा है। लियानहुआची पार्क में 7,000 से अधिक गमलों में लगे कमल, 380 से ज्यादा कमल की किस्में और 60 प्रजातियों की वाटर लिली प्रदर्शित की गई। तो फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही, लेकिन भूलिएगा मत सोमवार शाम ठीक 5 बजे गर्मा गर्म चाय ढेर सारी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: इसके ऊपर
4: असंभव खुद बताता है कि संभव।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
9: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज. झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से दी राहत. खूबसूरत वादियों के बीच सैलानियों के खिले चेहरे. चार दशक के लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित. उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर खोला रेस्टोरेंट. पुराने जख्मों का आपसी भरोसे का मरहम. भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल. हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलेगी ट्रेन. जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू. खाटू श्याम के लाखों भक्तों के लिए गुड न्यूज. खाटू श्याम सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन निर्माण को मिली मंजूरी. 2029 तक तैयार हो सकता है ये रेलवे स्टेशन. गुजरात के पाटन में आदिवासी परिवारों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से पहुंचे 131 जोड़े. आदिवासी रीति रिवाज से हुई सारी रस्में. भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद. एयरफोर्स के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री. मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल में घायलों के लिए भीष्म क्यूब.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार जी एन टी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। 3 दिनों तक बंद रखने के बाद मां कामाख्या का दिव्य दरबार आज सुबह खुल गया। देश और दुनिया के हर हिस्से से आए भक्त मां का दरबार खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए गर्भगृह में जाकर मां के सृजन स्वरूप का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की होड़ से लग गई। अम्बुबाची मेले के बाद मां के दर्शन का महात्म्य बहुत ज्यादा माना जाता है। यही वजह है कि 3 दिन के बाद दरबार खुलते ही श्रद्धालुओं का उत्साह काफी बढ़ गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मां के दर्शन को पाकर श्रद्धालु अपने आप को धन्य भी महसूस करने लगे।

0: गुवाहाटी के पावन नीलांचल पर्वत पर विराजमान आद्य शक्ति माँ कामाख्या का दरबार 3 दिन बंद रहने के बाद जब भक्तों, साधकों और श्रद्धालुओं के लिए खुला तो दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। अम्बुबाची मेले में देश और दुनिया से आए श्रद्धालु 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद माँ कामाख्या के रूप में विराजमान जगदम्बा का दर्शन करने के लिए श्रद्धा के आवेग में व्याकुल हो रहे थे। लिहाजा जैसे ही माँ का दरबार खुला, जयकारों की गूंज के बीच श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करने लगे। इक्यावन शक्तिपीठों में तांत्रिक साधना के लिए सबसे सिद्ध माने जाने वाले माँ के इस धाम की महिमा ऐसी है कि साल में एक बार लगने वाले अम्बुबाची मेले में शामिल होने के लिए यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और मेले के दौरान 3 दिन तक भक्ति और साधना में लीन हो जाते हैं। हर साल लगने वाले अम्बुबाची मेले के बाद माँ के दर्शन का महत्व बहुत ज्यादा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई माँ के दर्शन को लेकर लालायित रहता है। यही वजह है कि 3 दिन बाद जब माँ का दरबार हर आम और खास के लिए खोला गया तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पूरे भक्ति भाव के साथ माँ का दर्शन करने कामाख्या दरबार में पहुँचे। माँ का दर्शन करने के बाद अपूर्व शांति की अनुभूति कर रहे महामहिम ने इस मौके पर जग मंगल की कामना की।
1: ये पवित्र पावन अवसर पर अपने राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। माँ सबका कल्याण करे और इसके लिए मैंने प्रार्थना किया है और मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी माँ से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मुझे प्रसन्नता है, लाखों लोग माँ के प्रति आकर श्रद्धा का नमन कर रहे हैं और सभी उनके चरणों में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मेरा प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी का दर्शन कराने की एक सुव्यवस्था किए हैं। मेरे प्रशासन के लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरे राज्यवासियों को, सभी व्यवस्था से जुटे सभी हमारे पुरोहित, पुजारी और हमारे दर्शक सभी को मेरा बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं।
0: अम्बुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और अहम धार्मिक आयोजन माना गया है। पूरे साल में बस एक बार अम्बुबाची मेले के दौरान मंदिर के कपाट हर आम खास के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस साल 22 जून को रात 9:08:42 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान के साथ अम्बुबाची मेले की शुरुआत हुई थी। मान्यता है कि माँ कामाख्या इस दौरान वार्षिक रजस्वला काल से गुजरती हैं। इस साल प्रवृत्ति अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहे। शुक्रवार सुबह पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोल दिए गए, जिसके बाद माँ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। तंत्र साधना के साधक अम्बुबाची मेले के दौरान खास तौर पर गुवाहाटी आकर 3 दिनों तक तांत्रिक साधना करते हैं और कपाट खुलने के बाद माँ का दर्शन कर अपनी साधना संपन्न करते हैं।
2: तंत्र पीठ है, तंत्र की महाशक्ति है। जो 5 दिन अभी बंद रहा वो अपने आप में ये गौरवपूर्ण है, इतिहास है। ये जो है मामूली काम नहीं है। ये प्रत्यक्ष है, कलयुग में ऐसा कहाँ, सत्ययुग में ऐसा कहाँ। ये तो रजस्वला होती है माँ, प्रत्यक्ष रजस्वला होने के बाद फिर प्रकृति का निर्माण करती है, जीवनों का निर्माण करती है, जीवन दाता है। ये सच में प्रकृति का निर्माण, जीव जंतुओं का निर्माण माँ के आशीर्वाद से संरचना होती है। ये माँ है, असली माँ तो यही है। यहाँ जो एक बार गर्भगृह में जाता है उसको दूसरा जन्म हो जाता है, वो नया जन्म पा जाता है, फिर माँ का ऐसा आशीर्वाद है। बड़े बड़े गोरखनाथ, नौनाथ, 84 सिद्ध, अघोरेश्वर, इसके बाद कपालिक, इसके बाद बड़े बड़े तंत्र, हीनयान, वज्रयान, कौलाचार, बामाचार और जो है माँ का जो पंचमकार, ये अष्ट चक्र जागृत, अष्ट चक्र की महाविद्या कामाख्या।
0: साफ है कि मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए माँ कामाख्या के दरबार में पहुँचते हैं और पवित्र अंगोदक और अंग वस्त्र प्राप्त कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। अम्बुवाची मेले के बाद मिलने वाले अंगोदक और अंग वस्त्र को अत्यंत शुभकारी माना गया है। इन्हें साक्षात माँ का ही स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि इस अवसर पर पूरे भारत वर्ष से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल इस दौरान मंदिर के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अलौकिक हो जाती है, लिहाजा साधकों के लिए वातावरण काफी अनुकूल हो जाता है।
3: कामाख्या क्षेत्र में हम अपने बहन से आए हैं और यहाँ का एनर्जी बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली आप जब साधना में हो और इतने लोग जो साधना करते हैं उनके बीच में हो, वो एक अलग एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। और मंदिर का के अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी जो है हर जगह है, आप महसूस कर सकते हो। और माँ का दया और इनकी कृपा से साधना में और अपने जिंदगी में आगे जाने का प्रयास करूंगी मैं।
0: इस पे कोई संदेह नहीं कि कामाख्या देवी मंदिर नारी शक्ति का दुनिया का अप्रतिम केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नारी शक्ति की साक्षात अनुभूति करते हैं। मान्यता है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कामाख्या देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है और उनका पाप ताप संताप सब खत्म हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ आकर माँ का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के मुख मंडल की आभा अलौकिक हो जाती है।
3: फर्स्ट टाइम मैं इधर असम भी आई हूँ एंड फर्स्ट टाइम कामाख्या मंदिर आई हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को देख के, उनका निष्ठा देख के, उनका भक्ति देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये एनर्जी ये मंदिर का कुछ और ही है, फेमिनिन एनर्जी का वर्शिप है एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबको इनका शक्ति मिले, इनका आशीर्वाद मिले, प्रार्थना करते ओम जय माँ कामाख्या।
0: भारत की सबसे जागृत पीठ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर का अद्भुत पक्ष ये है कि यहाँ माँ की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला है जिसे माँ का स्वरूप माना गया है। काबिले गौर ये है कि इस प्राकृतिक शिला से एक जलधारा निरंतर बहती रहती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसी शिला का दर्शन करते हैं और इसे ही माँ कामाख्या का स्वरूप मानते हैं। इसी स्वरूप का दर्शन कर वो खुद को धन्य महसूस करते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माँ के कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो अम्बुबाची मेले के दौरान सालों से यहाँ आ रहे हैं।
4: हम यहाँ पे आ रहे 9 साल से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। माँ का भजन करो, पूरा पूजा पाठ करो, 3 दिन मंदिर बंद रहता है माँ का, ध्यान करो। और क्या है, साल में एक बार मेला आता है, बार बार नहीं आता है। यही है भक्त लोगों से कहना और क्या है।
5: अब कंटिन्यू कितना साल से आ रहा है?
4: 9 साल से।
5: 9 साल से।
4: हाँ,
5: अभी आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे?
4: यहाँ पे हो गया एक हफ्ता।
5: एक हफ्ता हो गया।
4: अब यहाँ से जाएंगे सीधे अमरनाथ।
0: माँ कामाख्या की विशेषता ये है कि साधु संन्यासी, साधक तपस्वी, तांत्रिक से लेकर आम श्रद्धालु तक दरबार में पहुंचते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार मनवांछित फल भी पाते हैं। माँ कामाख्या के अनन्य भक्तों का तो ये तक मानना है कि शक्ति के इस केंद्र की वजह से पूरे विश्व का संतुलन कायम है।
6: मैं काफी सालों से माँ कामाख्या के दर्शन में आते हैं अम्बुवासी मेला में, और देश विदेश से संत महंत लोग, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग यहाँ पर आते हैं। आज लाखों भक्तों आस्था का केंद्र है ये, और ये 51 शक्तिपीठ में सारा शक्ति इस समय यहाँ पर समाया हुआ है, गर्भगृह है, यहाँ से उत्पत्ति है। और ये आसाम एक प्राकृतिक से भरपूर जगह है, और ये पूर्वोत्तर का द्वार भी बोलता है ना, यही हार्ड है, यहीं से हम लोग उत्पत्ति हुआ है। और ये अगर संतुलन बिगड़ जाए तो विश्व बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारे जितना संत महंत है उन्हें भी मेरा एक ही अनुरोध है, यहाँ पर आके अच्छा ऊर्जा शक्ति पैदा करें, अच्छा ऊर्जा शक्ति पैदा करें, ताकि आने वाला भविष्य जो ये सनातन को टिका के रखे।
0: श्रद्धालु और भक्त अपनी निष्ठा और श्रद्धा के हिसाब से माँ के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इन सब के बीच यही बात विद्वान से सामान्य जन तक यहाँ आने के बाद अनुभव करते हैं। यही वजह भी है कि सनातन धर्म की हर धारा और विचारधारा के लोगों में इस दरबार को लेकर असीम आस्था है।
7: सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू समाज के जितने भी भक्तन को अम्बुपाची मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। 20 तारीख से माई के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पंजाब पटियाला से आ गए थे। श्री राम जी का ननिहाल है जहां पंजाब में, माँ कौशल्या का जन्म स्थान है, वहां से आए थे भक्तों के साथ। और आज माई के दर्शन करने के बाद जैसे खाड़ा दर्शन करेगा, सारा साधु समाज दर्शन करेगा, उनके साथ दर्शन करके फिर दोबारा आगे की जो यात्रा है तारापीठ के लिए रवाना हो जाएंगे।
0: मंदिर परिसर में कोई तो ऐसी दिव्य चेतना है जो मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अवसाद से, अंधियारे से घिरा व्यक्ति भी यहाँ आने के बाद एक अव्यक्त ऊर्जा से भर जाता है। यही वजह है कि हजारों साल से माँ का ये धाम श्रद्धालुओं से भरा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
8: माँ कामाख्या का दरबार विश्व का अकेला ऐसा मंदिर है जहां मंदिर के पट बंद होने के बावजूद श्रद्धालुओं की तादाद कम नहीं होती। अलबत्ता 3 दिन के लिए मंदिर के पट बंद होने के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता यह है कि अम्बुबाची मेले के लिए मंदिर के पट बंद होने के बाद यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही वजह है कि पट बंद होने के बाद यहां देश के हर हिस्से से साधक और श्रद्धालु पहुंचते हैं और 3 दिनों तक साधना में लीन हो जाते हैं। 3 दिन के बाद जब मंदिर के पट खुलते हैं तो गर्भगृह में मां के सृजन स्वरूप के दर्शन कर वो अपनी साधना को संपन्न करते हैं।

0: कामाख्या देवी विश्व का अनूठा ऐसा मंदिर है जहां मंदिर का पट बंद रहने के दौरान श्रद्धालुओं और भक्तों का तांता लग जाता है। जी हां, साल में एक बार जब अंबुबाची मेले के दौरान मां के मंदिर का पट बंद होता है तो मंदिर परिसर साधु सन्यासी साधक और श्रद्धालुओं के सैलाब से गुलजार हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि मंदिर परिसर में विद्यमान ऊर्जा किसी परलौकिक शक्ति से संचालित होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि खुद का वजूद भूल जाते हैं। यहाँ आकर कोई ये नहीं कहता कि मैं आया हूँ, सबके मुख से एक ही बात निकलती है कि माँ ने कृपा करके यहाँ बुलाया है। कमाल तो ये है कि बेशुमार रंगों से सुशोभित सनातन संस्कृति माँ कामाख्या के दरबार में आकर एकाकार हो जाती है।
1: माँ तो मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपार है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है बिल्कुल। नहीं, मैं आ चुकी हूँ, मैं दो तीन चार साल से आ रही हूँ। बहुत अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन हम यही है कि हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के कल्चर से लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो ऐसा है कल्चर हमारा पूरे देश का। इनफैक्ट
2: देखिए, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसेस में आपको मिलती है। और माई सब पर दया रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, देश को समृद्धि दें।
0: कामाख्या मंदिर में साल में एक बार लगने वाला अंबुवाची मेला देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं और साधकों को यहाँ खींच लाता है। ये केवल एक धार्मिक मेला भर नहीं बल्कि एक ऐसी अनोखी परंपरा है जो सनातन दर्शन के गूढ़ रहस्य को प्रकट कर देती है। भक्तों की मान्यता है कि साल में एक बार माँ कामाख्या रजस्वला होती है और इसी कारण मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अपने तरह की यह अनूठी परंपरा हमें यह एहसास कराती है कि स्त्री शरीर केवल जैविक पिंड नहीं बल्कि सृजन का आधार है और उसका सम्मान करना एक उन्नत आध्यात्मिक दृष्टि है। अंबुबाची मेले के दौरान माँ के जो भक्त यहाँ आते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में परलौकिक अनुभूति होती है, इसीलिए लौकिक मनोकामनाएं अपने आप तिरोहित हो जाती है।
3: मनोकामना वगैरह तो किसने क्या पूरा किया है, यहाँ पे आने से आप हमारे मदर गॉडेस जो हिंदुइज्म में डिवाइन फेमिनिन, यहाँ काली एंड त्रिपुर सुंदरी दोनों का वास है, तो हम माँ की कंपनी में आते हैं, उनकी ऊर्जा में आते हैं। मनोकामना का तो क्या है ना, मनोकामना है कि अभी हम यहाँ है ना, बाकी तो वो दे देंगी, उनका नाम लेना काफी है।
0: अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ के वातावरण में आध्यात्मिकता की एक अजीब सी कशिश घुल जाती है। देश भर से अघोरी साधु तांत्रिक साधक और भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं और शांत चित्त होकर माँ का ध्यान लगाते हैं। ये उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि सृजन की शक्ति यानी स्त्रीत्व और प्रकृति के चक्र का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। शायद यही वजह है कि अंबुबाची मेले के दौरान पहुंचने वाले साधु संत या साधक खुद के उत्थान की नहीं बल्कि जगत के कल्याण की भावना से भरे रहते हैं।
4: जितने भी यहाँ पे साधु संत आए वो संसार के लिए भजन करते हैं, भजन के लिए तप करते हैं और सभी भक्तों के लिए सुख शांति मांगते हैं। जय माता दी।
0: आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं, एक भौगोलिक स्थान भर नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित एक जागृत आध्यात्मिक क्षेत्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत 3 अलग अलग ऊर्जा बिंदुओं ब्रह्म, शिव और वराह का संगम है, इसलिए यहाँ साधना का प्रभाव अन्य जगहों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो जाता है। नीलांचल पर्वत के अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी गुफाएं और गंदराएं मौजूद हैं, जहां आज भी साधक गुप्त रूप से साधना के अभ्यास में लीन रहते हैं। इस पर्वत के कई हिस्सों में चल रही गुप्त साधना का ही असर है कि यहां आकर लोग अपने सारे कष्ट क्लेश भूल जाते हैं। दरअसल अंबुबाची मेले के दौरान नीलांचल पर्वत की गुफाओं और कंदराओं में गुप्त साधना करने वाले साधक भी मंदिर परिसर में आकर प्रकट रूप से साधना करने लगते हैं।
5: ये जो माँ कामाख्या का पीठ है, 51 पीठों में से शक्ति पीठ, ये प्रधान पीठ कहा गया है। अंबुबाची मेले में के साधु संत सभी सभी आ रखे हैं, सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं, माँ कामाख्या का भजन कर रहे हैं। माँ महामाई ऐसी सभी पे कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवती सभी में है मेहर बनाए रखे। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।
0: आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर का मौजूद स्वरूप 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नर नारायण द्वारा बनवाया गया था, लेकिन माँ का यह सिद्ध स्थान तो अत्यंत प्राचीन है। मंदिर की वास्तुकला नीलांचल शैली की है, जिसमें गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। मंदिर की शैली सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा संरचना की दृष्टि से भी अहम मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जैसे जैसे नीचे उतरते हैं, ब्रह्म सागर से उनका कनेक्शन कम होने लगता है। गर्भगृह में पहुंचकर एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक गहराई का अनुभव होता है।
6: जो यहाँ आने के बाद जो फील हो रहा है, जो एनर्जी है, उसे कोई शब्द से महसूस सिर्फ करने में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हम जितना भी बोले वो उतना कम है, कि जो फीलिंग है, जो उनकी वाइब्रेशन है, जो वाइब फील होती है, जो लोगों की वाइब्स है, क्योंकि सब पॉजिटिव लोग हैं और एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो जो फील हो रहा है ना, वो जितने भी कहा जाए उतना कम है। वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ, मेरी एज होगी 40 की, लेकिन 40 साल में जो पहली बार आया हूँ, जितने भी धाम घूम चुका हूँ, जो फील यहाँ पे हुआ वो मुझे अभी तक कहीं पे नहीं हुआ।
7: कहने के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है ना, कि माँ की गोदी में आके बैठे हैं, और जो यहाँ पे आके जो यहाँ पे जो माँ की ऊर्जा मिलती है उसकी तो बात ही निराली है। उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हर हर महादेव शंभु।
0: कामाख्या मंदिर की ख्याति एक और रूप में बहुत ज्यादा है। कामाख्या को तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हालांकि तंत्र साधना को लेकर समाज में कई तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं। आम तौर पर तंत्र साधना को अंधकार या किसी रहस्यमयी शक्ति से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ बिल्कुल अलग है। तंत्र साधना जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझकर मन को स्थायी शांति से भरने और अलौकिक शक्ति से एकाकार होने का सबसे सशक्त माध्यम है। माँ कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना की यही परंपरा आज भी जीवंत रूप में देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे वीडियोस की जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ हंसाने वाले हैं, कुछ गुदगुदाने वाले हैं।
2: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है? किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है? अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: एआई की मदद से दौड़ेंगे सेना के टैंक, रोबोटिक वॉरियर संभालेंगे जंग की कमान, सेना के बैटल टैंक का कायाकल्प। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से दी राहत, खूबसूरत वादियों के बीच सैलानियों के खिले चेहरे। चार दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। गुजरात के पाटन में आदिवासी परिवारों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से पहुंचे 131 जोड़े आदिवासी, रीति रिवाज से हुई सभी रस्में। भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, एयरफोर्स के दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री, मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल में घायलों के लिए भीष्म क्यूब।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: तीन दिनों के अनुष्ठान के बाद आज खुला माँ कामाख्या का दिव्य दरबार, माँ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेले के समापन के बाद शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद खुले मंदिर के कपाट, सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद माँ ने किए दर्शन। मंदिर के कपाट खुलने के बाद अत्यंत शुभ माना जाता है माँ के पहले दर्शन को, भक्तों ने प्रसाद रूप में प्राप्त किया अत्यंत शुभ माना जाने वाला पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आज से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन, भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 से शुरू होगा कथा वाचन। तीन दिन चलेगी बाबा बागेश्वर द्वारा आयोजित पवित्र हनुमंत कथा, जकार्ता में धीरेन्द्र शास्त्री का ये पहला आगमन। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 475 कैमरों से होगी रथ यात्रा की निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा में 7,000 जवानों की हुई तैनाती, 10,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना। सीकर में 2 खाटू श्याम मेले का आज दूसरा दिन, सुबह से लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल और ड्राई फ्रूट से किया गया अलौकिक श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार, भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड, वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल आय, पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ ज्यादा आया दान, अब तक सबसे ज्यादा लड्डू प्रसादी की बिक्री से 65 करोड़ की आय। अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान, सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। सुंदरपुर में स्टेशन बनने से खाटू श्याम की दूरी 11 किलोमीटर होगी कम। देशभर के लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। साल 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है रेलवे स्टेशन निर्माण। 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। हरिद्वार पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा। दक्षिण काली मंदिर में की पूजा अर्चना। जैकब जुमा का यह पहला उत्तराखंड का दौरा। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने मंदिर में किया उनका पारंपरिक स्वागत। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। परिवार के साथ की विधि विधान से पूजा। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी। भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। पाटन में 131 आदिवासी जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ पूरे रीति रिवाज से सभी रस्में। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आए थे ये जोड़े। सभी बेटियों को उपहार स्वरूप गृहस्थी का सम्मान दिया। इस मौके पर राजस्थान के सांसद राजकुमार समेत कई नेता रहे मौजूद। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। एयरफोर्स के दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री दवाइयां और मेडिकल उपकरण के साथ दो C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना। अमित शाह का बड़ा संदेश। ड्रग तस्करों पर रूथलेस कार्रवाई। पीड़ितों के प्रति अपनाए संवेदनशील रवैया। 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य। अमित शाह बोले सभी एजेंसियों और समाज को साथ में आना होगा। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल। हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली ट्रेन। दिल्ली से सोनीपत ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल टेस्ट हुआ। जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। सहारनपुर की 7 साल की नन्ही चैंपियन का कमाल। नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड। काठमांडू में लहराया तिरंगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। हनुमानगढ़ी मंदिर में किया पूजा पाठ। 94 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मीम्मा ने की स्वदेश वापसी। अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती हैं बचा हुआ वक्त। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा शिक्षा पर दिया जा रहा खास ध्यान। केरलम के थुवूर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ हुआ। वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी हुई शामिल। जूनागढ़ के सासण रोड पर निकला शेरों का कुनबा। एक साथ दिखाई दिए 9 शेर। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने की पूजा अर्चना। भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में सैलानियों ने शिकारा राइड का आनंद लिया। वडोदरा में शाला प्रवेशोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने बच्चों को किया सम्मानित। उधम सिंह नगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों के साथ मिलकर की धान रोपाई। कृषि के बारे में छात्रों को जागरूक किया। केरलम के पलक्कड़ के युवक ने नशे के खिलाफ शुरू की अनोखी यात्रा। पलक्कड़ से कश्मीर तक उल्टी दिशा में लगा रहा दौड़। चेन्नई में स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत। सीएम विजय ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तमिलनाडु में नशे के खिलाफ जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। त्रिची में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। कोहिमा में नागालैंड पुलिस ने एक दौड़ एक आवाज नशा मुक्त नागालैंड थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकारियों को जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केरलम के मोहम्मद अफसल ने जीता स्वर्ण पदक। चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में ओडिशा के अनिमेश गुर्जर ने जीता गोल्ड। महिला में मनप्रीत कौर ने किया कमाल। खैरागढ़ में आजादी के 78 साल बाद पहली बार पहुंची बिजली, चमक उठा खैरागढ़ का गांव। गांव में बिजली पहुंचे पर घरों में लोगों ने उत्साहित वो नजर आए, कहा खेती करने में आसानी होगी। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, बागेश्वर में झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। अरुणाचल के चांगलांग जिले के टोमना मार्केट में भूस्खलन हुआ, रास्ता साफ करने की तैयारी में प्रशासन। NH-10 पर भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच में चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह सड़क मार्ग पर रुकावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले कुछ घंटों में पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश व आंधी तूफान की संभावना। IMD ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की जताई आशंका, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे में दिल्ली से बिहार झारखंड तक बारिश के आसार। बारिश और बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की तैयारी। इस अभ्यास में बारिश और बाढ़ के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा, जवानों ने तालमेल को परखा। चमोली में बारिश से भूस्खलन, पहाड़ी से आया मलबा, बचाव कार्य जारी। कई मकानों में घुस गया मलबा, कई वाहनों में भी दिक्कत आई, राहत का कार्य जारी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर बनाए कई रिकॉर्ड, टीम ने 137 रनों का टारगेट चेस किया। शेफाली वर्मा ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए लगातार दूसरी बार सबसे तेज 50 बनाई, बांग्लादेश के खिलाफ 29 गेंद में पूरा किया अर्धशतक। अब तक कुल 12 विकेट के साथ श्री चरणी बनी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय। फुटबॉल वर्ल्ड कप बना गोलों का नया इसमें रिकॉर्ड, टूर्नामेंट में अब तक हो चुके हैं कुल 177 गोल, जो किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले कतर में खेले गए 2022 वर्ल्ड कप में बना था सबसे ज्यादा 172 गोल का रिकॉर्ड, इस बार ग्रुप चरण के दौरान टूट गया ये रिकॉर्ड। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे OTT प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में रिलीज हो रही। देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म वेलकम टू द जंगल, एडवांस बुकिंग में की जबरदस्त कमाई। फिल्म तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दी दस्तक, ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म, 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ इसका प्रीमियर। हिंदी के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र की भी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है फिल्म तुषार कावले और तमाम एक्टर्स। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी रिलीज हुई, एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है ये। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज, 7 अगस्त को फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होगी। प्रहार में राजकुमार राव ने मशहूर वकील उज्जवल निकम का किरदार निभाया, जिन्होंने 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। 7 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म प्रहार पाताल लोक डायरेक्ट कर चुके हैं अविनाश अरुण ने किया फिल्म प्रहार का डायरेक्शन। 57 की उम्र में फिर एक्शन करेंगे अजय देवगन, रिलीज हुआ चौहान का टीजर। राजकुमार हिरानी ने किया बड़ा ऐलान, 20 साल के बाद फिर ला रहे मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट। कमल के सुंदर सुंदर फूलों से भर गया नजर आया चीन का लियान हुआची पार्क, इसी के साथ पार्क में हुई बीजिंग कमल संस्कृति महोत्सव की शुरुआत। इस महोत्सव में गमलों में लगे 7,000 से ज्यादा कमल के पौधे और कमल की 380 से ज्यादा किस्में। इन सुंदर कमल के फूलों के बीच 800 साल पुराने कमल के बीज से सफलतापूर्वक उगाया गया एक दुर्लभ प्राचीन कमल भी पहली बार लोगों के सामने आया। लियान हुआची पार्क की एक टीम ने इस 800 साल पुराने कमल को विकसित करने से 2 साल से ज्यादा का वक्त लगाया है। लियान हुआची पार्क में ये लोटस फेस्टिवल अगस्त के अंत तक चलेगा, जिसमें गर्मियों का पूरा कमल का मौसम शामिल। दुनिया भर में बढ़ने लगा है फीफा वर्ल्ड कप का फीवर, लॉस एंजलिस में मशहूर हो रहे फुटबॉल थीम पर बने स्वादिष्ट डोनट्स। रंग बिरंगे डोनट्स की लगातार बढ़ती जा रही डिमांड, अपनी पसंदीदा टीम के डोनट्स उमड़ रही है ग्राहकों के बीच। फुटबॉल वर्ल्ड कप के जोश से भरे इस मीठे अंदाज से क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा। फीफा वर्ल्ड कप के खुमार से जानवर भी अछूते नहीं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिएटल में हो रहे मैचों के जश्न में यहां सी ऑटर को दी जा रही सॉकर थीम वाली आइस ट्रीट। सी ऑटर को दी जा रही इस खास आइस ट्रीट में भरी होती है कई तरह की छोटी छोटी मछलियां। दुबई में एक ज्वेलर ने बनाया फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हीरों से जड़ा कीमती रेप्लिका। अपने बेटे के इकट्ठे किए गए लेगो के टुकड़ों से बनाइए। दुबई में हेमंत करमचंदानी नाम के ज्वेलर का बड़ा कमाल, इसमें रेप्लिका में 18 कैरेट सोने से जड़े हैं 900 हीरे। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस रेप्लिका को पूरा करने में लगे 35 दिन, 77 लाख से ज्यादा है इस कीमती रेप्लिका की कीमत। दुनिया भर में नजर आ रहा फीफा वर्ल्ड कप का खुमार, एक बेकरी में बनाए जा रहे फुटबॉल को समर्पित शानदार केक। इन खास केक्स में वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही टीमों के झंडे से लेकर ट्रॉफी तक की झलक देखने को मिल रही। चीन के नाकू शहर में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1000 डांसर्स ने स्मार्ट रोबोट्स के साथ परफॉर्म किया गुओजुआंग डांस। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर किया गया यह पारंपरिक नृत्य लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित हुआ इवेंट। परफॉर्मेंस में दिखाया गया टेक्नोलॉजी और संस्कृति का मेल एक ही मंच पत्थर के सभी। मशहूर फैशन ब्रांड सेंट लॉरेंट ने पेरिस में आयोजित किया शानदार फैशन शो मेंस वेयर शोकेस किया। डिजाइनर एंथनी वेकवेलो ने डिजाइन किया पूरा का पूरा फैशन शो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
5: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
2: to live sports action.
6: To the near side corner, to wrap around, he scores!
2: And your favorite music.
7: You and I stargazing.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
8: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: बड़े पर्दे पर अब एक जैसे किरदार की कहानी पेश करने की तैयारी है। देश इसका रियल लाइफ में मुरीद रहा है। बात मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले मशहूर वकील उज्जवल निकम की हो रही है। उज्जवल निकम के किरदार को अब एक एक्टर जिनका नाम है राजकुमार राव, वो एक फिल्म में पेश करने जा रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और क्या कुछ खास होगा इसमें, यहाँ देखिए।
11: ऑफिस पर क्राइम, अदालतों और वकीलों के इर्द गिर्द घूमती कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अब एक ऐसा कोर्टरूम ड्रामा बड़े पर्दे पर आने जा रहा है जिसकी रियल स्टोरी में देश ही नहीं दुनिया भर की दिलचस्पी रही है। ये कहानी है मुंबई में 2008 में हुए 26/11 के हमले की, जिस पर कई फिल्में और वेब सीरीज तो पहले भी बन चुकी है, लेकिन अब इससे जुड़ी एक अलग ही कहानी रुपहले पर्दे पर आने वाली है। इस कहानी के केंद्र में है मशहूर वकील उज्जवल निकम, जिन्होंने हमले के गुनहगार अजमल कसाब के मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं उज्जवल निकम की कहानी अब फिल्म प्रहार में दिखने वाली है। फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज हो चुका है और खास बात यह है कि इसमें कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील का किरदार निभा रहे हैं मंझे हुए अभिनेता राजकुमार राव। 1.5 मिनट के इस टीजर में राजकुमार राव देश के मशहूर वकील और सांसद उज्जवल निकम के किरदार में पूरी तरह ढले नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राजकुमार राव बॉलीवुड के सबसे दमदार यंग एक्टर्स में से एक है। वैसे तो राजकुमार राव काफी वक्त से पॉपुलर एंटरटेनिंग फिल्मों में ही नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रहार के जरिए दर्शकों को उन्हें एक ऐसे सीरियस किरदार में देखने का मौका मिलेगा जिसमें एक्टिंग के उनके टैलेंट की शानदार धार भी दिखेगी।
13: कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे।
11: राजकुमार ने इसके जरिए एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो एक्टिंग के तगड़े हुनर के मालिक है। फिल्म के टीजर में वकील उज्जवल निकम के रूप में राजकुमार राव की वो स्पीच दर्शकों को प्रभावित करने के लिए काफी है, जिसमें वह कोर्ट में खड़े होकर इस बात का जवाब देते आ रहे हैं कि जब फोटोज और वीडियोस में कसाब की सारी हरकतें दिख रही हैं, फिर उसे कोर्ट ट्रायल की जरूरत क्यों है।
13: योर ऑनर, पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोज में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे, इतना पैसा इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर।
11: खास बात ये है कि राजकुमार राव ने उज्जवल निकम का जो किरदार निभाया है उसमें निकम के मुकाबले उनकी उम्र का तनिक भी पता नहीं चलता।
13: मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोस में
11: इतना ही नहीं, फिल्म के टीजर में और भी कई खास बातें हैं जो दर्शकों को इसे देखने के लिए आकर्षित कर सकती है। चाहे टीजर का ट्रीटमेंट हो या फिर बैकग्राउंड स्कोर, जिसके बदौलत ये कहीं से नहीं लगता कि ये फिल्म रेगुलर कोर्टरूम ड्रामा की तरह स्लो होगी। प्रहार में वामिका गब्बी राजकुमार राव की पत्नी के रोल में है। वहीं इसके टीजर में जयदीप अहलावत की भी झलक भी वकील के रूप में दिखती है। राजकुमार राव के साथ जयदीप को प्रहार जैसे दमदार कोर्टरूम में देखना भी फैंस के लिए बहुत एक्साइटेड होगा, जबकि सिकंदर खैर भी इसमें अहम भूमिका में नजर आएंगे। प्रहार का निर्देशन वेब सीरीज पताल लोक के डायरेक्टर अविनाश अरुण ने किया है। इस फिल्म के लिए दर्शकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ये फिल्म 7 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और जीएनटी लगातार आप सभी से अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील कर रहा है ताकि दूसरे लोग भी अपने इस खूबसूरत और अद्भुत देश की जगहों को एक्सप्लोर कर पाएं। हमारे दर्शक भी काफी उत्साह के साथ कई खूबसूरत वीडियोस हमें लगातार भेज रहे हैं। तो चलिए आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां आपको आज एक व्लॉगर की नजर से दिखाते हैं कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के मनोरम नजारे कैसे हैं। दिखाते हैं आपको आखिर क्यों उत्तराखंड की ये जगहें आध्यात्मिक अनुभूति लेने के लिए देश दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं।
14: आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तराखंड की दूर दराज जगह पिथौरागढ़ में, जहां व्यास वैली अपनी दोनों अलग अलग माउंटेन्स पीक को लेकर हमेशा से देश दुनिया का ध्यान खींचती आई है। यहां की शांत वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और आध्यात्मिक माहौल हर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आदि कैलाश को भगवान शिव का घर माना गया है, जबकि ओम पर्वत पर नेचुरली बना ओम का निशान आस्था और प्रकृति का अद्भुत संयोग है। सोचिए जिस पावन धरती पर हर कदम श्रद्धा से भर जाए, जहां कोई शोर नहीं बल्कि हर दिल में हर हर महादेव की गूंज है। उस खूबसूरत जगह पर भोलेनाथ की दिव्यता, उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता है। आदि कैलाश का अध्यात्म केवल एक ऊंचे पहाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस चोटी को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तप, वैराग्य, प्रकृति और शिव चेतना का प्रतीक माना गया है, जिसे आप गुंजी के बेस कैंप जॉलीलोंग से देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से पार्वती सरोवर और गौरीकुंड दर्शन कर सकते हैं। वहीं सनातन परंपरा में ओम पर्वत भी सृष्टि की आदि ध्वनि, संपूर्ण चेतना का स्वरूप है। ये पावन पर्वत दिखाता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के हर कण में मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अगले दिन नाभिगढ़ जाना होगा, क्योंकि यहीं से दुनिया का एक लौता ओम आकार का प्राकृतिक पर्वत साफ साफ नजर आएगा। तो अगर आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं और उस दिव्य ऊर्जा को बेहद नजदीक से महसूस करना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा पर जरूर आए। बस आपको करना यह है कि दिल्ली या देहरादून से उत्तराखंड के काठगोदाम या हल्द्वानी पहुंचे, वहां से सड़क मार्ग से धारचूला पहुंचकर यात्रा परमिट और मेडिकल जांच पूरी करें, फिर गुंजी या नाभी गांव, जो यात्रा का बेस कैंप है, वहां आपको होमस्टे या टेंट की सुविधा मिल जाएगी। यहीं से आप आदि कैलाश या ओम पर्वत के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि मेरी नजर में तो इन दोनों पवित्र जगहों के दर्शन करना केवल एक पर्यटन नहीं, बल्कि आत्मीय शांति और दिव्यता महसूस कराने का ऐसा रास्ता है, जो यकीनन आपके जीवन को भी एक नई दिशा और ऊर्जा से भर देगा।
4: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें फिरें। तो आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
15: फिल योर डे विद पॉडकास्ट ऑन TuneIn, whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out. All your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily
16: from the New York Times. I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
15: Smartless.
17: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
15: Marketplace.
18: Big three on the program today, or, you know, the big three of
15: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
19: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
1: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है? किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है? अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
6: थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को अब दसवीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास सिक्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। चार दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित। उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर कोला रेस्टोरेंट। पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल। हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन। जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से दी राहत। खूबसूरत वादियों के बीच सैलानियों के खिले चेहरे। गुजरात के पाटन में आदिवासी परिवारों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से पहुंचे 131 जोड़े। आदिवासी रीति रिवाज से हुई सभी रस्में। भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। फोर्स के दो विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। मॉड्यूलर फील्ड अस्पताल में घायलों के लिए भीष्म क्यूब।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उस।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। ये गुड न्यूज है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। यानी कि 6 दिन बाद बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था जम्मू बेस कैंप से सुबह सवेरे पूजा पाठ के बाद कड़ी सुरक्षा में पवित्र गुफा के लिए रवाना किया जाएगा। यात्रा की घड़ी नजदीक आ गई है, ऐसे में बाबा बर्फानी के भक्तों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कई साधु संत जम्मू शहर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राम मंदिर में पहुंचे हैं, जो कि इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही है आज की हमारी पहली गुड न्यूज। 6 दिन बाद चलो श्री अमरनाथ। इस पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं, जिनके सुलभ और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देता है। इस साल भी बाबा अमरनाथ के लिए भक्तों के लिए करीब करीब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए लगातार यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल भी सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं, ताकि किसी तरह की आपदा या फिर संभावित खतरे से तीर्थयात्रियों को वक्त रहते बचाया जा सके।

0: जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाबा बर्फानी के इन भक्तों में ये साधु संत भी शामिल हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राम मंदिर में पहुंचे। इस यात्रा को लेकर इनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है।
1: बोले अमरनाथ बाबा की, बोले केदार बाबा की, बोले काशीनाथ भगवान की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
0: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और देश के अन्य राज्यों से आए इन साधु संतों ने गुड न्यूज टुडे से बातचीत की और कहा कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
2: राम मंदिर जो कि पुरानी मंडी स्थित जम्मू शहर के बीचों बीच एक मंदिर है, यहाँ पर संत समाज के लोग जो है वो पहुँच रहे हैं, सन्यासी साधु जो कि बाबा की यात्रा में जो है वो आने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ कुछ संत समाज के महात्मा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महात्मा जी, पहले अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम गणेश पुरी महाराज है।
2: महाराज जी कहाँ से आए हैं?
3: तो हिमाचल प्रदेश।
2: कहाँ से?
3: हिमाचल।
2: हिमाचल से। तो कब से आ रहे हैं यहाँ?
3: तो हो गया काफी वर्ष से हम यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत दूर दूर से हमारे जूना अखाड़े से भी पदाधिकारी लोग, साधु संतों का आगमन भी यहाँ अधिक से अधिक मात्राओं में, नागा साधुओं का भी आगमन हो रहा है, और भी प्रांतों के साधु दूर दूर से यहाँ राम मंदिर में एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ राम मंदिर में बहुत व्यवस्थाएं उपलब्ध है।
4: उत्तराखंड,
2: ऋषिकेश। देवभूमि से?
4: हाँ जी, देवभूमि से।
2: तो कब चले थे वहाँ से?
4: वहाँ से हम कल परसों चले थे।
2: कल परसों?
4: हाँ। तो यहाँ पर यात्रा का भी आनंद है।
0: 3 जुलाई की सुबह जम्मू बेस कैंप से ही अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पूजा पाठ के बाद कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा। इस जत्थे के साथ ये सभी साधु संत भी रवाना होंगे। ऐसे में जम्मू शहर में यात्रा से जुड़ी तैयारियों को करीब करीब पूरा कर लिया गया है। इसी सिलसिले में जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने एक बैठक की जिसमें यात्रा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही डिविजनल कमिश्नर भगवती नगर बेस कैंप भी पहुंचे और वहां तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भरोसा जताया है कि यात्रा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए श्राइन बोर्ड भी तैयार है।
5: प्रशासन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार सबके समन्वय के साथ सुगम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सके, इसका इंतजाम किया गया है। और मैं देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं कहना चाहता हूं कि यहां के स्थानीय लोग भी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।
0: श्री अमरनाथ जी की इस यात्रा में सुरक्षा हमेशा से ही एक अहम पहलू रहा। यही वजह है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हर साल की तरह इस साल भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए यात्रा रूट पर लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसकी एक तस्वीर गांधरबल से सामने आई, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दूसरा सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पहाड़, जंगल और रास्तों पर सुरक्षा तैयारियों को परखा।
6: सर, यात्रा बस में हमला हुआ है, एम्बुलेंस और सब से साथ।
0: इस दौरान किसी भी संभावित आतंकी हमले या फिर प्राकृतिक आपदा की सूरत में लोगों के रेस्क्यू का अभ्यास किया गया। इस ड्रिल में शामिल तमाम एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर खास फोकस रहा, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। से शुरू होने वाली ये अमरनाथ यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आएंगे, जिनकी सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोशिश यही है कि 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या धाम में अंबुबाची मेले का समापन हो गया है। 3 दिनों तक बंद रहने के बाद आज सुबह विशेष शुद्धिकरण अनुष्ठानों और नृत्य पूजा के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही मां कामाख्या के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है, फिर खुले मां कामाख्या के द्वार, भक्तों की लगी कतारें। आपको बता दें कि मंदिर खुलने के इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी कामाख्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां कामाख्या की विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। अंबुबाची मेला 22 जून को शुरू हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में मां कामाख्या वार्षिक रजस्वला काल में होती हैं और इसी कारण है से मंदिर का गर्भगृह 3 दिनों तक बंद रखा जाता है और किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की इजाजत इस बीच नहीं होती। 4th दिन निवृत्ति अनुष्ठान के बाद मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिलता है।

0: शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा केंद्र कामाख्या धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में मां के भक्त कामाख्या धाम पहुंच रहे हैं।
1: एनर्जी बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली आप जब साधना में हो और इतने लोग जो साधना करते हैं उनके बीच में हो, वो एक अलग एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। और मंदिर का के अंदर जाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी जो है हर जगह है, आप महसूस कर सकते हो।
2: एंड फर्स्ट टाइम कामाख्या मंदिर आई हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों को देख के, उनका निष्ठा देख के, उनका भक्ति देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये एनर्जी, ये मंदिर का कुछ और ही है, फेमिनिन एनर्जी का वर्शिप है।
0: दरअसल असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या धाम पर अम्बुवाची मेले का विधिवत समापन हो गया और जब 3 दिनों तक विशेष धार्मिक परंपराओं के तहत बंद रहने के बाद मां कामाख्या के मंदिर के कपाट खोले गए, तो कपाट खुलते ही दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा।
3: वो अपने आप में ये गौरवपूर्ण है, इतिहास है। ये जो है मामूली काम नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। कलयुग में ऐसा कहाँ, सत्ययुग में ऐसा कहाँ। ये तो रजस्वला होती है माँ, प्रत्यक्ष है। रजस्वला होने के बाद फिर प्रकृति का निर्माण करती है, जीवनों का निर्माण करती है, जीवन दाता है। ये सच में प्रकृति का निर्माण, जीव जंतुओं का निर्माण माँ के आशीर्वाद से संरचना होती है।
0: हर वर्ष लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तांत्रिक साधक अम्बुवाची मेले में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंचते हैं। इस साल करीब 8 लाख श्रद्धालु अम्बुवाची मेले में शामिल हुए। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन भर नहीं, बल्कि सनातन परंपरा, शक्ति साधना और भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। इस बार भी मंदिर परिसर और पूरे नीलांचल पर्वत पर आस्था का सैलाब दिखा, जिसने इस दिव्य आयोजन को और भव्य बना दिया।
4: आज लाखों भक्त आस्था का केंद्र है ये, और ये 51 शक्तिपीठ में सारा शक्ति इस समय यहाँ पर समाया हुआ है। गर्भगृह है, यहाँ से उत्पत्ति है। और ये आसाम एक प्राकृतिक से भरपूर जगह है, और ये पूर्वोत्तर का द्वार भी बोलता है ना, यही हार्ड है, यहीं से हम लोग उत्पत्ति हुआ है।
0: माँ कामाख्या के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर असम के राज्यपाल भी मंदिर पहुँचे और विधि विधान से माँ के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
5: मेरी माँ से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे प्रसन्नता है, लाखों लोग माँ के प्रति आकर श्रद्धा का नमन कर रहे हैं और सभी उनके चरणों में अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मेरा प्रशासन के लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी का दर्शन कराने की एक सुव्यवस्था किए हैं।
0: असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या का ये धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ माता सती के गर्भ की पूजा होती है, यही कारण है कि ये धाम शक्ति उपासना और तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। और यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ही देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और खाटू श्याम के करोड़ों भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। बाबा श्याम के धाम तक पहुंचने का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक होने वाला है। राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम को जल्द ही अपना रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है, जो खाटू श्याम बाबा भक्तों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। यही है आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज, और वो है बाबा श्याम के भक्तों को रेलवे का गिफ्ट। खाटू श्याम धाम के पास रेलवे स्टेशन बनने से श्रद्धालुओं को लंबी सड़क यात्रा की परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी और बाबा के दर्शन का सफर और भी सुगम और सहज, साथ ही सुविधाजनक होगा। रेलवे के इस कदम से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
7: बाबा बुलाते रहे, यही मनोकामना है जी, और कोई मनोकामना नहीं। इतनी कृपा कर रखी है उसने, इसके लायक हम थे भी नहीं।
8: यही विश्वास, यही आस्था और यही जयकारा हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को राजस्थान के सीकर जिले में बसे खाटू श्याम धाम तक खींच लाता है। कोई पैदल निशान यात्रा करता है तो कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर बाबा के दरबार में शीश नवाने पहुंचता है, क्योंकि मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद बाबा पूरी करते हैं। और अब बाबा के भक्तों के लिए दर्शन का ये सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही खाटू श्याम धाम को अपना रेलवे स्टेशन मिलने वाला है।
9: भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी सुविधा है जो सभी भक्तों को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा।
8: लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुंदरपुर पहुंचे और प्रोजेक्ट पर चर्चा की।
10: एक नया स्टेशन बनाएंगे जी, और इसका नाम भी खाटू श्याम जी सुंदरपुरा रखेंगे। खाटू श्याम जी सुंदरपुरा स्टेशन से यात्रियों को आने जाने की बहुत सुविधा हो जाएगी, और स्टेशन का डिजाइन ऐसा हो जाएगा, सारी जमीन यहाँ पे चारों तरफ अवेलेबल है, सरकारी जमीन अवेलेबल है दोनों ही तरफ, और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो जाएगी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजनों के लिए। ये लगता है इसका पूरा बन गया है, 8 से 9 महीने के अंदर अंदर काम चालू हो जाएगा।
8: खाटू श्याम रेलवे स्टेशन बनने के बाद देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सीधे खाटू धाम तक बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी। इससे यात्रा का समय भी बचेगा और श्रद्धालुओं की परेशानी भी कम होगी। खाटू धाम के पास बनने वाला खाटू रेलवे स्टेशन मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जिसका निर्माण सीकर के सुंदरपुरा में किया जाएगा। दरअसल खाटू श्याम धाम केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर महीने लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, जबकि फाल्गुन मेले और विशेष पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे स्टेशन का निर्माण केवल एक विकास परियोजना नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की वर्षों पुरानी भावना से जुड़ा सपना है, जो अब पूरा होने जा रहा है।
11: ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है, और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी। राम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से।
8: खाटू श्याम में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से सिर्फ श्रद्धालुओं को ही सुविधा नहीं होगी बल्कि पूरे इलाके के पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को रफ्तार मिलेगी। होटल, परिवहन, छोटे कारोबार और स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी ये परियोजना आस्था के साथ साथ विकास का भी नया अध्याय लिखेगी। जाहिर सी बात है, बाबा श्याम के करोड़ों भक्तों की वर्षों पुरानी मुराद अब पूर्ण होने जा रही है। नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के बाद श्रद्धालु पहले से कहीं ज्यादा आसानी और सुविधा के साथ बाबा के दरबार तक पहुंच सकेंगे। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से खाटू क्षेत्र में पर्यटन को नई रफ्तार भी मिलेगी। सीकर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और बाबा महाकाल की नगरी से बड़ी खुशखबरी आई है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की आय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है महाकाल के खजाने में धन वर्षा। आपको बता दें, बाबा महाकाल के प्रति अटूट आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति ने अब तक की सबसे ज्यादा 144 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। ये सिर्फ महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक है।
12: बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ने वाला भक्तों का ये सैलाब महज आस्था की गवाही नहीं दे रहा, एक नया इतिहास भी लिख रहा है। दरबार में आस्थावान सिर्फ नतमस्तक ही नहीं हो रहे, दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया है, उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 4 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और इसी भीड़ ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की आय को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को अब तक की सबसे बड़ी 144 करोड़ रुपए की आय हुई है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लड्डू प्रसाद से ही 65 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो बीते 6 सालों में सबसे अधिक है। इसके अलावा सोने चांदी के करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी बाबा के दरबार में चढ़ाए गए हैं।
13: जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइन दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन बनाया। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है।
12: 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर बनने से पहले महाकाल के दरबार में रोजाना 30 से 40 हजार श्रद्धालु आते थे। कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4 गुना बढ़कर 1.5 लाख से 2 लाख तक हो चुकी है। भक्तों की संख्या में इस बढ़ोतरी के साथ उज्जैन में पर्यटन कारोबार को तो पंख लगे ही हैं, महाकाल के खजाने में भी साल दर साल भारी बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में महाकालेश्वर मंदिर को दान के रूप में 38 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2023-24 में दान का ये आंकड़ा बढ़कर 59 करोड़ जा पहुंचा। 2024-25 में मंदिर को 117 करोड़ रुपए दान में मिले। 2025-26 में मंदिर समिति की कुल आय रिकॉर्ड 144 करोड़ आंकी गई है।
13: जो मंदिर में दान काउंटर्स हैं या भेंट पेटियां हैं वो कैमरा की निगरानी में है निरंतर, साथ ही वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। बात की जाए गणना की तो गणना कक्ष एक पारदर्शी कमरा है, जिसमें आते और जाते समय सुरक्षाकर्मी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले कर्मचारियों की पॉकेट सील रहती है, उनकी चेकिंग करके उपरांत ही उन्हें कक्ष में भेजा जाता है और पूरी गणना जो है वो कैमरा के निगरानी में की जाती है, जहाँ पर कर्मचारी के साथ अधिकारी भी मौजूद होते हैं।
12: महाकाल में भक्तों की आस्था शुरू से ही रही है, लेकिन ये भी सच है कि महाकाल के दरबार में नतमस्तक होने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी महाकाल लोक बनने के बाद ज्यादा हुई है। नतीजा आस्था के नए रिकॉर्ड के साथ साथ महाकाल के खजाने में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हिंदुस्तान ने भूकंप की तबाही झेल रहे वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। खबर यह है कि वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने प्रभावित इलाके में मानवीय राहत कार्यों में मदद के लिए खास मेडिकल टीम भेजी। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है वेनेजुएला की आपदा में मददगार भारत। आपको बता दें कि भारत ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अमिस्ताद नाम दिया है। आपको बता दें कि अमिस्ताद एक स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ दोस्ती होता है। इस ऑपरेशन के तहत सेना की एक मेडिकल टीम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हुई है। इस टीम में 41 सदस्य हैं, जिनमें 9 मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। ये टीम भूकंप से प्रभावित लोगों को इमरजेंसी मेडिकल केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, जान बचाने वाली सर्जरी और दूसरी जरूरी हेल्थ केयर सेवाओं में महारत रखती है। टीम अपने साथ विदेश मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराया गया लगभग 6 टन मेडिकल सामान और राहत सामग्री लेकर गई है। इसके अलावा 2 विमानों में से एक में भारत के आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत एक भीष्म क्यूब भी भेजा गया है। ये भीष्म क्यूब एक अत्याधुनिक स्वदेशी और तेजी से तैनात की जाने वाली मॉड्यूलर मेडिकल सुविधा है, जिसे खासतौर पर आपदा और राहत कार्यों के लिए बनाया गया है। इसमें छोटे और आत्मनिर्भर मेडिकल मॉड्यूल होते हैं, जिन्हें तेजी से जोड़कर फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। यह हॉस्पिटल 200 मरीजों तक को एडवांस ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी, इंटेंसिव केयर सपोर्ट और जरूरी मेडिकल इलाज देने में सक्षम है। पोर्टेबल वेंटिलेटर, मरीजों के मॉनिटर, डायग्नोस्टिक उपकरण, सर्जिकल उपकरण, बिजली बनाने की व्यवस्था और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम से भीष्म क्यूब लैस है। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारत ने मदद के लिए एनडीआरएफ की एक विशेष टीम भी वहां पर भेजने का फैसला किया, जो एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू टूल्स, मेडिकल सपोर्ट और विशेषज्ञों के साथ राहत कार्यों में मदद करेगी। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी भारत तुर्की, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया और कई देशों में आए भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बड़े पैमाने पर राहत कार्यों में अहम योगदान निभा चुका है और सैकड़ों जिंदगियां बचा चुका है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां 7 साल की अनुषी ने स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगा लहराया। जीत के बाद जब अनुषी अपने घर पहुंची तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 6वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सहारनपुर की गोल्डन गर्ल का वेलकम। 7 साल की अनुषी सिरोही पहली क्लास में पढ़ती है, जिसने नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और देश का तिरंगा लहराया। अनुषी जिस तरह छोटी उम्र में हर मुकाबले में अपने आप को दमदार साबित करते हुए आगे बढ़ रही हैं, उससे परिवार खुश है। परिवार और कोच को भरोसा है कि अनुषी आने वाले वक्त में अपने गांव और देश का नाम वैश्विक मंच पर और ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
14: गेम में पहले से रुचि है, तब ये नहीं था कि हाँ स्केटिंग ही करनी है, रनिंग भी अच्छी है, बट फिर आप लोग ना लोकेलिटी में देखते हो कि क्या गेम है जिसकी आपको एकेडमी मिल जाएगी या जहाँ से आप प्रैक्टिस करा सकते हो। तो स्केटिंग की यहाँ पर नकुड में नकुड स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्केटिंग सिखाती है, ताइक्वांडो सिखाती है, और वहाँ के कोच हैं हमारे रवि सर, बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने भी समय दिया और हमसे ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय वो प्रैक्टिस कराते थे स्पेशली इस गुड़िया को इस चैंपियनशिप के लिए। और खाली इसी चैंपियनशिप के लिए नहीं, इससे पहले भी नेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर इसने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी गोल्ड मेडल लेकर आई है।
15: अनुषी सिरोही, मेरे कोच का नाम रवि सिंह, मैं अपनी हमारी अकेडमी का नाम है SIT। मुझे अच्छा लगता है बहुत स्केटिंग करना। मैं मेरठ जा रखी हूँ, 2 बार मेरठ जा रखी हूँ और 1 बार इंडो नेपाल जा रखी हूँ। तो वहाँ से तीनों मेरे पे सारे गोल्ड मेडल है।
6: अब जरा सोचिए, अगर आप सड़क पर सफर कर रहे हों और अचानक सामने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 एशियाई शेर नजर आ जाए तो क्या होगा। गुजरात के जूनागढ़ से कुछ ऐसी ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, जहां सासण क्षेत्र में एक साथ 9 शेर सड़क पर बेखौफ टहलते दिखाई दिए। ये नजारा देखकर राहगीरों की सांसें थम गई, लेकिन वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये किसी रोमांच से कम नहीं था। इसी से जुड़ी हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है 9 एशियाई शेरों की मॉर्निंग वॉक। आपको हम बता दें, दरअसल सुबह के समय वाहनों की आवाजाही कम होने की वजह से ये शेर पूरी तरह बेखौफ होकर चलते हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये शेर कभी सड़क पर आराम से चलते हैं तो कभी एक दूसरे के साथ मस्ती करते आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर उनका ही राज हो। इस बीच वहां से गुजर रहे एक शख्स ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
17: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
18: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
17: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
19: You're listening to MSNBC.
17: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
21: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
22: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
21: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, तभी तो हम इनका सच आप सबके लिए लेकर आते हैं। फैक्ट चेक में आज यही रीचेक हम करेंगे। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इसी दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि बिना जांचे परखे, बिना समझे इसे लोग सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी, जिससे लोगों के बीच में दहशत फैल गई। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको दिखाएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो साथ जुड़ी है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का यह वीडियो है, जिसमें हजारों लोग जुटे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे और बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
11: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और आग निकलने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती दिखाई दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नेपाल में आई इस रहस्यमय घटना ने लोगों को डरा दिया है। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं और भूगर्भ से तेज आग निकलती दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने इसे भयावह बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय गतिविधि मान रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना। पूरी दुनिया की नजर अब नेपाल की इस घटना पर टिकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए दिखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का वीडियो है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। वीडियो में जमीन में दरारें देखने को मिल रही हैं, आग की वजह से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति इसे चेक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों को खड़ा भी देखा जा रहा है। जब हमने इन लोगों को ध्यान से देखा, इनके चेहरे के हाव भाव पर नजरें दौड़ाई, लेकिन इस दौरान हमें इनके चेहरे पर ना तो कोई दहशत और ना ही कोई भय नजर आया। आमतौर पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों के चेहरे पर डर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बड़े ही आराम से इधर उधर से जा रहे हैं। अब ऐसी कोई रहस्यमय घटना होती है तो लोग चौंकते हैं, ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये ना तो नेपाली है ना अंग्रेजी है, ये स्पेनिश लग रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? आखिर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 3 जून 2022 को छपी रिपोर्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार मैड्रिड में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन के प्रचार अभियान के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भी 28 मई 2022 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मैड्रिड का बताया। सर्च के दौरान एक यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला। 27 मई 2022 को यहां पर इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें भी इसे मैड्रिड का बताया गया है। इस तरह हमारी जांच से वायरल दावा गलत निकला। दरअसल वायरल वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई 2022 में हुए एक वेब सीरीज के प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो 17 जून के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की अंतिम यात्रा का है। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।

0: बिहार के भोजपुर में भारत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला सीएम सम्राट चौधरी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 17 जून को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। बिहार सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की घोषणा की है। साथ ही घटना के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें संबंधित थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन सब के बीच भरत की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ भी दिख रही है। एक्स पर एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का वीडियो है। इस वीडियो में काफी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू किया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में हमें कुछ जगह पत्रकार अमर रहे शब्द सुनाई दिए। जब भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है तो इसमें पत्रकार अमर रहे नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तुलना भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के वीडियो के साथ की। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं। एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का असली वीडियो। इन दोनों ही वीडियो को देखने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो किसी और शख्स की अंतिम यात्रा का है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अंतिम यात्रा का ये वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई है क्या और सच क्या है और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 10 मार्च को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यहीं साफ हो गई थी कि ये वीडियो पुराना है और भरत तिवारी मामले से संबंधित नहीं हो सकता है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे का है और स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन की अंतिम यात्रा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमाज के युवा पत्रकार गोविंद सेन के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह हमारी जांच में बिहार के भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार के नाम पर वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ के दावे से वायरल वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज के स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन के अंतिम संस्कार का है। इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One hit wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ आज का आईना होती हैं। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखो समाज की सोच दिखाती है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए इसके साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो वो पल हर किसी की आंखें नम कर देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चोट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वो बार बार माँ के पास जाकर उनकी चोट की ओर इशारा करता है और मासूमियत से कहता है कि उसे माँ की चिंता हो रही है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो भावुक होकर कहता है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुझे इसलिए ही रोना आ रहा है।
3: लड़ जाने की तैयारी हम लोग का आम पैक हो रहा है बिहार से कि बैंगलोर में खाएंगे मालदा आम, क्या मम्मी? पंद्रह किलो का ही लिमिट होता है मम्मी।
2: इस वीडियो में ना कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही कोई महंगा तोहफा, फिर भी लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इसकी वजह एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार और अपनापन है। बिहार की एक महिला ने अपनी बहू के लिए मालदा आमू से भरे कई पैकेट बेंगलुरु भेजे। वीडियो में जिस तरह वो आमू को बड़े प्यार से पैक करती नजर आती हैं, उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए और जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आम किसके लिए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बहू खाएगी।
3: क्या मम्मी?
2: यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 साल बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। आमतौर पर लोग अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने 122.4 डेसिबल की तीव्रता से चिल्लाकर पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी ये चीख किसी रॉक कॉन्सर्ट के शोर या टेक ऑफ करते हुए फाइटर जेट की आवाज के बराबर है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया कि उसे देखकर लोग उसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने वीडियो में एक युवती सड़क किनारे बैठे एक बंदर के पास जाती नजर आई। वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है। शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। नजर आई वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। युवती भी बिना किसी डर के उसके करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही युवती बंदर को खाना देने की कोशिश करती है, बंदर अचानक अपना हाथ उठाता है और सीधे युवती को थप्पड़ मार देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि युवती कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है।

0: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानों जैसे प्यार और समझदारी दिखाने वाले जानवरों की हो तो लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर के बच्चे और उसकी माँ के बीच का प्यारा सा व्यवहार देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर का छोटा बच्चा एक आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे लेकर उछलता कूदता भाग जाता है। आदमी और आसपास खड़े लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा नजारा देखने को मिलता है। बंदर के बच्चे की माँ वहाँ आती है और जैसे अपने बच्चे को समझाती है कि ये सही काम नहीं है। इसके बाद माँ बंदर खुद बच्चे के हाथ से फोन लेती है और उसे वापस उसके मालिक को सौंप देती है। सोशल मीडिया पर दो चूहों की मजेदार लड़ाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल प्रोफेशनल WWE रेसलर्स की तरह एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो की शुरुआत में दोनों चूहे एकदम शांत होकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को भांप रहे हों कि पहला वार कौन करेगा, लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल बदल जाता है। अचानक दोनों में से एक चूहा हवा में उछलता है और दूसरे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं। दोनों चूहे पिछले पैरों पर खड़े होकर हवा में उछल उछल कर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उनकी फुर्ती और दांव पेच को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बकायदा किसी अखाड़े या रिंग में इसकी ट्रेनिंग ली हो। कभी एक चूहा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पलटवार करके उसे पीछे धकेल देता है। चूहों की ये कुश्ती इतनी परफेक्ट है कि इसे देखकर असली WWE मैच की याद आ जाती है। इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा खास और एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड ऑडियो। वीडियो के पीछे असली WWE मैच की कमेंट्री फिट की गई है। जब चूहे एक दूसरे को पटकते हैं तो बैकग्राउंड में कमेंटेटर की वही जानी पहचानी जोश से भरी हुई आवाज सुनाई देती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा रहता है, किस लग्न में जिद की वजह से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, अलग अलग लग्न के लोगों का कैसा होता है वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: में पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: Good news today.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि महाकाल के दर पर रिकॉर्ड तोड़ 142 करोड़ का चढ़ावा, बिना जेब के कपड़ों में चढ़ावे की गिनती में सामने आए आंकड़े। उत्तराखंड का पांचवा धाम बूढ़ा केदारनाथ धाम, जहां 12 महीने खुलते हैं कपाट। इसके अलावा दिल्ली के भारत मंडपम में भविष्य की एआई रणनीति की झलक, फाइनेंशियल लीकेज रोकेगा एआई कवर। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
4: फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को अब दसवीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास सिक्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। चार दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित। उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर खोला रेस्टोरेंट। पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल। हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। गुजरात के पाटन में आदिवासी परिवारों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से पहुंचे 131 जोड़े। आदिवासी रीति रिवाज से हुई सभी रस्में। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से दी राहत। खूबसूरत वादियों के बीच सैलानियों के खिले चेहरे। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है, और जब बात महाकाल की हो तो भक्तों का समर्पण देखते ही बनता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से बड़ी गुड न्यूज आई है। महाकाल लोक के बनने के बाद से यहां न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में भारी उछाल आया है, बल्कि बाबा के दरबार में होने वाली आय ने भी नया इतिहास रच दिया है। महाकाल मंदिर समिति को करीब 142 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय का अनुमान है। खास बात यह है कि करोड़ों की राशि को गिनने के लिए मंदिर प्रशासन ने बेहद सख्त और पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। यहां चढ़ावे और नोट गिनने वालों की जेबें तक सिली हुई होती हैं।

0: अध्यात्म और ईश्वर की खोज में जब भी लोगों का मन व्याकुल होता है तो उनकी राहें महाकाल के दर की तरफ मुड़ जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का साक्षी बनने के लिए क्या खास और क्या आम, महाकालेश्वर के दरबार में हर कोई पहुंचता है और शीश नवाकर धन्य हो जाता है। भव्य महाकाल लोक के निर्माण ने उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को एक अभूतपूर्व ऊंचाई दी है। आज ये देश के सबसे बड़े और सबसे अलौकिक आध्यात्मिक गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर में महालोक बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में भारी उछाल आया है। आज ये देश के सबसे बड़े और सबसे अलौकिक आध्यात्मिक गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर में महालोक बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में भारी उछाल आया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ दान दाताओं की सूची में भी इजाफा हुआ है। हाल के सालों में चढ़ावे में इजाफा दर्ज किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन रसद सामग्री का तो दान दिया ही जाता है, साथ ही मंदिर प्रबंध समिति खुद लड्डू प्रसाद भी विक्रय करती है। इससे मंदिर समिति को भारी कमाई होती है। इसके अलावा शुल्क के साथ दर्शन व्यवस्था, शुल्क के साथ भस्म आरती, संध्या आरती और शयन आरती से भी मोटी कमाई होती है। बुधवार को सामने आए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश भर में आस्था के साथ दान का प्रवाह भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को रिकॉर्ड 142 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है, जिसपे केवल दान मद से ही 80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये राशि बीते वर्षों में सबसे ज्यादा दान है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले ये करीब 25 करोड़ रुपए ज्यादा है। मंदिर समिति के अनुसार मंदिर को दान पेटियों से 62 करोड़ रुपए, नकद काउंटर पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मनी ऑर्डर से 1,23,000 रुपए, ऑनलाइन माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए, अन्य क्षेत्र से 3 करोड़ 38 लाख रुपए और गुप्त दान के रूप में 4 करोड़ 65 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। वहीं लड्डू प्रसाद की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने करोड़ों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण भी दान स्वरूप बाबा महाकाल को भेंट किए हैं।
1: जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइन दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन बना है। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है।
0: करोड़ों की चढ़ावे और दान की गिनती को लेकर मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बेहद पारदर्शी और सख्त है। मंदिर समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए दान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार मंदिर की दान पेटियां 24 घंटे कैमरे की निगरानी में होती हैं। दान गणना कक्ष भी पारदर्शी है, जहां अधिकारियों की निगरानी में दान की गिनती की जाती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से गणना के लिए जाने वाले कर्मचारियों की जेबें भी सिली हुई होती हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
2: महाकाल मंदिर में जितने भी चढ़ावा आता है उसकी निगरानी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब भी काउंटिंग होती है सीसीटीवी फुटेज की उसमें रखा जाता है, उसके लिए कैमरे लगे हैं। जितने भी काउंटिंग करने वाले कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी निगरानी में होता है। उनके पास जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र भी ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार की जेब नहीं होती है। महाकालेश्वर मंदिर में जितना भी दान आता है उसका उपयोग यात्री की सुविधा के लिए किया जाता है और यात्री की सुविधा के लिए निर्माण कार्य किया जाता है। अन्य क्षेत्र चलते हैं, हमारे यहाँ पे गौशाला है, वैदिक संस्थान है, उसमें ही इनका उपयोग किया जाता है और जितना इससे ज्यादा ज्यादा यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो उसी में उसका उपयोग किया जाता है।
0: बाबा महाकाल के दर्शन के लिए विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, जो दान स्वरूप विदेशी मुद्राएं भी दान पेटियों में डाल देते हैं। दान पेटियों से कई बार सोने चांदी के छोटे आभूषण भी मिलते हैं। महाकाल मंदिर समिति द्वारा समय समय पर दान राशि को पेटियों से निकालकर उनकी गणना की जाती है। तकनीक के इस दौर में मंदिर समिति ने पूरे परिसर में जगह जगह QR कोड भी लगाए हैं, जिससे भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सीधे मंदिर के खाते में डिजिटल दान ट्रांसफर करते हैं। कहा जाता है महाकाल के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई मन की शांति लेकर जाता है, कोई नई उम्मीद, कोई आस्था का संबल और कोई अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होने का विश्वास। शायद यही वजह है कि उज्जैन में केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं बढ़ रही, बल्कि हर गुजरते साल के साथ महाकाल के प्रति लोगों का विश्वास और गहराता जा रहा है। जहाँ आस्था अटूट हो वहाँ दान केवल धन नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का होता है, और यही महाकाल नगरी की सबसे बड़ी पहचान है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन अब आपको कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जितना पुण्य एक साथ यहां पर मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहां उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
4: हिमालय की गोद में जहां देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहां हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
5: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवां धाम है। ये पांचवां धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
4: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
6: बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बालगंगा और धर्मगंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडव मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा और आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
4: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
7: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
8: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
4: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
6: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेंगे।
4: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत है। यहाँ भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
6: तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आदि पद चिन्ह हैं, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो हैं अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
4: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात भविष्य की एआई रणनीति की। भारत जैसे विशाल और समृद्ध देश में एआई का प्रभाव अब केवल चैटबॉट्स तक सीमित नहीं बल्कि ये हर आम हर खास उद्योग को भी बुनियादी स्तर से नया आकार दे रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैक्स की दुनिया भी आपस में जुड़ रही है। एक तरफ सरकार एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर टैक्स चोरी पकड़ने में जुटी हुई है, जबकि कॉरपोरेट और टैक्स फाइलिंग के पेशे से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी काम बदलने वाला है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इनोवेशन समिट का आयोजन हो रहा है, जहां 400 सीए जुटे हुए हैं ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही कंपनियों की तरफ से मिलने वाले सॉल्यूशंस को अपने पेशे से जोड़ पाएं।

अनेक रूप हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में बाबा भोलेनाथ जिस रूप में विराजते हैं वो अद्वितीय है, अलौकिक है। भगवान शिव का ये रूप है राजा विराज महाकालेश्वर का। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि में जब सब कुछ थमता है तब भी महाकाल का अस्तित्व रहता है। वो समय के नियंता है, मृत्यु के विजेता है और भक्तों के संकट हरता है।

0: भारत मंडपम की इस छत के नीचे कंपनियों की आर्थिक सेहत सुधारने वाला फॉर्मूला है। अगले दो दिनों तक यहाँ AI इनोवेशन समिट का आयोजन हो रहा है। मकसद है चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स या GST रिटर्न फाइलिंग के मामले में जो उलझने हैं उनको दूर करना।
1: भारत मंडपम में आज से AI इनोवेशन समिट की शुरुआत हुई है। दो दिन का यह समिट है। खास बात यह है कि अब हर फील्ड में AI किस तरह से उसकी मौजूदगी दर्ज हो रही है, कितना वो महत्वपूर्ण है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके काम में अभी तक AI उतने पुरजोर तरीके से शामिल नहीं हो पाया है। आज यहाँ पर देश के 4000 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हुई हैं वो कंपनियाँ जो AI सॉल्यूशन देती हैं।
0: भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, इस धारणा के पीछे छोटी बड़ी कंपनियों की तरफ से टैक्स फाइलिंग में आने वाली परेशानी भी शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी टैक्सेशन, ऑडिटिंग या वित्तीय सलाह देने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर होती है।
1: इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कोशिश ये की जा रही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाए, ताकि जो बही खाता का काम है, जो टैक्स का काम है, वो भी आसानी से हो पाए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जिन्हें इनकम टैक्स, GST और बाकी चीज़ों की फाइलिंग के लिए कई बार बड़े बड़े CA हायर करने पड़ते हैं, और वहाँ से उसके बावजूद उनका जो इनकम टैक्स या GST है वो सही तरीके से फाइल नहीं हो पाता।
0: टैक्स फाइल करते समय चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी दिक्कतें आती हैं। इसकी वजह कंपनियों की तरफ से डेटा मिसमैच और बेतरतीब वित्तीय रिकॉर्ड्स हैं। कई बार आमदनी और खर्चों के बीच गलत तरीके से बंटवारा भी किया जाता है।
2: नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं। एक हो गया अपना PO एक्सपेंस, वो तो अपना नॉर्मल है कि भाई हमारे पास PO आएगा, एक्सपेंस हुआ, रिकॉर्डेड है। एक हो गया नॉन PO एक्सपेंस। नॉन PO एक्सपेंस लाइक छोटे मोटे खर्चे, कुछ भी छोटे मोटे खर्चे हो गए जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कहीं पे भी। तो वहाँ पे बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है कि अपना जो ऑनर है, बिजनेस ऑनर है, वो खर्चे के लिए पैसा देता है। आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो भी उनके बाहर जो जाते रहते हैं, राइडर्स वगैरह एंड ऑल, वहाँ पे वो लोग एक्सपेंस करते हैं। तो एक तो उनका जो एक्सपेंस करा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं कि कहाँ एक्सपेंस हुआ, ठीक है। एक्सपेंस आज कर दिया, एक हफ्ते बाद उन्हें खुद को याद नहीं रहता कि एक्सपेंस कहाँ हो गया, है ना। तो और एक्सपेंस हो भी गया तो इनवॉइस नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत जो मेन बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एम्प्लॉई जो है अपने बैंक अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से अपने एम्प्लॉई के अकाउंट में डालता है पैसे, तो उनके अकाउंट में भी बहुत ज़्यादा पैसा रोल होता है। मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा उनके अकाउंट में रोल होता है, तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
0: फाइनेंशियल लीकेज यानी अनजाने में या अनुचित तरीके से पैसे की बर्बादी, ये ऐसी समस्या है जिससे कंपनियों की आय का एक बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है और व्यापार में धीरे धीरे बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके बारे में देर से पता चलता है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइनेंशियल लीकेज का रियल टाइम में पता चल सकेगा, ताकि गैर जरूरी खर्चों में तुरंत कटौती की जा सके, जिसके बाद फाइनेंशियल लीकेज को रोककर कंपनियां अपने संसाधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगी। इसके साथ ही बचे हुए कैपिटल का बेहतर तरीके से निवेश का रास्ता खुल जाएगा।
3: सो ओमनी कार्ड क्या है, वो एक्सपेंस मैनेज तो करता ही है। हमारा रुपए और UPI प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पूरा एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। बट ओमनी कार्ड AI उस पर एक इंटेलिजेंस लेयर भी क्रिएट कर रहा है, जो आपको लीकेजेस रियल टाइम पे बता रहा है, आपको जो रिकंसिलेशन है वो रियल टाइम पे कर रहा है, डेटा जो है जो 1.5 महीने बाद मिल रहा है वो हमेशा टीम के पास अवेलेबल है, कंप्लायंसेस और पॉलिसीज को बहुत ही स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर अलाउड नहीं है खर्चा तो वो नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए कितना लीकेजेस बचा सकते हैं, और ये लीकेजेस बचा के क्या करेंगे आप समझ लीजिए, एज ए MSME और एंटरप्राइज अपने वही संसाधन को और अच्छी तरीके से वो यूज़ कर पाएंगे।
0: भारत में विदेशी कंपनियों का ऑडिट करना ऐतिहासिक रूप से एक बड़ी चुनौती रहा है, इस वजह से देश को उनसे मिलने वाला टैक्स भी कम होता था। लेकिन अब एक ऐसा AI सॉल्यूशन आ गया है जिससे विदेशी कंपनी की तरफ से भारत में किए गए खर्च और कमाई के डेटा का एक्सेस बेहद आसानी से मिल पाएगा।
1: क्या प्रॉब्लम थी और क्या समस्या का हल आप लेकर आए?
4: पहले क्या होता था कि जो भी फाइनेंशियल बुक कीपिंग होती थी, डेटा डालते थे, वो इंडिया में ऑडिट करना मुश्किल होता था। कई कंपनियां कुछ कुछ करके निकल जाते थे। अब क्या हो गया है, हम उस डेटा को इंडिया में उसी तरह से चेंज लॉग, ऑडिट लॉग बोलते हैं कि पहले कोई एंट्री किया, अब उस एंट्री को चेंज किया, वो अब आपको मिल जाता है। जो भी कंपनियां पहले रिपोर्ट डालती थी वो बोलती थी टूल नहीं है हमारे पास, कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हम लेके आए हैं सोल्यूशन एआई के साथ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और भारत सरकार को मिलेगा कि जो भी विदेशी कंपनियां इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जो डेटा बाहर है उनको हम ऑडिट कर पाएंगे इंडिया के डेटा के साथ। ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं।
0: विदेशी कंपनियों के घरेलू कानून उन्हें सीमा पार अपना डेटा साझा करने से रोकते हैं, जिससे भारतीय नियामकों को जांच के लिए विदेशी सर्वर से आवश्यक दस्तावेज हासिल करने में भारी कानूनी अड़चने आती हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विदेशी कंपनियों का बेहतर तरीके से ऑडिट हो पाएगा, यानी ज्यादा कमाई के बावजूद कम टैक्स देने के खेल पर रोक लगेगी।
1: पैसा कमा ज्यादा रहे थे, टैक्स कम दे रहे थे, क्योंकि हम उनके डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इस टूल के जरिए, जिसको अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, और उन सर्टिफिकेशन के तहत इनको ये अधिकार है कि वो उस डेटा को जो भारत में वो जो काम कर रहे हैं उसका एक्सेस कर सकते हैं। यानी अब भारत भी पता लगा सकता है कि कौन सी विदेशी कंपनी भारत में कितना खर्च कर रही है, कितना कमा रही है, और उससे हमें कितना टैक्स लेना है। क्या नाम है शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
5: भारतीय सिनेमा की सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल है बाहुबली, जो एक बार फिर से चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और ना ही कोई टीजर आया है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है। आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर ये सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दग्गुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ओनली 30 कैलोरीज, जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 3 ग्राम्स ऑफ प्रीबायोटिक फाइबर। That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
6: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
7: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
8: मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:11 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से अलग अलग लग्न के लोगों के रिश्तों और विवाह का हाल कैसा रहता है। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन लग्न के बारे में जानते हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में आम तौर पर थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है और मेष लग्न में काफी उम्र बीत जाने के बावजूद विवाह इनका सेटल नहीं हो पाता और इनके साथ सामान्य जीवन में या विवाह में दुर्घटनाओं की संभावना बहुत होती है। इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, तब जाकर विवाह और रिश्तों की समस्या हल होगी। वृषभ लग्न, इनके लिए जल्दी विवाह करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये बहुत जिद्दी और उग्र स्वभाव के आम तौर पर हो जाते हैं और विपरीत लिंग के जो लोग हैं, पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बनते हैं और इनका अपना स्वभाव क्रोध और जिद इनके वैवाहिक जीवन को और रिश्तों को चौपट कर देता है। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, तब इनके विवाह और रिश्तों का मामला बेहतर होगा। मिथुन लग्न, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते और पारिवारिक जिम्मेदारियों में गड़बड़ी करने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो। मेष राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, धन की परेशानी हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिलेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन खर्च पर ध्यान दें, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, संतान की तरफ से भी इनको कष्ट मिलता है और जीवन साथी से भी तकलीफ मिलती है। जिंदगी में निर्णय लेने में अक्सर ये इमोशनल हो जाते हैं, अक्सर ये भावनात्मक हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और विवाह का निर्णय लेने में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए तो इनके लिए ठीक रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और अगर सिंह लग्न वाले जल्दी विवाह कर लें तो जल्दी विवाह करने पर दिक्कतें जरूर आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवार जनों के साथ इनका तालमेल स्वभाव की वजह से अच्छा नहीं होता, बहुत ब्लंट और बहुत रूखा कभी कभी बोलते हैं। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए और अपने वाणी पर ध्यान दीजिए। कन्या लग्न, सफाई का परफेक्शन का कीड़ा होता है इनको, सनक की हद तक सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं। अब ये होते हैं सिस्टमेटिक जीवन के परफेक्ट रहने के शौकीन और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिल जाता है। इस वजह से जीवन साथी की लापरवाहियों से दिक्कतें पैदा होती हैं, हालांकि ये धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको जीवन में निरंतर बदलाव और नया काम करने का शौक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चों से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर तुला लग्न की बात करें तो अगर ये जल्दी शादी कर लें, अर्ली शादी कर लें, तो थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ता है। अदरवाइज तुला लग्न वालों को नॉर्मल अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बड़े आइडियल हो जाते हैं, बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं, दान बहुत करने लगते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वहां पर ये बेवजह की तानाशाही दिखाते हैं, बेवजह की डिक्टेटरशिप दिखाते हैं, और दिखावे के चक्कर में अक्सर तुला लग्न वाले काफी धन का नुकसान भी करते हैं। वैसे टोटली इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, अगर ये माइल्ड हो और सोच समझ के चलें तो जीवन इनका ठीक बीतेगा। तुला लग्न वालों को नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, जिससे भी झगड़ा हुआ वो सालों बाद भी उस चीज को नहीं भूलेंगे, और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं या बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है, विचार न मिलने की वजह से, इनके काम करने के तरीकों की वजह से। वृश्चिक लग्न वालों को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए, ताकि व्यवहार थोड़ा माइल्ड हो, वैवाहिक जीवन में और अपने सामान्य जीवन में भी शांति से रह सकें। धनु लग्न, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है, क्रोधी बहुत होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, और जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा बेवजह खर्च भी होता है। संतान को लेकर या संतान की तरफ से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाह में उतनी दिक्कतें नहीं होती, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अक्सर संतान वाले पार्ट को लेकर इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। अगर ये नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें तो जीवन इनका बेहतर होगा। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आपका तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाइए, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न वाले इमोशनल झटके नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं, हालांकि किस्मत इनका साथ बहुत देती है मुश्किल समय में। पारिवारिक जीवन को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक चलता रहता है लेकिन इनको संतोष नहीं होता। अक्सर नर्वस सिस्टम की या आर्थराइटिस की समस्या इनको होती है। पारिवारिक जीवन में अगर थोड़े संतुष्ट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जीवन में सफल होंगे। कुंभ लग्न, शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इनिशियली बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत मिलता है। ये बड़े माइल्ड, धीर, गंभीर स्वभाव के होते हैं, जीवन साथी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मिलता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करिए, ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनकी अगर कोई बुराई करे या इनको कोई सुझाव दे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पत्नी या पति इनको कोई बेहतर बात समझाए या बेहतर बात बताए तो वो सुनेंगे नहीं, नतीजा होता है वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है या लग सकती है। अगर आपका मीन लग्न है तो शिव जी की आप जितनी पूजा करें उतना आपको लाभ होगा। अगर आप जीवन में यश और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करिए कृपा करने की। इससे आपको लंबी आयु और यश की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? बच्चे से रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करवाइएगा। बच्चे से रोज सुबह या तो गायत्री मंत्र पढ़वाएं, शुरुआत में 3 बार या 9 बार, या उसको बगल में बैठा करके सुनाएं। और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार से दूर रखें। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
13: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
14: Right field, and it will...
13: From the first pitch of the season to the stretch run.
14: And that's the ball game.
13: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज़ पत्र में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है।

फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को अब दसवीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास सिक्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। चार दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित। उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरेंट। पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम।

0: भारत के पहले हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा अंबुबाची मेले के बाद मां कामाख्या के कपाट खुलने और जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों की भी है।
1: असम के गुवाहाटी में अंबुबाची मेले के बाद अब कामाख्या मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह विधि विधान से निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कामाख्या मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूजा के बाद यहां श्रद्धालुओं को पवित्र अंगोदक और अंग वस्त्र दिया जा रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। 16 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। पारंपरिक सेवक पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों को कारीगर अंतिम रूप देने में जुटे हैं। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 475 कैमरों से रथ यात्रा की निगरानी की योजना है। यात्रा से पहले सुरक्षा के लिए 7,000 जवानों की तैनाती की गई है। रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। सीकर में 2 दिवसीय खाटू श्याम मेले का आज दूसरा दिन है। सुबह से खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। यहां बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से अलौकिक श्रृंगार किया गया। अलग अलग किस्म की आमों से बाबा खाटू श्याम का दरबार सजाया गया है। इन दिनों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर सैलानियों से गुलजार है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक डल झील में शिकारा राइड का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में शिकारा की सवारी एक अनूठा अनुभव है जो सैलानियों को डल झील के शांत जल में एक सुखद यात्रा पर ले जाता है। शिकारा पारंपरिक लकड़ी की नावें होती हैं, जिनका उपयोग सदियों से डल झील पर परिवहन और मनोरंजन के लिए किया जाता है और यही सैलानियों का बड़ा आकर्षण है। गुजरात के जूनागढ़ में एक रोमांचक नजारा दिख रहा है। यहाँ के मेंद्राडा सासन रोड पर अचानक एक साथ 9 शेर देखे गए। सुबह सुबह जब लोगों को ऐसा नजारा देखने को मिला तो लगा मानो सड़क पर शेरों की सवारी निकल पड़ी हो। आमतौर पर इस इलाके में 1 या 2 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार एक साथ 9 शेर नजर आने से लोग हैरान हैं। सड़क पर सुबह वाहनों की कम आवाजाही की वजह से शेर बेखौफ होकर सड़क पर घूमते रहे। लोगों ने ये रोमांचक तस्वीर अपने मोबाइल कैमरास में कैद कर ली। सासन इलाके में शेरों की मौजूदगी को देखते हुए सड़क पर वाहनों को धीमी गति से चलाने का नियम लागू है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो।
0: पर अब बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर हटाई गई पाबंदियों की। सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली है। सरकार की ओर से पाबंदियां हटाने के बाद अब बल्क एलपीजी की सप्लाई पर भी फिर से वो शुरू हो गई है, जिसे अमेरिका ईरान के बीच

बीच हुई जंग की शुरुआत में रोक दिया गया था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एलपीजी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए लिया है, लिहाजा आम जनता के इस्तेमाल में आने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

0: केंद्र सरकार ने नॉन डोमेस्टिक एलपीजी यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई को लेकर सभी पाबंदियों को हटा दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज से आवाजाही बहाल हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ईरान युद्ध से पहले के स्तर के करीब लौट आई हैं। इंटरनेशनल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड गिरकर $73 प्रति बैरल पर आ गया है। फिलहाल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई को लेकर अभी तक जो भी नियम कायदे और पाबंदियां लागू थी उसे अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एलपीजी ग्राहकों के लिए ही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को ये आदेश जारी किया। हालांकि इस आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के नए कनेक्शन पर कोई राहत नहीं है, वहीं नए घरेलू कनेक्शन पर अब भी रोक बरकरार है।
1: देश के लिए बड़ी राहत की खबर है कि सिलेंडर्स पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो सारे प्रतिबंध अब सरकार हटाने जा रही है। इससे सबसे बड़ी राहत मिलेगी उन रेस्टोरेंट वालों को, ढाबा वालों को, जिन्हें कमर्शियल सिलेंडर मिलने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। कई बार उन्हें अपने रेट बढ़ाने पड़े तो किसी को अपनी दुकान तक बंद करनी पड़ी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। लंच का टाइम है और हम कनाट प्लेस पर एक दुकान पर पहुंचे हुए हैं। बहुत मशहूर ये दुकान है, काफी सालों से है, और उनसे हम बात करते हैं। सर, अब जितने भी प्रतिबंध थे कमर्शियल सिलेंडर को लेकर वो सब हटने जा रहे हैं, लग रहा है थोड़ा ठीक है?
2: हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत राहत मिलेगी इस चीज के लिए। अब थोड़ी सी जो है दिक्कत जो है वो उम्मीद है कि बहुत कम हो जाएगी या नहीं या ना के बराबर हो जाएगी।
1: अभी तक कितनी दिक्कत हो रही थी?
2: पहले हो रही थी दिक्कत, लेकिन बीच में अब ठीक हो गया, हमें सिलेंडर मिलते जा रहे। बीच में शुरू में हुई थी जिसमें हमें ये बंद करना पड़ा था, थोड़ा सा आउटलेट आइटमें अपनी कम करनी पड़ी थी, लेकिन 15-20 दिन बाद नॉर्मल हो गया, हमें मिलते जा रहे।
1: मुझे ये बताओ कि जब कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत थी तो बीच में क्या फैमिली के साथ रेस्टोरेंट वगैरह जाने में थोड़ा सा हिचक हो रही थी कि?
3: नहीं कभी भी नहीं हुई, हम तो भरपूर गए हैं। अब देखो बाहर आए हुए खाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इतने कमाते हैं उतने खर्च भी कर लेते हैं।
4: छोले भटूरे 90 रुपए के मिलते थे पहले, 150 रुपए के कर दिए थे इन लोगों ने।
1: अच्छा, रेट बढ़े हैं?
4: रेट बढ़े थे, हर चीज के रेट बढ़े थे साहब। छोले भटूरे खाने वालों ने छोले भटूरे खाने छोड़ दिए थे, इतने रेट बढ़ा दिए थे।
5: बढ़ने के बाद तो डिक्रीज कोई नहीं करेगा रेट,
4: अब रेट तो कम होंगे नहीं, जो 150 हो गए तो वो हो गए।
1: छोले भटूरे यहाँ का मेन फूड है और वो कह रहे हैं कि 90 रुपए का था 150 रुपए का हो गया है। अब पता नहीं कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद रेट नॉर्मल होंगे कि नहीं।
4: रेट नॉर्मल नहीं होंगे,
1: कुछ फैमिली के साथ अब जाने में थोड़ा सा हिचक कम होगी क्योंकि अब जो प्रतिबंध है वो हटे तो शायद रेट कम भी हो जाए।
5: सर देखो, वार बंद होने से रेट से क्या मतलब है, जो रेट बढ़ गया तो बढ़ ही गया ना। अगर वार बढ़ेगा तो और रेट बढ़ेगा, वार बंद हो जाएगा तो रेट घटेगा? नहीं घटेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट की शुरुआत में रोकी गई बल्क एलपीजी की सप्लाई में भी ढील दी गई है। इसे संकट से पहले ही खपत के स्तर का 50% कर दिया गया है, जिससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को काफी राहत मिली है। ये बहाली एलपीजी सप्लाई की स्थिति में हाल ही में हुए सुधारों के बाद की गई है, यानी 50% एलपीजी की सप्लाई अब कमर्शियल और इंडस्ट्री कस्टमर्स को की जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए C3, C4 गैसेस का आवंटन बढ़ाने के बावजूद आम जनता के लिए घरेलू एलपीजी की उपलब्धता को कम नहीं किया जाएगा। बता दें, मिडल ईस्ट तनाव खत्म होने और हॉर्मुज से सप्लाई सामान्य होने के बाद देश में एलपीजी सप्लाई सामान्य हो रही है। देश में अब सप्लाई संकट नहीं रहा, इसलिए सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पुरानी व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं और इसमें सबसे बड़ी राहत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के थोक विक्रेताओं को मिलेगी।
6: सरकार ने जो ये फैसला लिया, काफ़ी अच्छा फैसला लिया है, हम लोग को थोड़ी राहत है। बीच पे ऐसा था कि सिलेंडर की बहुत भारी मारामारी थी, हमको ब्लैक में जैसे काफ़ी महंगे भी खरीदना पड़ा था, व्यवसाय पे काफ़ी असर भी पड़ा था। पर अभी जो फैसला लिया है इससे बहुत अच्छा राहत भी है कि, और पर हम सरकार से ये उम्मीद चाहते हैं कि एलपीजी की कीमत थोड़े डाउन करे से हमारा व्यवसाय ठीक तरीके से चले। पहली बात तो कि सरकार ने कमर्शियल तो बंद ही कर दिया था कि उनको देंगे नहीं, ठीक है ना, और ब्लैक में भी आदमी खरीद नहीं सकता था क्योंकि सरकार के नियम का भी पालन करना था, तो व्यवसाय तो काफ़ी तरीके से खराब हो चुका था। हमें तो ये लगा कि अब यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, अब अपने गांव के और निकले। तो यही हम लोग की परेशानी थी, पर लेकिन सरकार ने अभी जो कदम उठा बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है,
7: तकलीफ खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है, हम बहुत परेशान हो गए थे सिलेंडर की वजह से, तो मिल जाएगी तो अच्छी है। फैमिली भी चलाने बहुत मुश्किल हो रहा था, तो बहुत खुशी होगी मेरे को।
8: अभी गवर्नमेंट ने उसको रिसॉल्व कर दिया है, पहले दिक्कत होती थी गैस सिलेंडर में बुकिंग वुकिंग में, और अब तो ऐसा हो गया है कि आज बुकिंग करी है आपको दो अढ़ाई दिन के बाद आपको सिलेंडर आपको मिल जा रहा है।
9: हैप्पी है मतलब?
8: जी जी जी, बहुत।
9: तो इससे आपके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा?
8: कारोबार पे ये असर पड़ा कि थोड़े से बस उसके रेट्स हाई हो गए हैं, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे अब।
0: ऐसे में सवाल है कि सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई पर लगी पाबंदी क्यों हटाई? बता दें, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब न केवल कच्चे तेल बल्कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई भी बाधित हुई, क्योंकि उस समय हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण जल मार्गों को बंद कर दिया गया था। उस समय कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बाइंग हुई। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण कई परिवार घबराए, इंडक्शन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कुकवेयर की डिमांड में उछाल आया। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने एलपीजी सप्लाई को लेकर नए नियम जारी किए, जिसमें सबसे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बिक्री सीमित की गई। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सिलेंडर की बुकिंग के दिनों में गैप को बढ़ाया गया। इस दौरान सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई संकट से बचाना था, इसलिए कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर कई पाबंदियां लगाई गई। अब जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो सरकार सभी पाबंदियों को हटा रही है। सरकार की तरफ से किए गए ऐलान से सबसे ज्यादा राहत उन होटल्स, कारखानों और कमर्शियल यूनिट्स को मिलेगी जो पूरी तरह से एलपीजी पर निर्भर है।
10: उस टाइम तो हमको एक दो महीने पहले काफी परेशानी आई, क्योंकि हमको बड़ा कमर्शियल बड़े सिलेंडर मिले नहीं है, और हमको काफ़ी दिक्कत की परेशानी उठानी पड़ी, और जो कि हमको भट्टी जलानी पड़ी कोयले की। आज तक हमने कभी भट्टी जलाई, उस टाइम हमने भट्टियां भी जलाई, और अब जो है धीरे धीरे वो चीज़ें कि सॉल्व होगी, हमको बड़े सिलेंडर कमर्शियल वाले मिलने लगे हैं।
11: परेशानी तो आए थे, बहुत परेशानी आए, लगा ही नहीं कुछ दिन तक तो टेला महीने भर।
12: अब सरकार ने बोला है कि अब आगे से जितनी भी दिक्कत है, पहले थी, अब कुछ भी नहीं होगा, तो कितना राहत मिलेगी, क्या क्या फायदे होंगे?
11: अब राहत का तो पता नहीं, अभी कितने कम करेंगे नहीं करेंगे। पहले तो जैसे
12: पूरी तरीके से होगी, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
11: अच्छा, सप्लाई मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, हमारे लिए सुविधा हो जाएगा, आगे दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, ठेला चल जाएगा सही से, नहीं तो फिर ठेला बंद करना पड़ेगा, ये दिक्कत है।
13: पहले ज्यादा नुकसान हुआ, अब थोड़ा कम है राहत उसमें।
12: तो क्या किस तरीके से असर पड़ रहा था जब सप्लाई नहीं थी?
13: उस सप्लाई ऐसे के पहले इधर उधर भागना पड़ता था सिलेंडर लेने के लिए, अब नहीं भागना पड़ रहा है।
0: यही नहीं, एलपीजी सप्लाई क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने पीएनजी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने पर भी फोकस किया। ऐसी सोसाइटी या क्षेत्र जहां पीएनजी कनेक्शन पहुंच गया है, वहां पर पीएनजी सिलेंडर नहीं देने और लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। पहले सरकार ने क्या आदेश जारी किया था वो भी बता दें। संकट के समय घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने में होगा, इन्हें पेट्रोकेमिकल और दूसरे काम से हटाकर एलपीजी में लगा दिया गया था। अब जब घरेलू एलपीजी उत्पादन बेहतर हुआ है और इंपोर्टेड एलपीजी कार्गो भी आने वाले हैं, इसी को देखते हुए सरकार ने एलपीजी पूल में C3-C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला किया है। अब इन स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल और दूसरे जरूरी सेक्टर के लिए ज्यादा दिया जाएगा। बता दें कि ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज में आवाजाही रुकने के बाद भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई गई थी और कमर्शियल एलपीजी गैस पर कई तरह की प्रतिबंध लगाए गए। अब जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम युद्ध से पहले के स्तर के करीब आ गए हैं, तो सरकार पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत देने का दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि सरकार ने फिलहाल केवल सप्लाई सामान्य करने का फैसला किया है, गैस की कीमतों में कटौती को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। जयपुर से रिदम जैन, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: जकार्ता में आज से बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा का हुआ शुभारंभ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
15: भारतीय रेल इतिहास में एक नई और हरित क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। पटरियों पर अब शोर और धुएं की नहीं बल्कि स्वच्छ भविष्य की रफ्तार दिखाई देगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो न धुआं छोड़ेगी न प्रदूषण फैलाएगी बल्कि अपनी ताकत के सबूत में सिर्फ पानी की बौछारें उड़ाएगी। देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ने आज अपना आखिरी हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया। ये ट्रायल हरियाणा के जींद से सोनीपत सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल की। इसके बाद जल्दी ही इसके कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू किए जाएंगे। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया है। शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ड्रग्स तस्करों पर रूथलेस कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की बात भी कही है। शाह ने कहा कि 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी एजेंसियों और समाज को एक साथ आना होगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज से श्री हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे से कथा वाचन शुरू हो गया था। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पवित्र हनुमंत कथा यहां 3 दिन तक चलेगी। 28 जून को इसका समापन होगा। जकार्ता में धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार कथा कर रहे हैं। आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा का यह पहला उत्तराखंड दौरा है। उनके पधारने पर महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी महाराज ने मंदिर में उनका पारंपरिक स्वागत किया। पाटन में आज 131 आदिवासी जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जहां पूरे रीति रिवाज से हुई सभी रस्में निभाई गई। सभी आदिवासी जोड़े गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र से आए थे। समारोह में सभी बेटियों को उपहार स्वरूप गृहस्थी के सामान भी दिए गए। इस मौके पर राजस्थान के सांसद राजकुमार समेत कई नेता इस समारोह में मौजूद रहे और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
14: और अब बात बूढ़ा केदार की। हिमालय की गोद में बसा बूढ़ा केदारनाथ, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती और भगवान शिव में अटूट आस्था एक साथ दिखाई देती है। मान्यता है कि महाभारत के बाद यहीं भोलेनाथ ने पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। पूरे साल खुले रहने वाला ये प्राचीन धाम अपनी अनोखी परंपराओं, दिव्य शिवलिंग और पौराणिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। आखिर क्यों श्रद्धालु इसे भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप का धाम मानते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
16: बाल धर्म की धार पर बसे शिव धाम अनूप, भक्तों को दर्शन दिए बूढ़े शंकर रूप। हिमालय की ऊंची चोटियां, चारों तरफ हरियाली, दो पवित्र धाराओं का संगम और बीचों बीच विराजमान भोलेनाथ का ऐसा धाम जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है। कहते हैं सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मौजूद बूढ़ा केदारनाथ ऐसा ही दिव्य स्थान है, जहां हर कदम पर इतिहास, आस्था और प्रकृति एक साथ दिखाई देते हैं। टिहरी जिले के भिलंगना क्षेत्र में बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम पर स्थित प्राचीन बूढ़ा केदारनाथ मंदिर चारों तरफ पर्वतों से घिरा है। ये स्थान पहली नजर में ही मन को मोह लेता है। यहाँ पहुँचने वाला हर शख्स खुद को प्रकृति की गोद में महसूस करता है। शांत वातावरण, बहती नदियाँ और मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। बूढ़ा केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि महाभारत काल से जुड़ी जीवंत विरासत है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुंचे थे। इसी स्थान पर भोलेनाथ ने वृद्ध रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए, तभी से इस धाम को बूढ़ा केदारनाथ कहा जाने लगा।
17: तो जब पानव लोग दर्शन करने गए भगवान शंकर का, तो कहाँ गए? कैलाश गए। श्वेत वन रामेश्वर नहीं गए, बालाजी तिरुपति नहीं गए, कहाँ गए? कैलाश। क्यों? भगवान शंकर जी का असली घर कैलाश है, तो कैलाश का ये पहला मंदिर है। और केदारनाथ द्वापर का है, पांडवों की स्थापना कर रखी है, क्योंकि प्रमाण मिल रहा है पांडव। तो जब कैलाश गए पांडव लोग, तो यह पहला घर मिला भगवान शंकर जी का, वो है केदार पहला घर। अब पांडवों ने यहाँ पर देखा कि भगवान जी का घर तो मिल गया, लेकिन भगवान जी ने उनको दर्शन नहीं दिया था। तो शंकर भगवान यहाँ से केदारनाथ की तरफ चले गए, और पीछे से पांडव लोगों ने जब दर्शन नहीं मिला तो उन्होंने पीछा किया। भगवान शंकर ने सोचा कि ये लोग तो पीछा कर रहे हैं, अगर मैं इनसे विदा नहीं होऊंगा तो मैं जहाँ जाऊँगा ये वहाँ आएंगे। तो भगवान शंकर ने अपनी प्रार्थना से आकाशवाणी हुई, और पांडवों को आकाशवाणी हुई कि यहाँ केदारनाथ में मेरे मंदिर मेरा स्थापना करो।
16: इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप की पूजा होती है। स्थानीय लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने के बाद केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी कारण आसपास के अनेक परिवार पहले बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन को ही सर्वोच्च मानते हैं। ये मान्यता वर्षों से लोगों की आस्था का हिस्सा बनी हुई है। जहाँ केदारनाथ धाम के कपाट हर साल कुछ महीनों के लिए खुलते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ मंदिर पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। चार धाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कई लोग केदारनाथ जाने से पहले यहाँ आकर माथा टेकते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसी धाम में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी यात्रा पूरी मानते हैं। मंदिर परिसर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग भी अपनी अलग पहचान रखता है। मान्यता है कि इसमें भगवान शिव के साथ पांडव परिवार की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। भक्त इन्हें श्रद्धा से देखते हैं और इस अद्भुत स्वरूप को दिव्य चमत्कार मानते हैं। यही वजह है कि ये शिवलिंग विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस पूरे क्षेत्र में आज भी महाभारत से जुड़े कई पौराणिक स्थल मौजूद हैं। भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे स्थान यहाँ आने वाले लोगों को उस युग की याद दिलाते हैं। स्थानीय लोग इन धरोहरों को अपनी संस्कृति और विश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।
18: बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा, आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे। तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले। तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जहाँ जिस जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह है, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए, और केदारनाथ जी में उन्होंने जो है फिर भगवान ने जो है भैंसों का रूप लिया, और फिर वो भीम जी ने जो है भैंसों को टांग के नीचे हाँका, और फिर जो है वहां पर अंत तो उनको भगवान के दर्शन जो है साकार रूप में दर्शन हुए।
16: बूढ़ा केदारनाथ मंदिर की एक अनोखी परंपरा भी है। यहाँ पूजा अर्चना की जिम्मेदारी गोरखनाथ समुदाय के पुजारियों के पास होती है। सालों पुरानी परंपरा के अनुसार उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार अग्नि से नहीं किया जाता, बल्कि मंदिर परिसर के पास समाधि देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। ये परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। प्राकृतिक सुंदरता भी इस धाम की एक अलग पहचान है। ऊंचे पर्वत, ठंडी हवा, कलकल बहती नदियां और शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून का अनुभव देते हैं। यही वजह है कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि कुछ पल प्रकृति के बीच बैठकर आत्मिक शांति भी महसूस करते हैं। चार धाम यात्रा के बढ़ते उत्साह के बीच बूढ़ा केदारनाथ की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल पैरों से नहीं, विश्वास से तय होता है। बूढ़ा केदारनाथ इसी अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे अनोखे और 70 साल पुराने जमीन विवाद का निपटारा किया है जो कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से होकर गुजरा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के दोनों जजों का तब जन्म भी नहीं हुआ था जब ये कानूनी विवाद शुरू हुआ था। ये मामला साल 1957 की एक सेल डीड से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक ये विवाद 4 जून 1957 को हरिद्वार के नरसिंहपुर कला गांव में 15.5 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को अपीलकर्ता शराफत अली के पूर्वजों ने खरीदा था। उस समय शराफत अली के पूर्वज नाबालिग थे, इसलिए जमीन की ये खरीद उनके पिता ने की थी। शुरुआत में ये मामला दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की कार्रवाई के रूप में शुरू हुआ, जो बाद में यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 और चकबंदी ढांचे यानी कि कंसोलिडेशन फ्रेमवर्क के दायरे में चला गया। इस केस का सफर इतना लंबा रहा कि इस दौरान एक के बाद एक पीढ़ियां गुजर गई। मुकदमे की इस लंबी यात्रा के दौरान अपीलकर्ता शराफत अली का भी निधन हो गया। इसके बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारी ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। इस तरह एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां इस 70 साल पुराने मुकदमेबाजी में उलझी रही। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और कोर्ट ने माना कि अपील करने वाले ही जमीन के असली मालिक थे। आज रिलीज हुई अक्षय कुमार की वेलकम टू जंगल फैंस को भा रही है ये फिल्म। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
16: कॉमेडी एक्शन और सितारों की लंबी फौज के साथ वेलकम टू द जंगल आखिरकार सिनेमा घरों में पहुंच गई है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने पेड प्रीव्यू से अच्छी कमाई की और अब दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। सोशल मीडिया पर फिल्म के कई सीन और स्क्रीनिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अक्षय कुमार ने भी मजेदार अंदाज में क्रिटिक्स से स्टार रेटिंग की जगह हंसी वाले इमोजी देने की अपील की। फैंस भी इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं।
19: पिछले 1.5 साल में इस केस के चलते
16: राजकुमार राव एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से बड़े पर्दे पर छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी नई फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज हो गया और आते ही चर्चा का विषय बन गया। 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब के केस से जुड़ी इस कहानी में राजकुमार मशहूर वकील उज्जवल निकम की भूमिका अदा कर रहे हैं। कोर्ट रूम में उनका दमदार संवाद और किरदार में पूरी तरह ढला अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। बाहुबली 3 की चर्चा ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक वायरल वीडियो में राणा दगुबाती कहते हैं कि दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है लेकिन बाहुबली जरूर लौटेगी। तभी प्रभास मुस्कुराते हुए 3 उंगलियां दिखाते हैं जिससे फैंस इसे बाहुबली 3 का हिंट मान रहे हैं। वीडियो के आखिर में और ये विरासत जारी है लिखा नजर आता है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में फिल्म को लेकर उत्साह तो है लेकिन फिलहाल सब कुछ सिर्फ अटकलों तक ही सीमित है। अजय देवगन एक बार फिर बड़े पर्दे पर जबरदस्त एक्शन के साथ वापसी करने जा रहे हैं। उनकी नई फिल्म चौहान का ऐलान हो गया है और इसके साथ रिलीज हुआ टीजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दमदार डायलॉग, कश्मीर की पृष्ठभूमि और एक्शन से भरपूर झलक ने फैंस का उत्साह बढ़ा दिया है। फिल्म अगले साल गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह है। मुन्ना और सर्किट की जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद निर्देशक राजकुमार हिरानी ने आखिरकार मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म पर अब बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने पुष्टि की कि नई फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है। हालांकि रिलीज डेट और बाकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन इस खबर ने दर्शकों की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं।
14: न्यूज़ पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
21: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
14: कल नोएडा अथॉरिटी के लिए नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत. सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को अब दसवीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज. क्लास सिक्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम. 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित. उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर कोला रेस्टोरेंट. पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम. भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल. हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन. जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू. न्यूज वक्त पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहां, यानी कि वायरल चौक पर. यहां देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं. इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर.
16: कुछ लोग नियमों से नहीं अपने मूड से चलते हैं, फिर चाहे सामने नई सड़क बन रही हो या रास्ता बंद हो. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स बिना किसी परवाह के ताजा बनी सड़क पर निकल पड़ता है. आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहते हैं. उनका बेफिक्र अंदाज देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इंसान और पक्षी के बीच भरोसे का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसका खूबसूरत उदाहरण ये वीडियो है. आसमान में उड़ रही एक चील बच्चे के इशारे पर नीचे आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है. दोनों के बीच तालमेल और आत्मविश्वास देखने लायक है. सोशल मीडिया पर लोग इस नजारे को खूब पसंद कर रहे हैं. कई यूजर्स बच्चे के हुनर और पक्षी के साथ उसके अनोखे जुड़ाव की तारीफ कर रहे हैं.

0: दया, संस्कार और अपनापन उम्र नहीं देखते। वायरल वीडियो में छोटा बच्चा बड़े प्यार से गाय को अपने हाथों से खाना खिलाता दिखाई देता है। गाय भी बिना घबराए आराम से उसके हाथ से भोजन करती है। बच्चे के चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन साफ नजर आता है। सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे पल को खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चे के संस्कारों की जमकर सराहना कर रहे हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अब ट्रेन से खाटू श्याम जाना होगा आसान। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र खाटू श्याम जी तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। लंबे समय से उठ रही मांग को रेल मंत्रालय ने राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नए रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी। स्टेशन बनने के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में कम समय लगेगा और सफर भी पहले से ज्यादा सुविधाजनक होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार स्टेशन का निर्माण कार्य इस साल के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में ही शुरू होने की उम्मीद है, जबकि इसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह स्टेशन खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा। फिलहाल ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं को रिंगस रेलवे स्टेशन पर उतरकर लगभग 18 किलोमीटर सड़क मार्ग से सफर करना पड़ता है, जबकि नए स्टेशन के शुरू होने के बाद यात्रा का समय लगभग 10 से 15 मिनट कम हो जाएगा। इस स्टेशन का डिजाइन भी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक होगा। अधिकारियों के मुताबिक इसका वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा। स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे श्रद्धालु स्टेशन पहुंचते ही बाबा के दर्शन कर सके। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में वेटिंग रूम, बेहतर पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, ऑटोमेटिक टिकटिंग व्यवस्था, एस्केलेटर, लिफ्ट समेत तमाम सुविधाएं होंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राजस्थान सरकार भूमि उपलब्ध करा रही है। बता दें कि उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी रिदम जैन ने खाटू श्याम में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए श्याम बाबा के लिए भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पर स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी, उससे किसानों की जो जमीन बेस कीमती होती है, किसान के लिए जमीन सबसे बड़ी माँ के बराबर होती है, वो उसकी जमीन जाती है तो एक तरह से एक बेटा मर जाए या कोई उस टाइप का ये होता है कि अपने तो जमीन दुख वाली बात होती है, तो जमीन काश्तकार के लिए माँ के बराबर होती है, वो एकदम उसको जी से चाहता है, उसकी रोजी रोटी होती है, तो उसके किसानों की नुकसान भी नहीं होगा और ये बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाए कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में।
3: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है, अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई कुछ भी मिस्टेक हो गई तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी गाँव वाले के लिए, सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
4: उससे फायदा है यानी यात्री को बहुत फायदे होंगे, एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे और ये ऑटो वाले ये 5 रुपये कमाना सीख जाएंगे और एकदम नजदीक है यानी यात्री को बहुत सुविधा है यहाँ से, हाँ उनको भी है पर यात्री को बहुत सुविधा है कि हर गाड़ी यहाँ रुकने लग जाएगी, यहाँ से है ना ऑटो कर लो या बस में चले जाओ, ये 10 किलोमीटर है यहाँ से, ज्यादा दूर भी नहीं।
1: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात प्रयागराज की लड़कियों के बीच लोकप्रिय होते क्रिकेट की, जहां एक छोटी सी क्रिकेट एकेडमी लड़कियों को न सिर्फ क्रिकेट की बारीकियां सिखा रही है बल्कि उनको आत्मविश्वास से भी भर रही है। आज यहां उन घरों से भी लड़कियां क्रिकेट खेलने आ गई हैं जहां पर लड़कियों को चार दीवारी से निकलना ही मुश्किल माना जाता रहा है। ये अकेडमी यहां सशक्तिकरण के साथ सोच में बदलाव की वजह बन गई है।
5: संगम नगरी प्रयागराज में क्रिकेट खेलती इन लड़कियों के चेहरे पर आत्मविश्वास का जुनून और कुछ कर दिखाने का जुनून चमकता है। इस छोटी सी क्रिकेट अकादमी में हर सुबह और शाम ये लड़कियां मिट्टी की पिच पर भविष्य की उम्मीद को खेलती हैं। यहां शोरगुल नहीं है बल्कि ठहराव और एक अटूट लक्ष्य की गूंज सुनाई देती है। ये वो जगह है जहाँ समाज की सीमाओं और परिभाषाओं से परे केवल खेल की भाषा बोली और समझी जाती है। 42 से ज्यादा लड़कियां रोजाना प्रैक्टिस के लिए एकेडमी आती हैं, जिनमें कुछ बॉलर हैं, कुछ बैट्समैन, कुछ शानदार फील्डर। ऐसा नहीं है कि घर से क्रिकेट अकादमी तक आने वाली हर लड़की को यहां आना आसान था।
6: फायदा यही रहा है कि आज मैं 19 खेली, 23 खेली, सीनियर खेली, इंडिया ए खेली हूँ, अभी हाल ही में मैं WPL खेल के आई हूँ। और इस अकेडमी से 2-3 लड़कियां हैं जो निकली हैं, Under-19 वर्ल्ड कप खेली है फलक नाज, 2-3 लड़कियां जो बोर्ड खेल रही है 19-23, तो काफी लड़कियां इस एकेडमी से निकली हैं।
5: दरअसल यहां खेल रही हर लड़की ने घर की पिच से अकादमी की पिच तक आने के लिए संघर्ष किया है। सबकी कहानी अलग है, ये सब मुश्किलें पार कर यहां आई हैं। किसी ने घर की चार दीवारी तोड़ी है तो किसी ने घर अकादमी में संतुलन बनाने में ऊर्जा खर्च की है, तो कोई अपनी आर्थिक परेशानियों के बीच भी हर सुबह बैट उठाकर पिच पर आने की जिगर रखती है।
7: लड़कियों के ऊपर सिर्फ यही नहीं होता कि उनको खेलना है, उनके सोसाइटी के भी बहुत से प्रेशर होते हैं कि एक तो पहली बार लड़कियों के क्रिकेट ही क्यों खिला रहे हो, पढ़ाई में नहीं तो फिर आगे जाके फ्यूचर में। फिर लड़कियों को बहुत सारी मेंटल सर बहुत प्रेशर होते हैं कि क्या ही कर पाएंगी, नहीं ज्यादा हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारे घर वाले ऐसे होते हैं कि इन सब चीजों को हटा के हमारा साथ देते हैं।
8: क्रिकेट लड़कियों के लिए तो एक हिसाब से बहुत ही टफ होता है क्योंकि लड़कियों का खेलना मतलब उतना लोग मानते नहीं है कि इसमें कुछ स्कोप है, या फिर लड़कियों को पढ़ाई तक ही सीमित रखा जाता है जहां तक है, खेल में जल्दी नहीं उतारा जाता है।
5: रात रात भर अभ्यास करना, खेल के दौरान लगी चोटों से जूझना और कभी कभी समाज की परंपरागत धारणाओं से टकराना अब इनका शगल है। और इस अकादमी ने इन लड़कियों को राह दिखाई है। एक ट्रेनर, एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अजय ने। दरअसल अजय को हार्ट ऑफ द अकादमी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अजय ही है जिन्होंने इस जगह को अकादमी से आश्रम बना दिया। वो लड़कियों को खेलने भेजने से हिचकिचाने वाले पेरेंट्स की आकांक्षाओं को धैर्य से सुनते हैं, घर की सीमाओं को समझते हैं और इन बालकों के सपनों को आकार देते हैं।
9: ये जो लड़कियां जब खेलती हैं क्रिकेट ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलती बल्कि क्रिकेट के सारे का गहरे को बहुत ही बेहतर ढंग से आयाम देती हैं और उस मुकाम तक पहुंचाने में अपना जो है भरपूर प्रयास करती हैं। तो इस क्रिकेट कोचिंग में, इस क्रिकेट क्लब में लड़कियाँ बहुत अधिक हैं और बहुत सारे लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है, उनके गार्जियंस का मेरे ऊपर भरोसा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही
5: है। यहाँ एक एक गेंद पर घंटों बात होती है, तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर काम होता है। बात सिर्फ खेल तक सीमित नहीं, उनको आत्मनिर्भर बनने, नेतृत्व सीखने और अनुशासन अपनाने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इसी का परिणाम है कि किसी भी बेटी की उपलब्धि अब यहाँ गर्व का सबब है। जो पेरेंट्स पहले बेटियों को भेजने से डरते थे, अब गर्व करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं अजय के प्रयास और अनकही तपस्या ने। अकादमी ने सिर्फ लड़कियों को ही नहीं जन्मा बल्कि सोच में बदलाव को जन्मा है। ये इस अकादमी की जीत ही मानी जाएगी। जहाँ क्रिकेट एक आइडेंटिटी है, जहाँ बैकग्राउंड नहीं स्किल और हार्ड वर्क की कद्र होती है, इन लड़कियों की आंखें बताती हैं कि खेलने की चाह और खुद को बेहतर बनाने की ललक कैसे उनमें चमक रही है। इसीलिए अकादमी के आसपास की हवा में थकान की गंध नहीं बल्कि उम्मीदों की सुगंध महसूस होती है।
10: भारत में महिला सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है, यही वजह है महिलाएं बड़े कामों में सामने आई हैं, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने की बात हो या ISPCS के एग्जाम पास करने की बात हो या किसी बड़े काम जो देश का नाम रोशन करते हों, हर उस काम में आगे हैं। वैसे ही प्रयागराज के क्रिकेट ग्राउंड में महिलाओं की क्रिकेट में भागीदारी बढ़ी है और इस भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रयागराज के क्रिकेट कोच अजय यादव है जो महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं और महिलाओं को क्रिकेट के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कराई हुई लड़कियाँ आज नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेट खेल रही हैं। आनंद राज, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज।
1: वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने जरूरी सहायता के साथ भेजे 2 C-17 विमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
11: वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि आज IFMCC के 2 C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना किए गए। ये विमान भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद के लिए जरूरी सहायता सामग्री लेकर गए। इस सहायता में भारतीय सेना की एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण शामिल है, जिनमें 2 भीष्म क्यूब्स भी हैं। भारत इस मुश्किल समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दुबई के एक ज्वेलर हेमंत करमचंदानी ने बड़ा कमाल किया है। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की हीरो से जड़ी कीमती रेप्लिका बनाई है। करमचंदानी ने अपने बेटे के इकट्ठे किए गए लेगो के टुकड़ों से ये बेशकीमती ट्रॉफी बनाई है। इस रेप्लिका में 18 कैरेट सोने पर 900 हीरे जड़े गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस रेप्लिका को पूरा करने में हेमंत करमचंदानी को करीब 35 दिन लगे। इस रेप्लिका की कीमत 77 लाख से भी ज्यादा है। दुबई ही नहीं, पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। इसी खुमार में अटलांटा में एक बेकरी में स्पेशल केक बनाए जा रहे हैं जो फुटबॉल को समर्पित है। इन खास केक्स में वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही टीमों के झंडों से लेकर ट्रॉफी तक की झलक देखने को मिल रही है। लोगों के बीच ये केक आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। चीन के नाकू शहर में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यहाँ 1000 डांसर्स ने स्मार्ट रोबोट के साथ पारंपरिक गुओ झुआंग डांस परफॉर्म करके सबको हैरान कर दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर किया गया ये पारंपरिक नृत्य लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया। इस इवेंट में टेक्नोलॉजी और संस्कृति का मेल देखने को मिला है। इस परफॉर्मेंस में एक ही मंच पर चीन की सांस्कृतिक विरासत दर्शाते गुओ झुआंग डांसर्स और स्मार्ट रोबोट्स एक साथ थिरके। मशहूर फैशन ब्रांड सेंट लॉरेंट ने पेरिस में एक शानदार फैशन शो आयोजित किया। पेरिस मेंसवियर फैशन वीक में इस ब्रांड ने अपनी स्प्रिंग समर 2027 मेंसवियर कलेक्शन शोकेस किया। डिजाइनर एंथोनी वेकेरेलो ने ये पूरा फैशन शो डिजाइन किया, जिसमें धुएं के घने बादल के बीच एक से बढ़कर एक मॉडल कैटवॉक करते नजर आए।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
13: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
14: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
13: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
15: Williams keeps it. First down. Touchdown.
13: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ विषय छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: सहारनपुर की 7 साल की अनुषी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। घर लौटने पर अनुषी का जोरदार स्वागत हुआ है। इसी के साथ खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चले खेल जगत।
2: विमेंस T20 वर्ल्ड कप में अब तक कुल 12 विकेट लेकर भारतीय टीम की गेंदबाज श्री चढ़नी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय बन गई हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय बनी हैं। उन्होंने पूर्व स्पिनर पूनम यादव का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर बनाए कई रिकॉर्ड। टीम ने 137 रनों का टारगेट किया चेस, जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेस। शिफाली वर्मा ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए लगाई दूसरी सबसे तेज 50। बांग्लादेश के खिलाफ 29 गेंद में पूरा किया अर्धशतक। पहले स्थान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर काबिज, जिन्होंने 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 27 गेंद पर लगाई थी 50। सहारनपुर की 7 साल की नन्ही चैंपियन का कमाल, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। सहारनपुर के गांव नगला में खुशी का माहौल। फुटबॉल वर्ल्ड कप बना गोलों का नया रिकॉर्ड। टूर्नामेंट में अब तक हो चुके हैं कुल 177 गोल, जो किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले कतर में खेले गए 2022 वर्ल्ड कप में बना था सबसे ज्यादा 172 गोल का रिकॉर्ड। इस बार ग्रुप चरण के दौरान ही टूट गया ये रिकॉर्ड।
1: JNT लगातार आप सभी से अपने देश को एक्सप्लोर करने की अपील कर रहा है, ताकि दूसरे लोग भी अपने इस खूबसूरत और अद्भुत देश की जगहों को एक्सप्लोर कर पाए। हमारे दर्शक भी काफी उत्साह के साथ कई खूबसूरत वीडियोस हमें भेज रहे हैं। तो चलिए आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ आपको लिए चलते हैं, जहां आपको आज एक ब्लॉगर की नजर से दिखाते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के मनोरम नजारे। दिखाते हैं आपको आखिर क्यों उत्तराखंड की ये जगहें आध्यात्मिक अनुभूति लेने के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है।
3: आज मैं आपको लेकर आया हूं उत्तराखंड की दूर दराज जगह पिथौरागढ़ में, जहां व्यास वैली अपनी दोनों अलग अलग माउंटेन्स पीक को लेकर हमेशा से देश दुनिया का ध्यान खींचती आई है। यहां की शांत वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और आध्यात्मिक माहौल हर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आदि कैलाश को भगवान शिव का घर माना गया है, जबकि ओम पर्वत पर नेचुरली बना ओम का निशान आस्था और प्रकृति का अद्भुत संयोग है। सोचिए जिस पावन धरती पर हर कदम श्रद्धा से भर जाए, जहां कोई शोर नहीं बल्कि हर दिल में हर हर महादेव की गूंज है, उस खूबसूरत जगह पर भोलेनाथ की दिव्यता, उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता है। आदि कैलाश का अध्यात्म केवल एक ऊंचे पहाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस चोटी को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तप, वैराग्य, प्रकृति और शिव चेतना का प्रतीक माना गया है, जिसे आप गुंजी के बेस कैंप जॉलीलोंग से देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से पार्वती सरोवर और गौरीकुंड दर्शन कर सकते हैं। वहीं सनातन परंपरा में ओम पर्वत भी सृष्टि की आदि ध्वनि, संपूर्ण चेतना का स्वरूप है। ये पावन पर्वत दिखाता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति के हर कण में मौजूद है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अगले दिन नाभिगढ़ जाना होगा, क्योंकि यहीं से दुनिया का एक लौता ओम आकार का प्राकृतिक पर्वत साफ साफ नजर आएगा। तो अगर आप भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं और उस दिव्य ऊर्जा को बेहद नजदीक से महसूस करना चाहते हैं, तो इस आध्यात्मिक यात्रा पर जरूर आएं। बस आपको करना यह है कि दिल्ली या देहरादून से उत्तराखंड के काठगोदाम या हल्द्वानी पहुंचे, वहां से सड़क मार्ग से धारचूला पहुंचकर यात्रा परमिट और मेडिकल जांच पूरी करें। फिर गुंजी या नाभी गांव, जो यात्रा का बेस कैंप है, वहां आपको होम स्टे या टेंट की सुविधा मिल जाएगी। यहीं से आप आदि कैलाश या ओम पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि मेरी नजर में तो इन दोनों पवित्र जगहों के दर्शन करना केवल एक पर्यटन नहीं बल्कि आत्मीय शांति और दिव्यता महसूस कराने का ऐसा रास्ता है जो यकीनन आपके जीवन को भी एक नई दिशा और ऊर्जा से भर देगा।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई वजह है तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं व्लॉग और हमें व्हाट्सएप करें 7303409922 पर। हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
4: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
5: La Que Buena.
4: ESPN Radio.
6: We know LeBron has to be the best player on the planet to
4: get The Daily.
7: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
4: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
0: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: सच्चाई की रात 9 बजे. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं. अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
9: कल नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ. करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम. राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण के दिशा में बड़ा कदम. फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत. 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज. क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम. 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित. उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्रधर में खोला रेस्टोरेंट. पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम. भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल. हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन. जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि इस स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के

0: साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं, हाथों में निशान और जुबान पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं। हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
2: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी सुविधा है।
1: बाबा श्याम के भक्तों के लिए धाम तक आने में अभी भी कोई अड़चन नहीं, कोई उलझन नहीं। साल भर कमोवेश ऐसी ही तस्वीर धाम पर नजर आती है और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुँचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
2: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
3: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी।
1: रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है।
2: में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
3: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवाकर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री डेंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसी इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली
1: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
3: पहले तो ये इसे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाए कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम एक खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
1: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
4: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी गांव वाले के लिए, सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
5: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी, बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे और ये ऑटो वाले ये 5 रुपये कमाना सीख जाएंगे और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
6: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क के में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में। यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है, कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मर रहा है, सावनपुरा हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मर रहा है, रेलवे स्टेशन
7: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडा वाली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
2: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाह जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
0: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी, कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बर्बरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ सुनिए।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
2: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहित ने उत्तराखंड विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व की मांग की है। पवित्र धाम के पंडा पुरोहितों का मानना है कि उनके बीच का कोई सदस्य अगर विधानसभा में होता तो क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रख पाएगा। इसको लेकर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के तमाम पंडितों ने बद्रीनाथ धाम में एक बैठक की, जिसमें पुरोहित धीरज पंच को सर्वसम्मति से अपना प्रतिनिधि चुना गया। बैठक में नाम के ऐलान के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ पुरोहित धीरज पंच का स्वागत किया गया। इसके बाद मौजूद सभी लोगों ने अलकनंदा नदी के जल का आचमन किया और आशीर्वाद लिया।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites. New discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते, और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: कल नोएडा अथॉरिटी के लिए नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर कोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: अब श्रद्धालुओं का खाटू श्याम दरबार जाना होगा आसान। सीकर के सुंदरपुर में बनेगा नया रेलवे स्टेशन। सुंदरपुर में रेलवे स्टेशन बनने से खाटू श्याम की दूरी 11 किलोमीटर होगी कम। देश भर के लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी। बेहतर पार्किंग, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाएं, ऑटोमेटिक टिकटिंग व्यवस्था, एस्केलेटर, लिफ्ट समेत तमाम सुविधाओं से होगा लैस। खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता को दर्शाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन, धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी मिलेगी रफ्तार। साल 2026 के अंत तक शुरू हो सकता है रेलवे स्टेशन का निर्माण। 2029 तक तैयार हो सकता है खाटू श्याम रेलवे स्टेशन। सीकर में जारी है 2 दिवसीय खाटू श्याम मेला, दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बाबा श्याम का गुलाबी फूलों के साथ सतरंगी फूल तथा ड्राई फ्रूट से किया गया लौकिक श्रृंगार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अलग अलग किस्म के आमों से सजाया गया खाटू श्याम का दरबार, भक्तों ने लगाए खाटू श्याम के जयकारे। हरिद्वार पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा, दक्षिण काली मंदिर में की पूजा अर्चना। जैकब जुमा का यह पहला उत्तराखंड दौरा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज ने मंदिर में किया उनका पारंपरिक स्वागत। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भक्तों ने बनाया आस्था का नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष में 142 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय। पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ अधिक आया दान। अब तक सबसे ज्यादा लड्डू प्रसादी की बिक्री में 65 करोड़ रुपए की आय। दान पेटियों से 62 करोड़, नगद काउंटर पर 5.5 करोड़, मनी ऑर्डर से करीब 1.25 लाख, ऑनलाइन माध्यम से 3.5 करोड़ से ज्यादा, अनुक्षेत्र से करीब 3.5 करोड़ और गुप्त दान के रूप में 4.5 से ज्यादा की प्राप्ति। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवार के साथ की विधि विधान से पूजा। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म अभिनेता नानी, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आज से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू हुआ कथा वाचन। 3 दिन तक चलेगी बाबा बागेश्वर द्वारा आयोजित पवित्र हनुमंत कथा। जकार्ता में धीरेन्द्र शास्त्री का यह पहला आगमन। 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद आज खुला मां कामाख्या का दिव्य दरबार, मां के दर्शनों के लिए उमड़ी भारी भीड़। अंबुबाची मेले के समापन के बाद शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद खुले मंदिर के कपाट, सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नृत्य पूजा पूरी होने के बाद मां ने दिए दर्शन। मंदिर के कपाट खुलने के बाद अत्यंत शुभ माना जाता है मां का पहला दर्शन, भक्तों ने प्रसाद रूप में प्राप्त किया अत्यंत शुभ माने जाने वाला पवित्र अंगोदक और अंगवस्त्र। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 475 कैमरों से होगी रथ यात्रा की निगरानी। यात्रा से पहले सुरक्षा, 7,000 जवानों की हुई तैनाती, 1,000,000 से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना। 27 से 29 जून तक सेशल्स का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी, इससे पहले साल 2015 में किया था सेशल्स का दौरा। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी लेंगे भाग। नोएडा अथॉरिटी का नया मुख्यालय बनकर तैयार, कल मुख्यमंत्री योगी करेंगे उद्घाटन। करीब 6 एकड़ में फैला है यह परिसर, पर्याप्त पार्किंग, आधुनिक कार्यालय, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है यह हेडक्वार्टर, 2016 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य, कोविड महामारी के कारण हुई देरी। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इनोवेशन समिट की हुई शुरूआत, एक मंच पर आए देशभर के 4,000 CA और AI कंपनी। दो दिन तक चलेगा ये AI समिट चार्टर्ड अकाउंटेंसी और इनकम टैक्स या फिर GST रिटर्न फाइलिंग के मामले में आने वाली मुश्किलों का समाधान ढूंढना है मकसद। भुवनेश्वर में सीएम मोहन जन मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से की मुलाकात, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई MOU पर हुए हस्ताक्षर। नवी मुंबई में भी विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस पर 56 करोड़ के ड्रग्स नष्ट, नशा मुक्त अभियान को मिली रफ्तार। कोहिमा में नागालैंड पुलिस ने एक दौड़ एक आवाज, नशा मुक्त नागालैंड थीम पर 5 किलोमीटर की दौड़ का किया आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। भूकंप पीड़ित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, एयरफोर्स के 2 विमानों से भेजी गई राहत सामग्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी, एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण के साथ 2 C-17 विमान वेनेजुएला रवाना। अमित शाह का बड़ा संदेश, ड्रग तस्करों पर रूथलेस कार्रवाई, पीड़ितों के प्रति अपनाए संवेदनशील रवैया। 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह बोले सभी एजेंसियों और समाज को साथ आना होगा। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम पोर्टल 3 दिनों के लिए बंद, नई सेवाओं के लिए अपग्रेड किया जा रहा सॉफ्टवेयर। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन। दिल्ली से सोनीपत ट्रैक पर हाइड्रोजन ट्रेन का फाइनल टेस्ट, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू। सहारनपुर की 7 साल की नन्ही चैंपियन का कमाल, नेपाल में स्पीड स्केटिंग में जीता गोल्ड, काठमांडू में लहराया तिरंगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड, सहारनपुर के गांव नगला खुशी का माहौल। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। 94 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश की महालक्ष्मी अम्मा ने की स्वदेश वापसी, अमेरिका की नागरिकता छोड़कर अपनी मिट्टी में बिताना चाहती हैं बचा हुआ वक्त, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया की पूरी। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। केरलम के थुवूर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी हुए शामिल। जूनागढ़ के मेंदरडा सासन रोड पर निकला शेरों का कुनबा, एक साथ दिखाई दिए 9 शेर। जामनगर पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता टायरस गिब्सन, बने अंबानी परिवार के विशेष अतिथि। कुंभलगढ़ को जल्द मिलेगा टाइगर रिजर्व का दर्जा, राजस्थान का 6ठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया बनने के बाद सरिस्का और रणथंभौर से भेजे जाएंगे बाघ, मेवाड़ और मारवाड़ अंचल के जंगलों में बाघों के संरक्षण, पुनर्वास और वन्यजीव पर्यटन को मिलेगी गति। पहाड़ों पर हर पल बदल रहा है मौसम, हिमाचल के शिमला में हुई बरसात से सुहाना हुआ मौसम, पर्यटकों के बीच खुशी। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण निचले और ढलान वाले इलाकों में भरा पानी, बरसाती नालों और झरनों से आने वाली पानी के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, बागेश्वर में दोबारा बारिश से मिली गर्मी से राहत। अरुणाचल के चांगलांग जिले के टोमना मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने की तैयारी में प्रशासन। NH10 पर भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला गया, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह सड़क मार्ग पर रुकावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले कुछ घंटों में पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत में कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। IMD ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की जताई आशंका, इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 24 घंटे में दिल्ली से बिहार झारखंड तक बारिश के आसार। बारिश बाढ़ से पहले अलर्ट मोड पर कोटा, किशोर सागर में उतरे जवान, फ्लड रेस्क्यू मॉक ड्रिल में दिखाई आपदा से निपटने की पूरी तैयारी। इस अभ्यास में बारिश और बाढ़ के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया, जवानों ने तालमेल को भी परखा। चमोली में बारिश से भूस्खलन, पहाड़ी से आया मलबा, बचाव कार्य जारी। मकानों में घुसा मलबा, कई वाहनों में मलबे में दबे, राहत कार्य जारी। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर बनाया नया रिकॉर्ड। टीम ने 137 रनों का टारगेट किया चेज, जो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज। शेफाली वर्मा ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए लगाई दूसरी सबसे तेज 50। बांग्लादेश के खिलाफ 29 गेंद में पूरा किया अर्धशतक। पहले स्थान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर काबिज, जिन्होंने 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 27 गेंद पर लगाई थी 50। अब तक कुल 12 विकेट के साथ श्री चरणी बनी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय। तोड़ा पूर्व स्पिनर पूनम यादव का 6 साल पुराना रिकॉर्ड। फुटबॉल वर्ल्ड कप बना गोलों का नया रिकॉर्ड। टूर्नामेंट में अब तक हो चुके हैं कुल 177 गोल, जो किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा। इससे पहले कतर में खेले गए 2022 वर्ल्ड कप में बना था सबसे ज्यादा 172 गोल का रिकॉर्ड। इस बार ग्रुप चरण के दौरान ही टूट गया ये रिकॉर्ड। फिल्मी फ्राइडे पर सिनेमा प्रेमियों को शानदार सौगात, बड़े पर्दे पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में हो रही रिलीज। देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म वेलकम टू द जंगल, एडवांस बुकिंग में की गई जबरदस्त कमाई। फिल्म तेरा मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दी दस्तक। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था इसका प्रीमियर। हिंदी के सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी सिनेमाघरों में दी दस्तक। फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल में। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म अंगीकारम भी हुई रिलीज। एथलीट्स के सामने आने वाली व्यवस्था और राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। राजकुमार राव की फिल्म प्रहार का टीजर रिलीज। 7 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। प्रहार में राजकुमार ने मशहूर वकील उज्जवल निकम का निभाया है किरदार, जिन्होंने 26/11 हमले के आरोपी अजमल कसाब को फांसी दिलवाने में निभाई थी बड़ी भूमिका। 7 अगस्त को रिलीज हो रही है फिल्म प्रहार। पाताल लोक डायरेक्टर कर चुके अविनाश अरुण ने किया है फिल्म प्रहार को डायरेक्ट। 57 की उम्र में फिर एक्शन करेंगे अजय देवगन। रिलीज हुआ चौहान का टीजर, दिखेगी कश्मीर की कहानी। राजकुमार ईरानी ने किया बड़ा ऐलान, 20 साल बाद फिर ला रहे हैं मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट। कमल के सुंदर सुंदर फूलों से भरा नजर आया चीन का लियानहुआची पार्क। इसी के साथ पार्क में हुई बीजिंग कमल संस्कृति महोत्सव की शुरुआत। इस महोत्सव में गमलों में लगे 7,000 से ज्यादा कमल के पौधे और कमल की 380 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की गई। साथ ही वाटर लिली की 60 प्रजातियों को भी डिस्प्ले पर रखा गया। इन सुंदर कमल के फूलों के बीच 800 साल पुराने कमल के बीज से सफलतापूर्वक उगाया गया एक दुर्लभ प्राचीन कमल भी पहली बार लोगों के सामने पेश किया गया। लियानहुआची पार्क की एक टीम ने इस 800 साल पुराने कमल को विकसित करने में 2 साल से ज्यादा का समय लगाया। काफी रिसर्च के बाद इसे फिर से जीवित किया गया। लियानहुआची पार्क में ये लोटस फेस्टिवल अगस्त के अंत तक चलेगा, जिसमें गर्मियों का पूरा कमल का मौसम शामिल है। दुनिया भर में बढ़ने लगा है फीफा वर्ल्ड कप का फीवर। लॉस एंजल्स में मशहूर हो रहे फुटबॉल थीम पर बने स्वादिष्ट डोनट्स। रंग बिरंगे डोनट्स की लगातार बढ़ रही है मांग। अपनी पसंदीदा टीम के डोनट्स, उमड़ रही है ग्राहकों की भीड़। फुटबॉल वर्ल्ड कप के जोश से भरे इस मीठे अंदाज से क्रिएटिविटी के साथ बिजनेस में भी जबरदस्त उछाल। इंगलवुड में मशहूर रैंडीज डोनट्स के बाहर इन खास डोनट्स के लिए लाइन। फीफा वर्ल्ड कप के खुमार से जानवर भी अछूते नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिएटल में होने वाले मैचों के जश्न में यहां सी ऑटर को दी जा रही है सॉकर थीम वाली आई स्ट्रीट। सी ऑटर को दी जा रही इस खास आई स्ट्रीट में भरी होती है कई तरह की मछलियां, जो उनको पूरे दिन रखती हैं एक्टिव। दुबई में एक ज्वेलर ने बनाया फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हीरो से जड़ा कीमती रेप्लिका। अपने बेटे के इकट्ठा किए गए लेगो के टुकड़ों से बनाई गई ये बेशकीमती ट्रॉफी। दुबई में हेमंत करमचंदानी नाम के ज्वेलर का बड़ा कमाल, इसमें रेप्लिका में 18 कैरेट सोने से जड़े हैं 900 हीरे। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के इस रेप्लिका को पूरा करने में लगे 35 दिन 70 लाख से भी ज्यादा है इस कीमती रेप्लिका की कीमत। दुनिया भर में नजर आ रहा है फीफा वर्ल्ड कप का खुमार। अटलांटा में एक बेकरी में बनाए जा रहे हैं फुटबॉल को समर्पित शानदार केक। इन खास केक्स में वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही टीमों के झंडों से लेकर ट्रॉफी तक की झलक, लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने ये केक। चीन के नाकू शहर में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1000 डांसर्स ने स्मार्ट रोबोट्स के साथ परफॉर्म किया पारंपरिक गोजुआंग डांस। दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर किया गया यह पारंपरिक नृत्य, लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया इवेंट। परफॉर्मेंस में दिखाया गया टेक्नोलॉजी और संस्कृति का मेल, एक ही मंच पर थिर के चीन की सांस्कृतिक विरासत दर्शाते ये डांसर्स और स्मार्ट रोबोट्स। मशहूर फैशन ब्रांड सेंट लॉरेंट ने पेरिस में आयोजित किया शानदार फैशन शो। पेरिस मेंसवेयर फैशन वीक में ब्रांड ने शोकेस की अपनी स्प्रिंग समर 2027 मेंसवेयर कलेक्शन। डिजाइनर एंथनी वेकरेलो ने डिजाइन किया पूरा फैशन शो। धुएं के घने बादल के बीच कैटवॉक करते नजर आए मॉडल्स।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: कल नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित। उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्रधर में खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिरकार किस लग्न के जातकों के रिश्ते और विवाह की कैसी समस्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत से जानकारी पंडित जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप जीवन में यश और लंबी आयु चाहते हैं तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठिए और सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान से प्रार्थना करिए कृपा करने की। इससे आपको लंबी आयु और यश की प्राप्ति होगी।
0: तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 27 जून 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 10:11 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से यहाँ पर जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन लग्न में किस तरह की समस्या मुख्य तौर पर जातक फेस करते हैं।
1: जी, आज हम आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से अलग अलग लग्न के लोगों के रिश्तों और विवाह का हाल कैसा रहता है।

0: करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये बहुत जिद्दी और उग्र स्वभाव के आम तौर पर हो जाते हैं। और विपरीत लिंग के जो लोग हैं, पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, इनके द्वारा जल्दी बेवकूफ बनते हैं। और इनका अपना स्वभाव क्रोध और जिद इनके वैवाहिक जीवन को और रिश्तों को चौपट कर देता है। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, तब इनके विवाह और रिश्तों का मामला बेहतर होगा। मिथुन लग्न बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और मिथुन लग्न के लोग सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते और पारिवारिक जिम्मेदारियों में गड़बड़ी करने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है। इनको नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन बेहतर हो।
1: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, धन की परेशानी हो सकती है। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या लग्न में किस तरह की मुख्य समस्याएं होती हैं।
0: अब जानते हैं कर्क लग्न के बारे में। सामान्यतः कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। संतान की तरफ से भी इनको कष्ट मिलता है और जीवन साथी से भी तकलीफ मिलती है। जिंदगी में निर्णय लेने में अक्सर ये इमोशनल हो जाते हैं

0: अक्सर ये भावनात्मक हो जाते हैं। कर्क लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और विवाह का निर्णय लेने में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए तो इनके लिए ठीक रहता है। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और अगर सिंह लग्न वाले जल्दी विवाह कर लें तो जल्दी विवाह करने पर दिक्कतें जरूर आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवार जनों के साथ इनका तालमेल स्वभाव की वजह से अच्छा नहीं होता, बहुत ब्लंट और बहुत रूखा कभी कभी बोलते हैं। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए और अपने वाणी पर ध्यान दीजिए। कन्या लग्न, सफाई का परफेक्शन का कीड़ा होता है इनको, सनक की हद तक सफाई और क्लास के शौकीन होते हैं। अब ये होते हैं सिस्टमेटिक जीवन के परफेक्ट रहने के शौकीन और जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट मिल जाता है। इस वजह से जीवन साथी की लापरवाहियों से दिक्कतें पैदा होती हैं, हालांकि ये धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको जीवन में निरंतर बदलाव और नया काम करने का शौक होता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो सके।
1: तो चलिए, बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिलेगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन खर्च पर ध्यान दें, फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चों से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न मोनिका जी ने हमें गुरुग्राम हरियाणा से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। 28 अप्रैल 2009 का जन्म है, 8:42 रात को भिवानी हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है पीसीएम से, आगे उसका करियर और भविष्य कैसा रहेगा। मोनिका जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए आगे की जहां तक बात है, संभावना ये है कि ये इंजीनियरिंग करके आगे प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करें तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में ये जा सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए इनको अपनी एकाग्रता का, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम का और डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। एक अपने बेटे को मोती बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे या चांदी की चेन में, सोमवार की रात को इनको मोती बनवा करके पहना दें। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न तरलोक वधान जी ने दिल्ली से लिखा है, 13 सितंबर 1965 का जन्म है, रात को 9:30 होशियारपुर पंजाब। ये कह रहे हैं कि पिछले 6 साल से मेरे घुटनों में दर्द की बहुत शिकायत है, कई बार सर्जरी भी हो चुकी है लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तरलोक जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी समस्या के लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो दरअसल बनती है बुध की, और बुध की दशा भी चल रही है तो हड्डियों और नसों की तकलीफ की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। एक माणिक्य बनवा के पहने, लगभग 8-9 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार या तो हनुमान बाहुक पढ़ें या हनुमान बाहुक सुनें तो आपको लाभ होगा।
1: तुला वृश्चिक और धनु लग्न में किस तरह की समस्याएं मुख्य तौर पर होती हैं, आइए पंडित जी से इसके बारे में समझते हैं।
0: देखिए अगर तुला लग्न की बात करें तो अगर ये जल्दी शादी कर लें, अर्ली शादी कर लें तो थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में बढ़ता है, अदरवाइज तुला लग्न वालों को नॉर्मल अच्छे वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। कभी कभी ये बड़े आइडियल हो जाते हैं, बड़े आदर्शवादी हो जाते हैं, दान बहुत करने लगते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वहां पर ये बेवजह की तानाशाही दिखाते हैं, बेवजह की डिक्टेटरशिप दिखाते हैं और दिखावे के चक्कर में अक्सर तुला लग्न वाले काफी धन का नुकसान भी करते हैं। वैसे टोटली इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा अगर ये माइल्ड हो और सोच समझ के चले तो जीवन इनका ठीक बीतेगा। तुला लग्न वालों को नियमित रूप से दान भी करना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है, जिससे भी झगड़ा हुआ वो सालों बाद भी उस चीज को नहीं भूलेंगे और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। वृश्चिक लग्न वालों का जीवन साथी या तो रहता नहीं या बहुत जल्दी अलगाव हो जाता है विचार न मिलने की वजह से, इनके काम करने के तरीकों की वजह से। वृश्चिक लग्न वालों को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए ताकि व्यवहार थोड़ा माइल्ड हो वैवाहिक जीवन में और अपने सामान्य जीवन में भी शांति से रह सके। धनु लग्न, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है, क्रोधी बहुत होते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं और जाने अनजाने इनका बहुत सारा पैसा बेवजह खर्च भी होता है। संतान को लेकर या संतान की तरफ से इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। विवाह में उतनी दिक्कतें नहीं होती, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अक्सर संतान वाले पार्ट को लेकर इनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। अगर ये नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करें तो जीवन इनका बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर के सारे काम पूरे होंगे, वाहन या संपत्ति का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें, अभी धैर्य बनाए रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन लग्न के जातकों को किस तरह की समस्याओं का अमूमन सामना करना पड़ता है।
0: अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न वाले इमोशनल झटके नहीं झेल पाते, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान होते हैं। हालांकि किस्मत इनका साथ बहुत देती है मुश्किल समय में। पारिवारिक जीवन को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक चलता रहता है लेकिन इनको संतोष नहीं होता। अक्सर नर्वस सिस्टम की या आर्थराइटिस की समस्या इनको होती है। पारिवारिक जीवन में अगर थोड़े संतुष्ट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। इनको नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, जीवन में सफल होंगे। कुंभ लग्न शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनिशियली बहुत मेहनत करते हैं और अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत मिलता है। ये बड़े माइल्ड, धीर, गंभीर स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मिलता है। जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन इनको जल्दी घेर लेता है। अगर आपका कुंभ लग्न है तो सबसे पहले आप अपने मन को ठीक करिए। ध्यान और पूजा उपासना पर बहुत ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। मीन लग्न, इनकी अगर कोई बुराई करे या इनको कोई सुझाव दे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके अंदर ईर्ष्या का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। अगर पत्नी या पति इनको कोई बेहतर बात समझाए या बेहतर बात बताए तो वो सुनेंगे नहीं। नतीजा होता है वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम पैदा होती है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है या लग सकती है। अगर आपका मीन लग्न है तो शिव जी की आप जितनी पूजा करें उतना आपको लाभ होगा।
1: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुमार मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, आपका तनाव कम होता जाएगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाइए। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न मंजू देवी ने हमें हरियाणा से लिखा है। 13 अक्टूबर 2001 का जन्म है। 9 बजे प्रातः यमुनानगर हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, किस क्षेत्र में मुझे तैयारी करनी चाहिए और मेरे सफलता की संभावना क्या है। मंजू जी आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और सिंह राशि की, महादशा सूर्य की और अंतर दशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप बीएड कर लें या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके टीचिंग जॉब में अगर जाना चाहें तो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगा, क्योंकि आपकी कुंडली टीचिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावना दिखा रही है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस पर आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अमन राजपूत जी ने बलिया उत्तर प्रदेश से लिखा है। 14 नवंबर 2005 का जन्म है। 7:32 शाम को बलिया उत्तर प्रदेश। अमन कह रहे हैं कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, क्या मैं आर्मी में या पुलिस सेवा में अधिकारी बन सकता हूं। अमन आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की, और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें यूपीएससी की या पीसीएस की, तो जो वर्दी वाली नौकरी होती है पुलिस की फोर्स की, ऐसी नौकरी आपको मिल सकती है। अभी आपकी कुल उम्र लगभग 21 साल होने जा रही है। उम्र के 25-26 साल के आसपास आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: तो पंडित जी एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर लगन कोई भी हो, यानी किसी भी लग्न का जातक अगर वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियों का सामना वो जातक कर रहा है तो क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं, कोई भी लग्न हो एक उपाय बता दीजिए।
0: जी देखिए वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और उचित पूजा होती है भगवान शिव की और माँ पार्वती की। तो अगर आप वैवाहिक जीवन से परेशान हैं या आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो आप रोज सुबह और रोज शाम भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। एक मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रातः और 108 बार शाम को नियमित रूप से जप करिएगा। और महिलाओं को विशेष रूप से इस उपाय के अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल में जरा सी हल्दी मिलाकर ऐसा जल सूर्य देव को चढ़ाएं और सूर्य देव के सामने अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें तो उनको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 27 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है लेकिन धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। इस साल अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी ज्योतिष के नियम के अनुसार या ज्योतिष के उपाय के हिसाब से कुछ लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए? देखिए पूजा उपासना करना हमारा धर्म भी है और संस्कार भी है। कोई भी कितना भी उपाय बताए किसी भी प्रकार से हमें पूजा उपासना से नहीं रोक सकता। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आपका बृहस्पति गड़बड़ है, आप पूजा मत करिए, मंदिर मत जाइए। ऐसा कुछ उचित नहीं है। अगर कोई आपको पूजा ना करने की सलाह दे, मंदिर ना करने न जाने की सलाह दे तो इस उपाय को बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर का समय और उसका उपाय क्या है।
0: दिनांक 27 जून 2026 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या, पैसे रुपए की समस्या हल होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 27 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिर आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों की विशिष्टताओं के बारे में। आज की गुडलक राशि है तुला। ये बड़े उदार और बड़े सरल स्वभाव के होते हैं लेकिन दूसरों की अधिक सहायता करने के चक्कर में अक्सर परेशान भी होते हैं। उदारता अच्छी बात है लेकिन उतनी ही उदारता दिखाइए जितना उचित है।
1: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी,

0: बच्चों को बुद्धिमान, संस्कारवान और तेजस्वी बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? बच्चे से रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करवाइएगा। बच्चे से रोज सुबह या तो गायत्री मंत्र पढ़वाएं, शुरुआत में 3 बार या 9 बार, या उसको बगल में बैठा करके सुनाएं। और बच्चे को फास्ट फूड से और मांसाहार से दूर रखें।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: Happy birthday, America. It's time to celebrate and play your favorite Las Vegas casino games by American-owned SpinQuest.com. What's better than fireworks and American pie? Hitting a blackjack in the palm of your hand, and you won't lose your fingers. Over 1,000 games, including slots and live dealers, and $30 coin packs are on sale for $10. SpinQuest.com. Buy American players for American players.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है, और जब बात महाकाल की हो तो भक्तों का समर्पण देखते ही बनता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से बड़ी गुड न्यूज आई है। महाकाल लोक के बनने के बाद से यहां न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में भारी उछाल आया, बल्कि बाबा के दरबार में होने वाली आय ने भी एक इतिहास रच दिया। महाकाल मंदिर समिति को करीब 142 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड आय का अनुमान है। खास बात यह है कि करोड़ों की राशि को गिनने के लिए मंदिर प्रशासन ने बेहद सख्त और पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। यहां चढ़ावे और नोट गिनने वालों की जेबें तक सिली होती हैं।

0: शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में बाबा भोलेनाथ जिस रूप में विराजते हैं वो अद्वितीय है, अलौकिक है। भगवान शिव का ये रूप है राजाधिराज महाकालेश्वर का। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। मान्यता है कि सृष्टि में जब सब कुछ थमता है तब भी महाकाल का अस्तित्व रहता है। वो समय के नियंता है, मृत्यु के विजेता है और भक्तों के संकट हरता है। अध्यात्म और ईश्वर की खोज में जब भी लोगों का मन व्याकुल होता है तो उनकी राहें महाकाल के दर की तरफ मुड़ जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का साक्षी बनने के लिए क्या खास और क्या आम, महाकालेश्वर के दरबार में हर कोई पहुंचता है और शीश नवाकर धन्य हो जाता है। भव्य महाकाल लोक के निर्माण ने उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को एक अभूतपूर्व ऊंचाई दी है। आज देश के सबसे बड़े और सबसे अलौकिक आध्यात्मिक गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर में महालोक बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में भारी उछाल आया है। आज ये देश के सबसे बड़े और सबसे अलौकिक आध्यात्मिक गलियारों में से एक है। महाकाल मंदिर में महालोक बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में भारी उछाल आया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ दान दाताओं की सूची में भी इजाफा हुआ है। हाल के सालों में चढ़ावे में इजाफा दर्ज किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन रसद सामग्री का तो दान दिया ही जाता है, साथ ही मंदिर प्रबंध समिति खुद लड्डू प्रसाद भी विक्रय करती है। इससे मंदिर समिति को भारी कमाई होती है। इसके अलावा शुल्क के साथ दर्शन व्यवस्था, शुल्क के साथ भस्म आरती, संध्या आरती और शयन आरती से भी मोटी कमाई होती है। बुधवार को सामने आए आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश भर में आस्था के साथ दान का प्रवाह भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महाकाल मंदिर समिति को रिकॉर्ड 142 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है, जिसपे केवल दान मद से ही 80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये राशि बीते वर्षों में सबसे ज्यादा दान है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले ये करीब 25 करोड़ रुपए ज्यादा है। मंदिर समिति के अनुसार मंदिर को दान पेटियों से 62 करोड़ रुपए, नकद काउंटर पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मनी ऑर्डर से 1,23,000 रुपए, ऑनलाइन माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए, अन्य क्षेत्र से 3 करोड़ 38 लाख रुपए और गुप्त दान के रूप में 4 करोड़ 65 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। वहीं लड्डू प्रसाद की बिक्री से 65 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने करोड़ों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण भी दान स्वरूप बाबा महाकाल को भेंट किए हैं।
1: जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइन दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन मिला है। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है।
0: करोड़ों की चढ़ावे और दान की गिनती को लेकर मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बेहद पारदर्शी और सख्त है। मंदिर समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए दान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार मंदिर की दान पेटियां 24 घंटे कैमरे की निगरानी में होती हैं। दान गणना कक्ष भी पारदर्शी है, जहां अधिकारियों की निगरानी में दान की गिनती की जाती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से गणना के लिए जाने वाले कर्मचारियों की जेबें भी सिली हुई होती हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो।
2: महाकाल मंदिर में जितने भी चढ़ावा आता है उसकी निगरानी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जब भी काउंटिंग होती है सीसीटीवी फुटेज के उसमें रखा जाता है, उसके लिए कैमरे लगे हैं। जितने भी काउंटिंग करने वाले कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी निगरानी में होता है। उनके पास जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्र भी ऐसे होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार की जेब नहीं होती है। महाकालेश्वर मंदिर में जितना भी दान आता है उसका उपयोग यात्री की सुविधा के लिए किया जाता है और यात्री की सुविधा के लिए निर्माण कार्य किया जाता है। अन्य क्षेत्र चलते हैं, हमारे यहाँ पे गौशाला है, वैदिक शोध संस्थान है, उसमें ही इनका उपयोग किया जाता है और जितना इससे ज्यादा ज्यादा यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो उसी में उसका उपयोग किया जाता है।
0: बाबा महाकाल के दर्शन के लिए विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, जो दान स्वरूप विदेशी मुद्राएं भी दान पेटियों में डाल देते हैं। दान पेटियों से कई बार सोने चांदी के छोटे आभूषण भी मिलते हैं। महाकाल मंदिर समिति द्वारा समय समय पर दान राशि को पेटियों से निकालकर उनकी गणना की जाती है। तकनीक के इस दौर में मंदिर समिति ने पूरे परिसर में जगह जगह QR कोड भी लगाए हैं, जिससे भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सीधे मंदिर के खाते में डिजिटल दान ट्रांसफर करते हैं। कहा जाता है महाकाल के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, कोई मन की शांति लेकर जाता है, कोई नई उम्मीद, कोई आस्था का संबल और कोई अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होने का विश्वास। शायद यही वजह है कि उज्जैन में केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं बढ़ रही, बल्कि हर गुजरते साल के साथ महाकाल के प्रति लोगों का विश्वास और गहराता जा रहा है। जहाँ आस्था अटूट हो, वहाँ दान केवल धन नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का होता है, और यही महाकाल नगरी की सबसे बड़ी पहचान है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चारधाम यात्रा के बीच आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जितना आपको पुण्य मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहां उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
4: हिमालय की गोद में जहां देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहां हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
5: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में, और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवां धाम है। ये पांचवां धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
4: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
6: बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बालगंगा और धर्मगंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा, आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
4: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
7: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
8: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
4: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
6: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेंगे।
4: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहां भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
6: तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह है, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
4: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुँच कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा है और ना ही कोई टीजर आया, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है? आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर यह सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान, फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया, क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है। आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी। दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दग्गुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ ऐसे जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
2: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाए। The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने

0: भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
1: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी सुविधा है।
0: बाबा श्याम के भक्तों के लिए धाम तक आने में अभी भी कोई अड़चन नहीं, कोई उलझन नहीं। साल भर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर धाम पर नजर आती है और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुँचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
1: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
2: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी।
0: रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है।
1: में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
2: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी, जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवा कर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री, रिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसे इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली
0: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
2: पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाए कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए, ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए यहाँ सरकारी।

0: जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहां टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम एक खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
1: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
2: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी गांव वाले के लिए, सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
3: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी,
4: बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे, और ये ऑटो वाले ये 5 रुपये कमाना सीख जाएंगे, और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
5: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क के में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में। यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है, कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मन रहा है, सावनपुरा हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मन रहा है, रेलवे स्टेशन
6: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या आप व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडावली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
7: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाह जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी, और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
8: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी, कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बरबरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बरबरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Want a cybersecurity degree that leads to real results? At WGU, you'll gain AI-integrated skills, certifications, and career momentum.
1: Without the degree from WGU, I wouldn't have got the job.
0: Learn more at wgu.edu.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: चारधाम यात्रा के बीच आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जितना आपको पुण्य मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहां उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
5: हिमालय की गोद में जहां देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहां हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
6: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवा धाम है। ये पांचवा धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
5: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
7: बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा, आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
5: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
8: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
9: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
5: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
7: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन ले।
5: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहां भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
7: तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह हैं, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
5: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुँच कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा है और ना ही कोई टीजर आया, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है? आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर यह सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया, क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है। आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी। दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दगुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरां, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, तभी तो हम इनका सच आप सबके लिए लेकर आते हैं। फैक्ट चेक में आज यही रीचेक हम करेंगे। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इसी दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि बिना जांचे परखे, बिना समझे इसे लोग सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फैक्ट चेक में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी, जिससे लोगों के बीच में दहशत फैल गई। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको दिखाएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है जिसमें हजारों लोग जुटे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे और बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती दिखाई दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नेपाल में आई इस रहस्यमय घटना ने लोगों को डरा दिया है। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं और भूगर्भ से तेज आग निकलती दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने इसे भयावह बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय गतिविधि मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना। पूरी दुनिया की नजर अब नेपाल की इस घटना पर टिकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए दिखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का वीडियो है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। वीडियो में जमीन में दरारें देखने को मिल रही हैं, आग की वजह से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति इसे चेक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों को खड़ा भी देखा जा रहा है। जब हमने इन लोगों को ध्यान से देखा, इनके चेहरे के हाव भाव पर नजरें दौड़ाई, लेकिन इस दौरान हमें इनके चेहरे पर ना तो कोई दहशत और ना ही कोई भय नजर आया। आमतौर पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों के चेहरे पर डर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बड़े ही आराम से इधर उधर से जा रहे हैं। अब ऐसी कोई रहस्यमय घटना होती है तो लोग चौंकते हैं, ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये ना तो नेपाली है ना अंग्रेजी है, ये स्पेनिश लग रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? आखिर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 3 जून 2022 को छपी रिपोर्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार मैड्रिड में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन के प्रचार अभियान के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भी 28 मई 2022 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मैड्रिड का बताया। सर्च के दौरान एक यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला। 27 मई 2022 को यहां पर इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें भी इसे मैड्रिड का बताया गया है। इस तरह हमारी जांच से वायरल दावा गलत निकला। दरअसल वायरल वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई 2022 में हुए एक वेब सीरीज के प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो 17 जून के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की अंतिम यात्रा का है। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।

0: बिहार के भोजपुर में भारत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला सीएम सम्राट चौधरी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 17 जून को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। बिहार सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की घोषणा की है। साथ ही घटना के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें संबंधित थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन सब के बीच भरत की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ भी दिख रही है। एक्स पर एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का वीडियो है। इस वीडियो में काफी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू किया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में हमें कुछ जगह पत्रकार अमर रहे शब्द सुनाई दिए। जब भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है तो इसमें पत्रकार अमर रहे नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तुलना भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के वीडियो के साथ की। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं। एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का असली वीडियो। इन दोनों ही वीडियो को देखने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो किसी और शख्स की अंतिम यात्रा का है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अंतिम यात्रा का ये वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई है क्या और सच क्या है और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 10 मार्च को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यहीं साफ हो गई थी कि ये वीडियो पुराना है और भरत तिवारी मामले से संबंधित नहीं हो सकता है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे का है और स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन की अंतिम यात्रा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमाज के युवा पत्रकार गोविंद सेन के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह हमारी जांच में बिहार के भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार के नाम पर वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ के दावे से वायरल वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज के स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन के अंतिम संस्कार का है। इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
4: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
3: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
4: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो वो पल हर किसी की आंखें नम कर देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चोट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वो बार बार माँ के पास जाकर उनकी चोट की ओर इशारा करता है और मासूमियत से कहता है कि उसे माँ की चिंता हो रही है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो भावुक होकर कहता है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुझे इसलिए ही रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर माँ भी भावुक हो जाती है।
6: बैंगलोर जाने का तैयारी हम लोग का आम पैक हो रहा है बिहार से कि बैंगलोर में खाएंगे मालदा आम। क्या मम्मी?
7: हाँ।
6: 15 किलो का ही लिमिट होता है मम्मी।
5: इस वीडियो में ना कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही कोई महंगा तोहफा, फिर भी लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इसकी वजह एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार और अपनापन है। बिहार की एक महिला ने अपनी बहू के लिए मालदा आमू से भरे कई पैकेट बेंगलुरु भेजे। वीडियो में जिस तरह वो आमू को बड़े प्यार से पैक करती नजर आती हैं, उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए और जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आम किसके लिए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बहू खाएगी।
6: क्या मम्मी?
5: यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 साल बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वारकर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। आमतौर पर लोग अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने 122.4 डेसिबल की तीव्रता से चिल्लाकर पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी ये चीख किसी रॉक कॉन्सर्ट के शोर या टेक ऑफ करते हुए फाइटर जेट की आवाज के बराबर है।

मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया कि उसे देखकर लोग उसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं। वीडियो में एक युवती सड़क किनारे बैठे एक बंदर के पास जाती नजर आई। वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है। शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। युवती भी बिना किसी डर के उसके करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही युवती बंदर को खाना देने की कोशिश करती है, बंदर अचानक अपना हाथ उठाता है और सीधे युवती को थप्पड़ मार देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि युवती कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है।

0: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानों जैसे प्यार और समझदारी दिखाने वाले जानवरों की हो तो लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर के बच्चे और उसकी माँ के बीच का प्यारा सा व्यवहार देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर का छोटा बच्चा एक आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे लेकर उछलता कूदता भाग जाता है। आदमी और आसपास खड़े लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा नजारा देखने को मिलता है। बंदर के बच्चे की माँ वहाँ आती है और जैसे अपने बच्चे को समझाती है कि ये सही काम नहीं है। इसके बाद माँ बंदर खुद बच्चे के हाथ से फोन लेती है और उसे वापस उसके मालिक को सौंप देती है। सोशल मीडिया पर दो चूहों की मजेदार लड़ाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल प्रोफेशनल WWE रेसलर्स की तरह एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो के शुरुआत में दोनों चूहे एकदम शांत होकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को भांप रहे हों कि पहला वार कौन करेगा, लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल बदल जाता है। अचानक दोनों में से एक चूहा हवा में उछलता है और दूसरे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं। दोनों चूहे पिछले पैरों पर खड़े होकर हवा में उछल उछल कर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उनकी फुर्ती और दांव पेच को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बकायदा किसी अखाड़े या रिंग में इसकी ट्रेनिंग ली हो। कभी एक चूहा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पलटवार करके उसे पीछे धकेल देता है। चूहों की ये कुश्ती इतनी परफेक्ट है कि इसे देखकर असली WWE मैच की याद आ जाती है। इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा खास और एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड ऑडियो। वीडियो के पीछे असली WWE मैच की कमेंट्री फिट की गई है। जब चूहे एक दूसरे को पटकते हैं तो बैकग्राउंड में कमेंटेटर की वही जानी पहचानी जोश से भरी हुई आवाज सुनाई देती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
4: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ ऐसे जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
5: इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
6: सोच दिखाती तो कुछ दिखाती।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का चटा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, सेवंथ एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को अब दसवीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास सिक्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरां, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं, हाथों में निशान और जुबां पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं, हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
2: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेकर

0: और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुंचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
1: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
2: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी।
0: रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है।
1: में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
2: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी, जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवा कर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री, रिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसे इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली
0: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
2: पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाएं कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए, ताकि यहाँ आराम करके, दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम एक खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
0: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
3: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है,

0: अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी गांव वाले के लिए, सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
1: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी,
2: बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है, तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे, और ये ऑटो वाले ये 5 रुपये कमाना सीख जाएंगे, और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
3: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क्के में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में। यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है, कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मर रहा है, सावनपुरा हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मर रहा है, रेलवे स्टेशन
4: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या आप व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडा वाली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
5: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाह जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी, और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
6: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है। किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बर्बरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ग्रह रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चारधाम यात्रा के बीच आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जितना आपको पुण्य मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहां उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
3: हिमालय की गोद में जहां देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहां हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
4: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवां धाम है। ये पांचवां धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
3: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
5: बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बालगंगा और धर्मगंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा और आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
3: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
6: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
7: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
3: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
5: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेके।
3: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहां भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
5: तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह हैं, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
3: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा है और ना ही कोई टीजर आया, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है? आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर ये सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दगुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
4: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते, और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, तभी तो हम इनका सच आप सबके लिए लेकर आते हैं। फैक्ट चेक में आज यही रीचेक हम करेंगे। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इसी दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि बिना जांचे परखे, बिना समझे इसे लोग सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फैक्ट चेक में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी जिससे लोगों के बीच में दहशत फैल गई। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको दिखाएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है जिसमें हजारों लोग जुटे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे और बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और आग निकलने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती दिखाई दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नेपाल में आई इस रहस्यमय घटना ने लोगों को डरा दिया है। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं और भूगर्भ से तेज आग निकलती दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने इसे भयावह बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय गतिविधि मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना। पूरी दुनिया की नजर अब नेपाल की इस घटना पर टिकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का वीडियो है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। वीडियो में जमीन में दरारें देखने को मिल रही हैं, आग की वजह से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति इसे चेक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों को खड़ा भी देखा जा रहा है। जब हमने इन लोगों को ध्यान से देखा, इनके चेहरे के हाव भाव पर नजरें दौड़ाई, लेकिन इस दौरान हमें इनके चेहरे पर ना तो कोई दहशत और ना ही कोई भय नजर आया। आमतौर पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों के चेहरे पर डर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बड़े ही आराम से इधर उधर से जा रहे हैं। अब ऐसी कोई रहस्यमय घटना होती है तो लोग चौंकते हैं, ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये ना तो नेपाली है ना अंग्रेजी है, ये स्पेनिश लग रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? आखिर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 3 जून 2022 को छपी रिपोर्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार मैड्रिड में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन के प्रचार अभियान के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भी 28 मई 2022 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मैड्रिड का बताया। सर्च के दौरान एक यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला। 27 मई 2022 को यहां पर इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें भी इसे मैड्रिड का बताया गया है। इस तरह हमारी जांच से वायरल दावा गलत निकला। दरअसल वायरल वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई 2022 में हुए एक वेब सीरीज के प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो 17 जून के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की अंतिम यात्रा का है। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।

0: बिहार के भोजपुर में भारत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला सीएम सम्राट चौधरी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 17 जून को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। बिहार सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की घोषणा की है। साथ ही घटना के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें संबंधित थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन सब के बीच भरत की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ भी दिख रही है। एक्स पर एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का वीडियो है। इस वीडियो में काफी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू किया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में हमें कुछ जगह पत्रकार अमर रहे शब्द सुनाई दिए। जब भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है तो इसमें पत्रकार अमर रहे नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तुलना भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के वीडियो के साथ की। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं। एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का असली वीडियो। इन दोनों ही वीडियो को देखने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो किसी और शख्स की अंतिम यात्रा का है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अंतिम यात्रा का ये वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई है क्या और सच क्या है और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 10 मार्च को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई थी कि ये वीडियो पुराना है और भरत तिवारी मामले से संबंधित नहीं हो सकता है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे का है और स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन की अंतिम यात्रा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमाज के युवा पत्रकार गोविंद सेन के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह हमारी जांच में बिहार के भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार के नाम पर वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ के दावे से वायरल वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज के स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन के अंतिम संस्कार का है। इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का। आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो वो पल हर किसी की आंखें नम कर देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चोट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वो बार बार माँ के पास जाकर उनकी चोट की ओर इशारा करता है और मासूमियत से कहता है कि उसे माँ की चिंता हो रही है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो भावुक होकर कहता है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुझे इसलिए ही रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर माँ भी भावुक हो जाती है।
6: बैंगलोर जाने का तैयारी हम लोग का आम पैक हो रहा है बिहार से कि बैंगलोर में खाएंगे मालदा आम। क्या मम्मी? पंद्रह किलो का ही लिमिट होता है मम्मी।
5: इस वीडियो में ना कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही कोई महंगा तोहफा, फिर भी लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इसकी वजह एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार और अपनापन है। बिहार की एक महिला ने अपनी बहू के लिए मालदा आमों से भरे कई पैकेट बेंगलुरु भेजे। वीडियो में जिस तरह वो आमों को बड़े प्यार से पैक करती नजर आती हैं, उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए और जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आम किसके लिए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बहू खाएगी।
6: क्या मम्मी?
5: यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 साल बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। आमतौर पर लोग अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने 122.4 डेसिबल की तीव्रता से चिल्लाकर पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी ये चीख किसी रॉक कॉन्सर्ट के शोर या टेक ऑफ करते हुए फाइटर जेट की आवाज के बराबर है।

मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया कि उसे देखकर लोग उसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं। वीडियो में एक युवती सड़क किनारे बैठे एक बंदर के पास जाती नजर आई। वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है। शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। युवती भी बिना किसी डर के उसके करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही युवती बंदर को खाना देने की कोशिश करती है, बंदर अचानक अपना हाथ उठाता है और सीधे युवती को थप्पड़ मार देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि युवती कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है।

0: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानों जैसे प्यार और समझदारी दिखाने वाले जानवरों की हो तो लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर के बच्चे और उसकी माँ के बीच का प्यारा सा व्यवहार देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर का छोटा बच्चा एक आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे लेकर उछलता कूदता भाग जाता है। आदमी और आसपास खड़े लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा नजारा देखने को मिलता है। बंदर के बच्चे की माँ वहाँ आती है और जैसे अपने बच्चे को समझाती है कि ये सही काम नहीं है। इसके बाद माँ बंदर खुद बच्चे के हाथ से फोन लेती है और उसे वापस उसके मालिक को सौंप देती है। सोशल मीडिया पर दो चूहों की मजेदार लड़ाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल प्रोफेशनल WWE रेसलर्स की तरह एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो के शुरुआत में दोनों चूहे एकदम शांत होकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को भांप रहे हों कि पहला वार कौन करेगा, लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल बदल जाता है। अचानक दोनों में से एक चूहा हवा में उछलता है और दूसरे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं। दोनों चूहे पिछले पैरों पर खड़े होकर हवा में उछल उछल कर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उनकी फुर्ती और दांव पेच को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बकायदा किसी अखाड़े या रिंग में इसकी ट्रेनिंग ली हो। कभी एक चूहा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पलटवार करके उसे पीछे धकेल देता है। चूहों की ये कुश्ती इतनी परफेक्ट है कि इसे देखकर असली WWE मैच की याद आ जाती है। इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा खास और एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड ऑडियो। वीडियो के पीछे असली WWE मैच की कमेंट्री फिट की गई है। जब चूहे एक दूसरे को पटकते हैं तो बैकग्राउंड में कमेंटेटर की वही जानी पहचानी जोश से भरी हुई आवाज सुनाई देती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh yeah, you make my dreams, Steely Dan, back, Jack, do it again. Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: रात 9 बजे
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ ऐसे जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
0: केवल इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। सी ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब चार दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित। उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं। हाथों में निशान और जुबां पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं। हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
2: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी सुविधा है।
1: बाबा श्याम के भक्तों के लिए धाम तक आने में अभी भी कोई अड़चन नहीं, कोई उलझन नहीं। साल भर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर धाम पर नजर आती है और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुँचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
2: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं।

0: के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
1: ये यहाँ शाम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पे स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी।
2: रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है।
0: में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
1: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं। अच्छा। तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवाकर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री डिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसे इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली
2: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
1: पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाएं कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है तो इसका नाम खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
2: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
3: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी गांव वाले के लिए, सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
4: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी,
5: बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे और ये ऑटो वाले ये 5 रुपए कमाना सीख जाएंगे और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
6: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क्के में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है। कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर बन रहा है सावनपुरा, हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में बन रहा है रेलवे स्टेशन
7: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या व्हीकल

0: के जा सकते हो। ये जो रोड है मंडावली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना एक घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
1: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक दो प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाहा जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी, और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
2: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी, कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बरबरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बरबरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ शुडे।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चारधाम यात्रा के बीच आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जितना आपको पुण्य मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहाँ उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
4: हिमालय की गोद में जहाँ देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहाँ हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहाँ हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
5: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवा धाम है। ये पांचवा धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
4: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
6: बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बाल गंगा और धर्म गंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा, आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
4: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
7: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
8: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
4: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
6: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेके
4: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहां भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
6: तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह है, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
4: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। डिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा है और ना ही कोई टीजर आया, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है? आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर यह सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है? इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान, फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दग्गुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
3: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
2: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
4: Williams keeps it. First down. Touchdown.
2: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
5: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, तभी तो हम इनका सच आप सबके लिए लेकर आते हैं। फैक्ट चेक में आज यही रीचेक हम करेंगे। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इसी दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि बिना जांचे परखे, बिना समझे इसे लोग सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी, जिससे लोगों के बीच में दहशत फैल गई। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको दिखाएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है जिसमें हजारों लोग जुटे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे और बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती दिखाई दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नेपाल में आई इस रहस्यमय घटना ने लोगों को डरा दिया है। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं और भूगर्भ से तेज आग निकलती दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने इसे भयावह बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय गतिविधि मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना। पूरी दुनिया की नजर अब नेपाल की इस घटना पर टिकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का वीडियो है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। वीडियो में जमीन में दरारें देखने को मिल रही हैं, आग की वजह से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति इसे चेक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों को खड़ा भी देखा जा रहा है। जब हमने इन लोगों को ध्यान से देखा, इनके चेहरे के हाव भाव पर नजरें दौड़ाई, लेकिन इस दौरान हमें इनके चेहरे पर ना तो कोई दहशत और ना ही कोई भय नजर आया। आमतौर पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों के चेहरे पर डर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बड़े ही आराम से इधर उधर से जा रहे हैं। अब ऐसी कोई रहस्यमयी घटना होती है तो लोग चौंकते हैं, ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये ना तो नेपाली है ना अंग्रेजी है, ये स्पेनिश लग रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? आखिर सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 3 जून 2022 को छपी रिपोर्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार मैड्रिड में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन के प्रचार अभियान के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भी 28 मई 2022 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मैड्रिड का बताया। सर्च के दौरान एक यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला। 27 मई 2022 को यहां पर इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें भी इसे मैड्रिड का बताया गया है। इस तरह हमारी जांच से वायरल दावा गलत निकला। दरअसल वायरल वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई 2022 में हुए एक वेब सीरीज के प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो 17 जून के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की अंतिम यात्रा का है। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।

0: बिहार के भोजपुर में भारत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला सीएम सम्राट चौधरी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 17 जून को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। बिहार सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की घोषणा की है। साथ ही घटना के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें संबंधित थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन सब के बीच भरत की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ भी दिख रही है। एक्स पर एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का वीडियो है। इस वीडियो में काफी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू किया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में हमें कुछ जगह पत्रकार अमर रहे शब्द सुनाई दिए। जब भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है तो इसमें पत्रकार अमर रहे नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तुलना भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के वीडियो के साथ की। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं। एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का असली वीडियो। इन दोनों ही वीडियो को देखने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो किसी और शख्स की अंतिम यात्रा का है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अंतिम यात्रा का ये वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई है क्या और सच क्या है और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 10 मार्च को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई थी कि ये वीडियो पुराना है और भरत तिवारी मामले से संबंधित नहीं हो सकता है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे का है और स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन की अंतिम यात्रा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमाज के युवा पत्रकार गोविंद सेन के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह हमारी जांच में बिहार के भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार के नाम पर वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ के दावे से वायरल वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज के स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन के अंतिम संस्कार का है। इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
4: माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो वो पल हर किसी की आंखें नम कर देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चोट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वो बार बार माँ के पास जाकर उनकी चोट की ओर इशारा करता है और मासूमियत से कहता है कि उसे माँ की चिंता हो रही है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो भावुक होकर कहता है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुझे इसलिए ही रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर माँ भी भावुक हो जाती है।
5: बैंगलोर जाने का तैयारी हम लोग का आम पैक हो रहा है बिहार से कि बैंगलोर में खाएंगे मालदा आम। क्या मम्मी?
6: हाँ।
5: 15 किलो का ही लिमिट होता है मम्मी।
4: इस वीडियो में ना कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही कोई महंगा तोहफा, फिर भी लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इसकी वजह एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार और अपनापन है। बिहार की एक महिला ने अपनी बहू के लिए मालदा आमों से भरे कई पैकेट बेंगलुरु भेजे। वीडियो में जिस तरह वो आमों को बड़े प्यार से पैक करती नजर आती हैं, उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए और जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आम किसके लिए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बहू खाएगी।
5: क्या मम्मी?
4: यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

इस खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 साल बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वारकर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। आमतौर पर लोग अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने 122.4 डेसिबल की तीव्रता से चिल्लाकर पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी ये चीख किसी रॉक कॉन्सर्ट के शोर या टेक ऑफ करते हुए फाइटर जेट की आवाज के बराबर है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया कि उसे देखकर लोग उसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं। वीडियो में एक युवती सड़क किनारे बैठे एक बंदर के पास जाती नजर आई। वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है। शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। युवती भी बिना किसी डर के उसके करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही युवती बंदर को खाना देने की कोशिश करती है, बंदर अचानक अपना हाथ उठाता है और सीधे युवती को थप्पड़ मार देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि युवती कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है।

0: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानों जैसे प्यार और समझदारी दिखाने वाले जानवरों की हो तो लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर के बच्चे और उसकी माँ के बीच का प्यारा सा व्यवहार देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर का छोटा बच्चा एक आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे लेकर उछलता कूदता भाग जाता है। आदमी और आसपास खड़े लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा नजारा देखने को मिलता है। बंदर के बच्चे की माँ वहाँ आती है और जैसे अपने बच्चे को समझाती है कि ये सही काम नहीं है। इसके बाद माँ बंदर खुद बच्चे के हाथ से फोन लेती है और उसे वापस उसके मालिक को सौंप देती है। सोशल मीडिया पर दो चूहों की मजेदार लड़ाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल प्रोफेशनल WWE रेसलर्स की तरह एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो के शुरुआत में दोनों चूहे एकदम शांत होकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को भांप रहे हों कि पहला वार कौन करेगा, लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल बदल जाता है। अचानक दोनों में से एक चूहा हवा में उछलता है और दूसरे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं। दोनों चूहे पिछले पैरों पर खड़े होकर हवा में उछल उछल कर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उनकी फुर्ती और दांव पेच को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बकायदा किसी अखाड़े या रिंग में इसकी ट्रेनिंग ली हो। कभी एक चूहा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पलटवार करके उसे पीछे धकेल देता है। चूहों की ये कुश्ती इतनी परफेक्ट है कि इसे देखकर असली WWE मैच की याद आ जाती है। इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा खास और एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड ऑडियो। वीडियो के पीछे असली WWE मैच की कमेंट्री फिट की गई है। जब चूहे एक दूसरे को पटकते हैं तो बैकग्राउंड में कमेंटेटर की वही जानी पहचानी जोश से भरी हुई आवाज सुनाई देती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते, और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: Right field, and it will...
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ ऐसे जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
0: इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है।
6: ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे CM योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत। 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित। उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से। 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जहां धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं, हाथों में निशान और जुबान पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं, हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
2: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी सुविधा है।
1: बाबा श्याम के भक्तों के लिए धाम तक आने में अभी भी कोई अड़चन नहीं, कोई उलझन नहीं। साल भर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर धाम पर नजर आती है और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुंचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
2: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
3: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो UDA मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है, और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पर स्टेशन बनना है, दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी।
1: रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आराम

0: किस तरीके से ट्रेन चलेगी,
1: जी
0: क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है, तो
1: जी
0: आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा?
1: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं,
0: अच्छा
1: तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी, जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवा कर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री, डिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसे इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा एक्चुअली।
2: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट कम हो जाएगी, लेकिन उससे अहम बात ये कि ये नया स्टेशन खाटू श्याम के भक्तों के लिए कई सुविधाओं से लैस होगा और उसकी पहचान धाम से जुड़ी होगी। अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी, बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
1: पहले तो ये इससे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाएं कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए, ताकि यहाँ आराम करके, दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है, तो इसका नाम एक खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
2: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
3: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी गांव वाले के लिए, सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
4: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी,
5: बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है, तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे, और ये ऑटो वाले ये 5 रुपए कमाना सीख जाएंगे, और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
6: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में। यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है, कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मन रहा है, सावनपुरा हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मन रहा है, रेलवे स्टेशन
7: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या आप व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडा वाली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
0: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाह जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहाँ पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी, और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या

0: लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
1: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी, कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बरबरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बरबरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चारधाम यात्रा के बीच आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जितना आपको पुण्य मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे हैं। जहाँ उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
4: हिमालय की गोद में जहाँ देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहाँ हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहाँ हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
5: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवां धाम है। ये पांचवां धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
4: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
6: केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बालगंगा और धर्मगंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडव मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा और आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
4: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
7: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
8: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
4: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
6: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेके
4: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहां भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
6: तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह हैं, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोखरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
4: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा है और ना ही कोई टीजर आया, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है। आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर यह सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है, इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दगुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
3: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरां, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, तभी तो हम इनका सच आप सबके लिए लेकर आते हैं। फैक्ट चेक में आज यही रीचेक हम करेंगे। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इसी दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर रहती है। नतीजा ये होता है कि बिना जांचे परखे, बिना समझे इसे लोग सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, हर झूठ के नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज फैक्ट चेक में सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और आग निकलने लगी, जिससे लोगों के बीच में दहशत फैल गई। क्या है वायरल दावे की और वीडियो की सच्चाई, आगे आपको दिखाएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो के साथ जुड़ी है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है, जिसमें हजारों लोग जुटे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की पूरी सच्चाई, दिखाएंगे और बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नेपाल में जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और आग निकलने लगी। वायरल हो रहे वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए।

0: नेपाल से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती दिखाई दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नेपाल में आई इस रहस्यमय घटना ने लोगों को डरा दिया है। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई हैं और भूगर्भ से तेज आग निकलती दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने इसे भयावह बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे भूगर्भीय गतिविधि मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी बड़े भूकंपीय बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक असामान्य प्राकृतिक घटना। पूरी दुनिया की नजर अब नेपाल की इस घटना पर टिकी है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो का सच झूठ जाने बगैर इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति को धरती फटने के बाद वहां से निकलती आग की जांच करते हुए देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये नेपाल का वीडियो है, जहां जमीन में गहरी दरारें पड़ गई और तेज आग निकलती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। वीडियो में जमीन में दरारें देखने को मिल रही हैं, आग की वजह से धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति इसे चेक करता हुआ भी आपको दिखाई देगा इसी वीडियो में। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों को खड़ा भी देखा जा रहा है। जब हमने इन लोगों को ध्यान से देखा, इनके चेहरे के हाव भाव पर नजरें दौड़ाई, लेकिन इस दौरान हमें इनके चेहरे पर ना तो कोई दहशत और ना ही कोई भय नजर आया। आमतौर पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो लोगों के चेहरे पर डर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो में यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग बड़े ही आराम से इधर उधर से जा रहे हैं। अब ऐसी कोई रहस्यमयी घटना होती है तो लोग चौंकते हैं, ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। ये ना तो नेपाली है ना अंग्रेजी है, ये स्पेनिश लग रहा है। सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, आखिर सच्चाई क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक वेबसाइट पर 3 जून 2022 को छपी रिपोर्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार मैड्रिड में नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के चौथे सीजन के प्रचार अभियान के दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने भी 28 मई 2022 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मैड्रिड का बताया। सर्च के दौरान एक यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो मिला। 27 मई 2022 को यहां पर इस कार्यक्रम का दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया है, इसमें भी इसे मैड्रिड का बताया गया है। इस तरह हमारी जांच से वायरल दावा गलत निकला। दरअसल वायरल वीडियो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई 2022 में हुए एक वेब सीरीज के प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका नेपाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वीडियो 17 जून के भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की अंतिम यात्रा का है। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।

0: बिहार के भोजपुर में भारत भूषण तिवारी नामक युवक के एनकाउंटर का मामला सीएम सम्राट चौधरी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। 17 जून को इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान भरत की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप है। वहीं पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। बिहार सरकार ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करने की घोषणा की है। साथ ही घटना के संबंध में 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जिनमें संबंधित थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन सब के बीच भरत की अंतिम यात्रा का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अर्थी लिए हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ भी दिख रही है। एक्स पर एक व्यक्ति ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भरत तिवारी की अंतिम यात्रा में जुटी ये भीड़ ही बता रही है कि उसका एनकाउंटर लोगों को कितना गलत लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का वीडियो है। इस वीडियो में काफी तादाद में लोगों को देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू किया। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में हमें कुछ जगह पत्रकार अमर रहे शब्द सुनाई दिए। जब भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का ये वीडियो है तो इसमें पत्रकार अमर रहे नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं? इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की तुलना भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा के वीडियो के साथ की। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं। एक तरफ है वायरल वीडियो और दूसरी तरफ भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा का असली वीडियो। इन दोनों ही वीडियो को देखने पर आपको फर्क साफ नजर आएगा। मतलब ये कि वायरल हो रहा वीडियो किसी और शख्स की अंतिम यात्रा का है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अंतिम यात्रा का ये वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई है क्या और सच क्या है और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए।

0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 10 मार्च को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई थी कि ये वीडियो पुराना है और भरत तिवारी मामले से संबंधित नहीं हो सकता है। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे का है और स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन की अंतिम यात्रा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निमाज के युवा पत्रकार गोविंद सेन के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस तरह हमारी जांच में बिहार के भरत भूषण तिवारी के अंतिम संस्कार के नाम पर वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ के दावे से वायरल वीडियो राजस्थान के पाली जिले के निमाज के स्थानीय पत्रकार गोविंद सेन के अंतिम संस्कार का है। इसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे भारत वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
4: La Que Buena.
3: ESPN Radio.
5: We know LeBron has to be the best player on the planet to
3: have. The Daily.
6: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
7: माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता माना जाता है। माँ अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही बच्चा माँ के दर्द को अपना दर्द समझने लगे तो वो पल हर किसी की आंखें नम कर देता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की चोट को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वो बार बार माँ के पास जाकर उनकी चोट की ओर इशारा करता है और मासूमियत से कहता है कि उसे माँ की चिंता हो रही है। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो भावुक होकर कहता है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, मुझे इसलिए ही रोना आ रहा है। उसकी बातें सुनकर माँ भी भावुक हो जाती है।
8: बैंगलोर जाने का तैयारी हम लोग का आम पैक हो रहा है बिहार से कि बैंगलोर में खाएंगे मालदा आम। क्या मम्मी?
9: हाँ।
8: 15 किलो का ही लिमिट होता है मम्मी।
7: इस वीडियो में ना कोई बड़ा सरप्राइज है और ना ही कोई महंगा तोहफा, फिर भी लोग इसे बार बार देख रहे हैं। इसकी वजह एक सास का अपनी बहू के लिए प्यार और अपनापन है। बिहार की एक महिला ने अपनी बहू के लिए मालदा आमू से भरे कई पैकेट बेंगलुरु भेजे। वीडियो में जिस तरह वो आमू को बड़े प्यार से पैक करती नजर आती हैं, उसे देखकर लोग इमोशनल हो गए और जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे आम किसके लिए हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बहू खाएगी।
8: क्या मम्मी?
7: यही एक लाइन अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

खूबसूरत मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 3.5 साल बाद जब एक बेटी विदेश से अपने घर लौटी तो पूरे परिवार ने उसका ऐसा स्वागत किया कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो की शुरुआत होती है बेटी के घर के दरवाजे पर पहुंचने से, जहां परिवार के सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो चौखट पर पहुंचती है, परिवार की एक बुजुर्ग महिला सिर के ऊपर से पानी वार कर उसकी नजर उतारती है ताकि सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। घर के अंदर कदम रखते ही भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लड़की सबसे पहले अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ती है और फिर बाकी रिश्तेदारों से मिलती है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। अंदर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर उसकी तस्वीर के साथ लिखा है, देखो तो कौन आया। जैसे जैसे वो घर के अंदर बढ़ती है, एक छोटा बच्चा घंटी बजाकर उसके हर कदम का स्वागत करता है। उसके बाद उसकी आरती उतारी जाती है। फिर वो लाल रंग यानी अलता से भरी थाली में पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हमारे यहाँ समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आखिर में पूरे परिवार ने मिलकर केक काटा और इस पल को यादगार बनाया। आमतौर पर लोग अपनी पहचान अपने काम से बनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ ने 122.4 डेसिबल की तीव्रता से चिल्लाकर पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। उनकी ये चीख किसी रॉक कॉन्सर्ट के शोर या टेक ऑफ करते हुए फाइटर जेट की आवाज के बराबर है।

मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान का एक वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को इस तरह मॉडिफाई किया कि उसे देखकर लोग उसे देसी कार कहने लगे हैं। बाइक के पीछे चारपाई बांध दी गई और उसी पर परिवार के सदस्य बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक के पिछले हिस्से में लकड़ी की चारपाई मजबूती से फंसाई गई है। चारपाई के दोनों ओर परिवार के लोग संतुलन बनाकर बैठे हैं, जबकि बाइक चला रहा शख्स पूरे आराम से सड़क पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। आसपास से गुजर रहे लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये जुगाड़ लोगों को अनोखा जरूर लगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद खतरनाक बताया गया है। सड़क पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ने या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं। वीडियो में एक युवती सड़क किनारे बैठे एक बंदर के पास जाती नजर आई। वो बंदर को आराम से खाना खिलाना चाहती है। शुरुआत में बंदर बिल्कुल शांत बैठा नजर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि वो आराम से खाना ले लेगा। युवती भी बिना किसी डर के उसके करीब पहुंच जाती है और बड़े प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही युवती बंदर को खाना देने की कोशिश करती है, बंदर अचानक अपना हाथ उठाता है और सीधे युवती को थप्पड़ मार देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि युवती कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है।

0: सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेते हैं, लेकिन जब बात इंसानों जैसे प्यार और समझदारी दिखाने वाले जानवरों की हो तो लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर के बच्चे और उसकी माँ के बीच का प्यारा सा व्यवहार देखने को मिला। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर का छोटा बच्चा एक आदमी के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे लेकर उछलता कूदता भाग जाता है। आदमी और आसपास खड़े लोग उसे देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा नजारा देखने को मिलता है। बंदर के बच्चे की माँ वहाँ आती है और जैसे अपने बच्चे को समझाती है कि ये सही काम नहीं है। इसके बाद माँ बंदर खुद बच्चे के हाथ से फोन लेती है और उसे वापस उसके मालिक को सौंप देती है। सोशल मीडिया पर दो चूहों की मजेदार लड़ाई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल प्रोफेशनल WWE रेसलर्स की तरह एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। वीडियो के शुरुआत में दोनों चूहे एकदम शांत होकर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को भांप रहे हों कि पहला वार कौन करेगा, लेकिन अगले ही पल सीन बिल्कुल बदल जाता है। अचानक दोनों में से एक चूहा हवा में उछलता है और दूसरे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म के स्टंट सीन से कम नहीं। दोनों चूहे पिछले पैरों पर खड़े होकर हवा में उछल उछल कर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। उनकी फुर्ती और दांव पेच को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बकायदा किसी अखाड़े या रिंग में इसकी ट्रेनिंग ली हो। कभी एक चूहा भारी पड़ता है तो कभी दूसरा पलटवार करके उसे पीछे धकेल देता है। चूहों की ये कुश्ती इतनी परफेक्ट है कि इसे देखकर असली WWE मैच की याद आ जाती है। इस वीडियो को जो चीज सबसे ज्यादा खास और एंटरटेनिंग बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड ऑडियो। वीडियो के पीछे असली WWE मैच की कमेंट्री फिट की गई है। जब चूहे एक दूसरे को पटकते हैं तो बैकग्राउंड में कमेंटेटर की वही जानी पहचानी जोश से भरी हुई आवाज सुनाई देती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़। और
2: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Die Hard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: अब बात कुछ ऐसे वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ भावुक कर जाएंगे और कुछ ऐसे जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या ऐसा भी होता है।
2: इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जानवर भी अपने बड़ों से सीखते हैं। वायरल वीडियो में एक छोटा बंदर शरारत करते हुए इंसान के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और मोबाइल वापस लेकर इंसान को लौटा देती है। ये नजारा लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो मजेदार जरूर है, लेकिन इसके जरिए मजेदारी और सही व्यवहार का संदेश भी मिलता है। लोग माँ बंदरिया की समझदारी की खूब तारीफ कर रहे हैं। दोस्ती उम्र, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची और बकरी साथ मिलकर झूले जैसी मस्ती करते नजर आ रही है। दोनों ने शानदार संतुलन बनाकर खेल का आनंद लिया। खास बात यह है कि बकरी बिल्कुल नहीं डरती और पूरे उत्साह के साथ बच्ची का साथ देती है। दोनों की मासूमियत और प्यार भरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये वीडियो इंसान और जानवर के बीच खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं और कई बार अपने सपने पीछे छोड़ देते हैं। एक भावुक वीडियो में बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। पिता समुद्र देखना और उसमें स्नान करना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण कभी जा नहीं सके। जब बेटे को इस इच्छा का पता चला तो वो तुरंत उन्हें समुद्र किनारे ले गया। समुद्र में नहाते पिता की खुशी देखने लायक थी। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए आपने कई इंतजाम देखे होंगे, लेकिन ये तरीका सबसे अनोखा है। वायरल वीडियो में एक डॉगी परीक्षा कक्ष के अंदर पूरे रौब के साथ घूमता दिखाई देता है। वो हर डेस्क के पास जाकर ऐसे निरीक्षण कर रहा है जैसे किसी विशेष ड्यूटी पर तैनात हो। छात्रों की गतिविधियों पर भी नजर रखने वाला ये IPS डॉगेश लोगों को खूब हंसा भी रहा है। डॉगी का गंभीर अंदाज और चाल ढाल वीडियो को और भी मजेदार बना रहा है। रसोई में ये नन्ना शेफ अपनी मासूम अदाओं से सबका दिल जीत रहा है। हाथ में बेलन लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। चेहरे पर लगा आटा उसकी क्यूटनेस को और भी बढ़ा रहा है। लग रहा है जैसे आज पूरे घर के खाने की जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली हो। माँ की मदद करते इस बच्चे का उत्साह देखने लायक है। यही वजह है कि ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, सेवंथ एट्थ और नाइन्थ के स्टूडेंट्स को अब दसवीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज, क्लास सिक्स में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। चार दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरेंट, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम धाम से जुड़ी एक ऐसी गुड न्यूज की जिसका अरसे से इंतजार था। वक्त लगा पर खाटू श्याम के भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। जी हां, धाम के करीब रेलवे स्टेशन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा। रेल मंत्रालय से जिस स्टेशन की मंजूरी मिल गई है, आज आपको उसकी जगह हम दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि धाम से बस 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर बनने जा रहे इस नए स्टेशन से भक्तों को कैसे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको नए स्टेशन की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि स्टेशन को खाटू श्याम का नाम दिया जाएगा। इसमें और क्या खूबियां हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको खाटू धाम में मेले और उत्सव की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुरू हुआ मेला आज द्वादशी के साथ भले ही खत्म हो गया है, लेकिन बाबा श्याम के दरबार में रविवार तक धूम रहने वाली है। वीकेंड पर वहां जा रहे भक्तों को पार्किंग और ट्रैफिक के मामले में क्या ध्यान रखना है, ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं खाटू श्याम के भक्तों को मिली बड़ी खुशखबरी से। आपको बता दें, जल्द ही धाम के नजदीक खाटू श्याम सुंदरपुरा नाम से नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि स्टेशन मंदिर के अनुरूप ही भव्य बनाया जाएगा, जिसके सामने खाटू श्याम की प्रतिमा भी होगी। माना जा रहा है कि नए स्टेशन से श्रद्धालुओं का सफर आसान हो जाएगा, यात्रा का समय कम लगेगा और खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय कारोबार को भी नई रफ्तार मिलेगी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: जिसने भी दिल लगाया, सिर झुकाया, वो खाली हाथ नहीं आया। हर अर्जी यहाँ मंजूर होती है, समस्या चाहे जैसी हो दूर होती है। इसलिए गुलाब और मोर पंख लिए हजारों भक्त रोज उनके धाम पहुँचते हैं। हाथों में निशान और जुबां पर नाम बाबा खाटू श्याम का। बाबा मन की मुराद पूरी करते हैं। हाँ, पर आसानी से खाटू श्याम के दर्शन से जुड़ी एक मांग सरकार ने भी पूरी कर दी है। जी हाँ, खाटू श्याम के धाम तक का सफर पहले से कुछ आसान होने वाला है, क्योंकि पास में ही उनके ही नाम से एक भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है। रूट तैयार है, जमीन भी तय हो चुकी है, समझ लीजिए कि भव्य रेलवे स्टेशन का नक्शा भी बन गया। बस अब निर्माण की शुरुआत होने वाली है और इस तरह खाटू श्याम के भक्तों की बड़ी आस पूरी होने वाली है। अरसे से ये मांग थी कि सीकर में धाम तक जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम हो, और लंबे मंथन के बाद रेल मंत्रालय ने आखिरकार हरी झंडी दे दी।
2: देश भर से खाटू श्याम आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां वो रिंगस से पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते थे या फिर गाड़ियां लेके आया करते थे, तो अब खाटू श्याम में सुंदरपुरा में एक रेलवे स्टेशन उनके लिए बनने जा रहा है और ये बहुत बड़ी सुविधा है।
1: बाबा श्याम के भक्तों के लिए धाम तक आने में अभी भी कोई अड़चन नहीं, कोई उलझन नहीं। साल भर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर धाम पर नजर आती है और विशेष अवसरों पर तो भक्तों की तादाद रोजाना लाखों तक पहुंच जाती है। हालांकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस से 18 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी है। यहां से ऑटो या बस के जरिए सड़क के रास्ते मंदिर के मुख्य द्वार तक जाना होता है और मुख्य द्वार से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलते हुए भक्त मंदिर पहुँचते हैं। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए ही एक नजदीकी स्टेशन की जरूरत थी। इसके लिए नजर गई सुंदरपुरा पर, जो खाटू श्याम मंदिर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर मौजूद ये सरकारी जमीन नए स्टेशन के लिए तय की गई है।
2: यहाँ से महज 11 किलोमीटर दूर खाटू श्याम मंदिर, श्याम बाबा का मंदिर होगा, तो जाना बहुत पास पड़ेगा। रिंगस से जहाँ 18 किलोमीटर खाटू पड़ता है, वहीं यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये जो प्लान है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मनोज जी देंगे, जो कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं। मनोज जी, क्या प्लान है उसके बारे में बताइए।
3: ये यहाँ श्याम भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी सौगात दी है केंद्रीय सरकार ने। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती और झाबर सिंह जी खर्रा, जो UDH मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, श्याम बाबा के लिए, भक्तों के लिए बहुत बड़ी मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो सौगात यहाँ की ले रहे हैं, ये सभी के लिए आने वाले समय में भक्तों के लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा, बहुत आरामदायक। यहाँ से ये मंदिर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर है, हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर है और पहले से एग्जिस्टिंग जो लाइन है उस पर स्टेशन बनना है। दोनों तरफ यहाँ पे सरकारी जमीन है हमारी।
1: रेल मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही स्टेशन का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि स्टेशन खाटू श्याम के नाम पर होगा, यानी खाटू श्याम सुंदरपुरा। बताया गया है कि इस साल के आखिर या 2027 की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा और 2029 तक स्टेशन बनकर तैयार हो सकता है। रेलवे स्टेशन को खाटू श्याम मंदिर के अनुरूप ही भव्य और यात्रियों के लिए आरामदेह बनाने की योजना है।
2: में ये नक्शा भी है जहाँ पे रूट हमें समझ में आ सकता है कि किस तरीके से ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ ये रूट जा रहा है, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ से ये ट्रेन चलेगी, कैसे, कितना दूर पड़ेगा।
3: एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो यहाँ जो स्टेशन बनेगा उसका यहाँ से हाईवे पे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी जो पहले से रोड बनी हुई है, छोटी रोड है, उसको डबल ट्रैक स्वामी जी ने कहा है कि उसको बड़ा बना देंगे हम। उसको बड़ा बनवाकर यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर मंदिर के पहले से आगे हाईवे मंडा रोड जो बनी हुई है उस पे लगभग रूट के सभी यात्री डिंगस के बाद सबसे ज्यादा रूट इसी इधर से जाते हैं, तो उनके लिए सुविधाजनक रहेगा। एक्चुअली
1: रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर तक आने में जितना समय लगता है, जाहिर है सुंदरपुरा से नहीं लगेगा। यात्रा 10 से 15 मिनट

0: का कहना है कि स्टेशन का वास्तुशिल्प खाटू श्याम मंदिर की धार्मिक भव्यता और पारंपरिक शैली से प्रेरित होगा और स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा खाटू श्याम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस इस स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग, स्वचालित टिकटिंग व्यवस्था और लिफ्ट जैसी सुविधा होगी। इसके बनने से न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी बल्कि खाटू क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी नई गति मिलेगी।
1: पहले तो ये इसे छोटा स्टेशन का ही प्लान था, लेकिन हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको खाटू श्याम जी के हिसाब से इतना भव्य बनाएं कि पूरे देश भर से जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा हो, यहाँ ठहरने की यात्री साइड भी यहाँ बन जाए ताकि यहाँ आराम करके दर्शन करके वापिस आ जाए लोग, और रेस्ट भी करना पड़े तो उनको काफी सुविधा हो जाए। यहाँ सरकारी जमीन है दोनों साइड, तो समस्या भी नहीं होगी बनाने में। बन रहा है जब खाटू श्याम जी के लिए ही बन रहा है। सुंदरपुरा तो एक छोटा गांव है, उसमें स्टेशन पहले हाल्ट स्टेशन हुआ करता था कभी यहाँ पे 30 साल पहले, तो वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ टिकट नहीं कटती थी। उसका खाटू श्याम जी के लिए ये सौगात दी गई है तो इसका नाम एक खाटू श्याम जी होना चाहिए उस हिसाब से कि पूरे देश भर से लोग जाने, टिकट कटाए तो कहाँ से कटाएंगे खाटू श्याम जी की।
0: उत्तर भारत के बड़े धार्मिक स्थलों में शामिल खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खास तौर पर फागुन मेले, एकादशी पर तो यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में नया रेलवे स्टेशन तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
2: फायदा तो बहुत कुछ होगा, यहाँ के लोगों को पहली बार रोजगार मिलेगा, यात्रियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी। यहाँ पे स्टेशन आ गया, यहाँ से 11 किलोमीटर खाटू श्याम जी है। अगर बाई चांस ट्रेन निकल गई, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ से 1 किलोमीटर मेन हाईवे 4 लाइन है, तो यहाँ से हर पूरे राज्य का पूरा साधन यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से पूरी सुविधा मिल जाएगी, गांव वाले के लिए सुविधा बढ़िया, रोजगार मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
3: फायदा है, दुकान लगा भी लिए तो मेरी दुकानदारी बढ़ेगी,
4: बहुत फायदे होंगे। एक तो नजदीक रहेगा, फिर ये 4 लाइन बन रही है तो इससे यहाँ से क्या साधन, रेलवे स्टेशन से भी साधन मिल जाएंगे और ये ऑटो वाले ये 5 रुपए कमाना सीख जाएंगे और एकदम नजदीक है, यानी यात्री को बहुत सुविधा है। यहाँ से
5: जाने में दिक्कत नहीं होगी, भीड़ भड़क में नहीं फंसेंगे। जयपुर वाले उधर रुक जाएंगे, सिक्कर इधर से लोहारू से आएंगे वो यहाँ रुक जाएंगे, 11 किलोमीटर नजदीक में यहाँ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, हमारे टैक्सी वाले के लिए भी फायदा है। कोई भी यहाँ लोग परेशान नहीं पाएंगे, जनता दुखी नहीं पाएगी। बाबा के नजदीक में मंदिर के पास में 11 किलोमीटर मन रहा है, सावनपुरा हमारे गोवर्धन सुंदरपुरा में मन रहा है, रेलवे स्टेशन
6: रोड है, मतलब या तो आप उस पर पैदल ही जा सकते हो या आप व्हीकल लेके जा सकते हो। ये जो रोड है मंडा वाली, ये पूरा कवरेज लेती है और चौड़ी रोड है, तो उससे यातायात में सुगमता होगी और खाटू पहुंचने में बहुत जल्दी, मतलब जहां आपको रिंगस से आधा पौना 1 घंटा लगता था और दुर्घटनाओं की संभावना होती थी, वहां पे यहां पे इतनी दुर्घटना नहीं होगी।
7: चाह रहे हैं कि बड़ा स्टेशन बने, हालांकि प्लान अभी तक 2 प्लेटफॉर्म का था, पर जितनी यहाँ पे भीड़ आती है भक्तों की, तो उससे ये चाह जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा स्टेशन यहाँ पे बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग श्याम बाबा के दर्शन करने आ पाए। फायदा ये भी है कि जहां रिंगस से 18 किलोमीटर उनको निशान लेके चलना पड़ता, वहीं यहां पे उनको महज 11 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जिसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हुए जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके बाद में 12 बीघा पार्किंग जो होती है वो आ जाएगी और 7 किलोमीटर के आगे वो फिर और पैदल जो यात्रा है वो करके श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो एक सौगात है सभी भक्तों के लिए, एक खुशखबरी है सभी भक्तों के लिए कि जो भी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं या फिर लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो भी दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि जयपुर या फिर आसपास का जो स्टेशन है उसके जगह वो डायरेक्ट खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ सुंदरपुरा, खाटू श्याम।
8: और अब आपको दिखाते हैं खाटू श्याम के धाम पर भक्ति और उत्सव की शानदार तस्वीरें। निर्जला एकादशी और उसके बाद द्वादशी के अवसर पर खाटू धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बावजूद लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर को विशेष फूलों और हरियाली से सजाया गया, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मेले जैसी रौनक रविवार तक रहने वाली है, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। भारी भीड़ देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं।

केसर चंदन महके सजियो बाबा को दरबार, एकादशी की बेला में उमड़े हो भक्तन को प्यार। भीषण गर्मी, लंबी कतार, पैरों में थकान, फिर भी चेहरों पर मुस्कान, क्योंकि मंजिल कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि खाटू वाले श्याम का दरबार है। यहाँ पहुँचने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, किसी की आंखों में धन्यवाद है तो किसी के मन में नई कामना। यही वजह है कि हर कदम के साथ जयकारे और विश्वास दोनों बढ़ते जाते हैं। ये तस्वीर खाटू धाम में निर्जला एकादशी का दो दिवसीय मेले की है। गुरुवार को एकादशी और शुक्रवार को द्वादशी, कहने के तो मेले का समापन हो गया, पर वीकेंड की वजह से अभी भी देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। रिंगस से खाटू तक का रास्ता भक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हजारों लोग पैदल चलते हुए बाबा के दरबार तक पहुँच रहे हैं। रास्ते भर भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। इस खास अवसर पर मंदिर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हरियाली की सुंदर सजावट के साथ अलग अलग किस्म के आमों से दरबार को विशेष रूप दिया गया है। गुलाबी सतरंगी फूलों और ड्राई फ्रूट से बाबा का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। इसके लिए विशेष सामग्री कोलकाता से मंगाई गई। दर्शन करने वाले श्रद्धालु बाबा के मनमोहक रूप को देख भावुक हो रहे हैं। इन दिनों भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे परिसर पर करीब 260 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 400 स्थायी सुरक्षा कर्मियों के अलावा 600 निजी सुरक्षा गार्ड और 500 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि दर्शन की व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पदयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगस से खाटू श्याम तक के रास्ते को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इस रास्ते पर केवल पैदल चलने वालों को अनुमति दी गई है। वाहनों की आवाजाही शाहपुरा होते हुए 52 बीघा पार्किंग की ओर मोड़ी गई है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने की कोशिश की गई है। तेज गर्मी को देखते हुए सेवा कार्य भी बड़े स्तर पर चल रहे हैं। मंदिर समिति ने लगभग 10 लाख पानी के पाउच की व्यवस्था की है। इसके अलावा पानी के टैंकर, छायादार स्थान, बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं। रास्ते में अलग अलग सेवा शिविर भी लगाए गए, जहां यात्रियों को ठंडा पानी और आराम की सुविधा मिल रही है। यही सेवा भाव इस मेले की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। निर्जला एकादशी का संबंध केवल व्रत से नहीं बल्कि खाटू धाम के इतिहास से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी अवधि में खाटू में बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ था। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं। लोक विश्वास है कि इससे दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।

खाटू श्याम को महाभारत के महान योद्धा वीर बर्बरिक का स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार युद्ध से पहले उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। उनके अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। इसी कारण उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत में खाटू की भूमि पर एक गाय अपने आप दूध बहाने लगी थी। जब उस स्थान की खुदाई कराई गई तो वहां से वीर बर्बरिक का दिव्य शीश मिला। इसके बाद तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1027 में यहां मंदिर का निर्माण कराया। तभी से ये धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मन्नत पूरी होने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा को निशान अर्पित करते हैं। कई परिवार हर साल यहां आकर धन्यवाद प्रकट करते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है तो कोई रोजगार की, और तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए माथा भी टेकता है। हर चेहरे की अलग कहानी है, लेकिन विश्वास एक ही है। सीकर से हिमांशु शर्मा और रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ सुनिए।

0: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
2: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: चारधाम यात्रा के बीच आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का जितना आपको पुण्य मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहां उत्तराखंड के ज्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
5: हिमालय की गोद में जहां देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहां हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की विलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहाँ केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है।
6: हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का पांचवां धाम है। ये पांचवां धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं।
5: मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ।
7: बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो जो जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बालगंगा और धर्मगंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंत की तरफ निकलना होगा और आगे आपको जो है अभी और भगवान के मतलब मेरे दर्शन करने होंगे।
5: उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि चारधाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
8: गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं, कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं। बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है, हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ।
9: और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते।
5: स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है।
10: बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेंगे।
5: बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहां भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं।
10: तो फिर पांडव जो है यहां से सतोपंत के लिए निकले, तो सतोपंत की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहणी के लिए जो ये सतोपंत है हमारा, सतोपंत स्वर्गरोहणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जब जिस स्थान पर पांडव गए उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह हैं, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो है अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए।
5: मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुँच कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भारतीय सिनेमा के सबसे कामयाब फिल्मों में शामिल बाहुबली जो एक बार फिर चर्चा में है। ना कोई आधिकारिक घोषणा है और ना ही कोई टीजर आया, लेकिन एक वायरल वीडियो ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाहुबली 3 सचमुच बनने वाली है। आखिर इस छोटे से इशारे के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है या फिर ये सिर्फ प्रमोशन का हिस्सा है, इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं।

0: एक इशारा, सिर्फ तीन उंगलियां और पूरे देश में मच गई हलचल। ना कोई पोस्टर, ना कोई टीजर और ना ही कोई आधिकारिक ऐलान। फिर भी सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बाहुबली फिर लौट रहा है, जिस कहानी ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया? क्या उसका तीसरा अध्याय सच में लिखा जा रहा है? आखिर एक वायरल वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि करोड़ों दर्शकों की उम्मीदें फिर जाग उठी? दरअसल बाहुबली फ्रेंचाइजी एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर बाहुबली द टॉर्च बैरियर डॉक्यूमेंट्री का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लिप में राणा दगुबाती कहते हैं, दुनिया शायद अभी तैयार नहीं है, लेकिन बाहुबली जरूर आएगी। इसके तुरंत बाद प्रभास मुस्कुराते हुए तीन उंगलियां दिखाते हैं। बस इसी इशारे के बाद लोगों ने बाहुबली 3 की चर्चा शुरू कर दी है। वीडियो के आखिर में लिखा आता है, और ये विरासत जारी है। यही लाइन फैंस की उत्सुकता और बढ़ा रही है। कोई इसे एक नए प्रोजेक्ट का संकेत मान रहा है, तो कोई इसे सिर्फ प्रमोशन बता रहा है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी नई फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कहानी सामने आई है और ना रिलीज को लेकर कोई जानकारी दी गई है। साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग और उसके बाद बाहुबली द कंक्लूजन ने भारतीय सिनेमा में नया इतिहास रचा था। दूसरे भाग ने दुनिया भर में करीब 1788 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिलहाल बाहुबली 3 सिर्फ चर्चा में है, लेकिन इतना तय है, एक छोटे से इशारे ने करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं। अब सबकी नजर मेकर्स पर है कि ये सिर्फ मजाक था या सचमुच किसी बड़े ऐलान की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विवाद बहुत ज्यादा होते हैं? कौन से लग्न के लोगों के वैवाहिक जीवन में विचार बिल्कुल नहीं मिलते? और कौन से लग्न के लोगों का वैवाहिक जीवन उनकी जिद की वजह से खराब होता है? आपके लग्न के अनुसार कैसा हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आज नोएडा अथॉरिटी के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 390 करोड़ की लागत से सेक्टर 96 में बनी हाईटेक इमारत, लोगों की सुविधा के व्यापक इंतजाम। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनेगा कुंभलगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मिली मंजूरी, बाघों के बेहतर आवास और संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। फ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स को अब 10वीं में नहीं बदलनी पड़ेगी फॉरेन लैंग्वेज। क्लास 6 में दाखिला लेने वाले छात्रों पर लागू होगा नया नियम। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद अपनी जड़ों की ओर लौट रहे कश्मीरी पंडित, उत्तरी कश्मीर के मुस्लिम परिवारों की मदद से चंद्राधर में खोला रेस्टोरां, पुराने जख्मों पर आपसी भरोसे का मरहम। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से निकली ट्रेन, जल्दी कमर्शियल ऑपरेशन भी होंगे शुरू।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं, तभी तो हम इनका सच आप सबके लिए लेकर आते हैं। फैक्ट चेक में आज यही रीचेक हम करेंगे। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान भी लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इसी दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा होता है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला सा कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है, तो कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है